ओम शांति। संगम युग हम सभी के लिए महान वरदान लेकर आया है। जब भी हम कोई कार्य करने चलें, तो बाप दादा से सफलता का वरदान लेकर जाएं, निर्विघ्न भव का वरदान लेकर जाएं, तो वैसा ही अनुभव कर्म क्षेत्र पर होता रहेगा। बाप दादा का आह्वान करें और देखें बाबा दृष्टि दे रहे हैं और उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दिया बच्चे निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। और हम फिर इस नशे से कार्य पर चलें कि हमें सफलता का वरदान मिल गया है, हमारी सफलता होगी ही। हम याद रखें, जितना जितना हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते जाएंगे, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कमाल दिखाने लगेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे हाथ में है। हमारे पास है वो रिमोट कंट्रोल, मन का हमारे पास है, परंतु जिसका मन व्यर्थ में बहता रहता है, उसको अपनी ये पावर भूल जाती है, वो अपने अधिकारों को विस्मृत कर देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है व्यर्थ संकल्पों पर। किसी किसी के मन में व्यर्थ संकल्प बिना कारण ही चलते रहते हैं, आदत पड़ी रहती है कुछ भी इधर उधर का सोचते रहने की। किसी के मन में व्यर्थ संकल्प अनुमान के कारण चलते रहते हैं, किसी के मन में काम क्रोध के कारण, तो किसी के मन में इच्छाओं के कारण, किसी के मन में मोहों के कारण, तो किसी के मन में बदले लेने की इच्छा के कारण। परंतु व्यर्थ संकल्पों से तो हमारी शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। हम तो शक्तियां जमा करने आए हैं, हमें तो इस समय अनमोल खजाने स्वयं में जमा करने हैं। और उन सब का बीज एक ही बात है कि हम स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर दें। सच्चे ज्ञानी की भी पहचान यही है कि अपने व्यर्थ को पहचानते चलें, रियलाइज करते चलें, कहां किस तरह का व्यर्थ अननेसेसरीली चल रहा है, उसे देख लें और ज्ञान के बल से उसको समाप्त करें। दो तीन बल हम यूज करेंगे व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, ज्ञान का बल, स्वमान का बल और अशरीरी स्थिति का बल। अशरीरीपन होने से मन इतना सुखद फीलिंग में आ जाता है कि व्यर्थ संकल्पों का बहाव स्वतः ही रुक जाता है। स्वमान हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को उत्पन्न करता है और व्यर्थ का फोर्स समाप्त हो जाता है। रोज की मुरली से, अव्यक्त मुरलियों से हमें अथाह ज्ञान मिलता है। हम मुरलियों से अच्छी अच्छी बातें अपने पास नोट किया करें। अगर हम सोचेंगे नहीं, बिना नोट किए ही हमें तो सब कुछ याद रहने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें भी मनुष्य को भूल जाती हैं, इसलिए कम से कम अपने पास 50 सुंदर पॉइंट्स अवश्य नोट करके रखें। उन्हें बीच बीच में पढ़ते रहने से ज्ञान की जागृति होती रहेगी और हम एक श्रेष्ठ स्थिति में आते रहेंगे। तो व्यर्थ से मुक्त होने को अपना महान लक्ष्य बना लें और आज सारा दिन अभ्यास करेंगे अपने पांचों स्वरूपों का, और उसमें भी देव स्वरूप का और फरिश्ते स्वरूप का विशेष अभ्यास। इस नशे में रहेंगे ब्रह्मा बाबा की तरह कि ये देह छोड़कर मैं ऐसा फर्स्ट क्लास देवता बनूंगा, मैं विश्व महाराजन बनूंगा, मैं विजय रतन हूँ, विश्व पर राज करूंगा। ऐसा संकल्प अपना भविष्य का स्वरूप सामने देखते हुए करेंगे। ये नशा बहुत हो जाए और बीच बीच में अपने फरिश्ते स्वरूप को भी देखेंगे।
भविष्य का नशा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें हमारे अंदर उससे भविष्य के सारे संस्कार गुण और लक्षण आने लगेंगे और आने वाले समय में भक्तों को वही साक्षात्कार हमारे द्वारा बाबा कराएगा। तो बाबा मुझे क्या देने आया है, वहा मेरा भाग्य, वहा अपने भविष्य देव स्वरूप को अपने राज को सामने लाते रहेंगे तो बहुत नशा रहेगा। ओम शांति।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जो भी कार्य आप अपने जीवन में करते हैं, उसे उत्साह से करें, फिर देखिए आपके लिए यह खुल जा सिमसिम का काम करता है या नहीं। आपको एक अपूर्व आनंद मिलेगा। एडिसन पार्क का माली हर समय अपना काम करता और गुनगुनाता रहता है। उसे अपना काम करने में बड़ा मजा आता है। वह उत्साह के साथ काम करता है। बगीचे का सारा काम देखने के बावजूद सारे दिन व्यस्त रहने पर भी वह थकावट का अनुभव नहीं करता है। उसके द्वारा संवारा गया एडिसन पार्क सबसे खूबसूरत पार्क माना गया है और यह माली कई बार पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। उसकी इस सफलता का रहस्य है उत्साह। अपने मन में आप किसी कार्य के प्रति दुराव या नफरत क्यों लाते हैं? क्या कारण है? उसे खुशी मन से क्यों नहीं करते? क्या बाधा है? अपने पर इतना काबू तो रखें कि काम उत्साहपूर्वक करें। इसका मुख्य कारण है आलस्य, आराम तलबी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचकर रहिए, यह आपका सारा जीवन नरक में उठाकर रख देंगे। हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखें, आलस्य, आराम तलबी से दूर रहें, हर काम का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। अपने आप को किसी कार्य में अपंग न माने। प्रायः घबरा जाते हैं कुछ लोग, अरे यह काम मुझसे क्या होगा। इस प्रकार की शंका अपने मन में कभी न लाएं। काम का बोझ या मात्रा देखकर कभी न घबराएं। कोई भी काम सामने आए, उसको देखते ही यह धारणा अवश्य ही बना लें कि यह काम आपसे हो जाएगा, आप इसको अवश्य कर लेंगे, एकदम आपसे होगा, इसमें शक को जरा भी ना आने दें। कभी घबराएं नहीं, आप देखेंगे कि फिर आप बड़ी सरलता से उस काम को निपटा सकते हैं, वह एकदम आसान हो जाएगा।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

दरअसल हमारे मन की भावना जिस प्रकार की होती है, हमें अपना काम वैसा ही दिखलाई पड़ता है। छोटा सा सरल काम भी हमको भारी पहाड़ सा मालूम लगने लगता है और पहाड़ सा काम भी छोटा दिखने लगता है। इस कारण हम फिर उसी रफ्तार से अपना काम करते हैं। आप अपनी सीमा रेखा क्यों बनाते हैं? आप किसी काम के बारे में यह कैसे धारणा बनाते हैं, यह आपसे होगा नहीं होगा, कैसे पता होगा, कैसे पता नहीं होगा? बस भावना मन में आ गई, आपने निर्णय कर लिया। यह क्यों भूल जाते हैं कि आप में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने भीतर झांक कर तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य में कार्य क्षमता का अपार सागर लहरा रहा है। प्रत्येक कार्य करने की पूरी शक्ति और क्षमता है। आप केवल भावना के कारण ऐसा निर्णय लेते हैं। अपनी सीमा आप क्यों बांधते हैं? आप अपने को आकाश के समान असीम और अनंत क्यों नहीं मानते? आप में सब कुछ समाया है, ऐसी धारणा क्यों नहीं बनाते हैं? इस प्रकार का विचार मन में लाकर देखिए तो फौरन आप में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने को अनंत शक्ति और सामर्थ्य का स्वामी माने। आपसे सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं कर सकते? आप में सब क्षमता है। उमंग के साथ जग जाइए। बहुत से लोग अपनी भावनाओं के कारण अपने को व्यक्तित्वहीन बना लेते हैं। वह निराशा घबराहट से भर जाया करते हैं कि अमुक काम है, भगवान कैसे होगा। घबराहट या उत्साहहीनता तो मन में आने ही नहीं दे, चमत्कार कर देंगे आप। कोई भी काम आने पर उस पर अधिक और विचार न करें, कैसे होगा, क्या होगा, यह सब जरा भी न सोचो और तुरंत ही काम में हाथ लगा दें। सब आसान हो जाएगा। घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए बराबर काम में लगे रहें। निराशा, उत्साहहीनता, आलस्य और आराम तलबी से एकदम दूर रहें। वह आपको बराबर घेरेंगे, यह आपके दुश्मन हैं। आपका सारा काम बिगाड़ देंगे। आपका कोई भी दुश्मन आपकी इतनी क्षति नहीं कर सकता है जितनी यह करते हैं। काम के दौरान आलस्य दबोच लेगा। थोड़ा आराम कर लो, अब बहुत काम कर लिया। आराम तलबी कहेगी थोड़ा लेट लो, बहुत हो गया, फिर काम करना। उत्साहहीनता कहेगी बस बहुत काम हो गया। इनकी बातों में आप आए नहीं कि सब खेल बिगड़ जाएगा आपका। बन बनाया महल गिर जाएगा, आप कहीं के न रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लगातार काम ही काम करते रहें, आराम विश्राम न करें। यह तो आवश्यक है, जितना जरूरी है उतना विश्राम आराम अवश्य करें। अपनी एक दिनचर्या बना लें, उसी प्रकार कार्य करें। हाँ, इन नकारात्मक भावनाओं को मन में न आने दें, बराबर कार्यरत रहें। अपने कार्य को पूरे उमंग उत्साह के साथ करते हैं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

उत्साह उमंग एक ऐसे खुल जा सिमसिम है जो आपके जीवन में बराबर प्रगति सुख के खजाने पेश करती है। आप अलीबाबा की तरह बराबर खजाना पाते जाएंगे। एक दिन यह खजाना आपको हर प्रकार से सुखी संपन्न बना देगा। सब कुछ आप पा जाएंगे। आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। हर समय अच्छे विचार अपने मन में बनाएं। आलस्य, निराशा, आराम बहुत या आज का काम कल पर अथवा सुबह का काम शाम पर कभी न रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर काम आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। जरा सी भूल के कारण फौरन पटरी से गिर जाती है। एक बार जब रेल पटरी से उतर जाती है तो फिर किस प्रकार सारा यातायात बंद हो जाता है और कितने परिश्रम से गिरी रेल को पटरी पर लाया जाता है, यह बात आप कभी न भूलें। उदास और निराश व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए जैसा बिना तेल का दीपक। मनुष्य उत्साह और साहस के बल पर जीवित रहता, विजय बनता और सफलता प्राप्त करता है। जिसके अंतर में उमंगे नहीं उठती हैं, जो नीरस और निस्तब्ध रहता है, जिसे न वर्तमान सुहाता है और न भविष्य की आशा है, वह जिंदगी को भार बनाए टूटे छकड़े की तरह किसी प्रकार धोता है। जिसका अंतर बुझा बुझा सा रहता है, उसके लिए प्रकाश की किरणें किसी भी दशा में नहीं उठती हैं। अंधेरे में भटकने वाले ऐसे व्यक्ति न उपयोगी सिद्ध होते हैं और न किसी को कोई सहारा दे पाते हैं। उत्तेजना, अपवाद भी मानसिक दोष दुर्गुण हैं। मनुष्य को धीर, वीर, गंभीर होना चाहिए। संतुलन किसी भी स्थिति में डगमगाने नहीं देना चाहिए। सफलता में आपे से बाहर न होना चाहिए और ना ही असफलता में हिम्मत हार बैठना चाहिए। प्रयत्नरत मनुष्य आज नहीं तो कल विजय अवश्य प्राप्त करेगा। जिसकी हिम्मत नहीं टूटी उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसके हौसले बुलंद हैं वह नदी की धार को चीरते हुए उल्टी दिशा में चलने वाली मछली की तरह हर मोर्चे पर रंग दिखाता है। बड़े से बड़ा अवरोध उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मनोविकार जीवन को भार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्व्यसन और पाप पातकों की अपनी बिरादरी है, जो मनुष्य को अच्छी खासी परिस्थितियों में बिगाड़ती और बर्बाद करके रख देती है। मटर गश्ती, आवारा गर्दी, जुआ, सत्ता आदि का चस्का किसी अच्छे खासे को भी भिखारी बनाकर रख देता है। सातवें आसमान के समान सपने देखने वाला जब बहुत ऊंचे से नीचे गिरता है तो उसे करारी चोट लगती है। यही नहीं, महत्वाकांक्षाओं की दृष्टि से शेख चिल्ली के समान हो जाता है। कठोर श्रमशील ही और ऊंचा उठाता है। अनेक भार मोर्चे पर लड़ने और अड़ने वाले ही विजयी का वर्ण करते हैं। जो केवल सपने देखना जानते हैं और सरलता से संपन्न हो जाने का स्वप्न देखते हैं, उन्हें पश्चाताप ही हाथ आता है। कुकर्मी इन सब सनकियों से बुरे हैं। तत्कालिक लाभ की दृष्टि से अनीति अपनाते हैं और वह पाप के भार से दबे रहते हैं। चोरी, बेईमानी, ठगी के सहारे जो लक्ष्मी समेट ना जानते हैं, वे बदनामी ही सहते हैं। उनका जीवन में कोई स्थान नहीं होता। सचमुच आप इस कथन पर गौर करें, यह कितनी अच्छी बात है। इस पर आप मनन करें कि यह आपके लिए जीवन का एक नया द्वार खोल देगी। आदमी के मन में जब उत्साह नहीं होता है तो वह बेतरह टूट जाया करता है। उसकी दशा भूत प्रेत व्यक्ति के समान हो जाया करती है। तो कभी भी अपने आप को निराशा में न धकेलें। सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहें और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

कहा है, क्रोध आए तो मुंह बंद कर लो। एक और विद्वान का कहना है कि 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। एक बात और है कि क्रोध उमड़े तो मुंह में पानी भर लो। मेरा भी इसी प्रकार कहना है कि जब भी आप अपने को तनावग्रस्त महसूस करें, परेशानी का अनुभव करें और नींद न आती हो, तो अपनी उड़ने वाली दरी निकाल लें। आराम से इस पर बैठकर आकाश की सैर करते हुए मन चाहा सुख प्राप्त करें। अपनी रंगीन कल्पनाओं में खो जाएं। आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा, मीठी नींद आ जाएगी आपको। परिस्थितियां आदमी को तोड़ कर रख देती है। टूट गया आदमी कहीं का नहीं रह जाता। बुझा बुझा चेहरा, ढीला शरीर, मजबूरन जिंदगी घसीटना, नीरस। आपने इन प्रकार के बहुत से लोग देखे होंगे। जानवरों की तरह दफ्तरों में आंखें गड़ाए अपना कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई जीवंतता नहीं, आनंद का प्रकाश नहीं, मुर्दनी मनहूसियत भरा सारा वातावरण। लगता है कि मानो मुर्दा घर में आ गए हैं। ऐसे आदमी जिंदा लाशों में बदल जाते हैं, चलती फिरती लाशें। क्या लाश बनकर जीना आपकी नियति है? ना, कभी नहीं। उल्लासमय आनंदमय जीवन जीने आप आए हैं। मुस्कुराहटों भरा, खुशियों भरा जीना आपका अधिकार है। परिस्थितियां इनको छीनना चाहती हैं, आप उनके आगे न झुकें, इनको बरकरार रखें। कुछ भी हो प्रसन्न रखें और अपने को तरोताजा रखें। कुछ लोग इस प्रकार हैरान परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी भूख प्यास तक मर जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता। कल तक रूखा सूखा भी मीठा लगता था, पर आज हलवा पूरी भी जहर लगती है। क्यों? हलवा पूरी जहर नहीं हुई है, आपकी विचारधारा ही तो बदल गई है। खाने पीने से परहेज क्यों? जो होना था हो गया। कुछ लोग नहाना धोना सजना सवरना बंद कर देते हैं। उनका वेश साज सज्जा ही बतला देती है कि परेशान है वह। परेशानी का साइन बोर्ड अपने वेश और चेहरे पर लटकाकर चलने लगते हैं। दुनिया मजाक उड़ाती है, आप अपना तमाशा क्यों बनाते हैं? अपने को संयत रखिए, संयम से काम कीजिए, साहस उत्पन्न करिए, आपका प्रत्येक काम बन जाएगा। संसार का ऐसा कोई संकट नहीं जो हल न किया जा सके। प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, प्रत्येक उलझन सुलझती है। समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उससे निकलने का रास्ता भी है। ऐसे व्यवहारों द्वारा हम हल नहीं कर सकते हैं, जो रास्ता है उनको भी न देख खोज पाते हैं। इस प्रकार अपना रूप बनाकर हम अपना भविष्य और भी नष्ट करते हैं। अपने पर संयम और संतुलन रखें, इसका बड़ा अच्छा फल मिलता है। ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का जो मनुष्य जितना अधिक प्रयोग करता है,

बढ़ावा देंगे उतना अच्छा है। जितना समय आप इनसे मुक्ति पाने के लिए देंगे, उसी अनुमान से यह आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देंगी। तो कहने का सीधा साधा भाव यही है कि अगर आप निराशा को दूर ढकेलना चाहते हैं तो सदा उमंग उत्साह में रहिए, खुशी में रहिए, क्योंकि यही खुशी आपको ताकत देती है, आपके कार्य को सरल बनाती है और आपको सफलता दिलाती है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

0: मैं काल चक्र का पहिया इस सृष्टि रूपी मंच पर चल रहे अनादि ड्रामा में ब्रह्मा बाबा के न्यारे एवं प्यारे पन की स्पष्ट झलक देख अभिभूत हूं। उन्होंने मातेश्वरी जगदम्बा के रूप में अपने एक अत्यंत निकटतम एवं मलौकिक साथी यज्ञ के अपरिमित कार्य में एक अथक सहयोगी आध्यात्मिक सेना की कुशल सेनानी उत्तम कुमारी रत्न को साकार रूप में खो दिया, परंतु उनके मन पर दुख की परछाई तक नहीं पड़ी, क्योंकि उनका प्यार सदा आत्माओं से रहा, शरीर से नहीं। वे सभी से निस्वार्थ प्रेम करते थे। बाबा का भाव निर्मल होता था। मातेश्वरी के शरीर त्यागने के पश्चात उन्होंने पिता के साथ साथ माता के रूप में यज्ञ वत्सों की पालना शुरू कर दी। उन्हें दिव्य गुण धारण करने की तमाम युक्तियां बताई।
1: अब आप सुनेंगे नवसृष्टि के रचयिता युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूप।

0: कि हमारी माँ कभी वापस नहीं आएगी?
1: बाबा, अब यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा?
2: बच्चों, मैं जानता हूं कि आप बच्चों को मां से बहुत प्यार था, परंतु वो मेरी भी तो मां थी। वे जगत की अम्बा थी और जगत में तो मैं भी सम्मिलित हूं। देखो, बाबा ने जब इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के समय तन मन धन शिव बाबा को समर्पित किया था, तब बाबा ने स्थूल रूप में इन माताओं के सामने ही अपना सब कुछ रखा था और उनमें मां अग्रण्य थी। यदि मां के शरीर के त्याग से किसी को कुछ क्षति का आभास होना चाहिए तो वो सबसे पहले मुझे ही होना चाहिए, परंतु बाबा तो यही सोचता है कि इस ज्ञान यज्ञ का रचयिता तो शिव बाबा ही है और वो कल्याणकारी परम पिता, हमें जैसा चलाएगा हम वैसे ही चलेंगे।

0: ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय था और साथ ही इस विश्व नाटक की नियति में भी उनका अटूट विश्वास था। इसलिए उनकी अवस्था हर परिस्थिति में स्थिर रहती थी। विश्व मंच पर चल रहे नाटक के एक दृश्य पर पर्दा पड़ने और दूसरा दृश्य सामने आने पर बाबा अपने मन में पिछले दृश्यों का चितवन छोड़कर वर्तमान समय के दृश्यों को साक्षी दृष्टा होकर देखते चलते थे।
1: इससे वे सदा न्यारी एवं प्यारी अवस्था में रहते थे। उनमें उत्तरदायित्व का एहसास था तो व्यक्तित्व में एक हल्कापन भी रहता था। बाबा ने सर्वोच्च रूहानियत एवं उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक की सूझ से एक अलौकिक शिक्षक एवं मार्गदर्शक के नाते से बहुत ही निराले ढंग से यज्ञवत्सों को मातेश्वरी के जाने के दुख से बाहर निकाला। मातेश्वरी जी के देहावसान के बाद ब्रह्मा बाबा मात पिता के रूप से वत्सों को सद्गुणों से सजाने में तत्पर हो गए। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी ने बताया है।
2: बाबा ईश्वरीय ज्ञान एवं सद्गुणी भावना की बात अनेक विधियों से समझाते थे। वे अलग अलग वस्तुओं, परिस्थितियों, व्यक्ति अथवा जीव प्राणी से गुण लेने की विधि हमें बताते थे और क्या क्या अवगुण छोड़ने हैं इसकी भी शिक्षा देते थे।
1: श्रीमद् भगवद गीता में दत्तात्रेय के बारे में लिखा है कि उन्होंने 24 वस्तुओं अथवा जीवों से गुण लिया था। उन गुणों के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान निष्ठ, चित्त को शांत और वृत्ति को उपराम बनाया था। आज भी लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद में जब यह पढ़ते हैं
0: कि दत्तात्रेय ने अमुक वस्तु या जीव प्राणी से अमुक गुण लिया था तो वे बहुत ही खुश होते हैं। यज्ञवत्स भी खुद को भाग्यशाली मानते थे कि बाबा ने उन्हें प्रकृति के तत्वों, जीव आत्माओं आदि से अनेक अनेक गुण धारण करने की युक्तियां बताई। बाबा कहते थे,
3: बच्चों देखो सागर की लहरें कैसे आपके पांव तक आती हैं और वापस चली जाती हैं। अगर आपके मन में भी कभी माया की लहरें उठें तो उन्हें ऐसे ही वापस लौटा दो। इसी प्रकार जब लोग सागर में किचड़ा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वो अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इस सागर की तरह ही आपका भी स्वभाव होना चाहिए। मन के अंदर कोई भी किचड़ा नहीं ठहरना चाहिए।
0: हमने देखा है कि कैसे गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे, मोती, रत्न आदि ले आते हैं।
1: बाबा भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाने को कहते थे, विचार सागर मंथन करने को कहते थे जिससे अनमोल रत्न मिल सकें।
0: दरअसल बाबा यज्ञ वत्सों को गुण ग्राहक बनाने की ट्रेनिंग देते थे। वे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कराते थे। वे कहते थे,
3: बच्चे देखो सागर कितना शांत, गंभीर, मर्यादित और धैर्यवत है। भले ही इसके ऊपर लहरें हैं परंतु नीचे वो सदा शांत होता है। आप भी ऐसे ही शांत एवं धैर्यवत हो जाओ। जिस प्रकार पानी की लहरों एवं छींटों से पत्थर घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गए हैं, वैसे ही आप कठिनाइयों को सहन कर और ज्ञान सागर की लहरों में लहरा कर एक दिन साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन।

0: प्रचलित कहावत है कि अग्नि में तपने से ही सोना शुद्ध होता है। अग्नि सारे किचड़े को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा कहते थे कि आत्मा को पवित्र बनाने के लिए योग अग्नि जरूरी है। शिव बाबा की याद की अग्नि से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल सकता है।
1: योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भान भी नहीं रहता और पापों का बोझ भी उतरता है। योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती, सुस्ती नहीं आती है। बाबा द्वारा बेहद रमणीकता से दी जाने वाली इन शिक्षाओं के बारे में दादी गुलजार जी ने बताया है।
2: बाबा हमें वायु, जल, चंद्रमा, बादल सभी से कोई न कोई गुण धारण करने की शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। अर्थात जैसे शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान करना होता है। इसी प्रकार वे चंद्रमा के शीतलता रूपी गुण की ओर ध्यान आकर्षित कराते थे। बादलों का उदाहरण देते हुए वे कहते थे कि बादल सागर से जल भरकर मैदानों में वर्षा करते हैं। इसी प्रकार हमें भी ज्ञान सागर के पास आकर स्वयं में ज्ञान जल भरकर दूसरों पर ज्ञान वर्षा करनी चाहिए।
1: बाग में खिले हुए फूलों को निहारना, उनकी सुगंध लेना किसे नहीं भाता है। बाबा भी अक्सर यज्ञवत्सों को फूलों के बगीचे में ले जाया करते थे।
0: वे उन्हें बताते थे कि फूल कितने पवित्र होते हैं। कांटों के बीच रहकर अपनी कोमलता, सुंदरता एवं सुगंध को बनाए रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं। इसीलिए देवताओं पर फूल चढ़ाने की परंपरा है।
1: शिव बाबा पर तो लोग खासकर अक के फूल चढ़ाते हैं, भले उसके पीछे का रहस्य उन्हें मालूम नहीं होता। इस प्रकार बाबा सभी की जिज्ञासाओं को शांत करते।
3: क्या रहस्य है बाबा अक के फूल चढ़ाने का?
4: बाबा, टू का फूल रंग रूप में तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें सुगंध जरा भी नहीं होता। इससे क्या सीख ले सकते हैं?
5: इससे यही सबक लेते हैं कि आप ऐसा न बने कि आप में दिव्य गुणों की सुगंध हो ही नहीं, केवल दिखावा मात्र हो। उसके अलावा आपको छुई मुई के फूल की तरह भी नहीं बनना है, जो हाथ लगाते ही मुरझा जाती है अथवा सिकुड़ जाती है। कहने का आशय है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुरझाहट आ जाए।
0: बाबा यज्ञवत्सों से गुलाब की तरह खुशबूदार फूल बनने एवं सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहने को कहा करते थे। वे उन्हें कमल के पुष्प की मिसाल दिया करते थे।
1: जैसे कमल का फूल दलदल में रहकर भी उससे न्यारा और अलिप्त रहता है, उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को भी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए नकारात्मकता के बीच भी उपराम रहना चाहिए।

0: प्राकृतिक फूलों की भांति बाबा को अपने चेतन अथवा मानवी फूल काफी प्रिय थे, जिन्हें वे अपने सतयुगी सृष्टि रूपी बगीचे में लगाना चाहते थे।
1: वे यज्ञ वत्सों से फूलों की माला स्वीकार करने की बजाय स्वयं उन्हें फूल बनाने की इच्छा रखते थे। बाबा कहते थे,
2: बच्चे, अगर आप बाप को गुलदस्ता देना चाहते हैं तो उसके लिए ये पुरुषार्थ करें कि अन्य जो कांटे समान मनुष्य हैं उन्हें फूल बनाएं, उनकी ज्ञान सेवा करके हर एक में दिव्य गुणों की सुगंध भरें, फिर बाबा के पास लेकर आए। उन्हें परस्पर प्रेम सूत्र में बांधकर लाना ही गोया बाबा के पास फूलों का गुलदस्ता लाना है। ऐसा गुलदस्ता बाबा स्वीकार कर सकता है और उनकी सुगंध से खुश हो सकता है। उसमें सब तरह के फूल होंगे, हरे पत्ते भी होंगे। हरे पत्ते वे नर नारी होंगे जिनमें ज्ञान की सुगंध तो है परंतु दिव्य गुणों की सुगंध नहीं है।
1: बाबा ने जीव प्राणियों से भी गुण ग्रहण करने एवं अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा दी।
0: वे मोर एवं मोरनी के संबंध को पवित्र बताते थे। उनका कहना था कि श्री कृष्ण के मुकुट में स्थित मोर पंख असल में इसी पवित्रता का सूचक है, इसलिए मोर ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने योग्य है।
1: बाबा यज्ञ वत्सों से मोर मुकुटधारी बनने को कहते थे, जिसके लिए योगी एवं निर्विकारी बनना आवश्यक है।

मैं काल चक्र आपको उन ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना रहा हूं जिन्होंने आसुरी संप्रदाय के बीच रहते हुए न्यारा एवं प्यारा बनकर दिखाया। तमो प्रधान बन चुकी प्रकृति एवं सृष्टि को योग से सतो प्रधान बनाने का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य आत्माओं के आचरण में सुधार आ जाए, वे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना सीख जाएं, तो योग बल द्वारा प्रकृति की अच्छी सेवा कर सकेंगे। आगे की कड़ी में जानेंगे बाबा की कुछ और अद्भुत एवं मलौकिक कार्य विधियों के बारे में।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब कुछ टूटता है तो उसकी आवाज़ आती है, ये कहा जाता है। इन दिनों हमारे बहुत से बिलीफ सिस्टम्स टूट रहे हैं और बे आवाज़ ही टूटते जा रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन हमें खुद को होता जा रहा है। वो बिलीफ सिस्टम्स, वो पूरी धारणाएँ जिन पर हमारा पूरा जीवन आधारित था, लेकिन अब अगर हमने देखा कि किस तरह से वो हमें ही अपने पास में बांधते जा रहे थे और हम कहीं ना कहीं उलझते जा रहे थे। एक एक बिलीफ सिस्टम टूटते ही नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है और एक जो गुत्थी है वो सुलझती जाती है, फिर वो स्ट्रेट लाइन बनती जाती है। लेकिन हाँ, वो उलझन फिर आती है। वो बिलीफ सिस्टम, चाहे वो एंगर से जुड़े थे, चाहे वो रिजेंटमेंट से जुड़े थे, चाहे वो पास्ट को पकड़े रहने से जुड़े थे या फ्यूचर के बारे में सोचने से जुड़े थे, कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रॉन्ग विशेष सर्कल है, इतना मतलब सही तरीके से हमारी ज़िंदगी ने उसके साथ चलना सीख लिया था कि जब एक नए अंदाज में देखा सही तो लगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उलझते जा रहे हैं। तो कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो पावर है जो हमें अब जो समझ में आ रहा है उस पर चलना सिखा सकती है, वो शक्ति हमें मिल सकती है, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तो बहुत कुछ समझा, जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे आधार थे ज़िंदगी का, जो हमने शुरू में मुझे याद है कि बात की थी कि ये तो कितने नेचुरल है, मतलब इनके बिना, और हमें अवेयर भी नहीं थे, कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसे सेट ऑफ थिंग्स हैं जिन पर हम जी रहे हैं। लेकिन जब देखा तो ये भी देखा कि जैसे ही थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, अब अगर हम चेक करते हैं तो समझ में आता है, ओ हम ये मानते आ रहे हैं, ये मेरी मान्यता है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, समझ में आता है कौन सी नई मान्यता बनेगी, लेकिन फिर वो अगली सिचुएशन आती है तो वो इतनी ज़ोर का टेक ओवर करती है कि वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो रहती ही है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि डिस्टर्बेंस आते ही हम रुक जाते हैं। अब आगे आप बताएं कि कैसे बढ़ें।
1: जैसे कि एक है कि अब समझ में आ गया, यू नो, अवेयरनेस आ गई कि हाउ इट इज़ वर्किंग। तो एक है कि मैकेनिज्म पता चल गया कि यस, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, मुझे थॉट लेवल पर ही उसको चेंज करना है, फीलिंग तक भी नहीं लेकर आना, क्योंकि फीलिंग लो हो जाती है एंड देन टू चेंज माय थॉट्स। तो अवेयरनेस से जब थॉट्स को देखना शुरू किया तो पता चल जाता है। अब अगर इसको आप जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, विद इन अ फ्यू डेज यू विल रियलाइज कि आपको अपने थॉट्स अब ऐसे पता चलते हैं। इफ़ यू आर जेलस ऑफ समवन, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है किसी से, आपको दिखाई देने लगेगी। जैसे ही ये अपने अंदर दिखाई देने लगता तो फिर काम करना कितना सहज हो जाता है बिफोर इट कम्स आउट इनटू द बिहेवियर। तो एक है अवेयरनेस। अब दूसरा है कि हमें समझ में आ गया, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर कई बार हम कहते हैं, लेकिन जब करने जाते हैं उसको प्रैक्टिकल
0: नहीं
1: में
0: हो पा रहा होता,
1: नहीं आ रहा है। फिर कई भाई बहने लिखते कि समझ में आ गया, गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है, लेकिन वो बात ही इतनी बड़ी आ गई, कहीं हम फील करते कि हमारे एफर्ट से ज़्यादा बड़ी बात आ जाती है हमारे सामने और हमारा एफर्ट अभी उस लेवल तक पहुँचा नहीं है। लेकिन वी नॉट टू गिव अप, वी आर ऑन अ जर्नी। अगर हमें ये कन्विक्शन है कि ये यात्रा ठीक है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ठीक है, स्पीड कुड वेरी कि थोड़ा स्लो है या थोड़ा फास्ट है, लेकिन अगर रास्ता ठीक है उसको हमें कंटिन्यू करना है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा पावर भी भरनी है, अपने अंदर एनर्जाइज करना है अपने आप को, क्योंकि कुछ भी करने के लिए शक्ति चाहिए। यू नो, सपोज मुझे समझ में आ गया कि शरीर को हेल्दी रखना है, लेकिन फिर उसके लिए एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ मेरे सोचने से कि ये बॉडी हेल्दी हो जाए, इट वॉन्ट हैपन। तो नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज, आई हैव टू डू दिस फॉर द बॉडी, सिमिलरली नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज फॉर हियर, आई हैव टू डू। तो इसलिए मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आपको तो पता ही आजकल मेडिटेशन हैज़ बिकम अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम सब रियलाइज कर रहे हैं कि यस, अब कुछ और चाहिए, अभी तक जो मेजर्स यूज़ किए उससे वो जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा जो हमें चाहिए था, तो एवरीवन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स मेडिटेशन। और मेजॉरिटी आज जो भी भाई बहने मिलते तो वो किसी न किसी प्रकार से इसका प्रयास कर रहे हैं, एंड बहुत सारे हैं जो घर पे अपने ही तरीके से उसको कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज है, अगर इसको राइट तरीके से नहीं किया, आई विल नॉट गेट द रिजल्ट। कोई भी इलाज है, मुझे इलाज करवाना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा कैसे करना है. मैं अपने आप ही अपने तरीके से कर लूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, फिर आई एम डूइंग इट द राइट वे. एंड फिर वो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता कि कर भी रहे हैं लेकिन रिजल्ट भी नहीं क्रिएट हो रहा. तो मेडिटेशन में भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं.
0: यस, वेरी ट्रू. यू नो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज थॉटलेसनेस. आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू पिक दिस अप, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग दिस. यू नो, उनका ये प्रयास रहता है कि कोई थॉट नहीं क्रिएट होना चाहिए. आई नो आई हैव टेकन द बिगेस्ट, द मोस्ट पॉपुलर वन, लेकिन उसी पर मैं काम बात करना चाहती थी कि थॉटलेसनेस हो जानी चाहिए. वो सिचुएशन पहुंच जानी चाहिए आपकी जब आपका माइंड कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा.
1: इट्स अ वेरी कॉमन वन, और ये सभी को लगता है कि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ सीखना तो है ही नहीं. हम घर बैठे रोज प्रयास करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे तो हमारा मन सोचना बंद तो कर ही देगा फाइनली. तो हर रोज हम अपने लिए टाइम निकालते एंड एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते कि मन सोचना बंद करते. नाउ दिस इज ईच वंस ओन एक्सपीरियंस, लेकिन इफ आई कैन शेयर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर हम सोचना बंद कर दें तो पहली बात वो संभव है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मन का काम है सोचना. यू नो, इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर जो नेचुरल है, हम उसको फ्लो को बंद करने की कोशिश करते रहते हैं. अब जिसका नेचुरल स्वरूप है फ्लो होना, अगर आप उसको बंद करने की कोशिश करोगे तो मेनी टाइम्स पीपल एक्सपीरियंस कि यहाँ भारी होने लगता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई थॉट नहीं आनी चाहिए. यू नो, इवन क्रिएटिंग दिस थॉट कि कोई थॉट नहीं आनी चाहिए, दैट्स ऑल्सो अ थॉट. अब इसमें भी आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि थॉटलेसनेस क्यों, वाई एम आई ट्राइंग टू अचीव थॉटलेसनेस. क्योंकि हम फील करते कि जब हम सोचना बंद कर देंगे तो सारी जो हमारी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं वो आना बंद कर देती हैं, विच इज़ ट्रू. कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट नहीं आएगी क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया. लेकिन आपने उस पर कोई और काम तो नहीं किया ना, आपने सिर्फ दबा दिया है उसको. अब इसको सपोज यहाँ पर कुछ है और हमने उसको दबा कर रख दिया 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी हमने दबा कर सपोज उस अचीव कर लिया कि उसको बंद कर दिया डब्बे को. अब इसके बाद काम पर गए, अब तो सोचना है ना, अब
0: वो
1: तो सोच
0: अगर खुल गया
1: तो वो तो खुलेगा
0: और ज्यादा फोर्स से होगा,
1: और ज्यादा ना भी होगा तो सही ना, जो उससे पहले था उतना ही स्टेज पर वापस आएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई वर्क नहीं किया था, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया. सो दिस इज लाइक एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन, थॉट्स इज माई इंटरनल कॉन्वर्सेशन. हमने इसको कहा चुप कर जाओ, इसने सपोज चुप कर दिया, लेकिन फिर जब ये बोलेगा ये वही बातें बोलेगा जो ये पहले बोल रहा था, तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ थोड़ी देर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो इधर चल रहा था वो बंद हो गया. तो डेफिनेटली वो हमें एनर्जाइज करता है, क्योंकि मेरी लीकेज ऑफ एनर्जी जो कॉन्स्टेंट सारा दिन यहाँ चलती वो उतनी देर बंद हो जाती है. सिमिलरली ऑल्सो हैपन्स कि कई मेडिटेशन टेक्निक्स में हम अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करते हैं, वो भी बहुत बेनिफिट करता है कि हम जितनी देर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते जा रहे हैं हमारा सारा ध्यान किस पर आ गया, ब्रीथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. तो उतनी देर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आते. लेकिन दिस इज अगेन हमने क्या किया, एक जगह से फोकस हटाया दूसरी जगह ले आए तो वो चीज़ की थॉट्स नहीं आई. लेकिन जब मेडिटेशन करना बंद किया फिर उसके बाद तो फोकस फिर कहाँ जाएगा, फिर उन्हीं बातों पर जाएगा जहाँ से हट कर आए थे, फिर थॉट्स की क्वालिटी वही हो जाती है. तो जब इस तरह की मेडिटेशंस हम करते ये हमें बेनिफिट बहुत करती है, क्योंकि हमारी डिप्लीशन नहीं होती लेकिन वो उतनी देर बेनिफिट करता है. एंड फिर उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि माइंड चार्ज हो गया ना तो उसका इफ़ेक्ट आगे सारा दिन पर कैरी फॉरवर्ड होता. लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, तो मेरा माइंड तो वही थॉट पैटर्न पर है, उसकी वो थॉट्स तो उसी क्वालिटी के, अगेन इट विल गो बैक टू थिंकिंग द सेम वे, क्रिएटिंग द एंगर, क्रिएटिंग द स्ट्रेस. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन आई सिट फॉर मेडिटेशन, अपने आप को हम डी स्ट्रेस करते वो सारा जो अक्यूमुलेट हो गया हो. तो फिर बहुत लोग इसलिए कहते कि हाँ मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ लेकिन जब मैं मेडिटेशन अब करूँगा ना तो मैं उसको सारा ख़त्म कर दूंगा. तो मेडिटेशन एक विधि क्या बन गई है कि ब्लॉकेज क्रिएट होगा, अब आप बैठो और फिर उस ब्लॉकेज को ठीक करो. एक ट्रैफिक जैम क्रिएट होगा, फिर आप एफर्ट करो उस ट्रैफिक जैम को सॉर्ट आउट कर दो. एंड पीपल आर फाइन विद इट कि ये ठीक है क्योंकि स्ट्रेस नेचुरल है, ये माना तो ब्लॉकेज नेचुरल है. तो अब हमने एक टेक्निक ढूंढी जिससे हम ब्लॉकेज को ठीक कर सकें. एंड सेम थिंग इवन हैपेंस कि कई बार मेडिटेशन में जो हम विधि अपनाते हैं उसको हम कहते हैं मंत्र जप. कि एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव शब्द का उच्चारण हम रिपीटेडली करते हैं. अब दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक क्योंकि जितनी देर वो इतने प्योर शब्द का उच्चारण किया उतनी देर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कईयों के साथ ऐसा होता कि जब वो शब्द का बहुत समय से हम उच्चारण करते जा रहे हैं तो मन को यहाँ कुछ नया नहीं मिलता.
0: वो अपनी हाँ जो हम जो जो कहते हैं
1: क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी नहीं है. तो क्या होता है थोड़े दिन के बाद इसको आदत पड़ गई है कि इन्होंने यही शब्द का उच्चारण करना है. तो कई बार अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे और मन किसी बात से डिस्टर्ब्ड है, कोई परिस्थिति को उलझा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आप मंत्र का उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन मन शायद कहीं और चला गया
0: है. वो इतनी स्ट्रांग जब आ जाती है परिस्थिति तब तो बिल्कुल मतलब कितना भी आप कर ले तब देन वी से कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा.
1: क्योंकि मंत्र का उच्चारण करते हुए भी क्योंकि इट्स बिकम मैकेनिकल ना, तो हम बोलते जाते हैं वो मुख से लेकिन मन कहीं और चला जाता है. तो ये जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं बहुत बेनिफिशियल हैं लेकिन ये हमें रेगुलरली करनी पड़ती हैं अपने आप को डीकंजेस्ट करने के लिए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. अब राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि मन की क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं. अब इसमें भी आज भी दुनिया में बहुत सारी टेक्निक्स है कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना. अगर हम थॉट लेवल पर उसको चेंज करते हैं थोड़े दिन के बाद हम पाते हैं कई बार कि वही क्वालिटी ऑफ थॉट्स फिर से आ जाती है. क्योंकि थॉट का फाउंडेशन क्या है, वो है हमारे बिलीफ सिस्टम्स या डीप रूटेड संस्कार्स जिसको हम कहेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स. जब तक संस्कार पर वर्क नहीं किया है, उस फाउंडेशन की लेयर को चेंज नहीं किया है, तो उसके बाद जो भी ऊपर से ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टेम्प्ररी हो जाता है क्योंकि फाउंडेशन में तो अभी भी वही संस्कार है. तो राजयोग मेडिटेशन में हम मंत्र जाप भी नहीं करते, ब्लैंक भी नहीं होते हैं एंड इट डजेंट इन्वॉल्व एनी फिजिकल ब्रीदिंग टेक्निक. राजयोग में हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, रोकते नहीं हैं लेकिन चैनलाइज करते हैं और नए क्रिएट करते हैं. क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर एक ही थॉट हो सकता है तो अगर हमने एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किया तो जो एक्चुअल पहले से क्रिएट हो रहा है वो तो अपने आप वैसे ही बंद हो गया. जो हमारा एफर्ट था नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को ख़त्म करने का वो तो वैसे भी हो गया क्योंकि हमने पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए. लेकिन इसका जो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड के प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होता, आप थोड़ा समय अपने साथ बैठकर माइंड की ये ट्यूनिंग करते हैं एंड पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स इस तरह क्रिएट करते तो उसका बेनिफिट सिर्फ उतनी देर नहीं रहता लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन में जाते हैं, परिस्थिति में, ऑफिस में, लोगों के साथ,
0: इट स्टेज विद यू, यू नो दैट्स
1: इट हैज बेसिकली चेंज्ड योर वे ऑफ थिंकिंग. सिर्फ उतनी देर नहीं बेनिफिट होता लेकिन बेसिकली हमारा जीवन के प्रति, लोगों के प्रति और अपने प्रति भी एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया. तो उसका बेनिफिट हमें फिर प्रैक्टिकल लाइफ में होता. तो फिर मेडिटेशन और प्रैक्टिकल लाइफ
0: अलग अलग
1: सेपरेट नहीं रह जाते. इट इज माई, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स माई लाइफ स्टाइल. तो उसमें फिर फोकस थोड़ा सा ये चेंज हो जाता कि ये नहीं कि स्ट्रेस क्रिएट करें, गुस्सा क्रिएट होता ही है, नेचुरल है, और फिर कल सुबह बैठ कर उसको ख़त्म करेंगे, उसको सफाई कर देंगे. यहाँ पर इसमें अटेंशन ये होता कि वो क्रिएट ही ना हो. ये नहीं कि कंजेशन हो फिर सुबह ठीक करें, फिर सारा दिन क्रिएट हो फिर ठीक करें. दैट इज लाइक बीमार हो फिर ठीक हो, फिर तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना, रोज रोज बीमार हो.
0: क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, दैट आई अंडरस्टैंड, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड. पॉजिटिव मीन्स जो सही है, जो खुद को अच्छा फील करवाए. लेकिन अब जब हम अपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, what, how do I give power to these positive?
1: See, because कई बार हम दुनिया में भी क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मूले सुने हैं, अलग अलग टेक्निक सुनी हैं पॉजिटिव थॉट की, तो हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट तो कर देते पर उसमें ताकत नहीं होती है क्योंकि शायद हम अंदर ही खुद श्योर नहीं है. तो वो पॉजिटिव यू नो लाइक लेट्स से कि कुछ काम रुका हुआ है तो आई विल क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट ये काम हो जाएगा. लेकिन उसी के साथ साथ अंदर मुझे डाउट भी है कि मेरे को नहीं लगता हो पाएगा. फिर फियर भी है अगर नहीं हुआ तो फिर वो पॉजिटिव थॉट का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है बिकॉज वो वन पॉजिटिव थॉट इज फॉलोड बाय लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स. और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं कर रहा कि हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं आ रही. वो पॉजिटिव है लेकिन वीक थॉट है इसलिए वो पॉजिटिव बहुत जल्दी फॉलोड बाय नेगेटिव होता है. तो पॉजिटिव थॉट विद कन्विक्शन एंड जिसमें बिल्कुल एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होगा फियर नहीं होगा इनसिक्योरिटी नहीं होगी वो रियलिटी में फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड वो हमें स्टेबल रखेगा. सी हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं मीन्स वी आर रिमेनिंग स्टेबल. लेकिन पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया उसके बाद फॉलोड बाय इनसिक्योरिटी या फियर तो फिर वो यहाँ ये क्या हो रहा है ऊपर ऊपर से क्रिएट किया हुआ थॉट है लेकिन डीप लेवल का जो संस्कार है वो अभी भी गुस्से वाला है. वो अभी भी वो संस्कार है कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए. यू नो लेट्स से कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ और मेरा वो डीप रूटेड संस्कार अभी भी है कि लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए. ऊपर से मैं थॉट क्रिएट करती हूँ हाँ कोई बात नहीं आप जिस तरह से कर रहे हैं ठीक है आई विल एक्सेप्ट यू. लेकिन एक बार वो कर पाती दो बार कर पाती तीसरी बार ऐसे हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू गो ऑन एडजस्टिंग क्योंकि मेरा संस्कार जो है वो फिर वो मुझे डिस्टर्ब करना शुरू करता कि नहीं दिस इज़ नॉट द वे इट्स गोइंग टू वर्क तुम्हारा तो काम ही नहीं होगा अगर तुम ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट करते रहोगे. तो फिर वो एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट मेरे अंदर क्रिएट करता. मेडिटेशन इज लाइक अ चार्जिंग प्रोसेस जिसमें हमें अपने डीप रूटेड संस्कार्स डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते जिससे फिर थॉट लेवल पर वर्क ही नहीं करना पड़ता. यू सी आप एक स्टेप और पीछे चले जाएंगे जब आप अपने संस्कार को चेंज कर देंगे आपको थॉट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिस क्वालिटी का संस्कार उसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट होने वाली है. तो मेडिटेशन में जब हम संस्कार लेवल पर वर्क करते तो फिर थॉट वो आएगा ही नहीं उस क्वालिटी का. एंड फिर ये जो अटेंशन रख के एफर्ट किया जाता है फिर वो सफोकेटिंग नहीं लगता. यू नो कई बार क्या होता है अगर हम रूट लेवल पर नहीं काम करते और प्रैक्टिकल में सिर्फ काम करने लग जाते हैं तो ऊपर ऊपर से तो रोक लेते हैं
2: अपने आप को. गुस्सा रोकने की कोशिश करते और वो बहुत बार होता है यू नो कि गुस्सा रोकने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं आई हैव टू बी स्टेबल. एंड वो उस वक्त पांच सिचुएशन जैसे मैंने कहा पांच टाइम तक तो इरिटेशन नहीं हुई छठे पे वो फिर मैं कब तक रोकूं
1: क्योंकि अपने अंदर पावर नहीं भरी और बाहर से सिर्फ करने की कोशिश की. तो इट इज़ ओके टू स्टार्ट विद नहीं तो बाहर से भी नहीं शुरू करेंगे लेकिन शुरू भी करते जाएं एफर्ट भी अपने ऊपर लगाते जाएं लेकिन साथ साथ अपने अंदर ताकत भी भरनी पड़ेगी क्योंकि अगर कमजोरी के हालत में बहुत ज़्यादा काम करेंगे सी जो अब हम इस प्रोग्राम के द्वारा जो हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं दिस इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट्स नॉट वेरी सिंपल कि आपके आसपास लोग कुछ भी कर रहे हैं आप उनको स्वीकार करें आप गुस्सा ना करें आप फिर भी प्यार से रहें आप शांत रहें. दिस इज़ नॉट वेरी ईजी इन प्रेजेंट चैलेंजिंग टाइम्स अगर आप साथ साथ अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत नहीं करते क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत करते गए ऊपर से अंदर ताकत नहीं थी और वो सडनली फिर अंदर से यू नो एक दिन यू विल जस्ट एक्सप्लोड. ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो डीप लेवल से हुआ है विद अंडरस्टैंडिंग हुआ है एंड साथ साथ उसके लिए आपने अपने अंदर ताकत भी भरी है ताकि आप कभी भी अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड ही ना हो जाएं ये एफर्ट करके. क्योंकि कई बार लोग थोड़ा सा ट्राई करते वहाँ से रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलेगा कि सामने वाला चेंज हो जाए या ऑफिस में सब एकदम प्यार से काम करने लगे फिर हमें लगता है नहीं और फिर हमारी जर्नी आकर रुक जाती है एंड पुराने बिलीफ सिस्टम्स तो रेडी पड़े ही हैं तो उनके पास वापस जाना मुश्किल नहीं होता. तो इसमें लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जैसे कि एक जर्नी पर चल रहे हैं लेकिन साथ साथ अपने को फ्यूल करना बीच बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके लिए सुबह के समय जब हम अपने साथ बैठते और साइलेंस में बैठते हैं तो हमें साइलेंस में बैठकर क्योंकि मेडिटेशन एक्चुअली क्या है एक बेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हमें पहले रिजोल्व करना है, फिर जो हमारे बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो अपने आप ही रिजोल्व हो जाएंगे, उन पर मेहनत नहीं करनी है। तो मेडिटेशन ऑफ कोर्स डीपर लेवल पर हम और आगे देखेंगे कि कैसे करते, लेकिन बेसिक लेवल पर जो सभी अब शुरू कर सकते हैं वो है कि सुबह का समय पहले तो अपने आप से अपॉइंटमेंट, वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एंड इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, क्योंकि जितनी यहाँ स्पीड ऑफ थॉट्स है 5-10 मिनट तो सिर्फ उसको थोड़ा सा साइलेंट करने में ही लग जाता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़्यादा दें एंड उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करें, बंद नहीं करें, लेकिन अपने आप को फोकस करें कि आई एम क्रिएटिंग अनदर थॉट। तो यहाँ से थॉट्स आएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर उलझ जाएंगे। सपोज कोई थॉट आया, कल तो उन्होंने ऐसा कहा था, अब अगर उसी में उलझ
2: के आ गया कि साथ साथ का पूरा सिनेरियो चलेगा,
1: या आज मुझे ऑफिस में ये करना है, अगर आप उसको एनर्जी नहीं देंगे, उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, बहुत जल्दी दे आर स्टॉप्ड, दे आर ओवर एंड गॉन, हम उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते। हमें ध्यान रखना है मुझे क्या क्रिएट करना है। तो जो लोग कहते हैं ना कि एक पॉइंट को लो और उसको फोकस करो, इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल पॉइंट कि एक स्थान बाहर, लेकिन एक थॉट को लो पहले, वो यहाँ पॉइंट क्रिएट करो, एक थॉट को लो और उस पर फोकस करो। तो सपोज हम एक थॉट लेते, आई एम अ पीसफुल बींग, शांति मेरी अपनी नेचर है, इसको क्रिएट करना है। और इसके साथ साथ हमें विजुअलाइज करना है कि शांति जब मेरे जीवन में इतनी नेचुरल आ जाएगी, मेरी जीवन कैसे हो जाएगी। विजुअलाइज योर सेल्फ विद दैट वैल्यू एंड दैट पावर ऑफ पीस।
2: थॉट्स ना, मोर थॉट्स,
1: यस, दिस इज बिकॉज
2: एकदम से स्टोरी, यस,
1: यू नो इट्स लाइक अ प्लानिंग फॉर द डे। क्योंकि सिर्फ थॉट लेवल पर करते हैं तो उतना अभी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर साथ साथ विजुअलाइज करते तो जो चीज को हम विजुअलाइज करेंगे वो हमारी फीलिंग भी बनती जाती,
2: इम्प्लीमेंट होना भी आसान हो,
1: वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता। जैसे हमने पहले बात की, इरिटेट नहीं होना है, मतलब शांत रहना है। अब वो सीन ले आओ यहाँ कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस थी जिसमें हम इरिटेट होते थे, एंड नाउ क्रिएट द सीन कि वही सीन है, वही कंप्यूटर है, वही लोग हैं, बट हम कैसे हैं, हम पीसफुल हैं। लुक एट योर सेल्फ एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, लुक एट योर सेल्फ कि जब वो शांति आपके स्वरूप में आ गई, आपकी जीवन कैसी हो जाएगी। यू नो वो गोल सेटिंग है, दिस इज गोल सेटिंग, कि हम उस गोल को सेट करें और फिर उसको प्रोग्रामिंग करके यहाँ फिट कर दिया,
2: फिर उस पर
1: सारा दिन वो हम पर चलना शुरू हो जाएगा।
2: एक और बात है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम है जिन पर हम काम करना चाहते हैं कि वो हम डिलीट कर पाए, तो उसके लिए क्या ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें उन्हें भी इमर्ज करके
1: उन्हें खत्म करना है? जैसे जैसे माइंड साइलेंट होता जाएगा और ऑर्डिनरी थॉट सारा दिन की धीरे होती जाएंगे, तो हमारा ये जो थॉट की स्टेज है ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ऊपर की लेयर का माइंड है जो रोज की मर्रा की थॉट्स क्रिएट करता। जब ये धीरे धीरे बंद हो जाती, वी कम टू द लिटिल लोअर लेयर विच इज़ द सब कॉन्शियस माइंड। तो हम फाउंडेशन लेयर में चले गए जहाँ वो हमारी डीप थॉट्स बैठी हुई हैं, जिसके बेसिस पर ये सारी थॉट्स क्रिएट होती। एंड तब उस साइलेंट की स्टेज में हम जो बीज बोएंगे, जो थॉट क्रिएट करेंगे, वो फाउंडेशन में जाकर बैठ जाएगा। एवरी डे इफ आई सिट एंड आई टेल माई सेल्फ दिस कि हर एक जो कर रहा है अपने अनुसार सही कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी, अपनी स्पीड और अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन से काम कर रहा है। The world is not going to work according to me. I can expect, but people not necessarily will meet my expectations. ये अपने आप को बहुत deep silent mind में ये डालना है। This is very deep mind programming. जो mind में फिर ये belief systems बैठते जाते foundation layer में, तो सारा दिन वो हम पर work करते हैं, क्योंकि ये foundation layer में बैठा, इसके basis पर ही सारे थॉट्स क्रिएट होने वाले हैं। तो अगर हमने इसको पहले माइंड को साइलेंट नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही बैठे और हमने कहा आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन, ये ऊपर ऊपर की थॉट है, नीचे वाली लेयर की थॉट तो यही है सब लोग मेरे अनुसार होने चाहिए, तो फिर जब प्रैक्टिकल में जाएंगे वही होगा। तो इसलिए स्लो डाउन द माइंड फर्स्ट बाय क्रिएटिंग दीज वेरी पॉजिटिव थॉट्स, एंड जब आप एक्सपीरियंस करें कि आपकी सारी ऑर्डिनरी थॉट्स खत्म हो गई, गो एंड प्लांट द सीड, टेक ओनली वन बिलीफ सिस्टम, कोई एक बिलीफ सिस्टम, अ डे भी नहीं, टेक वन फॉर क्वाइट सम टाइम इफ यू वांट, क्योंकि ये एक एक बिलीफ सिस्टम
2: You know, because then you should, we should feel that वो belief system कैसे मेरा बन गया जो नया create किया कि जब भी situation आएगी वो pop up करे आपके computer screen पे वो pop up करना चाहिए ना कि पुराना belief system.
1: And जब आप एक दिन उसको लेंगे फिर आपको सारा दिन में उसका result दिखाई देगा वो आपको inspire करेगा अगले दिन फिर बैठ कर वो seed को plant करने के लिए एंड थोड़े दिन के अंदर आप realize करेंगे कि आपका belief system change होता जा रहा है जहाँ वो change होता गया थॉट लेवल पर कुछ वर्क नहीं करना पड़ता अटेंशन भी नहीं रखनी पड़ती क्योंकि फाउंडेशन ही चेंज हो गया
2: दैट्स अमेजिंग दैट्स एक्चुअली अ वंडरफुल टेक्निक कि हम बहुत ज्यादा अटेंशन ना देकर फिर
1: क्योंकि अटेंशन देंगे ना तो वो थोड़ा ऐसे मेहनत वाला काम लगेगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि लाइफ इज मेंट टू बी
2: एंजॉयड
1: लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड उसको हम ऐसे टाइट होकर अगर एफर्ट करेंगे तो हम एंजॉय नहीं करेंगे ये जर्नी हमें एंजॉय करनी है सो वी हैव टू मेक इट वेरी वेरी नेचुरल

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है, ये समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और आज सद्गुरुवार का दिन है, तो आपके आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज का दिन, मौसम भी सुहाना है अब, लेकिन थोड़ी देर के बाद काफ़ी गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल सारी चीज़ें हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए अभी से इसकी तैयारी, आपकी मनोस्थिति इतनी सुंदर हो ताकि हर परिस्थिति को आप मैनेज कर पाएँ। तो 11 जून 2026 आज का तारीख है, सद्गुरुवार का दिन है और राशि शके 1948, शके 21, गते 28, आदि ज्येष्ठ आज है गुरुवार और एकादशी है आज, अश्विनी नक्षत्र है। इसके साथ ही इस्लामी जुमेरा सुरते नथा आज है और आज विशेष राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है और इनके बारे में हम लोग थोड़ी देर में समझने की कोशिश करते हैं। और अभी आपको सीधे शांति वन के प्रांगण में ले चलते हैं जहाँ पर परमात्मा को सद्गुरुवार के दिन विशेष भोग लगाया जाता है, तो मैं वहाँ पर आपको ले चलूँगा और उस अनुभव को आप प्राप्त करें, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सुनते रहो, मस्करा रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। सदगुरुवार का खूबसूरत दिन है और आपने शांतिवन प्रांगण से जो है शांति की अनुभूति भी की और परमात्मा को जो भोग लगाया उसके बारे में आपने उस अनुभव को किया। अब चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बातें करते हैं, जिनका आज विशेष जन्मदिन है। 11 जून को इनका जन्म हुआ था और ये 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में इनका मृत्यु हुआ था। भारत के महान आज़ादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दे दी लेकिन उसके पहले भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, जो विरासत के रूप में हम सभी को आज भी प्रेरित करता रहता है। तो आइए बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। उनके लिखे सर फिरोजी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को तहस नहस में परिवर्तन कर दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। तो है ना कमाल के व्यक्ति, जिन्होंने अपने धर्म पे भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस बीच हमारे गुड़ीलाल जी ने आप सभी को याद किया और सदगुरुवार की शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत भी याद किया है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि हमारे जीवन में हम शरीर को तो बड़े अच्छी तरह से अच्छे साबुन, अच्छे सुगंधित द्रव्य लगाकर स्नान कराते हैं लेकिन शरीर साफ हो जाता है और फिर से वापस दूसरे दिन उसे वापस नहलाना पड़ता है। यानी रोज़ हम शरीर को नहलाते हैं तब शरीर जो है हमारा ठीक ठाक रहता है लेकिन उसके बावजूद भी कितनी सारी बीमारियों से शरीर ग्रस्त होता है। तो हमारे खान पान की बदलाव की ज़रूरत होती है लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर पाते। अच्छा, शरीर को नहलाने से शरीर तो शुद्ध हो जाता है लेकिन शरीर को चलाने वाली जो चेतना है हमारा मन, क्या कभी हम मन की भी धुलाई की है? तो मन की धुलाई, मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जब मन स्वच्छ, शुद्ध और साफ होगा तो आपका जीवन में सुख शांति अपार होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए बात करते हैं अभी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान किरण जी अंबाला से बता रहे हैं। सभी की तरफ से किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। किरण जी कैसे हैं आप?
2: ओम शांति, बहुत अच्छी हूँ
1: जी। क्या करते हैं वैसे आप?
2: मैं इस समय गॉडली स्टूडेंट हूँ और ईश्वरीय सेवाएं दे रही हूँ। अम्बाला में रहते हुए मैं जेल में और स्कूल में बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका?
2: ब्रह्मा कुमारी से वैसे मुझे कोई लेकर नहीं आया था, कोई ना कोई किसी के थ्रू आता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जैसे ही संसार में किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की अट्रैक्शन होती है तो वो अट्रैक्ट होता चला जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और यहाँ मुझे खुद भगवान ने मेरा हाथ अपने हाथ में देकर मुझे खींचा है और मुझे भी आज उनकी बहुत अट्रैक्शन है। और मैं 17 साल से ये ईश्वरीय सेवाएं दे रही हूँ, क्लासेस कर रही हूँ। तो इस प्रकार मुझे भगवान ही अपनी तरफ खींच कर लेकर आए हैं।
1: नहीं पन, कैसे माना जुड़ना हुआ, कोई परिचय मिला, कैसे मिला?
2: कुछ नहीं, वही मैंने आपको बताया। एक्चुअली मैं सबसे पहले, अभी मेरी भक्ति इस जन्म में बहुत कम थी और जब भी मैंने पूजा भक्ति की है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और जो भी मेरे प्रश्न होते थे तो वो मेरे पूरे हो जाते थे। और यहाँ ही आकर मुझे पता चला कि वो जो शिव भगवान है वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ और बचपन से आप जो है शिव जी की आराधना करते रहते थे, इससे आपको जो है जीवन में एक आस्था बनी रही। और जैसे जैसे आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में आए और इन बातों को आपने सुना तो आपको लगा कि ये तो एक शक्ति है जिसके बारे में पूजा करती थी, आराधना करती थी या जिन्हें याद करती थी। तो यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, सोच में क्या बदलाव हुआ, वो थोड़ा सा बताए।
2: हाँ ज़रूर, कि मैं पहले तो यही कहूँगी कि मेरे जीवन में मेरा क्रोध बहुत ज़्यादा था। एक तो ज़्यादा होता है, एक बहुत ही ज़्यादा था जिन्होंने मुझे देखा है। और जैसे मैं जिस इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी तो हमें एक दिन होमवर्क दिया गया, क्योंकि ये स्टडी है, यहाँ पर स्टडी होती है। और वो होमवर्क था कि ज्ञान में आने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया। तो जब मैं घर में होमवर्क करने लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने 2-3 जो मेरे नेबर हैं उनसे मैं कुछ बात करूं और वो मेरे बारे क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे मेरे एक नेबर थे, उनको मैंने ये तो नहीं बताया, मैंने इस ढंग से उनसे बात करी कि मैं 2 साल से जा रही हूं और आप मेरे में कुछ चेंज देखते हैं। तो वो कानों में हाथ रख के बोलते थे, अरे हमारी तो परिवार में ये बातें होती हैं कि किरण ने तो बिल्कुल शांति धारण कर ली है। और एक एयरफोर्स स्कूल की टीचर थी, उनसे जब मैंने पूछा तो वो मुझे कहती थी, आंटी आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आप तो बिल्कुल वैराग आ गया है। सामने वाली नेबर वो भी यही कहती थी कि लगता है भगवान का रंग चढ़ गया है। और मेरे में इतना क्रोध था जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि बच्चे एक कदम उठा, मैं अनेक कदम तेरे साथ हूँ। तो मैं बाबा के चित्र के आगे खड़ी हो गई और मैंने उनको कहा कि मैंने ये दृढ़ संकल्प किया है कि मैंने क्रोध नहीं करना, लेकिन आगे जिम्मेवारी आपकी है कि आपने मुझे कैसे संभालना है। और रियली अभी 1 साल पहले बहुत बड़ा पेपर आया नेबर के साथ, उन्होंने अपना घर बनाया तो घर का भी बड़ा नुकसान हो गया, सेल करने में भी लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शांति की शक्ति भी मुझ में बहुत जमा हुई है, कि मुझे कईयों ने कहा कि किरण दीदी आप बोलते नहीं हो नेबर को, किसी ने कहा आप शांति की देवी बन गए हो। तो ऐसा फील होता है कि इतना क्रोध और वो जो पावर मिली है मुझे वो मेडिटेशन, क्योंकि कहते हैं जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन तो प्राप्तियाँ तभी होती हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर के भी कहते हैं कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब क्रोध की अगर हम बात करें, और आज दुनिया में इतना क्रोध है, क्रोध की आग इतनी फैली हुई है, भाई भाई प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहा है, एक दूसरे को मार देते हैं, इवन कि सलाखों के पीछे, जैसे कि मैं जेल में जाती हूँ, कैदी बैठे हुए हैं, सारा जीवन उनका स्पॉइल हो जाता है। तो क्रोध एक अच्छी चीज नहीं है, जो मैंने जो एक ये परिवर्तन आया तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और मुझे खुद भी खुशी मिलती है कि जो बाबा ने भगवान ने मुझे दृष्टि मुझ पर डाली वो जो चाहते थे मैं वैसा बन गई और उनके आदेश के अनुसार मैं चल रही हूँ और जो मुझसे मुझे सिखा रहे हैं या जो नॉलेज मिल रही है मैं अपनी यथाशक्ति लोगों में बांट रही हूँ, ये सेवाएं मैं कर रही हूँ।
1: चलिए किरण जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपके अंदर जो है बदलाव आया, धीरे धीरे क्रोध आपके अंदर बहुत ज़्यादा था तो ईश्वरीय ज्ञान और ध्यान से आपका जीवन जो है बेहतर होने लगा और शांति की प्रतिमूर्ति आप बन गए हैं। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश सभी रेडियो सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे आप?
2: मैं यही बताना चाहूँगी कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दुनिया की भीड़ में चलते चलते एक दूसरे से बात करते करते हमने रिश्तेदार को देखा, परिवार को देखा, संसार को देखा और स्वयं को कभी नहीं देखा। और जब हम अकेले दुनिया की भीड़ से अकेले हो जाते हैं तो हमें खुद को जानने का मौका मिलता है, अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है। मैं यूँ कहूँगी कि अगर हम जिंदगी में तर जाएं तो उसके लिए भीतर जाना बहुत ज़रूरी है और आज की दुनिया में, आज के युग में हर इंसान को एक जुनून और जिद है कि मैं ये चीज़ पा लूँ, मैं इस चीज़ को देखूँ और वो ऐसा करता भी है। तो यहाँ मैं उन सबके लिए ये कहूँगी कि खुद को तलाशने की जिद भी बहुत ज़रूरी है, खुद को तलाशने की जिद भी बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को ना तलाश पाए तो ये ज़िंदगी अधूरी है, तो ये ज़िंदगी अधूरी है।
1: चलिए किरण जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है। और जाते जाते मैं चाहूँगा एक हाथ सुंदर गीत जो आपके मन के भाव है वो अगर आप सुना दे जाते जाते तो अच्छा होगा। जी
2: ज़रूर सुनाऊँगी, पर कुछ तैयारी करके नहीं आई हूँ, पंजाबी में दो लाइन सुना दूँ?
1: बिल्कुल बिल्कुल।

गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
8: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। तुम हो तो है सपनों के जैसा हसीं,

ये तो आज है पुरुषोत्तम महीना, जिसको हम अधक मास भी कहते हैं। अधक मास के एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, मखाना हमारी हेल्थ के लिए कैसे फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे। और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, साथ ही साथ आज मैं आपको फिर से सिखाने वाली हूँ मीठा अचार, लेकिन किसका वो आप आशाना सुनेंगे, जान जाएंगे। और आज की पहेली बहुत सुंदर रहेगी, तो आप सभी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी पूछने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आशियाना कार्यक्रम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश भाई भजपुरा से जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते जी। जी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते, राम राम, कैसे हो?
1: बस ठीक है जी। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो हम विचार रखेंगे और बहुत ही जल्दी विषय भी रखेंगे।
1: वो पहले क्या वो आ गया, आम का बता रहा हूँ।
0: ठीक है, अभी हमने पहली पहली पूछी नहीं है, पहली पूछेंगे। सीजन चल रहा है आम का, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बहुत ही जल्दी हम पहली पूछेंगे। समय से पहले जवाब या समय से पहले मत बताइएगा, अभी पूछा नहीं है। तो आज का सुंदर सा विचार ज़रूर सुनाएंगे। आज का सुंदर सा विचार है, आशियाना कार्यक्रम में कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद ज़रूर करिएगा, कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। कैसे? तो यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल रख रही हूँ। पार्वती जी ने भगवान शंकर की प्राप्ति हेतु तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती जी से विवाह करना स्वीकार किया तथा वे अदृश्य हो गए। इतने में कुछ अंतर पर तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़के के चिल्लाने का स्वर सुनाई दिया। पार्वती जी ने ध्यान से सुना तो वह लड़का अत्यंत दयनीय स्थिति में चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। लड़का चिल्ला रहा है, ऊंचे स्वर में रो रहा है। पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वह वहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा एक सुंदर एवं सुकुमार लड़के का पांव मगरमच्छ ने पकड़ा है तथा वह उसे घसीट करके ले जा रहा है। लड़का रोते हुए चिल्लाता है, मेरा इस संसार में कोई नहीं, मेरी न तो माँ है न बाप, न ही कोई मित्र है, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ। पार्वती ने कहा, हे ग्रह, हे मगरमच्छ देवता, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझ करके स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे पास भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ू? पार्वती ने कहा, हे मगर, तुम इसे छोड़ दो, इसके स्थान पर तुम्हें जो चाहिए वे मांग लो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने जो तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया है तथा जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो ही मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पार्वती माता ने कहा, मैं तुम्हें अपने सभी जन्मों के तप का फल देने को तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो, उतावलेपन में आकर के संकल्प मत करो। पार्वती जी ने कहा, मैंने सोच लिया। मगरमच्छ ने पार्वती से तप दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। उसने लड़के को छोड़ दिया तथा बोला, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मेरी देह कितनी सुंदर बन गई है, मैं तेजस्वी बन गया हूँ। अपने जीवन भर की पूंजी तुमने एक छोटे बच्चे को बचाने हेतु अर्पण की। पार्वती माता ने उत्तर दिया, ग्रात तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या ऐसा निर्दोष लड़का वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगर भी अदृश्य हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने मेरे तप का दान किया है, अब पुनः तप करती हूँ। पार्वती जी तप करने बैठी, तभी भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। शंकर जी पुनः प्रकट हुए, बोले, पार्वती, मगरमच्छ के रूप में मैं ही था तथा लड़के के रूप में भी मैं ही था, केवल तुम्हारे तप की परीक्षा लेने के लिए ये लीला रचाई थी। प्राणी मात्र में तुम्हारा आत्मीयता का भाव धन्य है। तो ये तो देखिए दृष्टांत दिया आपके सामने, लेकिन हकीकत यही है कि हमें भी कोई भी मुसीबत में है तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो ये हुआ आज का विचार, और आइए फिर से सुनते एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। आज बात करते हैं एक ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक ड्राई फ्रूट की जो उपवास में भी खाया जाता है और सेहत का खजाना भी माना जाता है। तो मैंने शुरुआत में नाम लिया था, चलिए फिर से सुना देती हूँ। मखाना। मखाना खाने के क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारी ठीक होगी, ज़रूर आप जानेंगे। मखाने में देखिए प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मखाना खाने के बहुत सारे फायदा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। हड्डियों को मजबूत बनाने में मखाना बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है जो हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। तो मखाना किसके लिए फायदा करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। फिर देखिए दूसरा है कि दिल का रखे ख्याल, इसमें कम वसा और कम सोडियम होता है, इसलिए हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मखाना दिल का कैसे ख्याल रखता है जानेंगे। इसमें कम वसा और कम सोडियम होता है, इसलिए हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। देखिए डायबिटीज में बहुत ही सहायक है। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए सीमित मात्रा में ये मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। डायबिटीज में सहायक मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए सीमित मात्रा में ये मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर नहीं खानी है, और लिमिट के अंदर हर चीज़ फायदा करती है। तो जैसे मखाना भी आपको खाना है थोड़ा सीमित मात्रा में। देखिए और क्या फायदा करता है, अच्छी नींद, अच्छी नींद में मदद करता है। कैसे, देखिए रात को हल्का भुना हुआ मखाना खाइए, इससे मन शांत रहेगा और नींद बेहतर आने में सहायता मिलेगी। तो रात को हल्का भुना हुआ मखाना खाइएगा, इससे मन शांत भी रहेगा और नींद बेहतर आने में सहायता मिलेगी। फिर देखिए वजन नियंत्रण में सहायक है, वजन नियंत्रण में भी सहायक है। फाइबर और प्रोटीन होने के कारण पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती, ठीक है। कमजोरी और थकान दूर करता है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व शरीर को ताकत और स्फूर्ति प्रदान करता है। तो मखाना खाने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि कमजोरी और थकान दूर करता है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व शरीर को ताकत और स्फूर्ति प्रदान करता है। फिर देखिए बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो मखाना का जबरदस्त फायदा देखिए, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक है। कैसे है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो एक छोटी सी सलाह, मखाने को घी में हल्का सा भूनकर खाइए या दूध में डालकर सेवन कीजिए, स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। तो श्रोता बंधु याद रखिए, छोटा सा मखाना सेहत का खजाना, रोज थोड़ी मात्रा में अपनाइए और स्वास्थ्य का आनंद पाइए। तो ये हुआ आज का घरेलू उपाय, और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है, अब आप जवाब दे सकते हैं आज की पहेली का। मैं सुना रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। तो ये आज की पहेली है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मैं आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम विषय पर भी आएंगे। आज की पहेली है, एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, घर में आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। अब आपको जवाब देना है। जवाब देने के लिए और विषय में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का विषय है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी आवाज करते नहीं देखा, क्या कहेंगे आप। बहुत ही सुंदर आज का विषय है। आप जितना अधिक जुड़ सकते हैं जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिकल विषय है कि भाई थोड़ी सी ख्याति होती नहीं है हमारी, थोड़ा सा हमारा नाम होता नहीं है और हम उछलना शुरू कर देते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप जुड़ेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो हम तो यही समझेंगे कि आप नहीं सुन रहे हैं आशियाना कार्यक्रम। आज एकादशी भी है, अदक मास की एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, लेकिन ये सब ज़्यादा नत नियम हमारी बहनें करती है, भाई लोग भी करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई लोग नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ बहनें ही करती है ना, भाई लोग करते पर कम। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
2: दीदी, नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते जी, सुरेश भाई स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप।
2: बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि हम तो हरदम कार्यक्रम सुनते ही है, बस कभी ऐसा नहीं हमने कभी कार्यक्रम नहीं सुना, चाहे हाजिर हो ना हो,
1: जी
2: मैं तो हर रोज कार्यक्रम सुनता हूँ और आपसे बात भी करता हूँ, क्योंकि कहते हैं यदि हम सुनते हैं तो कुछ न कुछ तो हम बोल पाते हैं, किसी की जो आपकी बात है हमारी बात है और कोई लोग सुने और किसी का हम भी सुने बातें, तो एक हमको नॉलेज भी मिल जाता है और एक अच्छी खुशी भी रहती है कि चलो भाई हमने बात की और हमने हमारी बात और लोगों ने सुनी और लोगों की बात हमने सुनी, ऐसा एक हमको गर्व रहता है दीदी उनके लिए।
1: जी जी जी जी,
2: बस अच्छा विषय भी दिया है दीदी। मैं बताऊँ, हमारे गुजराती में कहावत है कि चार पैसा जो हो गया तो हवा में उड़ने लगा।
1: ऐसे
2: कहावत है दीदी, कई लोग ऐसे होते हैं दीदी, थोड़ा पैसा हो जाता है तो बस ऐसे हो जाते हैं, बस हम तो हमारे किसी की जरूरत नहीं है, बस हम अकेले का साथी है, हमारे किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास आज सब कुछ है, लेकिन चाहे सब कुछ हो लेकिन ऐसा मत सोचना है कि भाई सब कुछ हो गया तो किसी की जरूरत नहीं है, बस ऐसा नहीं दीदी, इसीलिए तो कहते हैं कि सिक्के आवाज ज्यादा करते हैं और नोट नहीं करते, इसलिए ऐसा नहीं समझना है दीदी, ये तो पैसे की बात है, लेकिन वो भी इंसान आगे चला जाता है तो उसे देखता नहीं है और बस ऐसे ही कहता है कि अब बस हम तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दीदी,
1: अहंकार आ जाता है,
2: अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार नहीं करना है, कहता है कि अहंकार तो राजा रावण का भी उतर गया था एक सेकंड में,
1: बिल्कुल,
2: और हमारी तो क्या वक्त है,
1: जी।
2: हम तो एक मनुष्य प्राणी है
1: जी,
2: ऐसा सोचना नहीं है, सबकी जरूरत पड़ती है सबको, सब ऐसे करेंगे तो पीछे वाले गरीब लोग क्या करें बेचारा, जब पैसा वाला हो जाता है तो छोटे की कीमत नहीं करते लोग, लेकिन छोटे की भी जरूरत पड़ती है
1: जी जी,
2: तो इसमें ऐसा काम आ जाता है तो हमको छोटे से छोटे को बुलाना पड़ता है, तुमने आपकी जरूरत है आपको आना पड़ेगा
1: जी,
2: इस वक्त आप बड़े लोगों को नहीं बुलाते क्योंकि बड़े लोग ऐसा काम करते ही नहीं है, खुद ही काम करना है, किसी को हमारे कोई ऐसा गटर का प्रॉब्लम हो गया है कोई ऐसा कोई ऐसा काम आ जाता है तो हम छोटे लोगों को ही बुलाते हैं और छोटे लोग ही करते हैं ऐसे काम,
1: जी जी जी,
2: ऐसे छोटा बड़ा किसी को समझना नहीं है,
1: काम देखो काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर ये लोग नहीं होना तो पता चल जाए, अपन खुद नहीं ही कर सकते है ना।
2: आज कोई मजदूर लोग नहीं होते तो दीदी हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई ठेला होता है हमारे पास, कोई थोड़ा वजन होता है तो हम कोई हमारे पास ऐसा पैसे वाला कोई पढ़ नहीं लेगा फिर आपको हमारा ठेला
1: जी।
2: तो कोई ऐसा इंसान होगा तो ही इंसान उठा लेता है तो चलो भैया मैंने कहा आपको
1: बिल्कुल हरेक का कर्म अलग अलग होता है
2: सर। हाँ तो ऐसा मुझे समझना है, पैसा आ गया तो बस हम किसी को बुलाते ही नहीं, हम किसी को हमारे किसी का काम ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है।
1: जी
2: काम करता है बस हम तो दीदी ऐसा कहेंगे
1: जी,
2: छोटा बड़ा नहीं समझना है, सबको समान समझना है। आप चाहे आपके पास पैसा है सही है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बस हमारी जरूरत नहीं है,
1: जी जी बिल्कुल
2: जी,
1: जी बहुत बहुत आभार बहुत। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, विषय को बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज की पहेली भी बड़ी सुंदर है, आज का खुशनुमा जीवन का विषय भी बहुत ही अच्छा है। तो पहेली को दोहरा रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। तो वैसे आप सभी को पता चल ही गया होगा बहुत सरल पहेली है, फिर भी आप कोशिश करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
3: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
3: राम राम है, राम राम दीदी।
1: हाँ
3: सब भाइयों को और सबको मधुबन को मेरा राम राम है, और आपका सुन रहा हूँ बैठ के अभी फोन, मैं बोल रहा हूँ दीदी को राम राम जी कर दूंगे।
1: जी जी बहुत अच्छा किया।
3: आज का क्या विषय क्या है दे?
1: आज का विषय है किसी ने क्या खूब कहा है, आप सुन रहे हैं?
3: थोड़ी आवाज कटती है मैडम।
1: अच्छा कहीं
3: Hello?
1: आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ नेटवर्क अच्छी तरह आए, आप हमेशा अच्छी तरह आपको आवाज सुनाई देती है, आज नहीं सुनाई दे रही है तो कहीं
3: आवाज...
1: जी
3: आवाज दीदी ने कट रही है मेरे, क्या हुआ आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा?
1: जी तो आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ नेटवर्क अच्छी तरह आता हो। हाँ जी आप ऐसे करिए, आप फिर से लगाइए फोन, आप फिर से लगाइएगा। हाँ जी हाँ जी। तो ये थे भूरा लाल जी, और से आवाज नहीं सुनाई दे रही है लेकिन बहुत ही जल्दी सुनाई देगी, कभी कभी हो जाता है। तो विषय बहुत ही सुंदर है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों के कभी आवाज करते नहीं देखा। क्या कहेंगे आप, बहुत ही सुंदर विषय है यहाँ पर। चलिए हमारे श्रोता बंधु कोई भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ मुझे एक बात याद आ रही जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। दो दोस्त होते हैं, ठीक है, बचपन से मतलब पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास से वो साथ में पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक साधारण है एक बहुत ही पैसे वाला है। लेकिन जो पैसे वाला दोस्त है उसको कोई अहंकार नहीं, क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से घर में पैसा देखा है तो कोई अहंकार की बात ही नहीं। हेलो
4: हाँ जी दीदी नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते सगुना बहन, ओम शांति, कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छे हैं
1: जी। बहुत अच्छी बात है।
4: पहेली का जवाब?
1: हाँ जी भले आप मैसेज करो तो मैसेज करना, देना हो तो दे दो।
4: मैसेज करना तो मेरे को नहीं आता है दीदी।
1: अच्छा ठीक है दे दीजिए।
4: पहेली का जवाब है आम।
1: ठीक है देखते हैं सगुना बहन सही है गलत है, कार्यक्रम सुनिएगा लास्ट में जवाब देंगे ठीक है। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
4: विषय तो क्या है
1: आज का? विषय है किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों की कभी आवाज नहीं आती।
4: तो शांत तो रहना चाहिए ना दीदी, देखो शांत नहीं रहेंगे हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें शांत रहना चाहिए, और नहीं शांत रहेंगे ना तो खुद के अभिमान में आ जाएंगे, तो वो तो अच्छा नहीं है दीदी। कभी अहंकार नहीं करना है।
1: जी वो कहते ना कि तरक, हाँ जी ठीक है सकुना बहन, हाँ जी। और आप कुछ रेसिपी सिखाएंगे अगले लिंक में?
4: आप सिखा देना।
1: हाँ, मैं तो सिखा दूंगी, कभी आप भी रेडी हो जाइए सिखाने के लिए, कल सिखा दीजिए आप। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार। तो मैं आपको बता रही थी कि दो दोस्त होते हैं, एक जन्म से बहुत पैसा है और एक साधारण है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब फर्स्ट क्लास से साथ में पढ़ाई करते हैं तो बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, क्या अमीरी क्या गरीबी पता ही नहीं चलता है, और ऐसे करके ट्वेल्थ पढ़ाई की, ट्वेल्थ तक जो साधारण था वो पढ़ने में बहुत होशियार था, जो पैसे वाला था वो भी, दोनों ही होशियार थे, लेकिन साधारण था वो टू मच होशियार था, और हमेशा अपने दोस्त के परिस्थिति को देखता था कि कितना पैसा वाला, काश में भी ऐसा होता, काश में भी वैसा होता, काफ़ी संकल्प चलते, स्वाभाविक चलना, क्योंकि साथ साथ बैठते थे, बातें करते थे, खाना पीना साथ में खाते थे, उठते बैठते थे, तो संकल्प तो चलता ही है। और फिर ट्वेल्थ के बाद दोनों अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, जो साधारण था उसने भी कुछ अलग सब्जेक्ट ले लिए, कॉलेज में आ गए पढ़ाई की, और पढ़ने में बड़ा होशियार था तो ऐसे उसको स्कॉलरशिप मिली और अच्छे पोजीशन, मतलब अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, और बहुत समय के बाद 10 साल के बाद फिर से वो दोनों दोस्त मिले, ठीक है। तो दोनों दोस्त, मतलब जो दोस्त अपने शहर में रहता था वो भी दूसरे शहर में चला गया, वहाँ सेट हो गया, एक और कंपनी खोल दी वहाँ पर, और जो साधारण घर का दोस्त था उसका जॉब लग गई तो उसी शहर में और उसी कंपनी में मैनेजर के पद पर। कब रिश्ता देखे, कब दोस्ती कहाँ आकर टकराए पता ही नहीं चलता है। और जब दोनों दोस्त मिले तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोस्त के इतनी सारी कंपनियां, लेकिन अहंकार नहीं, और वो दोस्त मैनेजर बन गया, उसको अहंकार आ गया, वो अपने दोस्त के सामने तो क्या अहंकारी बताए, क्योंकि पता है कि दोस्त की कंपनी में ही मुझे मिली है, लेकिन दूसरे क्लाइंट के सामने बहुत ही अहंकार भरे बातों से पेश आता था, कोई भी छोटी छोटी बातों में डांट देना, फटकार देना, है ऐसा भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, ये भी नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो, तो बेचारे लोग डर जाते थे कि अरे साहब को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो पैसे वाले दोस्त को पता चला कि ये तो बहुत ही बात बात पर गुस्सा करता है, तो समझ में आ गया कि नया नया पैसे का जोश है, तो अहंकार आ गया। कहीं ना कहीं देखिए नेचर में पता चल ही जाता है, हम रोज़ साथ रहते हैं, भले हम 10 साल 8 साल के लिए बिछुड़ जाए, वापस मिलते हैं, लेकिन नेचर तो एक दूसरे का जानते हैं, नेचर में जब फर्क आ जाता है तो पता चल जाता है कि अच्छा तो ये बदल गया, और वो बदलाव का पता चल ही जाता है, तो वो जो अमीर दोस्त है उसको पता चल ही गया, तो उसने फिर एक दिन बिठाया अपने पास, शांति से समझाया, बोले कि जो ये नशा चढ़ा हुआ है नए पैसे का, ये नशा उतारो और क्लाइंट के सामने अच्छी तरह पेश आओ, नहीं तो क्लाइंट टिकेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहता कि भाई अपने कंपनी का नाम खराब हो। जब उसको बहुत प्यार से, सहजता से, नम्रता से समझाया तो उसकी बुद्धि में गया कि हाँ बिल्कुल, मैं ज़्यादा ही गुस्सा करता हूँ, लोग मेरे से दूर भागते हैं, तो फिर समझ में आया, फिर उसके व्यवहार में फ़र्क पड़ा। तो होता है, वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, पूरी घाघर भरी हुई होती है उसमें ठहराव होता है, और अधूरी घाघर तो छलकती है, तो अच्छी बात है आपके दिन बदल गए, लेकिन ठहराव रखिए, बदल गए लेकिन अपने पुराने दिनों को भी नहीं भूलना है, और जिस मौज में हम पहले पुराने दिनों में जैसे रहते थे, जैसा व्यवहार था वैसा ही व्यवहार बनाए रखिए। हेलो
5: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा, आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बस अच्छे है दीदी, बहुत प्रोग्राम सुन रहे दीदी
1: जी,
5: और बहुत बहुत अच्छा विषय आप लेकर आए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल विषय है दीदी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम कोई पैसे वाले या बड़ी पोजीशन में है तो शांत इसलिए रहना है कि कोई आपका फायदा न उठाए और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे लोग, एक तो ये बहुत बड़ी अहम बात है। और हम जैसे ही कुछ पैसे आ गए तो बहुत उछलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि गिराने की कोशिश करते हैं। और अगर शांत रहना ही है, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। पैसे तो क्या है दीदी, आएगा जाएगा, लेकिन अपने स्वभाव शांत हमेशा रखना चाहिए। और मैं भी यही कहूंगा कि कोई ज्यादा अगर कोई लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसे आते हैं ना तो उनका नजरिया बदल जाता है और जो गरीब इंसान रहता है ना उसको नजर में ये एक तुच्छ इंसान समझ के वो बहुत बड़ा भगवान की तरह वो अपने आप को कर बैठता है।
1: जी,
5: फिर इंसान का पतन वही से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
5: पैसा ऐसी चीज, पैसा बहुत ऐसी चीज है ना दीदी कि वो धनी भी अच्छा व्यक्ति भी बना सकती है, बर्बाद भी कर सकती है।
1: जी जी जी,
5: तो जी बिल्कुल जी, मैं यही कहूंगा कि हमेशा के लिए आप आध्यात्मिक में और अपने स्वभाव को शांत में रखें और जितनी हो सके इतनी मेहनत करके दूसरों को भी पैसे के जरिए दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। अगर मदद करेंगे तो कोई अहंकार या कोई वो नहीं आएगा।
1: जी, बिल्कुल
5: शांति।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। एक गीत सुनने के बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आएंगे तो
1: रेडियो भी
0: अच्छा भी
1: सुन
0: नहीं
1: रहे हैं।
0: लगेगा।
1: हाँ रेडियो भी सुन रहे हैं तो
0: जी
1: ग्राहकों
0: जी
1: को तुरंत बात करके टाइम लेना पड़ता।
0: जी जी चलिए, फिर भी आप
1: हाँ तो
0: मतलब दोनों तरफ बैलेंस बना के चलते हैं। जी
1: ये तो रखना पड़ता है बहन जी,
0: जी जी
1: हमारे
0: जी
1: लिए क्या है कि रेडियो तो हमारे सही
0: हाँ
1: नॉलेज देता है। अभी अभी जो सूर्य ने बात बताई हमारे यहाँ, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने।
0: जी
1: मैं भी मेरी थोड़ी बात शेयर करता हूँ कि देख परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी, कोई ये नहीं होता, पैसे भी आते हैं, ये होता है, थोड़ी स्थिति बदल जाती है, लेकिन अहंकार नहीं लाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति क्या थी, तो हमने कैसे ये किया, संघर्ष किया, ये
0: जी
1: किया, तो इसमें अभिमान के अहंकार नहीं लाना चाहिए, दूसरों को ये नहीं तरह से नहीं देखना चाहिए, इसको सच्ची सलाह देना चाहिए। कोई कोई
0: जी
1: ऐसी परिस्थिति हो इन किसी की तो सच्ची मार्गदर्शन सच्ची सलाह देनी चाहिए कि भाई ऐसा करो ऐसा करो तो ऐसा होगा। ठीक
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: कई
0: जी
1: लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं ये कैसे आ जाते हैं, तो दूसरे को इतने भी नहीं है कुछ देखते हैं ये इसके पास क्या है, हमारे पास ये
0: जी
1: भाव नहीं है। और मैं तो मदद के लिए जो सुरेश भाई ने बात की थी मदद करनी चाहिए, तो मदद तो ठीक है, पैसे हम देंगे तो कितने दिन चलेंगे, पैसे इसके पास कितने दिन, लेकिन कोई हुनर इसको सिखाया जाए, जो जैसे सुरेश भाई सुथारी काम कर रहे हैं, ठीक है जानेगा, तो ये
0: जी
1: दूसरे को साथ में रख के कोई हुनर ऐसा दे तो वो जिंदगी भर का कमा सकता है। और
0: नहीं, थोड़ा सा विषय
1: जी
0: से आप हटके जा रहे। विषय है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी आवाज करते नहीं देखा। हाँ जी
1: हाँ वो ही बात पे मैं जा रहा था, ऊंचा नाम कैसे आएंगे कि
0: जी
1: भाई इस तो पूर्वजों का कोई ये होता है इकट्ठा करके किया हुआ, वो तो ये देख के अहंकार आ जाता है इंसान को। ठीक एक एक बात है, और एक खुद ने जो कैसी परिस्थिति से सामना करके थोड़ा ये किया है जीवन में, तो इसको भूलना, ये परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए।
0: जी
1: परिस्थिति क्या है कि भाई 5 रुपया हमारे पास आ जाए तो हम में अहंकार आ जाता है, लेकिन हमारी परिस्थिति क्या थी ये भूलना नहीं चाहिए। ये सिक्के की बात थी ना, तो
0: जी जी जी
1: ये सिक्के ही ऐसा ये करते हैं, आवाज करते हैं, अति नोटों आवाज नहीं करते,
0: जी
1: तो ये मैं यही ही बात कर रहा था,
0: जी
1: हमें
0: जी
1: हमारी परिस्थिति हमें भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक
0: जी
1: है बहन,
0: हाँ जी चलिए, बहुत बहुत आभार
1: हाँ
0: कंचन
1: कभी
0: भाई।
1: कभी
0: हाँ जी,
1: नमस्ते।
0: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है, तो कहने का भाव यही है कि आपके अंदर जो भी विशेषता है, यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है कि सिर्फ पैसे ही, कोई भी विशेषता पर भी अभिमान आ जाता है। वाह क्या मैं डांस करती हूँ, वाह क्या मैं गाती हूँ, वाह क्या मैं बोलती हूँ, वाह क्या मेरी स्टाइल है, बहुत सारी बातें होती है, उस पर अहंकार आ जाता है, तो वो अहंकार अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने, अहंकार जैसे जैसे आएगा समझ लीजिए आप पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो अहंकार आया नहीं पतन होना शुरू हो जाएगा। हेलो
1: हाँ भूरा राम बोल रहा दीदी,
0: हाँ जी भूरा राम जी, राम राम, आवाज सुनाई दी?
1: राम राम। हाँ अभी आप भी बराबर आवाज सुनाई दी है,
0: हाँ
1: जब
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: फोन लगा रहा था। अच्छा
0: जी,
1: आजकल
0: आपका आपका
1: क्या
0: स्वास्थ्य
1: बोल
0: बढ़िया, तबीयत बढ़िया आपकी?
1: रहे हैं? ठीक है, अभी बैठ के कार पर बैठा हुआ और सुन रहा हूँ, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अभी
0: जी
1: दवाई
0: जी
1: चालू है
0: हाँ जी
1: और found that

0: जी आज की पहेली सुना रही हूँ मैं, विषय भी सुनाऊंगी, पहले पहेली सुनिए। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। और विषय भी सुना देती हूँ, किसी ने क्या खूब कहा है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी आवाज करते नहीं देखा।
1: बहुत अच्छा विषय दिया है मैडम, आदमी बोले तो अपनी परिस्थिति से ऊपर आता है और थोड़ा बहुत पैसे से थोड़ा तरक्की करके बड़ा हो जाता है, फिर बाद में वो अपने यार दोस्तों को जो अपन समझो मेरी दोस्ती है और दोस्ती कोई पैसे वाला बन जावे, फिर पैसे आने के बाद में फिर मैं अपने साथ में वो पहले का व्यवहार नहीं रखता है, क्योंकि उसमें थोड़ा घमंड आ जाता पैसों का। तो ऐसा बात है कि आपने इसे बहुत अच्छा लिया कि और हमने तो देखे भी ऐसे बहुत है जो हमारे साथ में थे वो पैसे वाले बन गए, आज उनसे बात करने को भी ये नहीं है कि राजी नहीं है कि भाई पूरा नाम हमारे दोस्त थे वैसे थे वैसे थे वैसे नहीं
0: जी।
1: उसमें अपनी गिनती नहीं आती है, ऐसा है कि ये पैसों का मोह है
0: जी,
1: और मोह नहीं करना चाहिए आदमी को, अपने व्यवहार में चले और अपने हिसाब से चले तो लोग तो वो अपना कोई नहीं है। तो आपने बताया कि पैसे की आवाज नहीं आती, तो कभी पैसा बोले तो इसका बड़े बड़े लोगों का होने के बाद में भी उसी लोगों के सामने वो नहीं दिखते उनकी आवाज करना चाहिए, बातें तो क्या है ये ऐसा है मैडम
0: जी। जी चलिए बहुत अच्छा, और आज की पहेली का जवाब देंगे
1: क्या है ये?
0: आज की पहेली मैंने पहले सुनाई थी, फिर से दोहरा रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए।
1: ये तो आम हो सकता
0: है। अच्छा चलिए ठीक है, बुरा राम जी आप कार्यक्रम सुनिएगा, कार्यक्रम के अंत में क्या सही क्या गलत जरूर जवाब देंगे, ठीक है?
1: ओके मैडम धन्यवाद।
0: हाँ जी आभार आपका। तो ये थे बुरा राम जी ओर से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप में कोई भी विशेषता है बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो विशेषता आपके अंदर है और वो काम आ रही है, लेकिन अहंकार में मत आइए, अहंकार आज दिन तक किसी का टिका नहीं, देर सवेर अहंकार जो करते हैं ना उसका पतन होना निश्चित हो जाता है और वो हमें अवगति में ही लेके जाता है। इसलिए जो भी विशेषता है, अच्छाई है या अच्छे पैसे वाले जो भी है, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखिए, इंजीनियर को देखिए, बड़े बड़े जो जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, देश को कुछ दिया है, उनको देखिएगा, वो नाम मान शान में नहीं जाते हैं, बस वो अपने कर्म को ही पूजा समझ करके आराधना करते हैं, कर्म करते हैं और उपराम हो जाते हैं, कहने का भाव है कि ज़्यादा वो उछलते नहीं हैं। तो ऐसे हमें भी ठहराव रखना है जीवन में, हमें अपने मुँह कितने जने इधर गए उधर गए, उधर खुद की तारीफ करेंगे उधर अपनी तारीफ करेंगे, अरे मैंने ये किया मैंने वो किया, अरे मैं क्या क्या कर सकते हम, और जो भी किया है ईश्वर ने हमें हमारे अंदर जो कला भरी है उसी के आधार पर किया है, तो तारीफ लोग करेंगे, हमें खुद की तारीफ नहीं करनी है, ठीक है? और जहाँ देखिए सिक्का, भले आप दो सिक्का ले लेंगे आपस में बजाते रहिए आवाज़ करेंगे, और नोट आप कितने सारे रख लीजिए, गड्ढे पर गड्ढियाँ डाल दीजिए फिर भी आवाज़ नहीं करेंगे, तो ज़्यादा दूर क्यों जाना है, इन्हीं से ही हमें शिक्षा ले लेनी है, ठीक है? और इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: एक राजा है पीले रंग का मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाचक जाए, बताओ कौन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ये पहली आपके समक्ष रखी है। आप जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। आप पधारिए आशियाना की किचन में, समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का, जिसमें आज हमने कहा कि मीठा अचार भी सिखाएंगे। और देखिए आज एकादशी भी है, अदक मास की बहुत ही बड़ी एकादशी है, तो बहुत सारे हमारे माता बहनों के उपवास है। तो पहले मैं आपको उपवास के फराली आइटम सिखा करके साथ ही साथ अचार भी सिखा देती हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में, ठीक है। तो मैंगो जूस आपको सिखा रही हूँ, मैंगो शेक आप कैसे बनाएंगे, मैंगो शेक, ठीक है। तो देखिए आम की सीजन अभी तो चल रही है, अभी ज़्यादा रेट भी नहीं है। अब जैसे क्वालिटी अलग अलग है, बहुत सारे इसकी प्रजातियाँ है, तो अलग अलग आम के, अभी केसर केरी लाएंगे तो 150 रुपये किलो है, आप तोतापुरी राजापुरी ये लाएंगे तो 100 रुपये की 1.5 किलो है। तो जैसी चाहे वैसे आप लाइए, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए खट्टी होगी, हल्की सी खट्टापन होना चाहिए, तो मैंगो जूस का वो मैंगो शेक बनाएंगे उसका आनंद आएगा, है ना। और बिल्कुल मीठी मीठी हो, मीठी मीठी हो, वो मज़ा नहीं आएगा, हल्का सा खट्टापन होना चाहिए, ऐसे आप कैरी लेके आइएगा, ठीक है। छिलके, हाँ, धुलाई कर दीजिए, धुलाई करने के बाद इसके छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकालने के बाद इनको काटिए, काटने के बाद आप मिक्सर में या फिर हैंड मिक्सी से चलाना चाहे तो हैंड मिक्सी से चला लीजिए। तो सारे पीसेस आप एक पतीले में इकट्ठे कर लीजिए, स्वाद के अनुसार थोड़ी शक्कर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डालिए और हैंड मिक्सी चला दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ सारे गट्टे पिस गए हैं, एक रस हो गया मैंगो जूस, फिर आप जूस की जाली से इसको छान दीजिए। बस छानने के बाद अगर आपको लगे कि गाढ़ा ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 कप दूध डाल रहे हैं तो आप 2 कप पानी भी डाल सकते हैं, और पानी पसंद नहीं है तो खाली दूध ही डालिए। और फिर थोड़ी देर अगर आपको पसंद है, हाँ फिर तो सजा उतना ही कम है, ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता की कतरन, काजू की कतरन, बादाम की कतरन आप डाल दीजिए। ठंडा पसंद है तो फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद निकाल करके उसका आनंद लीजिए। और नॉर्मल पसंद है तो नॉर्मल आप ले सकते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, उदाराम बहन जी, मैं दयाराम बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, नमस्ते दयाराम जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, और आप सभी आरजे बहनों की, भाइयों की, और सभी मेरे प्यारे मित्रों की दुआ से अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और कार्यक्रम भी सुन रहा हूँ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है, और विषय भी बहुत सुंदर है आज का।
1: जी विषय तो पूरा हो गया।
2: जी जी जी जी, और पहली का जवाब भी बहुत सुंदर है, जो मैंने WhatsApp के माध्यम भेज दिया है।
1: हाँ जी, हाँ जी। और आज आप कोई रेसिपी सिखाएंगे?
2: जी मैं दीदी, अभी तो थोड़ा एक ट्रैक्टर हमारे भाई लेके आए, तो उसके ट्रैक्टर का जो मुहर था तो उसमें गया हुआ था, तो उधर से थोड़ा दूर जाके मैंने कॉल किया है, तो अपनी दरवाजे
1: अच्छा अच्छा
2: बात कर लूं बहन से, और हमारे भाइयों को, बहनों को भी बात सुनने को मिले हमारी, कि हमारे रेडियो परिवार के सभी नियमित श्रोता जुड़ती है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है।
1: जी जी,
2: तो सभी को आज के दिन की ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ओम शांति।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका, आप रेडियो से जुड़े हैं इसके लिए। ये थे दयाराम जी रामपुरा से, और अब मैं आपको फटाफट मीठा अचार सिखा देती हूँ। तो आप अचार की कैरी ले लीजिए, देसी होगी तो अच्छी बात है, और नहीं तो गुजरात में वैसे तोतापुरी लेते हैं, ठीक है। और इधर आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो भी कैरी पसंद है लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप लीजिएगा मेथी, राई की दाल, जिसको गुजराती में राई ना करिया बोलते हैं, आजकल तो मेथी की भी दाल आती है, छोटी छोटी मेथी आती है, नहीं तो फिर अध कचरी कूटनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेथी, सौंफ, राई की दाल, हींग, फिर आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, फिर थोड़े से लौंग लीजिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है साबुत, ठीक है, और सरसों का तेल लेना है आपको, फिर जो भी तेल पसंद करते हो। बाकी अचार तो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जने क्या मीठा अचार बनाते हैं तो सिंग तेल में भी बनाते हैं, हम तो यही कहेंगे कि सरसों का तेल लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री। अब आप कैरी की धुलाई करिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछिए। पोंछने के बाद वैसे तो आपने फांके कटवाया ही ली होगी, नहीं तो फिर फांकों को भी अच्छी तरह पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद हल्दी लगा करके आप रख दीजिए थोड़ी देर धूप में। और ये जो सारे मसाले लिए हैं, आजकल तो प्यारे श्रोता बंधु मसाला भी अलग लेने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड पैकेट आता है मसाले का, बहुत सारे भाई बहन उसको यूज़ करते हैं, उसमें अचार का सारा मसाला आ जाता है और बस वही मसाला यूज़ करते हैं। लेकिन घर पर बनाना चाहते हैं, हम दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, है ना, हाथ का तो हाथ का होता है। तो जो भी ये मसाले लिए हैं इनको थोड़ा सा आप सेकिए, सेकने के बाद अधकचरा कूट लीजिए। कूटने के बाद अब ये जो फांके ली है, हाँ, गुड़ लेना है। अब ये फांके 4-5 घंटा हवा में लगाने के बाद इनको इकट्ठा करके एक बर्तन में रखिए, ये सारा मसाला डाल दीजिए और गुड़ को बारीक कूट के, भले तो आप चाकू से काटिए, बारीक बारीक काट करके आप डालिए और फिर आप ऊपर से तेल डाल दीजिए और अच्छी तरह हिला करके एक बर्नी में भर दीजिए और ढक्कन फिट लगा दीजिए। तेल गरम करना है, सरसों का तेल गरम करके अच्छी तरह धुआं उठे ऐसा गरम करना है। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप हींग पाउडर डाल दीजिए, उसके बाद पूरा ठंडा होने दीजिए, फिर आपको इस तरह मसाला और कैरी की फाकों में तेल डाल करके सभी को अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद बर्नी में भर करके फिर आवश्यकता के अनुसार तेल ऊपर से डाल देना है। तो ये बन गया मीठा अचार। मीठा अचार में थोड़ा सा तेल कम चाहिए पर बहुत ही स्वादिष्ट अचार। अब इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिए, 5-6 दिन आप रहने दीजिए। गुड़ और गुड़ एक रस नहीं होगा तो मीठा अचार का आनंद नहीं आएगा। जब गुड़ एक रसा हो जाए तो फिर आप अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव को भोग लगा करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीठा अचार। और साथ ही साथ अब मैं आप सभी से अनुमति भी चाहूँगी, समय हो चला है। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, बहुत ही सुंदर आज का जो विचार था उस पर जरूर गौर करिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए, मखाना खाने के क्या फ़ायदे हैं आपने जाना है। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और रेसिपी में जो मैंगो शेक और आपको अचार बनाना सिखाया है मीठा, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बड़ी सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए हर कोई उसका स्वाद चख जाए। तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े, उनका नाम बताना चाहूँगी पहले तो फिर तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो जुड़े हैं हमारे श्रोता बंधु में सुरेश भाई जोटाना से, जगदीश भाई भजपुरा से, बाबूलाल भाई खराड़ी से, भोरा राम जी ओर से, अलका जी कप्पासन से, सगुणा बहन जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई धानेराव से, दीपा बहन कपासन से, दयाराम जी रामपुरा से और मदन भाई मेसाना से। आप सभी ने सही जवाब दिया है आम। तो

और जो विषय में जुड़े हैं, विषय में जुड़ने वालों के भी नाम बता देना चाहूंगी। विषय में जुड़े सुरेश भाई जोटाना से, भूरा राम जी ओर से, सुरेश भाई धानेराव से, कंचन भाई मंडाली से, और हाँ दयाराम जी लास्ट में जुड़े, सगुना बहन जुड़े। तो आप सभी के लिए ढेर सारी तारीफ। आज का मीठा मोती है, किसी भी बुरे कर्म करने वाले इंसान को बदलना है तो उसे सच्ची रहम की निगाहों से देखना शुरू कीजिए, उसका परिवर्तन जल्दी ही हो जाएगा। अब मैं आपको एकादशी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जागृति में आप सभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो हमारे जीवन शैली में दिखता है। वो कैसे है, क्या है, इसीलिए हमें हमारी मनोरोग विशेषज्ञ है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है, इन सभी से चर्चा करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में अनिद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और ये भी सीखा कि हमें नींद करना कैसे है, स्लीप हाइजीन कैसे करना होता है और वो प्रिपरेशंस करना कितना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे जो ओवर स्लीपिंग है, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हैं या फिर जब एक बार हम सोते हैं तो फिर उठने का कोई समय नहीं रहता है, कभी भी उठते हैं और उस कारण से हमारी बहुत दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। घर वाले बोलते रहते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी उठो उठो, दोपहर हो गया है, दिन चढ़ रहा है, बट देन हमारा मन नहीं करता है कि हम उठें और थोड़ा सो जाएं। लेकिन क्या वाकई में वो नींद हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हम वाकई में वो नींद से रिलैक्सेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज़ों को हमारे जीवन में इनवाइट कर रहे हैं? तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारियाँ लेंगे और हमें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ है हर्षिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप दोनों हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आप दोनों को जागृति इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते सर। नमस्ते हर्षिता जी।
2: तो
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप हाइजीन जिस तरीके से आपने पिछली बार हमें अवेयर किया है हमारे श्रोताओं को, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम रात को लेट हो गया इसीलिए सुबह कभी भी उठेंगे, 12 1 बजे 2 बजे तक भी सोते रहते हैं, या फिर शाम को अगर जल्दी भी सो जाते हैं तो भी हम दिन में लेट उठते हैं। तो जैसे पिछली बार ये कहा गया कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशियंट हो जाता है, लेकिन जब देर रात में सोए हैं, पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क रहा है या हॉलीडेज हैं इसलिए हम ओवर स्लीपिंग कर ली, या फिर कोई काम नहीं है इसलिए हम सो जा रहे हैं, किताब पकड़ लिया नींद आ गई सो गए हैं, फिर इस तरीके की जो स्लीप की कोई साइकिल नहीं है या फिर टाइम नहीं है और जब मर्जी सो रहे और जब सोते हैं तो उठने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके की जो स्लीप साइकिल रहती है वो क्या ये सही है और इसके कारण भी हमारे जीवन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं?
1: पिछली बार जब हमने बात करी थी नींद नहीं आने या निद्रा के ऊपर में, उस समय मैंने कुछ बातें आपको अगर याद हो तो बताई थी कि नींद 7 से 8 घंटे की नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं जिनको उससे कम नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिनको उससे ज़्यादा नींद आती है, उनको हम लॉन्ग स्लीपर्स या शॉर्ट स्लीपर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 10 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है और कुछ लोगों के लिए 5-4-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बट अभी जब हम नींद के बाकी डिसऑर्डर्स या बाकी बीमारियों की बात करते हैं निद्रा के अलावा, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां नींद से जुड़ी हुई आती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन जिसके भी हम बात कर रहे हैं, ओवर स्लीपिंग जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, हम डॉक्टरी भाषा में उसको हाइपरसोमनियाज और पैरासोमनियाज बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा आ रही है। मनुष्य जो है वो 10 घंटे से बहुत ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं, तो उनके जगने का समय बहुत कम रह गया है। एक तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब आपकी स्लीप साइकिल का पैटर्न पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब जब आप सुबह के 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं और उसके बाद सीधा शाम को 4-5-6 बजे उठते हैं, या अक्सर जो पार्टी करते हैं लोग वो बहुत बार ऐसा करते हैं, यानी जिनके लाइफ स्टाइल ऐसे हो गए हैं कि उनकी नाइट लाइफ ही बहुत ज़्यादा है और डे लाइफ उनकी बहुत कम हो गई है, कुछ उस तरह के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो ज़्यादा रहे हैं या सो तो नॉर्मल रहे हैं, बट जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो दिन में भी सोए सोए से महसूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, रात को तो ठीक से सो गए हैं, पर जब सुबह उठ के कहीं भी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे तो आंख की झपकी लग गई, कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव चल रही है पीछे गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मूवी चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है, काम पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए भी, तो उस तरह की नींद की बीमारी, नींद बीमारी। तो इनको हम बारी बारी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहेंगे वो हाइपरसोमिया या अधिक नींद आना जिसको बोलते हैं। देखिए अधिक नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे पहले अधिक नींद आने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। डायबिटीज के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा नींद आती है, जिनको डायबिटीज से शुगर अनकंट्रोल होती है उनकी नींद की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और ये मतलब विशेष साइकिल है। आप वो ज्यादा देर तक सो रहे हैं उसकी वजह से उनकी शुगर और बढ़ रही है, उनकी शुगर और बढ़ रही है उसकी वजह से वो और ज्यादा देर तक। उसके अलावा कोई अन्य बीमारी तो नहीं है उनको शुगर के अलावा कोई और मेडिकल इलनेस जिसमें नींद उनको ज्यादा आ रही है, या वो किसी तरह की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें उनको नींद ज्यादा आ रही है। बहुत सारे खांसी के सिरप जो हमारे होते हैं उनके अंदर में ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी नींद आती है, या कफ कोल्ड लगा, कुछ लोग एलर्जी की दवाई बहुत रेगुलर लेते हैं, सिट्रिजिन की दवाई, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो महीनों महीनों सालों सालों खाते ही जा रहे हैं उस दवा के बिना, उनका काम ही नहीं चल रहा, तो उन लोगों में भी नींद ज्यादा आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सब दवाइयां हमारे उन एरियाज में काम करती हैं जो नींद को इंड्यूस करते हैं, जो नींद को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो उन केसेस को हम लोग हाइपरसोमनिया बोलते हैं। तो हाइपरसोमनिया केसेस के अंदर हमें सबसे पहले उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि सिर्फ नींद ही ज्यादा आ रही है और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है उनको, और भी कोई या कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो ऐसे केसेस को हमें अलग ढंग से ट्रीट करना होता है। तो जिन केसेस में जो मेडिकल इलनेस है जिनको कोई जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, उनकी उस दवाई को टेपर डाउन करके कम करके बंद करना है ताकि उनकी नींद ठीक हो। पर जो लोगों को नेचुरली ही हाइपरसोमनिक हो रखे हैं, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन केसेस के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्लीप को रेगुलेट किया जाए। उनकी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है, जनरली हम उनको अचानक से कि आप वो 10 बजे सोते हैं और फिर सुबह 11 12 बजे उठते हैं तो उनकी नींद जो है वो 16 17 घंटे की हो रही है, तो हम अगर उनको अचानक से बोलेंगे कि आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो एक दिन हो पाएगा, दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में हम जो करते हैं, हम उनको ग्रेजुअली टेपर डाउन करते हैं, स्लीप को ग्रेजुअली कम करते हैं, कि जैसे अभी आपके उठने का समय अगर अभी 12 बजे आप रेगुलर उठ रहे हैं रात को 10 बजे सोने के बाद, तो उसको कोशिश करें कि पहले उसको 11 पे करें, फिर उसको 10 पे शिफ्ट करें, फिर उसको 9 पे शिफ्ट करें, ऐसे करते करते हर हफ्ते एक एक घंटा कम करते जाएं और अगले एक डेढ़ से दो महीने के अंदर में अपनी नींद को 10 से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक ले आए, तो उस कंडीशन में आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। जब आप ग्रेजुअली कम करेंगे तो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बहुत समय से बहुत देर तक सो रहे हैं तो आपके शरीर को उस प्रकार की नींद की आदत पड़ जाती है, तो अगर ग्रेजुअली बदलेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, बहुत समय तक रहेगी और वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
0: जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कई बार हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या बीपी शुगर या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उस कारण से भी हमारी नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर नाइट पार्टीज कर रहे हैं उस कारण से, बट देन इसमें हम ये जानना चाहते हैं जब ओवर स्लीपिंग होता है क्या वाकई में वो इंसान नींद कर रहा होता है, या जो वो डीप स्लीप या फिर साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोया हुआ है लेकिन वो गहरी नींद नहीं है जो बॉडी को हील कर रहा है, या फिर जो स्लीप साइकिल जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए होता है।
1: इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि नींद की प्रकार, नींद में दो तरह की नींद होती है, REM स्लीप और REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, उस समय वो हिल रही है, वो नींद हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, और बहुत सा समय में नींद का ऐसा होगा जब हमारी आंख की पुतलियां नहीं हिल रही होती, उसको हम NREM स्लीप बोलते हैं। तो इसमें जो NREM स्लीप होती है उसको हम जनरल अधिकतर गहरी नींद या फिर डीप स्लीप बोलते हैं। उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, NREM 1, NREM 2, NREM 3, NREM 4, कि आप कितना गहरी नींद के अंदर में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम जैसे ही हम सोने गए तो हमारी NREM स्लीप सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है, और उसके 45 मिनट बाद पहली REM स्लीप की बाउट आती है। हमारे जो सारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमें REM स्लीप के अंदर में दिखाई देते हैं, और एनआरएम स्लीप में हमारा ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर में और एकदम गहरी गहन अवस्था के अंदर में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अपने उसने सिर्फ कुछ जरूरी काम छोड़कर बाकी सब काम करना उसने बंद कर दिए हैं, तो उस समय ब्रेन जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहे 8-10 घंटे सो रहे हैं या 15 घंटे सो रहे हैं, आपकी एनआरएम की स्लीप की टोटल जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि आपको पूरे रात के अंदर में 3 घंटे की एनआरएम स्लीप आनी है, जो कि डीप स्लीप है वो 3 से 3.5 घंटे की आनी है, वो आपकी फिक्स है। अब अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, आप 10 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, और आप 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएंगे। तो जो एक्चुअल नीडेड स्लीप है, हालांकि दोनों नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरएम स्लीप की जरूरत है, बट जो ब्रेन को एक्चुअल रिलैक्स कर रही है जिसको हम डीप स्लीप या गहन निद्रा बोलते हैं, उसका टाइम बहुत फिक्स है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप है, क्योंकि अगर जब आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं पर आपकी एनआरएम स्लीप उतनी रह रही है, तो जो आपकी बाकी स्लीप है वो बेसिकली उसमें आपका बॉडी फंक्शन और आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं जा रहा है। तो हमें अपनी डीप स्लीप को बढ़ाना जरूरी है कंपेयर टू आरईएम स्लीप।
0: जी, कि कई बार लोगों का ये होता है कि वो नींद हमें क्यों रिड्यूस करना है, वो 10-12 घंटा 15 घंटा जो भी है हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं और हमको कोई काम नहीं है इसलिए हम सो रहे हैं, तो नींद तो अच्छी होती है, हम क्यों कम करें। ऐसा भी लोगों का विचार होता है, खास करके जो यंग जनरेशन्स है, हॉलीडे है या फिर हमने रात को पूरा काम किया है तो अभी दिन में सोएंगे, और वो ऐसा कंटिन्यू होता है कि दिन की 10, 12, 1, 2 भी बज रहा है लेकिन उठने का वो नहीं होता है उनसे। तो हम कैसे वो मेंटल प्रिपरेशन करें कि नहीं, मुझे कितना भी काम करे मुझे इस टाइम तक सोना है, इसके बाद नहीं सोना है।
1: ये सबसे जरूरी है जानना यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके जगने में होती है, सोने के अंदर में नहीं होती। नींद हम अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं, और नींद का कोई काम नहीं। नींद का काम यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में जाए, और उसको एक लेवल तक की रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद वो रिलैक्सेशन चाहिए इसलिए कि वो दोबारा काम कर सके। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो जगने के अंदर में है, सोने के अंदर में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सोने से हम कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया में सारे काम सब मेहनत चक्कर ही होती। तो इसमें जो लोगों का कहना है कि हम क्यों जागें, तो सबसे पहले तो इसमें जानना ये जरूरी है कि अधिक सोने से आपको कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना आपको ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके मन को, ना आपकी बुद्धि को, ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा अधिक सोने से। उल्टा उसके नुकसान जरूर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शुगर अनकंट्रोल हो रही है, आपका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल होने लग पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब हम जगेंगे तभी हमें, अगर हम 10-12 बजे तक 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो हम अपने जो सुबह के रूटीन है, जो मॉर्निंग वॉक है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जिम जाना है, जॉगिंग करना है, मेडिटेशन करना है, वो कब करेंगे अगर हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अधिक सोने से हमें कोई अधिक सोने से नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहे हैं, वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए सोने के समय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सोने के शुरुआत का समय, जब हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, इस समय सोने चले जाना है, 10 बजे मैं बेड पर जाऊंगा, और उसको रोजाना वैसा ही रखना। जब आप वैसा रखेंगे और उसके बाद सुबह उठकर बेड से उठना, जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग गए और उसके बाद बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जगने का मतलब जब सोने के लिए आप बिस्तर पर जा रहे हैं, तो जब आप जग रहे हैं तो आपने बिस्तर छोड़ देना है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाना है और अपने नित्य कर्म करने हैं। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे, एक बार जब बिस्तर छोड़ देंगे तब फिर आप दोबारा नींद आने की संभावना कम है। बट अगर आप जग गए और बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, सुबह सूर्य का अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद कर दिया, आप गए और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर आप दोबारा नींद गई। तो हमें उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम ये समझना होगा कि हमें बिस्तर को छोड़ देना है, नित्य कर्म जो करने हैं, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, या पढ़ाई करनी, पढ़ने की जो चीज का जो सुबह का होता है उस समय सबसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं। तो उठते हैं तो आपके पास आपको 1-1.5 घंटा मिलता है दिन के सब काम निपटाने के लिए, तो आपके पास में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
0: जी सर, ये तो ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग आवर्स की बात हो गई है। इसमें नींद की जब हम बातचीत करते हैं तो और चीज़ें हैं, एक तो खर्राटे मारते हैं, क्या उनकी नींद उतनी ही गहरी और रिलैक्सिंग होती है, और दूसरा जब वो खर्राटे मारते हैं उस कारण से दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर वो लोग नींद ना होने के कारण इरिटेशन है वो सभी चीजों से वो जूझते रहते हैं। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या खर्राटे का भी कोई इलाज होता है, ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, इसका क्या कारण है?
1: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बात करनी चाहिए बेसिकली कि हम लोगों को क्या लगता है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में ये मिथ है कि खर्राटे वाली नींद जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर खर्राटे मार के सो रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा खासा तो एकदम खर्राटे ले रहा था, इतना अच्छा सो रहा था। ये बात जनरली हम लोग आपस में जो पब्लिक जनरल पब्लिक है वो ये बात हमेशा करती है आपस में कि एकदम गहरी नींद में सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटों वाली नींद अच्छी नींद नहीं होती।
0: ओके।
1: अच्छी नींद वो है जो बिना खर्राटों की आ रही है। खर्राटों वाली नींद बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं होती। जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। वो खर्राटे किस लिए आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। खर्राटों का कारण क्या है? खर्राटे एक फिजिकल फिनोमिना है, वो इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई
0: जी,
1: तो दिमाग ने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी बाकी शरीर के साथ, तो दिमाग जग गया। दिमाग सो रहा था, अचानक से उसको

0: ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जग गया, उसके सारे पार्ट अलर्ट हो गए और उसने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी। अब उस ऑक्सीजन की डिमांड के लिए वो छाती के ऊपर में प्रेशर सिग्नल भेजता है कि आप मुझे और हवा सोख के दीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो छाती है वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है और उस समय जो आवाज़ पैदा होती है वो खर्राटे हैं। तो बेसिकली वो ब्रेन डिमांड कर रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। और वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसको जनरली जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ज़्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है वो लोग बहुत खर्राटे मारते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है उनमें क्या होता है कि जो जीभ है जब वो सो रहे हैं वो पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक के नाम से वो जीभ पीछे चली जाती है और वो सांस की नली के रास्ते को रोकने लग पड़ती है, इसलिए हवा फेफड़ों में ठीक ठाक नहीं जा रही। तो जब हवा ठीक ठाक फेफड़ों में नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही खून के अंदर में, और खून में जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसीलिए खर्राटे का फिनोमेना आता है। तो खर्राटों का मतलब यह है कि जब जब खर्राटे लग रहे हैं तो एक्चुअली ब्रेन जो है वो गहरी नींद में नहीं जा रहा है, वो एकदम कच्ची नींद में रह रहा है, वो नींद अच्छी नहीं है, खर्राटों वाली नींद बहुत बहुत खराब है। और जिन भी श्रोताओं को खर्राटे आ रहे हैं उनको जरूर अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। खर्राटे साथ वाले मनुष्य के लिए तो जो नुकसान, उसकी नींद तो डिस्टर्ब होती है बट आपकी नींद की क्वालिटी भी एक्चुअली खराब है और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो परेशान होता जा रहा है। और जो लोग रात को खर्राटे लेकर सोते हैं उन्हीं को दिन में डे टाइम स्लीपीनेस आती है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि बैठे बैठे नींद के झटके लग जाना, वो उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जो रात में खर्राटों वाली नींद ले रहे हैं, जिनको रात में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपने टेस्ट करवाने चाहिए, आगे जांच करवानी चाहिए कि ये खर्राटे क्यों आ रहे हैं, कि इनका कारण नाक या मुंह में है या शुगर की वजह से हो रहे हैं या ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से खर्राटों वाली नींद, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर में नींद के सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं या फिर जीभ नीचे जा रही है या वजन बहुत अधिक है। खासकर मैंने जैसे बताया कि मोटे लोगों में खर्राटे मिलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वजन अधिक है उनमें खर्राटे मिलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खर्राटों वाली नींद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं।
1: जी, तो इसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है खर्राटे वालों से?
0: खर्राटे की नींद का न्यूरोलॉजी से संबंध है, बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी से संबंध है उसका, बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजी में साइकेट्री और न्यूरोसाइकेट्री संबंध है उसका, नसों का काम है सिर्फ, कि ब्रेन जो है वो रात को बार बार जाग रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम मरीज को वजन कम करने की सलाह देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो बाईपास बोल के एक मशीन आती है जनरली, वो यूज़ करने के लिए दी जाती है जो ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ में नाक से अंदर की ओर भेजती है ताकि रात की नींद गहरी हो। तो जब एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलने लग पड़ती है तो चीज़ें ठीक होने लग पड़ती हैं, बट मरीज से हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर ठीक रहे, उसका वजन कम हो, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ये एक प्योरली मेडिकल इलनेस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें कि खर्राटे की दिक्कत आती है।
1: जी सर, दूसरी प्रकार की जो नींद है जिसमें हम सपने बहुत देखते हैं, कई बार ये कहावतें भी सपनों के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं या फिर वो जो मृतवेले के टाइम पे जो सपने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों की सपने ऐसे होते हैं वो नींद ख़राब कर देती हैं, हॉन्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। और वो सपने किसी को सुकून की नींद देती है तो किसी की नींद उड़ा देती हैं, लेकिन क्या ये जो सपने हम देखते हैं उसमें भी हमारी नींद और नींद से जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलनी है वो हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी है लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, या जो भी हम फिजिकली यहाँ पे सो रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कहीं और हैं एंड देन वी आर नॉट, वो नींद फुलफिल नहीं हो रही है?
0: देखिए, सपने हमारी नींद का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मैंने जैसा आपको बताया कि नींद के दो पार्ट होते हैं, NREM और REM। तो REM स्लीप के अंदर में सपने आते हैं क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पुतलियाँ घूम रही होती हैं, तो उस समय जो भी दिन में या उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ है जो दिमाग में स्टोर हुआ है, दिमाग उसी को आसान फॉर्म में रिलीज करने की कोशिश करता है और वही चीज़ें जो है वो सपने की फॉर्म में आती है। आप जब जैसे कि आप किसी पुराने अपने मृत रिलेटिव की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों से, तो आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आपको सपने में वो व्यक्ति दिखाई देने लग पड़ा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी बात करी जो दिमाग में जो उस व्यक्ति की छवि थी वो एक्टिवेट हो गई, तो वो सपने में हमें वही छवि दिखाएगी और हम उस व्यक्ति के बारे में जो जो सोच रहे थे वो वैसा वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं बट उससे जुड़ा जुड़ा कुछ ना कुछ आपके सपने में आएगा। तब अब जो सपने, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि जिनको सपने में भूतों के सपने आते हैं वो डर जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग एंग्जाइटी की बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है। जब एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है तो उन लोगों को सपने अत्यधिक आते हैं, क्योंकि उनका दिन ब्रेन जो है वो सारा दिन बहुत बेचैन और बहुत कोशिश करता रहता है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है उनका ब्रेन। तो सपनों की फॉर्म के अंदर में आती है, जिसमें उनको ऐसे सपने आएंगे कि जैसे कि आपको बहुत बारी सपना आएगा कि मेरा एग्जाम छूट रहा है, हालांकि अब मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा, फिर भी मुझे रात को ये सपना आता है कि मैं अपने एग्जाम में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, मेरी ट्रेन छूट रही है। बहुत बारी सपना आता है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल चुकी है, इस तरह के सपने आते हैं। उससे उन सपनों से आदमी घबरा के आदमी की नींद खो जाती है। तो बेसिकली वो हमारी इनर एंग्जाइटी को शो करते हैं। तो अगर एंग्जाइटी के ऊपर में काबू पाया जाएगा वाय JPMR करके या दवाई के साथ में या मेडिटेशन के साथ में, जैसे भी एंग्जाइटी में जब कंट्रोल किया जाएगा तो सपनों की नींद जो है वो कम होने लग पड़ेगी और सपनों की क्वालिटी अच्छी होने लग पड़ेगी। मतलब आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। स्वप्न आने तो जरूरी है, स्वप्न आएंगे ही आएंगे, उसको बंद नहीं किया जा सकता। बट अच्छे स्वप्न आएंगे तो हमको दिन के समय वो याद नहीं रहेंगे, बट अगर डरावने सपने आए जिसमें हमारी नींद खुल गई अचानक से, तो वो हमें काफी देर तक याद रहते हैं, अगर हमारे REM स्लीप वाले स्वप्न आ रहे हैं।
1: तो जिस तरीके से आपने एक स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है अनिद्रा के लोगों के लिए, तो इज देयर एनी मेथड या फिर कोई प्रिपरेशन जो ओवर स्लीपिंग या फिर ये सपने हैं, ये सभी तरीके के जो डिजास्टर्स हैं आज जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है, उसके लिए भी कोई तरीका है या प्रिपरेशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए?
0: ओवर स्लीपिंग के लिए तो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि सबसे पहले है जैसे नींद सोने जाने का समय निर्धारित करना है, वैसे ही उठने का समय भी हमें फिक्स करना है। पहला पॉइंट है ये कि हमें उठने का समय हमेशा फिक्स करना है और उठने के बाद हमें बिस्तर को छोड़ देना है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बिस्तर पर नहीं रहना है। जब सोने जाना है स्लीप हाइजीन के समय, तब बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। तो जैसे ही आपके उठने का समय हुआ, आपको बिस्तर को छोड़ देना, बिस्तर का त्याग कर देना। तीसरी चीज, रात के समय शराब या इन सब का सेवन नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। वो हमारे को हाइपरसोमनिया को बढ़ा देते हैं या नींद को कम भी करते हैं, पर बहुत केसेस में वो नींद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम नशे से दूर रहें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चौथी, हाइपरसोमनिया का हमें कारण निकालना पड़ेगा कि कहीं कोई शारीरिक परेशानी की वजह से, कोई मेडिकल इलनेस की वजह से तो नहीं आ रहा। अगर वैसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और जो लोग ऑलरेडी हाइपरसोमिक हैं, जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उन्होंने तरीका बताया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आधा आधा एक एक घंटा कम करते करते अपने आप को 2-3 महीने में नॉर्मल लेके आना है। बनिस्पत की आप एक दिन में कोशिश करें कि मैं सुबह 4 बजे कल से उठना शुरू कर दूं, वैसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि एक एक घंटे अपनी नींद को ठीक करते करते आप 1-1.5 महीने में अपनी नींद का समय को ठीक करें। और जहाँ तक स्वप्न की बात है, तो स्वप्ने जो जैसे मैंने बताया कि उसमें वो जो डरावने सपने और ये सब डिसऑर्डर आते हैं, वो एंग्जाइटी की वजह से बहुत बार होते हैं। तो हमें एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, हमें जड़ के ऊपर में काम करने की कोशिश करनी है। तो एंग्जाइटी के लिए जैसा डॉक्टर हर्षिता ने बताया था कि JPMR एक टेक्निक होती है, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, वो मैम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। ये हो गया, या फिर एंग्जाइटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन, सोने से पहले थोड़ा ध्यान लगाकर सोएं, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपके सपने जो हैं वो अच्छे स्वप्न रहेंगे और ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको सुबह याद रहें या आपकी रात की नींद में खलल डालें।
1: जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है जहाँ पर हम महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी इस प्रकार की स्लीप साइकिल्स को देखने को मिलता है, वो जो रेस्ट चाहिए, या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्लीपिंग की जो आदत पड़ जाती है, घंटों तक वो सोने की इच्छा होना या नींद करने की। तो इज इट समथिंग डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है?
0: देखिए, प्रेगनेंसी के समय डेफिनेटली नींद कभी कुछ लोगों की बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि नींद जो है प्रेगनेंसी के समय भी हम 8-10 घंटे के बीच की नींद रखें, इससे ज्यादा की नींद ना लें, ठीक है? क्योंकि आप को प्रेगनेंसी के अंदर में दिन के सारे कार्य भी करने हैं, नॉर्मल कार्य भी करने हैं अपने, तो अगर आप नींद बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसका एज सच तो कुछ असर नहीं करता पटवाड़ता, पर जब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, क्योंकि उस समय जब बच्चा आएगा तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो उसके बाद में अचानक से आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो रात को भी जगेगा, रात को बहुत बार रोएगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो उस समय आपकी नींद जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय 15-15 घंटे सो रही हैं आखिर में जाकर, तो फिर जब अचानक से आपकी नींद

0: में जो जीवन साथी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी वाइफ की मदद करे, कि जिस समय वाइफ आराम कर रही है तो उस समय बच्चे की देखभाल वो करे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड आजकल जैसा कि बोलते हैं कि सिर्फ महिला का नहीं पति का भी साथ में होता है, उसको भी साथ में पूरा का पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जो जो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में अपनी नींद को ठीक ठाक रखना है, 8 से 10 घंटे सोना है, उसी शेड्यूल को सारी प्रेगनेंसी में मेंटेन करना है, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना, और जब पोस्टमार्टम पीरियड आना है तो उस समय कोशिश करनी है कि अपनी नींद को बच्चे की नींद के साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पहले 3-4 महीने सोने का समय बहुत कम मिलने वाला है।
1: जी, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन या फिर कोई बातें हैं जो नींद को रिलेटेड खासकर महिलाओं के लिए?
0: डॉक्टर हर्षिता अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो वो बता सकती हैं।
1: जी
2: हाँ, श्योर। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक रिलेटेड टू जब हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक स्लीप केयर है वो वुमेन की लाइफ में अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है। अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, उसका जो साइकिल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन जनरल से वहाँ पे पीएमएस के सिम्टम्स अगर आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी वजह से वुमेन की जो स्लीप डिस्टर्बेंस फील वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पीरियड्स के पहले जिनको हम पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स के दौरान स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, कि जैसे हीट पैड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो सकती है उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टीज आती हैं, चाय आती हैं, अगर वो उनका सेवन करें बेड टाइम पर तो वो बहुत रिलैक्सिंग, एक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। सो एक ये चीज़ हम स्पेसिफिकली वेमेन के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जब टाइम आता है मेनोपोज का, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो रात को वेमेन फील करती हैं कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से गर्मी लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी स्लीप का उस समय पर भी ध्यान रखें, अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखें, एसी या फैन का यूज़ करें, और अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स करें, और एक एक्सरसाइज जो है वो उसमें स्पेसिफिकली ऐड ऑन करें, क्योंकि डेली एक मॉडरेट एक्सरसाइज से हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऐड कर सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर हर्षिता जी। हमारी जो नींद जीवन का सबसे प्यारी चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में एक संतुलन और एक सही तरीके से सोना और क्यों ज़रूरी है और उसको ठीक कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर आज प्रकाश डाला और हमारी श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को जागरूक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी शुक्रिया, धन्यवाद
1: जी। तो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियाँ मिली हैं, और जहाँ पे भी आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है या फिर हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें, और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी जिनसे भी आपको संपर्क करना है उनसे संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

0: सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है। मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया, डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ,
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान, मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य, सेवा किए कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, का नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हैं।
0: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल,
0: कुछ
1: वही वही वही काम
0: अवेयरनेस
1: इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम,
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो, मेरे को जॉब भी मिल सकती है लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी सोचा हूँ जो हमसे
1: और
0: जी
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ बस।
0: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नज़र के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम
1: यस
0: प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा

0: का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी, किस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली? आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: है? अच्छा,
0: और मेरी मदर।
1: जी, तो
0: हाँ
1: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी
0: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
1: जी
0: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में की है, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला है कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
1: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
0: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े। और उनको
1: कम्युनिटी हाउसिंग,
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी, कितने
0: बिल्कुल,
1: लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: ये आप
0: डिसेबल लोगों के लिए।
1: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
1: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों?
0: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर,
1: जी,
0: 70 75। यस
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार्य के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की
0: इसमें
1: आवश्यकता है।
0: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ, इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: जी, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधौन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधौन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर, जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर, मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने
0: जी
1: उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से। वो एक दिन मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था, और मुझे पढ़ाई की तो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको ही नहीं आती थी जो मुझे सिखाएं, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था, वो उनने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बैठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया 2nd क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन 2nd क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माताजी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम 1 क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया 3rd क्लास में, तो सर
0: जी
1: 3rd क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं 3rd क्लास में
0: जी
1: पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको 1 क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब
0: जी
1: सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो 3rd क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है, तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास, मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए है स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे सिक्स क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर सिक्स क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ, माताजी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं, तो सर मैंने सेवंथ क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में। अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं एट्थ क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी जगह मिली, हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने नाइन्थ क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर नाइन्थ क्लास आई तो सर नाइन्थ क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं, उसमें डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की और सर मैं नाइन्थ निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा। सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कोऑपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा, बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं, तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को जो जो फ्री होते थे तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था, और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है, तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने वो भी 9th क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स। अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय थर्ड रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में। मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं, इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी।
0: जी
1: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी। फिर
0: आपने अपनी
1: तो
0: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
1: हाँ,
0: दे
1: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको उस चीज में मतलब एक तरीके से
0: दी।
1: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
0: जी,
1: टीसी भी ले ली, दो तीन
0: जबकि
1: बच्चों की
0: हमारा
1: टीसी चेक
0: उद्देश्य
1: करने के
0: नहीं था,
1: लिए।
0: जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
1: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
0: हाँ,
1: अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
0: बचपन से ही लेती है ना। जी
1: हाँ, फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
0: जी
1: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
0: जी
1: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कम ही बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
0: जी
1: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
0: जी
1: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता क्या
0: जी
1: था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा, ये तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
0: जी
1: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
0: जी
1: अब वो पढ़े मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई, फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया, एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
0: जी
1: सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
0: जी
1: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है आप।
0: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, वो ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
1: जी
0: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया, और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं, और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
1: जी
0: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th-10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
1: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी
0: जी
1: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर CBSE में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है, वो कुछ
0: जी
1: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर
0: जी
1: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया, तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके, और एक
0: जी
1: तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, और इतना वो बढ़िया था मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो, तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले आ रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे,
0: जी, नहीं, निश्चित
1: और
0: रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
1: मैंने
0: चुनौती।
1: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
0: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय, आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खासतौर पे गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है। शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है, या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
1: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से, फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं, और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं, मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना

0: सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज. आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है. तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा. हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमको, यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था. हम ये भी समझे कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो. तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें. और अवश्य ही, यदि हम, वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा.
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
0: जी
1: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने हमको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो
0: जी
1: उन सज्जन ने उनके लिए दो सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको
0: सर,
1: लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर
0: यही
1: वापस
0: यही चीज.
1: गए। तो बेसिकली क्या है कि भाई कुछ इंसान चल तो सकता है ना। या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवारजन उससे पूछेंगे कि ये
0: जी
1: चाय पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन
0: जी
1: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक बार
1: चलते।
0: हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में. उस समय मैं उस क्लास में नहीं था, कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे. मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया. एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है. तो वो बोल रही थी किसी, उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी, तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे. मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था. तो उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं. मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा, सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें. तो वो कह रहे हैं, नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था. तो मैंने, मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है, आपको मेरे से डर लग रहा है.
1: हाँ, तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ.
1: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग
0: जी
1: विद अस।
0: जी
1: सो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं, आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। सो श्रोताओं, एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
0: ला ला

0: शुभ शांति नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बी के लोकेश सर हैं जिनसे हम लोग बातें करते हैं। आप डाइटिशियन हैं, नेचुरोपैथ हैं और काफी अच्छा जो है इनका इन्फॉर्मेशन हमारे सामने, जब वो किसी विषय को लेकर बात करते हैं तो गहराई से उसके ऊपर चिंतन भी होता है और नेचुरली कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग वेरियटी ऑफ मना किसी एक चीज को अगर आप बताते हैं तो उसमें तीन चार आपको ऑप्शन दे देते हैं ताकि वो जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी सुविधाजनक हो, उन चीजों को कर पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज आप सभी को डॉक्टर लोकेश से सुनने को मिलता है। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर लोकेश सर का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं?
1: ओम शांति रमेश भाई जी, पूरे रेडियो मधुबन परिवार और सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चांस दिया।
0: बिल्कुल,
1: तो कि हमारी माताएं बहने अगर घर की पहली प्राथमिक डॉक्टर बन जाएं, क्यों ना हम उनको डॉक्टर बना दें ताकि कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में ही हम ठीक कर सकें। आज से 40 साल पहले क्या थे, घर की माँ माता को दादी को यही पता होता था कि क्या करे जब किसी के कान में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, उल्टी लग जाए, सिर में दर्द हो जाए, इन सारी चीजों का उनको पता था, कहीं मोच आ जाए, सब चीजों का उनको पता था। क्यों घरेलू किचन, आयुर्वेद को घर के किचन से इसलिए जोड़ रखा है ताकि ये हर घर घर का एक पार्ट बन जाए, ठीक है ना। उसमें फिर आपका हल्दी है, मेथी है, सोठ है, अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, तुलसी है, एलोवेरा है, है शहद है, गाय का घी है, ये सारे एक औषधि है। अब इनका किस रूप, किस बीमारी में हम क्या प्रयोग करें, तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। और स्पेशली माताएं बहनें अगर स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहेगा। अक्सर क्या होता है, माता बहनें क्या करती हैं, पूरे परिवार का, सबके खाने पीने का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख, जो बचा खुचा हो वो खा लेती हैं, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक इतनी नहीं है। इस वजह से क्या होता है, कई बार मैं पूछता हूँ कि क्या क्यों खाया आपने, वही सुबह कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से शेयर करते हैं, मैं पूछता हूँ रात को क्या खाया था, कह रहे रात को ना बच गया था और उसको मैंने सोचा कहीं फेंकेंगे तो नुकसान होगा। मैंने कहा उससे ज्यादा ये आपके शरीर का स्वास्थ्य का नुकसान है, इसलिए वर्जते। तो इसी के लिए ही मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि नारी घर की डॉक्टर दवा बने आहार, नारी घर की डॉक्टर दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ रहे परिवार। अगर हम अपने किचन को डिस्पेंसरी बना ले, उसमें घरेलू दवा घर बना ले, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी बनी, जहर बना आहार, किचन बना भ्रष्ट, तो रोगी सर्व संसार, सर्व समाज। तो सबसे मुख्य जो कारण है वो है आपका किचन में ही आपने गड़बड़ करी है, खान पान में ही हम इतनी गलत कॉम्बिनेशन करते हैं, या फिर हम जो है उन चीजों का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, ज्यादा करते हैं, किस समय पर क्या लेना है, कैसे लेना है, इन सब चीजों को हम आज बातें करेंगे। जैसे देखिए, माताएं बहनें अपनी एक तो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो मेरा आप सब से जो भी सुन रहा है और आगे भी जो सुनेगा, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाए। डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा है आप खुद उस पर आधा से एक घंटा, अगर किसी के पास मिनिमम टाइम है तो आधा घंटा तो अपने आप को देना ही देना है, नहीं तो एक घंटा पूरा कहीं वॉक करो, रनिंग करो, स्कीपिंग करो, है एरोबिक करो, डांस करो, और उसके साथ साथ 10-15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, जैसे ही आप सिर्फ लंबे श्वास लेते हैं और लंबे श्वास छोड़ते हैं, आनापान स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोर्टिसोल हॉर्मोन्स का नॉर्मल होता है, उसका उसको कम किया जाता है और एंडोर्फिन निकलता है, गुड हॉर्मोन्स निकलते हैं। जो माताओं बहनों के वो जो मुख्य रोग हैं, वो रोग हैं आपके ज्यादा सोचने की वजह से हॉर्मोन्स डिस्टर्बेंस होते हैं, और उसी डिस्टर्बेंस के कारण ही वेरिकोज वेन्स होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, सबसे पहले क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, जो महामारी होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। और माताएं बहनें अक्सर उसको सोचती है कि बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन कॉमन नहीं है, उसको उसको बड़ी सावधानी से आपने लेना है, और दूसरा फिर उसके थायराइड की समस्या है, फिर धीरे धीरे पीसीओडी है, हेयर फॉल होना, स्किन का प्रॉब्लम होना, ओबेसिटी होना, थायराइड हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, या थिकनेस होना, पतला हो जाना, बहुत सारे ऐसे देखे हैं माताएं बहने जो बहुत ज्यादा मोटी हैं दिखने में तो, लेकिन शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। वो एनर्जी क्यों नहीं है भाई, आप खा भी रहे हो, दो दो तीन तीन बार दूध भी खा रहे हो, पी रहे हो, ये भी खा रहे हो, फिर क्यों नहीं है एनर्जी? कहेंगे थकान होगी, ये सब होना, ये क्या कारण है, क्या क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ही सिर्फ यही है कि आप जो भोजन खाते हो उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें वेस्टेज ज्यादा है, और आपने ज्यादा सोच सोच के और अंदर बातें दबा के रखते हैं, जो अंदर दबा के रखते हैं, दबा के रखने से क्या होता है, गले संबंधी प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो जितने भी कोई भी जो थायराइड की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो इसलिए शिव बाबा को रात को जब गुड नाइट करते हैं तो उसमें सारी बातें अपनी क्या करें, सारी बातें भगवान को सौंप दे, सुना दे, हल्के हो जाएं। हल्के होकर जैसे रहेंगे तो उससे क्या है, सिर ये भारीपन हल्कापन रहेगा, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो सीधा इसका कनेक्शन, आपके मन का कनेक्शन कहाँ से, आपके पेट से है,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। माइंड का सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। जैसे ही किसी ने गुस्सा किया तो आपके डाइजेशन वीक हो जाएगा, जो भी आप खाएंगे वो पाचन नहीं होगा। बेस्ट प्रोग्राम एंड टॉपिक वुमेन्स हेल्थ नेचुरोपैथी सॉल्यूशन। हाँ, थैंक यू आपका। तो आज हम यही करेंगे कि क्या ऐसे नेचुरोपैथी के सॉल्यूशन करें जिसकी वजह से आप जो है घर में ही ठीक हो सकते हैं, तो उन्हीं पर ही हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जैसे आपका यहाँ चलता है वो यहाँ चलता है। आपने देखा होगा अगर कोई डर में होता है तो उसको क्या, जैसे कोई बच्चा डरता है स्कूल जाने से या एग्जाम फेयर करने से, तो क्या होता है उसको लूज मोशन हो जाते हैं, उसको बाथरूम यूरिनेशन ज्यादा होता है। ठीक इसी तरह से जब भी आप डर भय चिंता गुस्सा में होते हैं तो डायरेक्ट ही आपके या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर उनको लूज मोशन की शिकायत होती है, यूरिन एक्सेस ज्यादा आता है ज्यादा सोचने के मात्र से ही, और फिर हॉर्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है, चाहे वो आपका पिनिल पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ डिस्टर्ब होगा, यहाँ से डिस्टर्बेंस होते ही आपके थायरोक्सिन हॉर्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है, आपका पेनक्रियाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी पेनक्रियाज क्या है सही प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती, जिससे आपको ब्लड शुगर की समस्या होती है। फिर ठीक इसी तरह से उसी के वजह से ही सारे जो इरेगुलर पीरियड्स होना है, जो महिलाओं में महामारी के समय है वो बहुत ज्यादा होना या कम होना, आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। या तो बहुत ज्यादा है होता है, उससे खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आती है, और या फिर बहुत कम होता है या नहीं होता है, एक एक महीने में दो दो महीने होता नहीं है, फिर होता है तो बहुत ज्यादा होता है, और प्री मेनोपॉज की स्टेजेज है, बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। दो तीन स्टेज होती है, एक तो 12-13 साल की एज में की मेन मुख्य स्टेज होती है जब महामारी शुरुआत होती है, दूसरी अवस्था होती है जब कोई नारी माँ बनती है बहन, तीसरी अवस्था होती है उसकी 40 से 50 की अवस्था जिसमें मेनोपॉज की अवस्था होती है जहां पे महामारी बंद हो जाती है। तो ऐसे में आपका कोई आजकल बताते ही नहीं है कि अगर आपको ये भाई पीरियड्स के दौरान आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, और गलत तरीके से आप खाते हो, आप महामारी के दौरान ठंडी चीजें खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे, तो उससे आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी ही बढ़ेगी है। और अगर आप फल सलाद सब्जियां कच्ची ये जूस ज्यादा अल्कलाइन चीज खाएंगे तो उससे आपकी ये समस्या नहीं होगी। तो एक एक करके हम इन चीजों को आज लेंगे। अगर आप ये जान जाएंगे तो मैं कहता हूँ आपके घर में ये बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी ठीक हो सकती है। आप कोई छोटा बच्चा है बच्ची है उसको भी अगर आप बताएंगे तो एक बार उसको करा के देखो। कई बार क्या होता है कई बच्चों को बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं पीरियड्स के दौरान, उस दौरान क्या करना चाहिए, तो धीरे धीरे अब हम उन्हीं प्राकृतिक घरेलू उपचार पर ही आते हैं कि हम महिलाओं के लिए क्या उपचार आप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, जब किसी भी माता या बहन को एक्सेस ब्लीडिंग होती है कि जब शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो कई कई दिन तक ब्लीडिंग होती है, या फिर जो उनको बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, पेन होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको पेट पे गीला तौलिया रखना चाहिए एक तो, ठीक है, पेट पे गीला तौलिया करके 15-20 मिनट अगर आप गीला तौलिया रखते हैं तो वो गीला तौलिया क्या करेगा, आपके सारे शरीर की गंदगी को बाहर निकाल लेगा। दूसरा जो आप इसमें एक प्राकृतिक चिकित्सा में होता है हिप बाथ, महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया चीज है हिप बाथ। हिप बाथ होता है जिसमें एक टब होता है, और वो टब क्या होता है, वो बड़ा सा जो है उसमें, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ एक चीज, उसमें क्या होता है, एक टब होता है, उस टब को आप बड़ा सा घर पे भी ले आए, या फिर जिसमें कईयों के तो घर में स्नान करने के लिए टब होता है, तो उसी में ही आप यहाँ से लेके पूरा पेल्विक रीजन तक लेट जाए, पानी में बैठ जाए, को नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर पानी में, तो उससे क्या होगा, आपके 20 से 30 मिनट के अंदर ही पेट की सारी बीमारी, चाहे उसमें इंफेक्शन हो गया है, चाहे उसमें डायबिटीज है की प्रॉब्लम है, चाहे पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर महिलाओं से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, उस सारी गर्मी को वो पानी क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा और आपको बिल्कुल फिट कर देगा। कमर दर्द होना ये सारे इसी के वजह से ही होता है, अक्सर जो लोअर बैक पेन है, साइटिका पेन है, ये माता बहनों में क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि वो अपने ध्यान नहीं रखते, और जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। अब ये तो एक्सेस ब्लीडिंग में तो हम ये टेक्निक कर सकते हैं, आप पानी में बैठ जाएं, और दूसरा खाने पीने में क्या करें, गन्ने का रस पिए, दिन में 2-3 बार नींबू पानी पिए, गुलकंद, गुलकंद इसमें बहुत बढ़िया और इफेक्टिव होता है, गुलकंद आप अगर खाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा नारियल पानी पिए, तो ये ठंडी चीजें आपको खानी चाहिए, कोई भी उस दौरान अगर एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो गर्म चीजें नहीं खानी। अब इसका एक और शीशम, आपने शीशम का पेड़ तो अक्सर देखा होगा, आपके घर के आसपास होता है, कहीं भी चले जाओ पार्क में आपको यूजुअली मिलता है। अब शीशम के कच्चे पत्ते ले लो, बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग है, तो उन कच्चे पत्तों को 2-3 काली मिर्च डाल के और उसको पीस ले, बहुत अच्छे से घोट ले उसको, और गुलाब फूल डालना है, गुलाब फूल डाल दो उसमें, हिबिस्कस चाइना रोज जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल लाल कलर का होता है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसका भी अगर आप पत्ते डाल के उसको पीस लो, अच्छे से घोट लो, और थोड़ी सी खांड डाल के उसको अगर आप सुबह शाम पीते हैं तो उससे भी आपकी एक्सेस जो ब्लीडिंग है उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा गाय में मैंने आपको बताया, हर घर में गाय का घी आप रखें, तो गाय का घी चाहे क्रेम पाते हैं, चाहे आपका एक्सेस ब्लीडिंग है, और या फिर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, कमर में पेन हो रखा है, पैरों में पेन हो रखा है, ऐसे में जब आपके पीरियड्स का टाइम हो उस दौरान थोड़ा गुनगुना पानी करें, और उसमें 1-2 चम्मच अगर आप गाय का घी लेकर उसको पी जाते हैं तो मैं कहता हूं तुरंत ही ये लाभ करता है। ये बहुत पहले ये सब चीजें ये करते थे घर में, लेकिन आज इनसे दूर हो गए हैं, जिसकी फिर गोली खाते हैं या कोई और कुछ करते हैं तो उसे वो गोली खा के फिर धीरे धीरे आगे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो दूसरा उसमें क्या कर सकते हैं, हीट पैड कर ले, जो गर्म पानी की बोतल भर ले और उस बोतल से पेट की सिकाई करते हैं तो उसे भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ये तो होगी एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग। अब किसी को बहुत ज्यादा थोड़ा मात्रा में होता है, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उससे फिर कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होना, थकान महसूस होना, ये सब कॉमन चीजें हैं। अब इसको कैसे हम दूर करेंगे, पीछे मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल है मेरा डिवाइन नेचर के और बीके लव केस, उस पर गाजर के मैंने बेनिफिट्स हेल्थ बताए थे, तो गाजर के बीज इसमें बहुत जबरदस्त काम करते हैं, जिनको भी 2-2 महीने में पीरियड्स आते हैं या खुलकर नहीं आता है, फ्लो सही नहीं होता, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, गाजर का बीज 1 चम्मच ले लीजिए और उसको उबालिए जैसे 250-300 ml पानी में, और उसको 2 बार अगर आप पीते हैं, जैसे ही डेट आने से पहले 7 दिन पहले शुरू कर दें, सुबह शाम रोज पिए 100-150 ml पानी, उस पानी को उबाले 5-7 मिनट, और जब वो उसको फिर रख ले और पीजिए आप, और जैसे ही आप के पीरियड शुरू हो जाए तो उसको बंद कर दें और फिर देखो आपका बिल्कुल खुल के फ्लो आएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आप बथुए का भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें बथुए के बीज भी ऐसे काम करते हैं, साथ में आपके कलौंजी जो ब्लैक नाइजीरिया सीड्स होते हैं वे भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं, तो उनको भी अगर आप उबाल के ऐसे लेते हैं तो आपका जो ये समस्या है इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आते हैं आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें, दो चीजें हैं इसमें, एक तो है आपके अशोकारिष्ट आती है, अशोकारिष्ट बहुत बढ़िया है जो आपके पेट संबंधी सारी समस्याओं को ठीक करती है। अगर आप अशोकारिष्ट की 2-3 चम्मच आप पानी में डाल के सुबह शाम खाना खाने के बाद लेते हैं, या फिर एक और महिलाओं के लिए एक और आयुर्वेद में है हेम पुष्पा के नाम से आती है, तो ये भी आप ऐसे ही 2-3 से 4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो उससे आपकी ये सारी पेट संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। किसी का कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछिए तो अच्छा रहेगा, औरों में भी क्लियरिटी आएगी। तो ये है, अब इसमें बात एक आती है कि हाँ अच्छा ये नमस्कार सर, ये सुरेश हमारे दैया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि घरेलू उपाय का बहुत ज्ञान है, इसी शनिवार को हमने लवकेश जी के साथ लौंग कपूर तेज पत्ता दालचीनी के पौधे हमने अपने हर्बल गार्डन में भी लगाए हैं। हाँ तो इसी से ही बहुत बहुत थैंक यू, ये आपकी ही प्रेरणा है जिनसे ये सब हो रहा है। तो एक और पौधा है जिसमें हैवी ब्लीडिंग जब होती है तो उसमें आता है आपका नागदौन का पौधा, नागदौन के पत्ते भी उसमें बहुत शीतल होते हैं, तो वो पत्ते 6-7 पत्ते लीजिए और उन पत्तों को चबा के ऊपर से पानी पी जाए तो तुरंत आपको आराम मिलेगा। आप बताओ इसमें कोई मेहनत है या और कुछ पैसे लगने या कुछ करना है, बताइए बहन बताइए, लगेगा कुछ इसमें है?
2: जरा भी नहीं।
1: हाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आराम, जब किसी बच्ची को अगर आप ये देते हैं तो तुरंत आराम मिलेगा, एक बार उसको जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा, अब जैसे ही पिलाओगे गाय का घी उसको 1-2 चम्मच डाल के तुरंत ही उसको आराम मिलेगा, अगले बार अपने आप मांगेगी, ये बात होती। मैंने एक बार बताया था कि भाई जब आपके कान में दर्द हो जाता है, ऐसे ही मैंने योग अभ्यास में बताया, तो मैंने कहा तिल का तेल में मेथी दाना और थोड़ा सा लहसुन मिला के पका के उसको कान में डाल दो, 2 दिन बाद उसको हो गया तो तुरंत उसने ये प्रयोग किया। अब प्रयोग किया तो आराम तो तुरंत होना ही होना है, तो वो प्रयोग हो गया। अब वो उसके जब भी कुछ होता है तो तुरंत ही फोन आते हैं मेरे पास कि सर ये कैसे करूं, ये क्या करूं। तो ये सब चीजें हैं, हम इनसे दूर हो गए, हमें फिर से प्रकृति और अपने किचन को ही स्वस्थ करना है, अपने सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाना है, क्योंकि भोजन जो है 3 तरह का होता है, सात्विक राजसिक तामसिक, हमें भोजन को सात्विक बनाना है। सात्विक भोजन वो भोजन होता है जिसमें हमारा फल आहार, रस आहार, अंकुरित, कच्चे, जिनमें मैक्सिमम ज्यादा 60-70% हमारी डाइट का पोर्शन अगर ये हो तो ये आप सात्विक भोजन में आता है। अगर हम पका हुआ भोजन ज्यादा खाते हैं वो राजसिक में आता है, अपने टेस्ट के अनुसार खाते हैं, दिन में 3-3 बार आप जो है कार्बोहाइड्रेट

0: का सेवन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो उससे आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, उससे ठीक ऐसे ही हाल रहेगा जैसे आप मोटे हैं दिखने में लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। तो अब बातें आती है कि जब भी एक होता है महिलाओं में, बहनों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है जिसको ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या कहते हैं, खाने से जो जो लास्ट में वो बनता है तो वो सारी ताकत उससे वो निकल जाती है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है तो वो फिर क्या होता है, फिर वहीं से ही उसी की वजह से ही कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होना, वेरिकोज वेंस होना, साइटिका पेन होना, ये सारे ही उसी के कारण है ना। अब उसको ही हमें ठीक करना है। प्रॉब्लम पैर की नहीं है, प्रॉब्लम कमर की नहीं है, प्रॉब्लम आपके पेट की होती है, ठीक है। तो उसको ठीक करने का बहुत बढ़िया आपको सरल दो उपाय बता देता हूं। उसमें आपने क्या करना है, एक तो फिटकरी ले ले, फिटकरी लेके आप जो है फिटकरी या लाल दवाई डाल के पानी से अच्छे से वॉश करो दिन में 2 बार 3 बार, या नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे हमें अपनी सफाई करनी चाहिए। और साथ में एक बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ देखा है ना, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के 6-7 दूध की बूंदे सुबह सुबह खाली पेट, अगर हम उसकी बूंदे पतासे में जो आता है ना व्हाइट कलर का, उसमें डाल के सुबह शाम 1-2 पतासे खा जाते हैं, तो मैं समझता हूं 10 दिन के अंदर ये कर्म मिल जाएगा। ये बहुत जबरदस्त उपाय है, सरल है, इतना बढ़िया अद्भुत है, बहुत सुंदर है। दूसरा उपचार इसका ये है कि आंवला रस निकालें, आंवला रस और उसमें शहद डाल के सुबह शाम पीते हैं, तो उससे भी आपकी इस समस्या से बहुत जल्दी ही करा मिल जाता है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और साथ में मैं एक और आपको सावधानी बताना चाहता हूँ, सावधानी बड़ी बरतनी चाहिए हमें। माताओं बहनों को इंफेक्शन होता है बाहर, जब आप जाते हो तो बाहर के बाथरूम या टॉयलेट जब यूज करते हो उससे आपको इंफेक्शन होता है, तो उससे आपको इंफेक्शन से बचना है तो जब भी घर से जाएं तो घर से फ्रेश होकर के जाएं, यूरिनेशन के बाद जाएं, और बाहर के टॉयलेट यूज करने से मैक्सिमम आपने बचना है, ठीक है ना। वहां से इंफेक्शन आपके अंदर आता है, तो इसलिए आपने बचना है, ठीक। इसके बाद एक आता है कि जब आपको खून की कमी है, क्योंकि आप देखो 3-4 बार खा रहे हो फिर भी क्यों, माताओं बहनों खून की कमी क्यों रहती है, उसकी कमी का यही कारण है कि जब आपको एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से वो सारा खून की कमी ज्यादातर रहती है। अब उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए महामारी के दौरान, उस दौरान देखिए हमें आपको खाने के बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है। और पहले क्या होता था, जब भी ऐसा टाइम होता था मंथ में तो उसको अलग से रखते थे, उसको अलग से इसलिए रखा जाता था ताकि उसको क्या है, शरीर से अंदर से गंदगी बाहर निकलती है। अगर आप फूल वाले पौधे पेड़ पौधे उनके पास भी जाते हैं तो वो अपने आप ही खराब हो जाती है, जैसे घिया है, तोरई है ना, इनमें अगर कोई माता बहना बहन पीरियड्स के दौरान उनके पास भी पहुंच जाती है तो वो खराब हो जाते हैं, फूल गंदे हो जाते हैं, ये सब चीजें, इनसे बचने के लिए साथ में उस दौरान आपको क्या खाना चाहिए, ठंडी चीजें वस्तुओं का सेवन, अगर एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान ठंडी चीजों का सेवन हमें करना चाहिए, अगर बहुत कम ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान हमें थोड़ा गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए, खासकर जो है आयरन वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन कम करना चाहिए हमें, और करते उल्टा है, रोटी पे रोटी दबा के खाते हैं और उससे आपको प्रॉब्लम होती है। मैं कहता हूं करके देखिए, उस दौरान गाजर का रस है, चकुंदर का रस है आपका, और साथ में अंगूर का रस है, अंगूर खाइए, बहुत अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी देगा और बहुत बढ़िया लाभ देगा। साथ में आपने पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या होता है, एज ए पेन किलर काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपके पीरियड्स के दौरान स्पेशली आपको पाइनएप्पल का जूस रोज पिए तो उसको दौरान बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको, जैसे ही पियेंगे तो पेन किलर की तरह वो क्रैम्प है उसमें बहुत ज्यादा राहत देता है, तो वो खा सकते हैं। अनार आप खाइए, है ना, और अनार खाएंगे तो उससे आपके आयरन की पूर्ति होगी। मुनक्का, अब इसमें जिन माताओं, ये तो होगी पीरियड्स के दौरान, आपको इन चीजों का सेवन, सेब खाइए आप, सेब का सेवन आपको करना चाहिए, खजूर खाइए एक दो, दो तीन चार। अब कहेंगे गर्मी में खजूर कैसे खाएं, अब उसको पानी में भिगो कर खाइए आप, उसको डायरेक्ट मत खाओ। अब उसको कैसे यूज करना है, भिगो के खाना, ताकि उसकी गर्मी बाहर निकल जाए। अंजीर का सेवन हमें करना चाहिए। तो इन सब चीजों का ये मुख्य बातें हैं, तो हमें इनकी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये हमें चीज खानी चाहिए। और दूसरा, हमें सिर क्यों नहीं धोते, सिर इसलिए नहीं धोते क्योंकि ठंडक जाती है, इस वजह से सिर धोना उन दिनों में नहीं धोया जाता, क्योंकि उससे सिर ठंडा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो तुरंत ही हम स्नान करती हैं। ये जो ऐसे ही नहीं है, ये पूरा साइंटिफिकली है, ये हमारे स्वास्थ्य के अनुसार ही है ये सब चीजें। तो इस दौरान आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और हमेशा योग प्राणायाम में क्या है, अग्निसार है, कपाल भाती है, और अब ओम ध्वनि है, ये प्राणायाम जरूर ज्यादा करें, क्योंकि इनसे क्या होगा, आपको हार्मोन्स का बैलेंस में रहेंगे हमेशा। शशांक आसन है, शशांक आसन करिए, जिससे आपके हॉर्मोन्स इनबैलेंस जो होते हैं वो समस्या नहीं रहेगी। सिर की मालिश करें। और अक्सर एक और समस्या होती है, उसमें अब आती है हेयर फॉल। हेयर फॉल भी इसलिए होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ज्यादा हॉर्मोन्स अनबैलेंस होता है, तब जाके ही होती है। तो सारी ही चीजें वहां से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को राजयोग मेडिटेशन का तो अभ्यास करते हैं, उसका प्रयोग करना है अपने स्वास्थ्य में भी, कि जब भी हम ध्यान योग में बैठें तो लास्ट के 5 मिनट अपने खुद को दें, खुद को दें कि भगवान से सर्वशक्तिमान की शक्तियां मुझ आत्मा पर गिर रही हैं, और आत्मा से इस पूरे संपूर्ण शरीर में के एक एक सेल तक पहुंचकर पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। तो ऐसे अपने आप को हम हील करें, और साथ में घरेलू इन उपचार हैं, घरेलू चीजें हैं, इनका प्रयोग करें। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए नीता मैन, कोई क्वेश्चन है, कोई आया किसी का?
1: नहीं।
2: एक क्वेश्चन है, वो मेरी भाभी है, उनको रात को बहुत शरीर में खुजली आती है,
0: रात को
2: शरीर के अंदर खुजली आती है, ज्यादा
0: वो
2: परेशान हो।
0: खुजली, हाँ वो खुजली इसलिए आती है, शरीर में गर्मी है, टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है ब्लड में, उस टॉक्सिसिटी की वजह से ही शरीर में खुजली पैदा होती है। तो उस खुजली से बचने के लिए क्या करें, आप नारियल के तेल में कपूर डालकर वो लगाएं, और एलोवेरा, ताजा एलोवेरा तोड़ के एलोवेरा के पत्ते लगाएं, तो उसे लाभ मिलेगा। इसके अलावा फिर उसमें क्या करें, फिटकरी लें, फिटकरी के को पानी में ऐसे एक दो बार घुमा ले, उस पानी से भी अगर नहाते हैं तो स्किन संबंधी इन्फेक्शन से संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। और उपवास जरूर करें, उपवास, उपवास माना एक एक एक आहार पे रहें, एक दिन एक टाइम का भोजन लें, सुबह शाम फल आहार साथ ठंडी चीजें खाएं, अचार है, मिर्च मसाले है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, इन तली भुनी चीजों का, इनका सेवन बंद कर दें, और साथ में इन सब चीजों का सेवन बढ़ा दें। अब एक और समस्या आती है, ये पिंपल्स वगैरह होना, स्किन की होना, ये सब क्यों होते हैं? ये सब आपके इसलिए होते हैं जब शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, या फिर कामुक विचार जब ज्यादा आते हैं, तब उसी का ही परिणाम आपके स्किन पर दिखता है। अब हम ट्रीटमेंट किसका कराते हैं, स्किन का कराते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो आपके पेट में है, उस पेट से ही ये सब चीजें होती हैं। तो उस दौरान आपको जैसे ही आप फल आहार रसार करते हैं तो उससे आपके हॉर्मोन्स भी अच्छे से रहेंगे, और उससे आपके बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी। आज बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, गर्ल्स की जो है फीमेल में हाइट इतनी क्यों नहीं है, उसका कारण ही सबसे बड़ा कारण ये है कि डेयरी प्रोडक्ट है, साथ में और गर्म चीजें हैं, पैक फूड है, जंक फूड है, वो इतना खाते हैं कि आज जो पीरियड स्टार्ट होने की जो उम्र है वो कितनी रह गई है, 9-10 साल में ही पीरियड ये शुरू होने चालू हो गए, और जैसे ही वो शुरू होते हैं तो उससे के बाद तुरंत जो उस तक जितनी हाइट बढ़ गई, उसके बाद फिर वो हाइट बढ़ना बहुत कम मात्रा में, कम उसमें हाइट बढ़ती है। और जैसे ही आप प्राकृतिक आहार जीवन शैली को अपनाते हैं पूरा अच्छे से, यानी देसी भोजन करते हैं, देसी खाना खाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो पीरियड्स का टाइम है वो 13-14 साल की उम्र में शुरू होगा, दौरान हाइट पूरी इतने बढ़ जाती है। तो ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हाइट आपकी नहीं बढ़ती है, ये कारण है। फिर कहते हैं हाइट नहीं बढ़ती, वो बढ़ते का कारण ही है कि आपका उनसे फल आ रस आर वो तो खाते नहीं है। खाते क्यों नहीं है, क्योंकि खुद ही घर में नहीं खाते हैं, तो इसलिए बच्चे भी नहीं खाते हैं, और बच्चे दूसरों को देख देख करके तो वो खाने लग गए हैं। ये सबसे बड़ा एक कोज है हाइट का ना बढ़ना, वो इससे बचना है तो हमें सात्विक जीवन शैली को अपनाना ही होगा। इसके अलावा सूर्य नमस्कार है और बटरफ्लाई है, ये जो चक्की चालन है, जब चक्की चालन क्या है, इसे पेट की सारी मांसपेशियों पे दबाव आ जाता था। पहले चक्की से पीसते थे, है बैठ के पोचा लगाना है आपका, बैठ के खाना खाना है, बैठ के रोटी बनाना है, सब काम बैठ के करते थे जिससे पेड़ों पे दबाव आता था। आज किचन में क्या कैसे काम कर रहे हैं, खड़े होके काम कर रहे हैं, तो उसे पेट पे दबाव ही नहीं आता, तो दबाव नहीं आता है तो आपके पेट के सारे रोग पैदा होते हैं, तो कारण तो यह है। और दूसरा क्या है, अब टॉयलेट में देखो, टॉयलेट का भी यही हाल है, इंग्लिश टॉयलेट बना ली, अब जब उस पे आपके घुटने मुड़ेंगे ही नहीं, तो घुटने मुड़ेंगे नहीं तो आंतों पे दबाव नहीं जाएगा, दबाव नहीं जाएगा तो मलाशय नहीं खुलेगा, और फिर प्रेशर लगाते हो, और प्रेशर लगाते लगाते फिर अंदर की जो 3 बार खाया वो 1 बार भी नहीं निकलता। भाई आप 3 बार खाओ तो 3 बार ही फ्रेश होना चाहिए ना, जात 1 बार भी नहीं होते हैं फ्रेश, कारण ये है मुख्य एक जो रोग का। तो जब आप फ्रेश होंगे ही नहीं सही से, तो अंदर टॉक्सिसिटी रहती है, और वही टॉक्सिसिटी धीरे धीरे फिर शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो रोग का निदान ही है शरीर को शुद्ध करना, स्वस्थ करना, वो स्वस्थ आपका होता है प्राकृतिक चिकित्सा, योग और सत्कर्म, ये तो हो गए शरीर की शुद्धि, और सहज राजयोग क्या करेगा, आपके मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, और मन चंगा तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, दादी हमारी हृदय मोहिनी जी हमेशा गुलजार दादी वो क्या कहते थे, खुशी जैसी खुराक नहीं है, है ना। तो इसलिए दो चीज देखी गई है, माताओं बहनों में तो अक्सर जो है वो बात को दबा के रखती है, तो थायराइड की समस्या ज्यादा होती है, और फिर जो भाई जो मेल है उनमें क्या है, वो गुस्सा ज्यादा करते हैं, हाइपर रहते हैं, तो उससे क्या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है ना। तो ये सब चीजें है। और अब हाँ उसी में मुझे एक याद आया, तो माताओं बहनों में अक्सर जो टेंडेंसी होती है वो लो ब्लड प्रेशर की होती है, तो उसको कैसे हम दूर करें, उसको आप दूर करें भस्त्रिका प्राणायाम करें, तेजी से ये करें, राइट नोस्टल को चलाने लग जाए, ऐसे लेट जाओ तो आपका ब्लड प्रेशर में बड़ा लाभ मिलेगा। गाजर चकुंदर का रस में नमक डाल के ले लो, उससे लाभ मिलेगा। और एक और प्रयोग मैं बताता हूँ, मुनक्का जो किशमिश है, मुनक्का आती है ना, एक किशमिश आती है, उनको पहले 8 से 10 भिगोने लग जाएं, रोज सुबह उठ को खाएं, तो उसे भी ना तो खून की कमी को भी पूर्ति करेगा, और साथ साथ आपके जो लो बीपी की समस्या है उसमें भी बड़ा राहत मिलती है। तो यही आपने रखना है, मैं तो आपसे यही कहता हूं कि आप अपने पूरे परिवार को, घर को, सेंटर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपने बहुत कम मात्रा में पका हुआ यानी कुक फूड का सेवन करना चाहिए, और रॉ फूड को ज्यादा खाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कच्चा ही सच्चा है, क्या है, कच्चा ही सच्चा है, और जितने आप पके हुए भोजन करते हो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती, आपने खा खा के देख लिया है, 3-3 बार खा के पका हुआ भोजन खा के फ्रूट को छोड़ के, उससे उससे क्या हुआ, आपको मोटापा आया है क्योंकि आप वो पचाया नहीं आपने, और उससे आपको पीसीओडी है, और शरीर में जोड़ों के दर्द है, डायबिटीज है, ये सारे ही आपके भोजन से हुए हैं। आपने देखा होगा पहले मैंने मिलेट्स पे भी आपको बताया था कि पहले जो है ये चावल गेहूं इनको खाते ही नहीं थे, इनके अलावा जो देसी जो हमारे अनाज थे जिसमें जो है ज्वार है, रागी है, चौलाई है, सामा है, इन सब का बाजरा है, तो इन सबको खाया जाता, अब इनको तो दूर कर दिया और खाने लगे क्या, गेहूं। और गेहूं से क्या बनाया, गेहूं को प्रोसेस कैसे किया, अब गेहूं को अंकुरित करके खाते हैं तो अच्छा है, गेहूं का ज्वारा अगर खाते हैं तो वो तो सारे ग्रीन ब्लड है समझ लो, एक सारी समस्याओं को कब्ज से लेके कैंसर तक ठीक करता है। लेकिन उसी गेहूं से ही अगर आपने क्या किया, उसी गेहूं से ही आपने आटा पिसवाया, अब आटे को क्या करना है, आटे को मोटा पिसवाना एक तो, और बारीक तो बिल्कुल भी नहीं पिसवाना। अभी पीछे मेरे साथ में हमारे पास एक पेशेंट आए, वो उनको मील है, उसका आटे का मील है, और उन्होंने उसने बताया कि जो आपका थैली का आटा आता है आशीर्वाद को, जो कोई भी कंपनी का है, उस आटे में क्या होता है, बिल्कुल वो जहर है। मैंने कहा कैसे, हमें तो, मुझे तो पता ही था, मैं तो उससे पूछना चाहता था। कहते हैं कि वो आटे में तीन चार चीजें निकाल लेते हैं, चोकर अलग निकालते हैं, उससे मैदा अलग निकालते हैं, सूजी अलग निकालते हैं और आटा अलग निकालते हैं, और वो इतना बारीक होता है कि जैसे ही आप उसकी रोटी बना के खाते हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और साथ में वो आपकी हाथों में चिपक जाता है, और फिर चिपकने के बाद ही सारी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने किचन में अपना आटा पिसवाएं, उसमें उस आटे में क्या बनाएं, ज्वार है मिलाएं, बाजरा मिलाएं, कहीं कहते गर्मी है, गर्मी कुछ नहीं है, ऐसा सब चलेगा, जो मिलाएं ज्वार मिलाएं, बाजरा मिलाएं, थोड़ा मक्का मिलाएं, उसमें थोड़ा रागी मिलाएं, चौलाई मिलाएं और थोड़ा सा गेहूं मिलाएं, सब मिलाकर आप मल्टी ग्रेन का आटा, उसमें फ्लैक्स सीड अलसी भी मिलाएं उसमें, और सब जब मिला के इसको आप अपने घर को खिलाते हैं बना के, तो मैं कहता हूं सारे ही रोग उससे ठीक होंगे। तो एक तो ये करें, दूसरा नमक के जगह हमेशा सेंधा नमक, पिंक साल्ट यूज करें, सेंधा नमक यूज करें, और तीसरा मीठे के जगह आप गुड़ है और हनी है शहद का यूज करें, और शक्कर का यूज करें, देसी खांड का यूज करें, और मैं कहता हूं मीठा तभी खाया जाता है जब आप ज्यादा तली भुनी हुई चीज खाते हैं, उसके बाद खाया जाता है मीठा, खाने का मन करता, या फिर आप मीठे फल खाते ही नहीं हो तब भी आपको मीठा खाने का मन करेगा। अरे जब आप प्रकृति ने इतने अच्छे अच्छे मीठे रसीले फल दिए हैं, उसके बाद आप खाके तो देखो, आप जैसे इन दिनों में शहतूत आ जाएगा, शहतूत इतना मीठा होता है, आपके आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको उनको फल भी आपको खाने को मिलेगा, तो उनको शहतूत को खाएंगे तो आपकी तृप्त हो जाएगी, तो उसके बाद मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। और इनमें इतना बढ़िया फ्रुक्टोज होता है जो कि ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाता है, तो ये सावधानी रखे। तीसरा जो क्या, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ माताओं बहनों को, अक्सर के जो घर में सुबह आटा बना के रख लेते हो, शाम तक फ्रिज में रखे उसको रखे रहते हो, और सुबह भी कई बार बच जाए तो सुबह भी आटा उससे बनाते हो, प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, ये नहीं सुबह छोले राजमा कोई बनाई है शाम तक भी अगले दिन तक भी उसको यूज नहीं करे, बासी सत्यानाश करता है, बासी भोजन बहुत ज्यादा हमें बीमार करता है, इसलिए वो ना करें। एक और टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि आप अपने जो सलाड है, सलाड को बनाइए अच्छे से, ये नहीं है ऐसे ही काट दे, उसको अच्छे से डेकोरेट करिए, उसको रेगुलर सलाद की प्रेजेंटेशन भी अगर आप अच्छी होगी, फ्रूट्स की प्रेजेंटेशन आप अच्छी होगी, आपके बच्चे खाएंगे देख करके, आप खाएंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे, ऐसे रखें। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें साथ में, और अपने लिए क्या करें, बची हुई चीजें, क्वेश्चन है सफेद दाग के बारे में, सावधानी, उपचार, प्लीज एक्सप्लेन। यस, मैं अभी बाद में लेता हूं, पहले इस चीज को पूरा कर लेते हैं। तो उस दौरान क्या है, आपने किचन में ये ध्यान रखना है, कोई चीज बच जाए तो उसको प्लीज ना, मैं बताता हूँ सर, पीछे हम मधुबन से आ रहे थे तो बहने थी जो समर्पित बहने, तो उन्होंने कुछ मिला होगा मधुबन से लिया था, तो कह रहे मैंने वो ये सोचा कि फेंकूंगी मैं, ये करूंगी, मैंने वो खा लिया, और खा उसके खाने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग, उल्टे पे उल्टे, उल्टे पे उल्टे, दस्त पे दस्त, फिर मुझे कहते हैं भाई मेरे को ये हो गया, मैंने कहा खाया क्या था, कह रहे ये खाया था मैंने, तो ये चीजें हैं तो उसको प्लीज खाए नहीं, उसको कम बनाए, है ना, कम मात्रा में उसका प्रयोग करें, और तुरंत बनाए तुरंत ही उसका यूज करें, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। और एक और टिप्स मैं माताओं बहनों को देना चाहता हूं कि घर में जो कुकर है आपका, कुकर कुकर में आप स्टील का रखें, पीतल का रखें, एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एक और टिप्स है आपके लिए कि अब पानी का, जैसे अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में मिट्टी का घड़ा ले आए। हर घर घर में, किचन में आपके मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में 18 तरह के पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर में वही पोषक तत्व हमें मिलेंगे। उससे आपको आयरन भी मिलेगा, उसको सारी चीजें आपको उससे मिनरल्स मिलेंगे उससे आपके। और मिट्टी के लिए प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दें अपने किचन में। कोई प्लास्टिक में ना तो बच्चों को टिफिन दे, या फिर ना फिर कोई भी पानी की बोतल प्लास्टिक की रखे, बिल्कुल भी ना रखे। वो जहर है, वो ही कैंसरस है, इसलिए हमेशा इसका त्याग कर दें। इसके अलावा जो खून की कमी है, वो खून की कमी इसलिए भी है कि आप लोहे की कढ़ाई तो यूज ही नहीं कर रहे। लोहे के कढ़ाई में खाना बनाते हैं, कहेंगे काला पड़ जाएगा। अरे वही आयरन की गोली खाते हो आप, क्यों खाते हो? लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, कितना स्वादिष्ट बनेगा, टेस्टी बनेगा। और कोशिश करो हमेशा खाने जो सब्जी है उसको बॉईल करके बनाओ, उसमें अगर केमिकल भी लगा है तो वो भी आपका उड़ जाएगा। दूसरा, पानी में गर्म गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू डाल के सफल सब्जियों को 10-15 मिनट के लिए भिगो दे। तो ये छोटी छोटी आदतें भी अगर आप फिर से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम, इनसे आप बच जाएंगे। साथ में योग अभ्यास को जरूर करें और सात्विक जीवन शैली को अपनाएं। और अब उनकी मैं बात आता करता हूँ, क्वेरी को लेते हैं कि सफेद दाग जिनको हो जाता है उसमें क्या सावधानी रखें। सफेद दाग का यही कारण है, आपने शरीर में अपने गलत खान पान किया है। गलत खान पान कैसे करते हैं, तो माताओं बहनों को भी मैं कहता हूँ, दूध के साथ कभी भी नमक वाली चीजें ना लें। नमक वाली चीजें कैसे लेते हैं, चाय के साथ नमकीन, चाय में दूध वो नमक। कई दलिया कहते हैं, हम दलिया बनाते हैं जी, दलिया दलिया खाते हैं, दलिये में नमक, ऊपर से दूध डाल दिया, जहर बन गया। कोई बार क्या होता है, पराठा खाया और उसके साथ चाय ले ली, या नाश्ते के तुरंत बाद ही आपने चाय ले ली, से आपको बहुत ज्यादा स्किन डिजीज होती है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, पॉइजन बनता है, एसिडिटी होती है, हाइपर। और इसके अलावा जो दूध दूध ही पीते हैं खाना खाने के बाद, तो ऐसे में स्किन प्रॉब्लम होती है। तो आप चेक कर लीजिए कहीं आप तो ऐसा नहीं करते हैं। और इसके अलावा जिनके शरीर में हमेशा नमक ज्यादा खाते हैं, तो स्किन की प्रॉब्लम उनको देखी गई है, या फिर कोई सराउंडिंग वातावरण ही ऐसा है जिसके केमिकल की वजह से, या कोई ऐसी चीज लगाई है आपने उसका रिएक्शन हुआ, उस वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या करें, सावधानी मुख्य रखें कि आपने अपनी डाइट में एल्कलाइनिटी को बढ़ाना है, और कोई भी गर्म चीज तो खानी ही नहीं है, हमेशा ठंडी चीजें खानी है। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम हो, ठंडी चीजें खानी होती हैं। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो तो गर्म चीजें खानी होती हैं। तो जो भोजन है वो आपके वात पित्त कफ अनुसार होता है, तो ये करें। ब्लड की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए नीम, चिरायता, अच्छा दो चीजें बता देता हूँ, नीम और हल्दी दोनों को बराबर बराबर मिला लें, सुबह सुबह आधे से 1 चम्मच तक रोज पानी के साथ आप पी जाएं, इससे लाभ मिलेगा। एक प्रयोग मैं बता देता हूँ, इसमें काढ़ा जिसको बनाना है, ये जो स्किन की प्रॉब्लम है ये लीवर की वजह से होती है। चाहे उसमें आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, दाग होना है, ये खुजली होना, ये सारी आपकी लीवर की वजह से होती है। तो लीवर को फिट रखने के आयुर्वेद में चार चीजें हैं। चार चीजें कौन सी है, सबसे पहला है आपका भूमि आंवला, मकोए, पुनर्नवा, और आपका एक है आपका चिरायता। चिरायता चिरायता बहुत बढ़िया होता है, चिरायता हमेशा नेपाली चिरायता लें। और एक और चीज है, वो भी मैं अभी याद करके बताता हूँ, कुटकी। कुटकी पांच चीजें हैं आयुर्वेद में, क्या क्या याद कर नोट कर लें, कुटकी और पुनर्नवा मूल, हाँ भूमि आंवला आपका, और इसके साथ में आपका मकोए, और फिर आपका चिरायता। पांच चीजें, पांच चीजें बराबर बराबर मात्रा में ले लें, और उसका 1 से 1.5 चम्मच यानी 5 से 7 ग्राम 400 ml पानी में भिगो दें, और सुबह उसका अच्छे से काढ़ा बनाएं, और काढ़ा बनाने के बाद उसको 100 100 ml या दिन में 2 बार, अगर 2 बार ही पी लें इसको, तो मैं समझता हूँ लीवर संबंधी, पेट संबंधी, स्किन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएंगी। तो ये आप करें। और खाने में खट्टी चीजें खाइए, आंवला है, संतरा है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, इन सब चीजों का सेवन बढ़ाइए ताकि वो टॉक्सिसिटी कम हो जाए, ये प्रयोग करें। और अनुलोम विलोम, ओम ध्वनि है, शीतली प्राणायाम है, ये ज्यादा करें तो इससे आपकी डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। योग को अपनाओ और ऐसे आप कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है?
1: बिल्कुल। चलिए, आज क्वेरी से ज़्यादा हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लोकेश सर। और जाते जाते नीता जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत डॉक्टर साहब के लिए पेश करें ताकि हम लोग पूरा कर जाए।
2: जी
0: कोई भी ऐसा है तो मेरे को फोन करके भी वो बोल सकता है। और दूसरा,
1: बिल्कुल
0: कई
1: बिल्कुल
0: बार क्या उस दिन नहीं मिलती है तो उस दिन हम उसको बाइक कुरियर भेज देते हैं। ठीक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: अच्छा, ओम शांति।

0: ओम शांति।
1: थैंक यू नीता बहन आपका, थैंक यू।
0: चलिए डॉक्टर लोकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और खास करके माता बहनों के लिए आपने बताया, और बड़ा अच्छा लग रहा था सब चीजें। आप बहुत ही सिंपल करके हर चीज को बता रहे थे, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी है, उनका फेसबुक पे भी डॉक्टर लोकेश जी लिखेंगे तो आ जाएगा, तो आप वहां से भी उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनके अलग अलग यूट्यूब चैनल भी हैं जिसमें आप अलग अलग बीमारी के बारे में बात की है, तो वो भी देख सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे आप उनसे जुड़े और नेचुरली अपना ट्रीटमेंट करें, ऐसी हमारी शुभकामना। होप आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो हमें कमेंट करके अपना जो है भावनाएं विचार जरूर शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है, उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं, चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ। करे सफल ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी हाँ ठीक कहा, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से, जो अपने दोस्तों के साथ लाला जी की दुकान के बाहर कबड्डी का खेल खेल रही है।
1: अरे बच्चों, मेरी दुकान के सामने ही जगह मिली थी तुम्हें खेलने के लिए, जाओ कहीं और जाकर खेलो।
2: कहीं और जाके खेलो, लाला जी से मिठाई भी ले लो।
3: क्या पिताजी, खेलने दीजिए ना, अगले हफ्ते साथ वाले गांव की टीम से हमारा कबड्डी का मुकाबला भी है, हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं।
1: गोलू बेटा, अगर ऐसी बात है तो चलो मैदान में चलते हैं, मैं तुम्हें कराऊंगा कबड्डी का अभ्यास।
3: आपको कबड्डी का खेल खेलना आता है पिताजी?
1: खेल खेलना आता है? अरे मुझ जैसा खिलाड़ी देखा नहीं होगा तुमने, आओ।
0: लाला जी सब बच्चों के साथ मैदान में पहुंचे और शुरू हुआ कबड्डी का अभ्यास।
1: राजू, तुम्हें थोड़ा तेज भागना चाहिए था, अब मेरा गोलू तुम्हें दिखाएगा कैसे भागते हैं तेज है? जा गोलू बेटा, दिखा दे अपना कमाल।
3: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
1: गोलू बेटा, कबड्डी का खेल हो।

0: कोई गाना गाने की प्रतियोगिता नहीं हो रही, ठीक से बोलो।
1: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
0: ये बात। हाँ हाँ, शाबाश गोलू, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दाएं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही, अब बाएं, बाएं जा बाएं। अरे गोलू, हाथ मारना। हाँ हाँ, ऐसे, अब भाग भाग भाग वापस, तेज, जल्दी से अपने पाले में आ जा।
2: हो गया ना आउट।
0: बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हारी टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बहुत तेज भागता हो, तभी तुम लोग कबड्डी का मुकाबला जीत सकते हो, वरना।
3: मीना।
1: अरे बिंदिया, आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे।
3: लाला जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते। मीना, सोमा, राजू, गोलू, चलो आप तुम सब एक बार फिर से अभ्यास करो। इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि
2: ए बिंदिया, तुम इन सब के साथ क्यों खड़ी हो गई?
1: लाला जी, बिंदिया भी हमारी टीम में है।
4: हाँ पिताजी, मीना ठीक कह रही है, बिंदिया तो।
0: मुझे सब पता है कौन टीम में होना चाहिए कौन नहीं। बिंदिया, अभी तुम जाओ, हमें कबड्डी का अभ्यास करना है। जब हम चले जाएं, तो तुम अपने टोले के बच्चों के साथ आके यहाँ खेल लेना। चलो अब जाओ भाई।
1: रुको बिंदिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
4: पिताजी, आपने बिंदिया को हमारे साथ खेलने से मना क्यों किया? वो तो इतनी अच्छी खिलाड़ी है। आप चाहो तो राजू से पूछ लो, है ना राजू?
5: जी लाला जी, बिंदिया हमारी टीम की सबसे अच्छी।
0: राजू, गोलू, मेरी बात कान खोल के सुन लो, बिंदिया तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकती, बस।
4: लेकिन क्यों पिताजी?
0: क्योंकि वो दूसरी जात की है।
4: लेकिन पिताजी।
0: लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम लोग बिंदिया के साथ नहीं खेलोगे, मतलब नहीं खेलोगे।
6: और उधर मीना के घर में
7: क्या हुआ मीना बेटी?
4: दादी, वो।
7: क्या हुआ, तू परेशान क्यों लग रही है?
1: लाला जी, आज हम सब बच्चों को कबड्डी का अभ्यास करा रहे थे, लेकिन जब बिंदिया वहाँ आई तो लाला जी ने उसे हमारे साथ खेलने से मना कर दिया।
7: मना कर दिया, वो क्यों?
5: मीना, मीना, लाला जी ने कहा है कि आज के बाद बिंदिया हमारे साथ नहीं खेलेगी, क्योंकि वो दूसरी जात की है।
8: दूसरी जात की है? लाला ने ना समझी भरी बात की है।
1: अब हम क्या करेंगे राजू?
7: तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं सब ठीक कर दूंगी, सुनो मेरी तरकीब।
6: मीना की दादी जी ने मीना और राजू के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो गए। और अगली शाम खेल के मैदान में मीना और उसके बाकी दोस्त कबड्डी का अभ्यास कर रहे थे। लाला जी पास में खड़े होके उन्हें कबड्डी के गुर सिखा रहे थे।
0: अरे भाई तेज भागो सोमा, याद रखना कबड्डी में चुस्ती फुर्ती के साथ साथ तेज भागना भी बहुत जरूरी होता है। कल भी मैंने कहा था कि तुम्हारी टीम में एक तेज भागने वाले खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी है।
3: नमस्ते लाला जी।
0: नमस्ते बिंदिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब हम लोग खेल का अभ्यास कर रहे हों तो यहाँ मत आया करो, चलो जाओ यहाँ से।
6: बिंदिया वहाँ से चुपचाप जाने लगी, तभी मीना ने उससे आंख से कुछ इशारा किया। बिंदिया ने भी धीरे से सर हिला के मीना को जवाब दिया और फिर वो गोलू की तरफ बढ़ी और गोलू की पीठ पर हाथ मार के बोली,
3: मुझे पकड़ के दिखाओ गोलू।
6: बिंदिया तेजी से दौड़ी, गोलू भी उसके पीछे भागा।
0: अरे क्या बिंदिया बिंदिया चिल्ला रहे हो, अभी देखना मेरा गोलू उसे झट से पकड़ लेगा।
2: है? ये बिंदिया तो हवा से तेज भागती है, मेरा गोलू तो बहुत पीछे रह गया।
7: और तेज बिंदिया, शाबाश,
1: दादी आ गई।
7: मीना बेटी, तुम बता रही थी कि लाला जी ने कहा है कि तुम्हारी टीम में एक बहुत तेज भागने वाला खिलाड़ी होना चाहिए, क्यों लाला जी?
0: जी वो कहा तो था।
7: अच्छा, तभी आपने आज बिंदिया को बुलाया है, भाई वाह, समझदारी हो तो आपके जैसी, कैसे सब बच्चों को एक साथ खिला रहे हैं आप, खेलेंगे कूदेंगे तभी तो सेहत बनेगी इनकी, और फिर गांव के सभी बच्चों को एक साथ खेलने का, स्वस्थ रहने का बड़े होने का एक समान अधिकार भी तो है। एक साथ मिलके खेलेंगे तभी तो जात पात ऊंच नीच जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे। सच में लाला जी, आपकी महानता देख के मेरी तो आंखें ही भर आई
2: जी। वो मैं तो
7: देखा मीना, अपनी तारीफ सुन के कैसे शर्मा गए हैं लाला जी, देखो। लाला जी, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आपने किसी बच्चे के प्रति भेदभाव नहीं किया। बच्चों, बजा दो लाला जी के लिए जोरदार तालियां।
6: अच्छा, तो ये थी मीना की दादी जी की तरकीब। भाई वाह, सचमुच लाला जी को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस दिन से किसी भी इंसान में भेदभाव करना बंद कर दिया। और एक हफ्ते बाद कबड्डी के मुकाबले के दिन बिंदिया की तेजी की वजह से मीना की टीम जीत गई।
1: बिंदिया, अगर तुम न होती तो आज हमारी टीम हार जाती।
8: टीम हार जाती, शर्म से मुंह छुपाती।
9: ऐसे कैसे हार जाती अपनी टीम? हमारी बिंदिया जैसा कोई और है क्या देश दौड़?

0: चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता लिखी है।
1: पढ़ो साथ में खाओ साथ में खेलो मिलकर,
2: जात पात बेकार की बातें सब इंसान बराबर।
0: भाई वाह, चार पंक्तियों में कितनी गहरी बात बता गए अपनी मीना और मिट्टू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: भाई वाह, क्या मजेदार गाना था। और अब वक्त हो गया है मीना की क्लास में चलने का, एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़
2: पहेली जोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: ठीक है, तो सुनो। पहली कड़ी, पैर नहीं है मेरे फिर भी मैं चलती हूँ सुबह शाम, जो मैं तुम्हें बताती वो अनमोल है उसका कोई न दाम।
3: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है बिंदिया। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी, गोल घूमते हाथ बताते 24 घंटों के सब फेर, मैं ही तुमको बतलाती हूँ जल्दी या फिर होगी देर।
3: ये पहली तो बहुत मुश्किल है बहन जी, तीसरी कड़ी भी बताइए ना।
1: ठीक है ठीक है। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी, बांधे कोई कलाई पे मुझको तांगे कोई दीवार पे, टिक टिक टिक आवाज में देती सुनो लगा कर कान पे।
4: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है घड़ी।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक मजेदार कहानी, चटपटे गीत और एक अनोखे खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: Hello students, this is Sandeep Trivedi. Kaise hain aap sab? Aaj again I am going to start with the lesson number 10, which is the tribute from the book Golden Rays, Rajasthan Board of Secondary Education, class 10th. Okay, so I am going to continue the lesson जहां से हमने कल छोड़ा था. ओके, तो बाबुली अपने गांव आ चुका है एंड अब पार्टीशन होना है. पार्टीशन इज टू बी गोइंग टेक प्लेस. तो ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड. जो हमारा जो आंगन था वहां पर सारी घरेलू जो वस्तुएं थी वो ढेर बना करके रख दी गई. हीप्ड. दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. और इनको कितने भागों में बांटना था? तीन भागों में. ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस. घर की जितनी भी छोटी वस्तुएं थी, almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his beetles. यहां तक कि जितनी भी वस्तुएं इधर उधर ले जाई जा सकती थी, छोटी से छोटी वस्तुएं, चाहे वो बांस का बना हुआ कोई बक्सा ही क्यों ना हो जिसमें पिताजी अपनी सुपारी रखा करते थे, द एक्स कुल्हाड़ी एंड द ओल्ड रेडियो सेट, और वो रेडियो का सेट पुराना, टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, वो सब भी लाया गया. अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड. जितनी भी सामग्री थी उनकी भी एक पूरी सूची बनाई गई, सूची तैयार की गई साहब. नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं बचा. नाइदर द ढिंकी वुडन राइस क्रशर, चावल पीसने की मशीन, ढिंकी बोलते होंगे जिसको, ब्रैकेट में लिखा भी है वुडन राइस क्रशर, चावल को पीसने वाली लकड़ी की, नोर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, यहां तक कि छोटी छोटी जो पारिवारिक जो मूर्तियां हैं वो सब भी लाई गई. मूर्तियों की कोई पूजा बाद में करे या ना करे, लेकिन बंटवारा जरूर होगा उनका. वाह. आई सॉ माय एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई उठे. ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक पल के लिए रुके. नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, जहां वस्तुओं का ढेर लगा था. एंड अनफैसेंड द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और अपनी जो कलाई की घड़ी थी उसको उन्होंने खोला. एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स, और उस घड़ी को भी बाकी वस्तुओं के साथ उस ढेर में रख दिया. परहैप्स अ टीयर ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक, और शायद जैसे ही उन्होंने घड़ी को रखा एक आंसू उनकी आंखों से गिर गया. विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, और बहुत दुखी मन से, भारी मन से उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी. कुछ देर के लिए वो इधर उधर चले गए. I had often heard him say, मैंने अक्सर उनको ये कहते हुए सुना, that कि father had bought him that wrist watch when he was in his 11th class. जब वो अपनी 11वीं क्लास में थे तब पिताजी ने उन्हें ये घड़ी गिफ्ट के लिए रूप में खरीद करके दी थी. But लेकिन I also remember well, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, इन माई एम ए मेरे जब एमए की मैं पढ़ाई कर रहा था, मास्टर ऑफ आर्ट्स फाइनल ईयर, ही हैड मॉर्गेज्ड दैट वॉच टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू. और मैंने, मुझे याद है कि उन्होंने इस घड़ी को गिरवी रख करके मॉर्गेज्ड, मुझे इंटरव्यू देने दिल्ली जाना था, उसके लिए उन्होंने मुझे रुपए भेजे थे. He had sent me an amount of 150 rupees. उन्होंने 150 रुपए मुझे भेजे थे. I remember clearly. मुझे बहुत अच्छे से याद. No one knows whether the wrist watch would come back to him or not. कोई नहीं जानता कि ये घड़ी वापस उनके हिस्से में आएगी या नहीं आएगी. His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past. उनको देख करके लगता है, उनके इस कार्य को एक संकेत माना जा सकता है कि भूतकाल के जितने भी बंधन थे, जितनी भी बातें थी, उनसे वो मुक्त हो रहे. I was silent. मैं बिल्कुल शांत था. माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैक यार्ड, और मेरी बड़ी भाभी पीछे काम कर रही थी. माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर, और मेरा जो दूसरा भाई था वो अक्सर अपनी पत्नी के कान में कुछ कहता था. एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और फिर वापस हमारे साथ आ जाता था. इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ. ऐसा लग रहा था मानो कसाई किसी पत्थर पर अपने चाकू की धार को तीखा कर रहा है ताकि इस परिवार के टुकड़े टुकड़े किए जा सके. So that the family can be divided into many parts. The elder brother was calm and composed. बड़े भाई हमेशा की तरह बहुत शांत और स्थिर खड़े हुए थे. Like a perfect gentleman. एक बहुत ही पूरी तरह से सज्जन आदमी की तरह. He was looking at the proceedings. और वो दुखी होकर के इस पूरी प्रक्रिया को देख भी रहे थे. एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार उनके बेटे के जनेऊ संस्कार के प्रोग्राम में वो थे, कार्यक्रम में थे. एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और मेरे शादी के दिन भी जिस प्रकार वो बहुत गंभीर, उसी प्रकार आज भी वो थे. इट वॉज द सेम प्रीऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर. ये वही उनका हमेशा वाला बिल्कुल गंभीर व्यवहार. अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करते हुए. वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माई सेकेंड ब्रदर, जब मेरे छोटे दूसरे भाई से वो जब चर्चा करते थे, he had that same calm and composed voice. तो वही शांत आवाज उनकी सुनाई देती थी. I remember the year, मुझे वो वर्ष याद है, father died, जब पिता की मृत्यु हो गई. We had to live under a great financial strain. जब हमारे परिवार के ऊपर बहुत गहरा आर्थिक संकट आ गया था. इट वॉज विंटर, सर्दियां थी. द चिल वॉज एज इट्स हाइट, और सर्दी बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा तेज थी. वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स. ब्लैंकेट मतलब कंबल. हमारे पास कंबल भी बहुत सीमित मात्रा में थे, बहुत ज्यादा नहीं थे. The cold was so biting, और सर्दी तेज ही होती जा रही थी, particularly at midnight, खासकर आधी रात को तो सर्दी इतनी तेज होती थी कि पूछो मत. That one blanket was not enough for one. हर एक के लिए एक कंबल काफी नहीं था. That night, उस रात, I was sleeping in the passage room. जब मैं सो रहा था कमरे में, when I woke up, जब मैं उठा, in the morning, सुबह, I found my elder brother's blanket on me. और मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई ने अपना कंबल मेरे ऊपर डाल दिया. एडेड टू माइन, मेरे कंबल तो, मेरा तो कंबल था ही पहले से, बड़े भाई ने अपना कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया. अर्ली एट डॉन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स, और सुबह सुबह ही वो तो खेतों के लिए निकल गए विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर कोई कंबल भी नहीं, कुछ नहीं. ऐसे ही गांव के लोग मजबूत होते ना. If he had been asked why, अगर उनसे पूछते क्यों, he would have surely said, तो वो निश्चित रूप से यही कहते in his usual manner, अपने हमेशा के तरीके में, that he did not feel the cold, कि उन्हें सर्दी नहीं लगती है. Now, आज I have a comfortable income, आज मेरी सैलरी, मेरी जो तनख्वाह है, मेरा जो पगार है वो अच्छा है. Yet it had never occurred to me, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी मैंने ये सोचा नहीं अपनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद to think of buying any warm clothes for my elder brother, कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीद करके उन्हें दो उपहार में. He is still satisfied, वो आज भी संतुष्ट है. And happy with that old tattered blanket, उसी पुराने फटे हुए कंबल के साथ वो तो बहुत खुश है. That he had covered me with once, जिस कंबल से एक बार उन्होंने मुझे ढक दिया था और सर्दी से बचाया था. The same blanket was there before me, और वही कंबल मेरी आंखों के सामने आज रखा हुआ था with all the other things, बाकी सब वस्तुओं के साथ. मैं उस भाई पर सोचो क्या बीत रही होगी. I shivered with the cold, और मुझे अचानक कपकपी छूट गई, क्योंकि मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा था, मैं सब ये देख नहीं पा रहा था. And my own ingratitude, और मैं अपने स्वयं के बारे में भी सोच रहा था कि मैं कैसा व्यक्ति निकला कि मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सका. ये सब बातें मुझे आज ये कंबल देख करके याद आ रही थी. द प्रोसेस ऑफ डिविजन वॉज फाइनली ओवर, बंटवारे का कार्य आखिरकार पूरा हुआ. वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो कुछ दूसरे भाई ने मांगा था, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद अ स्माइल, खुशी खुशी मेरे बड़े भाई ने उसको सब दे दिया जो उसने मांगा. माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज्ड टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी, मेरे दूसरे भाई ने मुझे ये प्रस्ताव रखा कि जो जमीन मुझे दी गई है वो खरीदना चाहता है. एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज, और उसने 18,000 रुपये मुझे कहा कि वो दे सकता है एज द प्राइस, कीमत के रूप में. In the evening, शाम को, my elder brother took me along with him, मेरे बड़े भाई मुझे अपने साथ ले गए, to show me the paddy fields that were to be mine, वो खेत मुझे दिखाने के लिए जो मुझे दिए गए थे बंटवारे में. I quietly, मैं बहुत शांति से followed him, उनके पीछे चला. Past simple, followed. We moved from boundary to boundary, हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर गए. उन्होंने हर जगह मुझे घूम घूम कर दिखाई. Everywhere, हर जगह I could feel the imprints of his feet. हर जगह मैं उनके पैरों के निशान महसूस कर सकता था जिस मेहनत से उन्होंने इन खेतों की देखभाल की थी. आज his palm and his fingers, उनकी हथेलियां, उनकी उंगलियां on the bosom of the paddy fields sparkled the pearls of my elder brother's sweat. इन धान के खेतों की हर एक बाली पर मेरे बड़े भाई के पसीने की बूंदें मोती की तरह चमचमा रही थी, चमक रही थी. स्वैट पसीना, देखिए स्वीट मिठाई होता है SWWT और SWEAT स्वैट पसीना. ही वाज शोइंग मी द फील्ड्स एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेंबर्स. वो मुझे अपने खेत इस प्रकार दिखा रहे थे जैसे कोई पिता किसी अजनबी को अपने परिवार से मिलवाता है. इन द मॉर्निंग, सुबह, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर जाना था. एंड आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, और मुझमें इतना साहस नहीं था, मुझमें इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं मेरे बड़े भाई का सामना करूं, मैं मेरे बड़े भाई से मिलूं. बिफोर लीविंग, जाने से पहले, फॉर द बस स्टॉप जाने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ. मेरी बड़ी भाभी के हाथ में मैंने वो पर्ची दे दी जो पर्ची मुझे दी गई थी, जिसमें मेरे सामान की लिस्ट थी, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, मेरे हिस्से के बारे में जिसमें पूरी जानकारी थी, राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड, और उसके जो खाली हिस्सा था पीछे वाला, वहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया ऑफ दैट स्लिप. उस पर्ची के पीछे मैंने कुछ लिख भी दिया. आई हैड आस्क्ड हर डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर. मैंने मेरी भाभी से कहा कि ये पत्र मेरे बड़े भैया को दे दीजिएगा. एंड स्टेल्थिली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और चुपचाप मैं अपने घर से बाहर आ गया. आई हैड रिटन, मैंने लिखा, ब्रदर, मेरे बड़े भाई, व्हाट शेल आई डू विद द लैंड, मैं इस जमीन का क्या करूंगा. यू आर माई लैंड, आप ही मेरे लिए जमीन है. फ्रॉम वेयर, जहां से आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जहां पे मैंने अपने जीवन की हर फसल को उगते देखा है, हर फसल को उगाया है, वही मेरी जमीन आप हैं. मेरे लिए इतना ही काफी है. आई नीड नथिंग सेव फॉर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. एक्सेप्ट दिस, इसको स्वीकार कीजिए प्लीज, कृपा. इफ यू डिनाई, अगर आप मना करेंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा, बाबूली. इस प्रकार ये द लेसन, द ट्रिब्यूट पूरा हुआ. बहुत ही अच्छी स्टोरी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो कुछ लास्ट में वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं. रिकेटी, इंग्लिश में टू इंग्लिश, लूजली बिल्ट, यानी मतलब ठीक ठाक स्थिति में जो नहीं हो. मोरीबंड, कमिंग टू एन एंड, समाप्त, डाइंग, मरते हुए, मरना. कॉबवेब्स, जो स्पाइडर वेब्स, मकड़ी का जाला. स्ट्रैंड्स, थ्रेड्स, धागे, पीसेस, टुकड़े. कॉम्प्लिसेंसी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्म संतुष्टि. स्केंटी, स्मॉल इन क्वांटिटी, यानी छोटी सी संख्या में. फ्यूड, अ बिटर क्वेरल, झगड़ा, डिस्प्यूट, विवाद. क्रॉप्ड अप, ग्रीव, हुआ. इंडिस्पेंसेबल, वेरी अर्जेंट. इंडिस्पेंसेबल का मतलब है कि अति आवश्यक, आना ही है, बहुत जरूरी है. एडमेंट, फर्म, दृढ़, नॉट मूविंग, जिसने तय कर लिया है, ड्रेंच्ड, मेड वेट यानी गीला, हॉन्टेड, केप्ट इन ग्रिप, अपने मुट्ठियों में जकड़ लेना, रिलेंटेसली, मर्सीलेसली, निर्दयता से, yawning, opening the mouth to inhale air, showing boredom, जबकि लेते हुए humming, giving out a low sound, धीमे धीमे बोलना, chunks, pieces, टुकड़े, pound, beat, fast throb, गति, pathetic, sad, निराश, spontaneity, sharpness, तीक्ष्णता, browsed, got hurt, चोट लगना, screaming, चिल्लाना, escort, go with someone, किसी के साथ जाना, a stroll, walk in a slow and relaxed way, धीरे धीरे चल करके जाना, coagulated, became very thick, frozen, abominable, very bad, unpleasant, yani kharab, vicinity, the nearby place, aaspaas ka hissa, ladles, spoons with long handles, chamach, bade bade chamche, tattered, torn, fata hua, aur last hai, sparkled, shown, dikhta hua. So, this is the end of the lesson number 10. Goodbye.
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगी तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: बॉयज बेस्ट होते हैं, गर्ल्स बेस्ट होती हैं। बॉयज बेस्ट होते हैं,
2: गर्ल्स बेस्ट होती हैं।
1: बॉयज बेस्ट होते हैं,
3: गर्ल्स ज्यादा बेस्ट होती हैं बॉयज से।
1: बॉयज बेस्ट होते हैं।
4: अरे अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है?
2: दीदी
3: दीदी गर्ल्स बेस्ट होती हैं, बताओ इसको।
1: दीदी बॉयज बेस्ट होते हैं ना।
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आपको लगता है गर्ल्स बेस्ट होती है और आपको लगता है बॉयज बेस्ट होते हैं। अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं, इस पे बातचीत करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं।
1: हाँ,
4: है ना, तो पता चल जाएगा फिर। तो बच्चों की दुनिया में आज हम बात करेंगे गर्ल्स और बॉयज के बारे में। तो आपको क्यों लगता है कि गर्ल्स बेस्ट होती हैं?
2: क्योंकि दीदी गर्ल्स घर का भी काम कर लेती हैं, बाहर का भी काम कर सकती हैं, और आज के टाइम पे गर्ल्स कुछ भी कर सकती हैं, एरोप्लेन उड़ाने से लेके शिप चलाने तक।
4: ये तो सही बात कह रहे हो आप। आपको क्यों लगता है बॉयज बेस्ट होते हैं?
1: दीदी क्योंकि गर्ल्स कोई काम नहीं करते हैं, मतलब आजकल की गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब कई कई पढ़ाई करते हैं तो फिर जाके बनते हैं, ये तो कभी सफाई भी नहीं करते, बस टीवी के सामने बैठे रहते हैं।
4: ऐसा?
1: हाँ
2: दीदी, ये तो खुद खेलने चल जाते हैं, इनको क्या पता मम्मी के साथ काम कौन कराते, मम्मी के साथ तो काम लड़कियां ही कराती हैं।
4: लड़के नहीं कराते मम्मी के साथ काम?
1: दीदी मैं करवाता हूँ।
2: कई कई कराते हैं, लगभग तो नहीं कराते,
4: ज्यादातर नहीं कराते।
2: नहीं कराते?
4: पक्का?
2: पक्का।
4: ओके, आपको शिक्षा क्या लगता है?
3: दीदी लड़के काम नहीं करवाते, मेरा भाई भी नहीं करवाता, घर में काम तो बस मैं करती हूँ और मेरी दीदी करती हैं। भाई तो खाना खाने बैठे, रोटी लेके आओ मेरे लिए, वो बस है ना ऑर्डर देता है और कभी खुद तो काम नहीं करता।
4: अच्छा, कुछ हाँ। रोटी लेके भी नहीं आता? आप लोग
3: पानी भी नहीं लेके आता खुद से?
4: अपने लिए भी नहीं?
3: नहीं।
4: तो भी कौन लेके आता है उसके लिए पानी?
3: मम्मी बोलती है लेके आ जाओ उसके लिए, अब तो वो खाने बैठ गया है, फिर उठ के जाएगा क्या, फिर हमको जबरदस्ती जानी पड़ता है गुस्से में।
4: तो आप खाने बैठते हो तो वो नहीं लेके आता?
3: नहीं लेके आता, भग जाता है, मैं तो खेलने जा रहा हूँ।
1: दीदी मैं लेके आता हूँ जब ये बैठी होती है।
2: दीदी मेरा भाई भी ऐसा है, अभी तो मेरी नींद भी नहीं खुली थी सुबह, मतलब जो पैर कटे ना, अभी नींद नहीं खुली थी, मैं तो अभी घूम रही थी, ये मतलब राजा महाराजाओं की तरह मम्मी एक गिलास पानी ला के देना, मम्मी मेरे को बोले शिवांशी एक गिलास पानी दियो, मैं कहा मैं नहीं दे रही इसको, कह तो खड़ा होकर लाया, मेरी आंखें तो खुल नहीं रही है।
4: हाँ।
2: मतलब पूरा शहजादों की तरह रोटी भी इसको, हाँ शिवांशी रोटी दियो, अगर मान लो गलती से नहीं सुनी फिर ताना मार के बोलते है कि हाँ मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, रोटी मांगे रोटी कोई दे नहीं रहा, एक बार नहीं सुना तो आप इसको खुद निकाल ले, फिर मैं भी खाना खा रही हूँ ये भी खाना खा रहा है, पानी लेके, मैं खाना नहीं खा रही, मेरे को ही जाना पड़ता है पानी लेने।
4: आप खाना खा रहे होते तब भी जाना पड़ता है और
2: नहीं खा रही थी तो भी जाना पड़ता है। कभी कभी मुहूर्त आता है जब ये पानी लेके आता है,
4: कभी कभी मतलब साल में एक आध बार या महीने में एक दो बार?
2: एक आध बार।
1: झूठ बोल रही है बिल्कुल,
2: सिर्फ कल ही पानी पिला।
1: दीदी काचा काचा झूठ बोल रही है, अभी इसने मतलब बनाया है ये।
4: क्या आप क्या करते हो? अच्छा फिर आप बताओ।
1: दीदी मैं पानी लेके आता हूँ, अगर ये बैठी होती है मैं बोलता हूँ खुद ले आ, ये बोलती है ले आना जाके, फिर मैं लेके आता हूँ। दीदी अगर ये रोटी के नहीं सुनती ना, मैं कोई ताने नहीं मारता, मैं खुद ले लेता हूँ, मैं किसी और को बोल देता या फिर खुद ले लेता हूँ।
4: खुद जाके ले लेते हो आप रोटी? बस एक बार बोलते हो?

0: दो बार नहीं
1: दीदी, दादी या दादू में से कोई पानी मांग रहा था ना, राघव एक गिलास पानी रखे दियो, ये वापस ऑर्डर पे बोलता है शिवांशी दो गिलास पानी दियो, मतलब पास टू पास कर रहा है, खुद खड़ा होकर लेके नहीं आ सकता, फिर भी खा किचन में आके मेरे को बोल के जाएगा शिवांशी दो गिलास पानी दे जा, खुद लेके नहीं जाता।
2: ओके
1: शिक्षा आप कुछ कह रहे हैं।
3: दीदी ऐसे ही करता है मेरा भाई भी, और पता है खाना खाने अकेले नहीं बैठा है, क्योंकि वो अकेले बैठेगा ना खाना खाने तो मम्मी बोलेगी तुम्हारी गलती है तुम पानी लेके नहीं बैठे, तो वो अकेले नहीं खाता, जब पापा आते हैं तब खाने बैठते हैं, पापा के आगे दीदी कुछ नहीं कहेंगी, पानी लेके ही आना पड़ेगा उनको, वो बोलता है पापा के लिए पानी आता है, फिर ऐसे हंसता है मेरे लिए पानी कहाँ है, फिर पापा बोलते हैं उसके लिए भी लेके, अब वो खाने बैठ गया है तो खुद थोड़ी जाएगा, वो बेचारा खा रहा है।
2: अच्छा जब मम्मी खाने बैठती है तब?
3: मम्मी खाने बैठती है तब भी मैं ही पानी देती हूँ, और गन्नू से पानी मंगाना होता है ना उससे, तो बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा पानी लेके आ जा, अब क्योंकि मैं गुस्सा होती हूँ उससे नहीं करवाते आप काम, मुझसे ही काम करवाते हो सारे, तो बड़ी मुश्किल में पानी लेके आएगा वो भी।
2: अच्छा उसको तो प्यार से बोलती है मम्मी।
3: हाँ तब कि देखो ना मैं चॉकलेट खिलाऊंगी पानी लेके आ।
2: और आपको कैसे बोलते?
3: मैं तो खुद ही लाके दे देती हूँ मम्मी खाना खाने बैठते हैं तब,
2: क्योंकि आपको लगता है ना पानी होना चाहिए।
3: हाँ
1: दीदी ये भी कई कई बार ऐसे करते हैं, जब सारे रोटी खा रहे होते तब ये नहीं खाएगा, बाद में जब सोने का टाइम होगा ना तब इसको भूख लगेगी, फिर काम मेरे को करना पड़ता है, सारा सामान जो मैं अभी रख के आई थी वो सारा सामान वापस उठा के आती हूँ, रोटी ले ले सब्जी ले ले, फिर टीवी चला के बैठेगा एक एक बाइट आराम आराम से खाएगा, मेरे को सोने जाना होगा फिर इतनी आराम से खाएगा, बस पूछो मत दी, फिर अगर सामान नहीं रखा ना फिर बाद में मम्मी डांटेंगे कि सब्जी मच्छर चला जाएगा ये चले, तो कुछ रखता भी नहीं है फिर ये।
2: अच्छा एक बार बताओ लास्ट में खाना खाते
3: हो? दीदी मैं रखता हूँ, ये झूठ बोल रही है, जब ये सो जाती है मैं खुद रख के आता हूँ किचन में।
2: कभी कभी आप रखते हो, कभी कभी आप रखते हो, ऐसा तो नहीं होता?
3: नहीं दीदी मैं जब ये सो जाती है तो मैं ही रखता हूँ।
1: दीदी कई बार ज्यादा नींद आ रही होती है तो सो जाती हूँ, फिर मेरे से इतना बैठा नहीं जाता, मैं रख दियो फिर।
2: हाँ तो रख देते हो ना?
1: उस दिन इसका मूड अच्छा होता फिर रख देता, नहीं तो मूड अच्छा नहीं होता ना लड़ाई हुई होती है।
2: हाँ
1: रख दियो राघव, मैं क्यों रखूँ तू रख के जा, फिर उसी बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है हमारी। कल हम कैरम खेल रहे थे, बिना बात की लड़ाई हो रही थी, ये बारी बार स्ट्राइकर से ना गीटियां सारी उछाल रहा था, मैं करो को क्या है बारी बार गीटियां उछाल रहा है,
3: शॉट इतना बढ़िया लग रहा था, मेरी क्या गलती है।
1: फिर जब हार जाता है ना फिर ऐसे करता है हाँ चीटिंग करके जीतते हैं लोग।
2: अच्छा मुझे ये बताओ कौन से काम ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि लड़कियों को करने चाहिए, और कौन से काम ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये काम लड़कों को करने चाहिए?
1: दीदी ऐसा कोई काम नहीं है जैसे लड़कियां कर सके लड़के कर सके।
2: ओके शिक्षा आपको ये लगता है?
3: दी सारे काम ही कर सकते हैं, खाना वगैरह भी बॉयज बना सकते हैं, गर्ल्स भी बना सकते हैं, तो कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हैं।
2: राघव आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन से काम है जो लड़कों को करने चाहिए, कौन से काम है जो लड़कियों को करने चाहिए?
3: सारे काम करने चाहिए।
2: सारे काम करने चाहिए? कोई ऐसा काम तो नहीं है जो लगता है कि नहीं ये लड़कियों का ही काम होता है, या ये वाला काम तो लड़कों का ही होता है?
3: हाँ दीदी बस एक काम।
2: कौन सा?
3: फ्रॉक डालने।
2: फ्रॉक डालना। ओके
3: दीदी वो हम थोड़ी डालेंगे, तो
2: वो हम थोड़ी पहनेंगे,
3: या जींस विंस तो डाल सकते हैं, हम फ्रॉक थोड़ी डालेंगे।
2: पहन सकते हो? नहीं पहन सकते तो वो कपड़े बस नहीं पहन सकते, बाकी सब तो कॉमन है।
3: हाँ
2: हाँ ये भी ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ शिक्षा।
3: दीदी एक बात बताओ, मतलब ये कपड़े ये टी शर्ट वगैरह इन्हें ही पहनने का हक है, हम नहीं पहन सकते? अगर टी शर्ट हम पहन सकते हैं, ये भी फ्रॉक पहन ले इनका मन है तो, हमारा मन है टी शर्ट पहनने का, हम पहनते हैं, और इनको पहनना इतना दिक्कत है, ये भी फ्रॉक पहने लहंगा पहने ये भी सब पहने,
2: मतलब जिसको जो मन हो पहन।
3: हाँ पहन सकता है ना।
1: दीदी हमने कब मना करा है आप लहंगा ना डालो फ्रॉक ना डालो, डाल सकते हैं।
2: लेकिन लड़कियां टी शर्ट पहनती है तब तो कोई नहीं हंसता, और लड़के पहनेंगे तब तो लोग फिर हंसेंगे, फिर लड़के कैसे पहनेंगे?
1: खुद की मर्जी है।
2: नहीं हंसोगे आप लोग फिर?
1: हंसेंगे तो सही दीदी,
2: हंसेंगे ना। अच्छा ठीक है, जीन्स टी शर्ट तो पहन सकते हैं ना, लड़कियां भी पहन सकती हैं। सही बात है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं लगता आपको जो लड़कों के लिए हो, या जैसे बाहर जाके कुछ सामान लेके आना है तो वो काम किसका है?
1: दोनों ही कर सकते हैं।
3: हाँ
2: दोनों का है।
3: हाँ दीदी।
2: राघव?
3: हाँ दीदी दोनों का है।
2: दोनों का है? ऐसा तो नहीं था अभी तुमने घर के काम करा दिए मम्मी के साथ तो मैं बाहर का ले आता हूँ?
3: दीदी कुछ ज्यादा हाँ? वैसा सामान है जैसे कि कुछ ज्यादा सामान लेके आना है जो गाड़ी पे लेके आ सकते हैं, तो वो काम तो लड़के ही कर देते हैं।
2: थोड़ा भारी है सामान तो, हाँ, ज्यादा सामान,
3: क्योंकि हम तो बाजार में इतना सारा सामान लेके नहीं आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा हम इतना सारा बोरी वगैरह रख के लेके आ रहे हैं सामान में।
1: ऐसे थोड़ी होता है, सामान तो उठाने जा सकते, अगर गाड़ी चलानी आती तो खुद भी जा सकते हैं,
2: गाड़ी चलानी आती है जा सकते हैं।
3: दीदी अगर ज्यादा सामान हो तो शिवांशी मेरे साथ जा सकती है।
2: वैसे घर का सामान लेके कौन आता है आप में से?
3: डैडी, दीदी, मैं और मेरे पापा।
2: अच्छा, और जो छोटा मोटा होता है कुछ ऐसा मसाला ले आओ,
1: वो तो मैं ही ले आती हूँ।
3: मैं भी ले आता हूँ, मेरा भाई ला देता है, अगर मेरा मन नहीं होता ना तो बोल देती हूँ तुम ला दो प्लीज प्लीज, उससे बोल दे तेरे साथ खेलूंगी, तेरे को है ना बाद में मैं ना कुछ खिलाऊंगी, ऐसे मेरे को जाना नहीं होता तब बड़ी मुश्किल में उसको भेजती हूँ,
2: मना मना के भेजती
1: हूँ, रिश्वत देनी पड़ती है,
2: रिश्वत देनी पड़ती
3: है, रिश्वत में जाता है। दीदी शिवांशी है ना बोलती है बहुत ज्यादा भारी सामान है मेरे साथ बाजार चलेगा, मैंने बोला चल पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ना बस इतना छोटा सा चीनी का पैकेट लाना होता है।
1: दीदी भारी तो मैं कुछ भी उठा लूंगी, कुछ सिलेंडर उठवा लो मैं वो भी उठा लूंगी, पर ना अकेले जाने में ऐसा लगता है कि 200 किलोमीटर जाना है, ऐसे कोई होता है ना तो बातें करते करते जाते हैं, तो टाइम का पता नहीं लगता, फिर
2: साथ में मजा आता है।
3: अगली बार हम तो 17 रोबोट भेज देंगे, फिर हरियाणा पैदल जाइयो।
2: अच्छा ये बताओ कि कौन सा काम अच्छा लगता है करना, ये पूछा जाए तो, घर का काम किचन का काम करना अच्छा लगता है कि बाहर का काम करना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है?
1: दोनों ही
3: दीदी, वैसे तो दोनों ही काम अच्छे हैं, घर का भी कर सकते हैं बाहर का भी कर सकते हैं। दीदी मुझे बस दो ही काम अच्छे लगते हैं।
2: क्या?
3: जब गर्मी हो तो अंदर एसी में आराम से लेट जाओ, और जब ठंड हो तो बाहर उधर बिछा के धूप में लेट जाओ,
2: ये सबसे बेस्ट काम है ना?
3: हाँ ये लड़कियां भी करती हैं।
1: पर दीदी काम करने के बाद करते हैं घर का?
2: हाँ पहले थोड़ा काम तो करना पड़ता है भाई, घर का काम तो सबका ही है ना।
3: दीदी अगर कभी गर्म पानी नहीं आ रहा होता ठंडे में तो हमको नहाना पड़ता है ठंडे ठंडे पानी से,
2: और ठंड लगती है ना। अच्छा ये बताओ खाना बनाना आप में से किस किस को आता है, या कौन कौन सीखना चाहता है कि बड़े होके सीखेंगे बनाएंगे, ऐसा मन करता है?
3: हाँ दीदी मन तो करता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें है ना परफेक्ट नहीं बनती, और फिर है ना वही मेरी दीदी बना दे तो लगता है अरे यार मुझे नहीं आता, मुझे भी सीखना है, मन होता है कभी कभी सीखने का
2: ना।
3: हाँ
1: दीदी आता तो है, मतलब देख के तो बना ही लूंगी।
2: राघव आपको लगता है घर का खाना बनाना सीखोगे या नहीं?
3: दीदी बड़े हो गए सीख लूंगा।
2: कितने बड़े हो गए सीखोगे, अभी कौन सी क्लास में आप?
3: मैं 6th क्लास में हूँ।
2: हाँ तो कितने बड़े हो जाओगे, कौन सी क्लास में सीखोगे आप खाना बनाना?
3: दीदी खाना बनाना तो आता है, बस मैगी बनाओ और खा लो।
2: सीखना है कि सीखना भी नहीं है?
3: बाद में सीख लूंगा।
2: बाद में सीख लोगे, फिर शिवांशी को बना के खिलाओगे?
3: खिला दूंगा, पर शिवांशी को खुद नहीं बना लाता दीदी, वो ऐसे ऐसे बेलन चलाती है और बीच में ही होल हो जाता है रोटी के, रोटी ऐसे हार्ट शेप में बनती है और साइड में ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हुआ।
1: जिस टाइम फर्स्ट टाइम रोटी बनाई थी ना तब ऐसा हुआ था, अब इतनी परफेक्ट गोल रोटी बनती है धरती की तरह।
2: अरे वाह
3: दीदी, गोल नहीं, धरती स्पेसिफिक होती है ठीक है ना, गोल स्पेसिफिक बोल दे उसको।
2: ओके तो रोटी बनाना भी सबको आना चाहिए मतलब ना
3: दीदी। बॉयज वर्सेस गर्ल्स की बात हो रही थी पर हम खाने बनाने की बात क्यों कर रहे
1: हैं? अरे नहीं दीदी आप तो भाई बहन की बातें हो रही है।
2: अच्छा ठीक है,
3: तो बहन तो
2: अच्छा, तो बताओ आप बताओ बॉयज में मतलब आपकी जिंदगी में जो भी बॉयज हैं वो राघव में, आपके पापा की भी बात कर सकते हो है ना, और कजन्स की भी बात कर सकते हो, फ्रेंड्स की बात कर सकते हो, क्या अच्छा लगता है उनमें? नहीं अच्छा अच्छा पूछ रहे हैं अभी।
1: दीदी खुद के भाई बहन खुद के मतलब बहनों की इज्जत मतलब दीदी नहीं बोलते, पर जो कज़न भाई होते हैं ना वो दीदी बोलते, तब इतनी खुशी मिलती है, हाँ किसी ने मेरे को दीदी बोला, और अच्छा बिहेवियर करते हैं,
2: रिस्पेक्ट करते हैं।
1: हाँ
2: तो ओके
3: दीदी खुद के भाई बहन छोड़ के ना अगर कज़न्स आ जाते हैं तो इतने अच्छे से बिहेव करते हैं ना, तो लगता है काश यही मेरा भाई होता। हाँ यही मेरे साथ रह रहा होता। मैंने तो एक बार कहा भी था, मेरी दीदी कहती है मेरी मामी का जो छोटा वाला लड़का है ना, मामी इसको एक्सचेंज कर लो, मेरा भाई आप ले लो ये मुझे दे दो ये वाला भाई। क्योंकि वो अच्छे से रहता है, और हमारा भाई अगर है ना हम सब लेटे हो कोई भी काम हो उस पर दूध फैल गया, खुद तो साफ नहीं कर सकता, बस भग जाएगा वहां से, मम्मी मम्मी खाना खा रही होंगी या कुछ काम कर रही हो तो हमें ही साफ करना पड़ता है, वो तो भग जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद जब मम्मी अच्छे मूड में होती है तब आता है घर में बढ़िया आराम से, और आता है पापा के सामने, जैसे उसे पता चलता है कि उसकी शिकायत पापा से हो गई है, फिर तो वो छुप जाता है, आता ही नहीं है जब तक मूड उसे अच्छा ना दिखे पापा मम्मी का,
2: तब तो छुपा रहता है।
3: हाँ वो छुपा रहता है।
2: ओके
3: और अगर पापा घर पे नहीं आए हो तो सो जाएगा कैसे भी करके, अगर सो नहीं रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, फिर भी सो जाएगा कि डांट ना पड़े मुझ पे।
2: उठा के तो नहीं डांटेंगे वापस नींद से जगा कर, उसने तरीका ढूंढ लिया है।
3: बच जाता है हर बार गलती करके।
2: और राघव आपको क्या अच्छा लगता है मम्मी में, आपकी सिस्टर में, सबसे अच्छा क्या बात लगती है?
0: दीदी मुझे बस एक ही बात अच्छी लगती है कि शिवांशी है ना, जब भी है ना मतलब ये मेरे और इसके बीच में लड़ाई और कोई बीच में आके बोलने लगे हे तू तो इतना घंटिया है वो है, तो ये उसको मारने चली जाएगी, क्या है वो मेरा भाई है बस मैं उसको डांट सकती हूँ ठीक है ना, फिर हम दोनों साथ में ऐसे घर चले जाएंगे।
2: घर जाके वापिस लड़ाई करे।
0: हाँ
2: लेकिन सपोर्ट करती है ना, कितना एकदम बड़ी दीदी है ना आप, तो शिवांशी आपको बहुत सपोर्ट करती है ना।
0: दीदी मैं भी करता हूँ।
2: आप उसकी तारीफ करते हो नहीं करते? अच्छा उसने कुछ अच्छा बनाया हो तो कुछ अच्छा कर रही होती है आपके लिए तो उसको फिर थैंक यू बोलते हो, अच्छा कुछ बोलते?
0: दीदी अगर हम दोनों की लड़ाई हुई होती है ना तो हम बोलते हैं कि ना अगर ये अच्छी भी लग रही होगी तो मैं बोलूंगा, नहीं तो अच्छी नहीं लग रही बस रहने दे।
2: अगर लड़ाई हुई होती है तो?
0: हाँ।
2: वरना बोलते हो अच्छी लग रही हो?
0: हाँ कभी कभी बोल देता हूँ।
1: दीदी काम कराने के लिए आता है, जब भी कोई इसका प्रोजेक्ट होगा ना बना दे, वो अगर मैं नहीं बनाऊंगा ना तो खुद बनाने बैठ जाएगा, चाहे गंदा सा बनाए फिर बना लेगा, फिर उसके बाद मैं खुद ही जाना पड़ेगा, हाँ दे इधर मैं बनाती हूँ।
2: अच्छा ये तो बताया नहीं आपने उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको
1: इसमें? कई कई बार जब मूड अच्छा होता है तब थोड़ी कम लड़ाई करता है, बस यही अच्छा लगता है।
2: और कुछ अच्छा नहीं लगता? और कुछ अच्छा तो
1: दीदी अच्छा बहुत सोचना पड़ेगा तब जाके एक और पॉइंट मिलेगा।
2: सोच के बताओ क्या अच्छा लगता है, अभी सामने बैठा है आपके राघव, आपके भाई में क्या अच्छी बात लगती है, आप भी सोच के बताओ।
3: दीदी मेरा भाई ना मुझसे कितनी भी लड़ाई करे, अगर कोई दूसरा मुझसे लड़ाई करने आ जाए और किसी ने बुरा बोल दिया तो सामने वाले से भिड़ जाएगा, बिल्कुल लड़ जाएगा, तुमने मेरी दीदी से ऐसा कैसे कह दिया। हम लोग आपस में कितना भी लड़ते रहे पर है ना कोई और दूसरा अगर उसने मेरे भाई को कुछ किया तो मैं उसको है ना लड़ने पहुंच जाती हूँ, अगर किसी ने मुझसे किया वो बड़ा हो मेरी क्लास का हो उससे लड़ने पहुंच जाएगा, आपने मेरी दीदी से ऐसा कहा था।
2: अच्छा
3: हाँ वो बोला
2: छोटा है
3: हाँ लड़ नहीं सकता फिर भी उनसे है ना बहस करने चला जाता है।
1: दीदी याद आ गया खबरी है,
2: तो आपको अच्छा क्या लगता है इसमें?
1: यही तो बात अच्छी लगती है ना, किसी के बारे में बात निकलवानी हो इसके पास चल रहा है निकाल देगा किसी को।
2: अच्छा
1: कहीं से भी मतलब थोड़ी बहुत
2: नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: तो दीदी इतना अच्छा बोला है, सीक्रेट एजेंट है मेरा।
0: दीदी अभी बेइज्जती कर रही है घर जाके ना, ये मन मन में बोलेगी
2: मतलब बाद में
0: अंदर सोचती रहती है। फिर
1: दीदी इतनी अच्छी तारीफ कर दी, मेरा सीक्रेट एजेंट बना लिया, पर्सनल पीए बना लिया मैंने,
2: मतलब सब कुछ आपको बताता है वो आके।
1: हाँ
2: सब कुछ शेयर करता है।
1: हाँ अगर इसके पास कोई टेंशन हो तो वो बता देता है, तो उसको सॉल्यूशन दे देती हूँ।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: दीदी मैं भी दे देता उसको
1: कई कई बार, इसने मेरे को सॉल्यूशन दी
0: कई कई बार
3: हर।
2: तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हो बातें, है ना? ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी है सब भाई बहनों में होनी चाहिए तो मुझे लगता है। तो मतलब एक दूसरे का भाई बहन सपोर्ट बहुत करते हैं, है ना? तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे थे सुबह, आप शुरू में बोल रहे थे गर्ल्स बेस्ट होती हैं या बॉयज, यहाँ तो निकल के आ रहा है कि दोनों ही बेस्ट होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई कंपटीशन तो दिख ही नहीं रहा है।
0: दीदी गर्ल्स बोल देंगे ये लड़के बढ़िया होते हैं, बॉयज बोल देंगे कि लड़कियां बढ़िया होती है, बस हो गया बराबर हिसाब।
2: हाँ ये बोल देना चाहिए ना बॉयज को, बोल देना चाहिए गर्ल्स।
0: दीदी ये अगर हमारी बहस हो जाती है ना तो हमको ये माफी मांगनी पड़ती है, ये तो कुछ करते ही नहीं है।
2: माफी बॉयज को मांगनी पड़ती है?
0: हाँ दीदी ये तो ऐसी दीदी और बहस बढ़ाते जाएंगे क्या। हाँ अगर वो टॉपिक पे बात नहीं हो रही होगी तो भी उस टॉपिक पे बात ले आएंगे।
1: दीदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल परसों रात को मैं डैडी के साथ मैच देख रही थी तो ना डैडी और मेरा मुंह इस तरफ था, राघव का मुंह दूसरी तरफ था, तो इसने पैर डैडी और मेरे बीच में कर दिया। मैं कह रहा हूँ पैर दूर कर ले, पैर में से स्मेल आती है, पसीना आता है, नॉर्मल सी बात है। इसको उस बात का गुस्सा लग गया, पैर बिल्कुल भीड़े करके बैठ गया। फिर उसके बाद कुछ मैंने हल्का से इसकी कमर पे हाथ लगाया, उसको कमर में दर्द था, मतलब मैं उल्टी तरफ मुंह करके सोती हूँ ना तो मेरे पैरों को ऊपर चढ़ गया, कोने में जाने की कोशिश कर रहा, मैं कोने में सोऊंगा। इसको लगता डर है कि हाँ साइड से हाथ निकल जाएगा, मैं कोने में ही सोऊंगा, कोने लास्ट मेरे को माफी मांगना है रागू, सॉरी बोल रही हूँ, आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। फिर कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढनी पड़ती है कि मतलब माफ कर दे।
2: तो डर लगता है तो कैसे सोते फिर वहाँ पे है रागा?
0: डर लगने का थोड़ी देर नॉर्मल होकर फिर वापिस बातें करनी शुरू कर देते हैं।
1: दीदी सबसे मेन बात, खुद तो दिन में हॉरर देखता है फिर रात को आके मेरे को भी डराता है। मेरी आदत है कि मैं तकिए को अपने साथ रख के सोती हूँ, उसको गला पा के सोती हूँ। तो फिर राघु कहता, मैं कह राघु बता ये कौन है, कहता मुझे क्या पता, मैं कह रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है जिसका भी नाम है। तो कहता ऐसे मत बोला कर, ये ना रात को पानी पीने जाएगा फिर उठ के। मैं कहा खुद तो डर रहा है, मेरे को साथ और डरा रहा है।
2: कौन जाएगा पानी पीने?
1: तकिया।
0: दीदी ऐसे जाते हैं कहीं
2: तकिया पानी पीने?
0: हाँ दीदी होता है, मैंने कैमरों में देखा है,
2: फिल्मों में होता है ऐसा, रियल में तो नहीं होता।
0: दीदी रियल में भी होता है, उधर अंधेरा होता है, कुछ होता नहीं है, ह्यूमन बॉडी डिटेक्टिंग हमने कैमरे में ऑन कर तो ना ऐसे कुछ हमको नहीं दिखता, क्योंकि कैमरे में नहीं दिखता, बस वो कैमरा डिटेक्ट करता है कि कोई ह्यूमन बॉडी थी। तो फिर वो फोटो खींचता है तो सब ब्लैक ब्लैक था, तो हमको क्या पता क्या था।
2: बॉडी तो नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी होगी तो डिटेक्ट कर लेगा।
0: हाँ तो बॉडी थी ना दीदी, तभी तो डिटेक्ट किया।
1: दीदी इसने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा था कि ब्रेन पावर को करना था, तो ना एक ऐसी एक नॉर्मल चलते फिरते कोई भी ऐसे सड़क पे चलते सार को एक कमरे में बुलाया, उसको कहा कि अंधेरे कमरे में पूरा अंधेरा होगा और उसके अंदर सांप होगा, तो उसको कमरे में बैठा दिया। उसको लगा कि हाँ अंधेरा ही और क्या, सांप काटेगा नहीं, पैर ऊपर कर लूंगा, सुई दी थी, सुई चुबाई थी थोड़ी सी, तो फिर उसको ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काटा। और जब उसको 15-20 मिनट बाद देखा तो उसकी पूरी बॉडी नीली थी। इससे ये पता लगता है कि ब्रेन की पावर इतनी है, अगर उसको पता भी ना हो कि हाँ वो सांप है नहीं है, पर उसके डर के मारे वो खुद ही एक पॉइजन के रूप में बदल
2: भी कर सकता। देखो कितनी बड़ी बात है ये, हमारा माइंड कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि शरीर पे भी उसका असर दिखने लगता है।
1: और जबकि सांप उसमें था कुछ भी नहीं था, उसमें बस एक सुई चुभाई थी।
2: तो इससे ही तो आपको पता चल गया होगा आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, माइंड कितना पावरफुल है, जो सोचो वैसे हम बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, पावरफुल पावरफुल सोचो, यानी उसको भी किसी को कुछ लगता होगा कि कोई है तो सच में कोई लगने लगेगा कि है, कोई नहीं भी है तब भी लगने लगेगा कि कोई तो है। और अगर खुद के बारे में सोचो कि मैं सबसे पावरफुल हूँ तो सच्ची में सबसे पावरफुल हो आप।
1: उस दिन मेरे को रात को नींद ही नहीं आई थी, मतलब मैंने वीडियो भी देख रखी थी, ऊपर जिसने मुझे तकिया हिलने लगेगा, तो रात को फिर मेरे को कहता मेरे को तकिए की आंखें भी दिख रही है, मैंने तो तकिए को साइड में करा फिर साइड में उधर जाकर सोई, फिर जाके नींद आई।
2: जो सोचो वो दिखने लगता है, वो तो है।
0: दीदी मेरे को सच्ची उसकी आंखें दिखी थी, वो हिल रहा था, क्योंकि दीदी उसके थोड़े दांत भी दिख रहे थे, ऐसे हंस रहा था, उसके इतने भयानक दांत थे, नोकीले भी
2: दिख सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अभी हमने सोचा ना सुई लगाई थी, आपने तो बताया कि सुई लगाई तो सच में ब्लू पड़ गई ना उसकी बॉडी, तो हमारी बॉडी तो आंखें भी तो बॉडी का पार्ट है ना, तो हम जो सोचेंगे जो हमें लगेगा है वो सच्ची में दिखने लगेगा हमको, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो हमको दिखने लगेगा। तो इसीलिए जो हम सोचेंगे वो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, और सोचने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, जो देखोगे वो सोचोगे, जो सोचोगे वो देखोगे।
0: दीदी वो कितने भी किलोमीटर दूर होता है तो हमको उसका मतलब पता चल जाता है, मतलब है ना जैसे कोई मेरे लिए कोई दूर से चीज आ रही है, मतलब मैंने किसी ने मेरे को पार्सल करवाया है तो मतलब मेरे को पता है वो चीज क्या है पर उसका कलर नहीं पता, तो मैं सोचूंगा ये होगा ये होगा ये होगा, चाहे उसका कलर ब्लू होगा ना तो बीच बीच में मैं सोचता हूँ कि वो रेड होगा, तो वो ब्लू से रेड मेरे को दिखता है।
2: हाँ ये होता है बिल्कुल, अब ये कलर्स के साथ भी होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इस बारे में, हम एक और एपिसोड में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। बट हम जो आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं ना और जो एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, हम अलग से उसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं ये, है ना। तो हमारे दोस्तों से फिलहाल कहना पड़ेगा हमें गुड बाय, क्योंकि टाइम था हमारे पास इतना ही, और ढेर सारी बातें करेंगे। और अगर आप रेडियो मधुबन से जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या मैसेज पर भी, हमारा नंबर है, कोई बता सकता है नंबर क्या है रेडियो का?
1: 94-14-15-14-15।
2: हाँ यानी कि
1: 9414151415।
2: तो रेडियो मधुबन सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।

0: आरव, आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम, युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के साहित्य में हमें भारत की वर्तमान अवनति के कारण, उसकी वर्तमान परिस्थिति एवं उसके पुनरुज्जीवन के उपाय के संबंध में उनके विचारों को दर्शाती है। उनका साहित्य हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय कराती है।
1: आजकल हम विज्ञान की खूब दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये बात विज्ञान सम्मत नहीं है, ये गलत फहमी है आदि आदि। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को नजरअंदाज कर हम पाश्चात्य आदर्शों के पीछे दौड़ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 300-400 वर्ष पहले अस्तित्व में आए और आज तक समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। स्वामी जी ने हमें इन्हीं बातों की ओर ध्यान देने को कहा है और भारत के पतन के कारणों का विश्लेषण किया है।
2: पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब एक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा? अतः धर्म से जाति भेद नहीं है, जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। अतः धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्यों का है। कर्म कांडों से उबरकर एवं दार्शनिकों की जटिल व्याख्या से दिशाहीन होकर लोग अधिकाधिक संख्या में जड़वादियों से जा मिले, यही जाति समस्या का सूत्रपात था एवं भारत में कर्मकांड, दर्शन तथा जड़वाद के मध्य उस त्रिभुजात्मक संग्राम का मूल भी यही था, जिसका समाधान हमारे इस युग तक संभव नहीं हो पाया है। अवश्य ही जाति धर्म विलुप्त हो गया है, अतएव जिसे तुम लोग जाति धर्म कहते हो वो ठीक उसका उल्टा है। पहले अपने पुराण और शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ो, तब समझ में आएगा कि शास्त्रों में जिसे जाति धर्म कहा गया है उसका सर्वथा लोप हो गया है।
0: भारत के अधःपतन का कारण क्या था? जाति संबंधी इस भाव का त्याग, जैसे गीता कहती है, जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ। आजकल का वर्ण विभाग यथार्थ में जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में वो एक रुकावट ही है। वास्तव में इसने सच्ची जाति अथवा विविधता की स्वच्छंद गति को रोक दिया है। प्रत्येक हिंदू जानता है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिषी लोग उसके जाति निर्वाचन की चेष्टा करते हैं। वही असली जाति है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ज्योतिष इसे स्वीकार करता है, और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं जब इसे फिर से पूरी स्वतंत्रता दे। याद रखें कि इस विविधता का अर्थ वैषम्य नहीं है और ना ही कोई विशेषाधिकार ही। प्रत्येक मजबूत अभिजात्य वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त संप्रदाय जाति का घातक है, वो जाति नहीं है। जाति स्वतंत्रता दो, जाति की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दो, बस हमारा उत्थान होगा।
1: समाज के हर वर्ग को शिक्षित किए बिना जाति की उन्नति संभव नहीं। युवकों में भले बुरे की पहचान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए
2: जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित या गरीब मनुष्यों को स्वाधीनता देने से, अर्थात उनको अपने शरीर और धन आदि का पूरा अधिकार देने तथा उनके वंशजों को धनी और ऊंचे दर्जे के आदमियों के वंशजों के भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान सुविधा देने से उच्च गामी बन जाएंगे, तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं अथवा स्वार्थ से अंधे होकर? जो बुरा है उसे हमें दूर करना है तथा जो अच्छा है उसे सुदृढ़ करना है। छात्रों को उनकी राष्ट्रीय विरासत के इन दोनों पक्षों में भेद करना अवश्य सीखना चाहिए। हर एक सांस्कृतिक विरासत के ये दो पक्ष या पहलू होते हैं। ये शिक्षा ही है जो इन दोनों में अंतर करने की क्षमता तथा जो बुरा एवं अप्रासंगिक तथा कमजोर करने वाला है उसे स्वीकार करने का साहस प्रदान करती है। शिक्षा के दौरान हमारे युवकों को सकारात्मक या रचनात्मक तत्वों को पहचानने तथा उन्हें सुरक्षित रखने एवं उन्हें अपने योगदानों से सुदृढ़ करने के पश्चात आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में अवश्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
0: मरी हुई जाति को कड़वी दवाई ही पिलानी पड़ेगी, फिर प्यार जताना होगा। दोनों ही पद्धति अपनानी है, स्वामी जी कहते हैं।
2: तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुआ तिमंगल या वेल मछली है। सदाचार संबंधी जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, भविष्य की उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो? क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो? मैंने जापान में सुना है कि वहां की लड़कियों का यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाए तो वे जीवित हो उठेंगी।
1: सबसे पहले भूखे भारतवासियों को खाना देना पड़ेगा, भूखे पेट भजन नहीं गाया जाता।
2: हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्ति भाव खो दिया है, फिर यही सारी खराबी का भी कारण है। हमें राष्ट्र को उसके खोए हुए व्यक्ति भाव को वापस लाना है और जन समुदाय को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। सबके लिए अधिक अन्न और सबको अधिकाधिक सुविधाएं मिलती रहें। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट है वो कूर्म, इसे पहले ठंडा किए बिना धर्म कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा, नहीं तो केवल व्याख्यान देने से विशेष लाभ ना होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। धर्मोपदेश से पेट नहीं भरता।

0: स्वामी जी ने कहा, सेवा भाव से सर्वहारा की सेवा करनी होगी। हम में दिखावा ज्यादा है, सब नाम कमाने के लिए सेवा का नाटक करते हैं।
1: आधी सदी से समाज सुधार की धूम मच रही है। मैंने 10 वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज सुधारक संस्थाओं की बाढ़ सी आई है, परंतु जिनका रक्त शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी संस्था नजर न आई। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। हम कितनी ही राजनीति बरतें, उससे उस समय तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत का जन समुदाय एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित नहीं होता। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु शोक उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को अधिकाधिक पति मिलने पर निर्भर नहीं, वरन आम जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनका खोया हुआ व्यक्तित्व बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति नष्ट किए उन्हें वापस दिला सकते हो? ये काम करना है और हम इसे करेंगे ही।
2: जनता के मन में स्वाभिमान जगाना होगा। दलित इंसानों को भी आत्मसंतुष्टि की जरूरत है, उन्हें जगाना होगा, यही हमारा राष्ट्रीय व्रत है।
1: जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वो है कार्य और हम हैं उसके कारक। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा, सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा।
0: आज जनता को उपदेश नहीं, प्यार और संवेदनशीलता की जरूरत है। छोटे से छोटे व्यक्ति की भी समाज में उपयोगिता है।
1: सुधारकों से मैं कहूंगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़कर सुधारक हूँ। वे लोग केवल इधर उधर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ आमूल सुधार। हम लोगों का मतभेद है केवल सुधार की प्रणाली में। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मढ़ने का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी भांति चलना होगा, दूसरी तरह नहीं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो राम के सेतु बांधने के समय अपने योगदान स्वरूप थोड़ी बालू लाकर संतुष्ट हो गई थी।

0: बुराई का अंत आलोचना से नहीं होता। हमारे पूर्वज हमें डांटते नहीं थे, प्यार से आशीर्वाद देकर सिखाया करते थे। तभी स्वामी जी ने लिखा है,
1: ये अद्भुत राष्ट्र जीवन रूपी यंत्र युग युग से कार्य करता रहा है। राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख बह रहा है। कौन जानता है, कौन साहस पूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या बुरा, और यह किस प्रकार चलेगा। राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है देते जाओ, बस वो अपने ढंग से उन्नति करता जाएगा। कोई उसकी उन्नति का मार्ग निर्दिष्ट नहीं कर सकता। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे दूसरे समाजों में भी हैं। निंदा करने की भला आवश्यकता क्या, बुराई को हर कोई दिखा सकता है। मानव समाज का सच्चा हितैषी तो वो है जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताए। क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का भाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चैतन्य, कबीर और दादू कौन थे? ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य जो भारत गगन में अत्यंत उज्जवल नक्षत्रों की तरह एक के बाद एक उदय हुए और फिर अस्त हो गए, कौन थे? इन सब ने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी जारी है। भेद केवल इतना है, वे आज के समाज सुधारकों की तरह अपने मुंह से कभी अभिशाप नहीं उगलते थे, उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। इससे जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी।
2: हर समाज का अलग अलग ढंग, अलग अलग संस्कार होते हैं। एक को दूसरे पर थोपने से अनर्थ हो जाता है, इसलिए सुधार के लिए हमें अपनी पद्धति, अपने संस्कार ही अपनाने होंगे। स्वामी जी का मत था,
1: विदेशी संस्थाओं ने बलपूर्वक जिस प्रणाली को हम में प्रचलित करने की चेष्टा की है उसके अनुसार काम करना व्यर्थ है, वो संभव है। मैं दूसरी कौमों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं पर हमारे लिए नहीं। वो उनके लिए जो कुछ अमृत है हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले यही बात सीखनी होगी, अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य प्रकार के परंपरागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है और हम लोगों के पीछे हैं हमारे अपने परंपरागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म। अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा और ये हमें करना ही होगा।
0: भारत धर्म पर टिका है। भूखे संतप्त भारतीयों का एकमात्र सहारा धर्म ही है। उनका उद्धार आध्यात्मिक पथ पर ही संभव है।
1: मैं जीवन भर काम करता रहा हूँ, कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते तब तक भारत का उद्धार होना असंभव है। भारत वर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर भारत नष्ट हो जाएगा। अतः भारत में सुधार करने से पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उनमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धारणाओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: सही और प्रकृत धर्म की व्याख्या करनी होगी। जन साधारण को प्रकृत धर्माचार का ज्ञान नहीं है, उन्हें सिखाने का बीड़ा स्वामी जी ने उठाया था, तभी वे लिखते हैं,
1: भारत के सभी समाज सुधारकों ने पुरोहितों के अत्याचारों और अवनति का उत्तरदायित्व धर्म के मत्थे मढ़ने की एक भयंकर भूल की और एक अभेद्य गढ़ को ढहाने का प्रयत्न किया। नतीजा क्या हुआ? असफलता। बुद्ध देव से लेकर राम मोहन राय तक सबने जाति भेद को धर्म का एक अंग माना और जाति भेद के साथ ही धर्म पर भी पूरा आघात किया और असफल रहे। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया है। दोष धर्म का नहीं है। मेरा यही दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए हिंदू धर्म के विनाश की कोई आवश्यकता नहीं। और ये बात नहीं कि समाज की वर्तमान दशा हिंदू धर्म की प्राचीन रीति नीतियों और आचार अनुष्ठानों के समर्थन के कारण हुई, वरन ऐसा इसलिए हुआ कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में अच्छी तरह उपयोग नहीं हुआ है। मैं इस कथन का प्रत्येक शब्द अपने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित करने को तैयार हूं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर।
0: हमारे रोम रोम में धार्मिक संस्कार रचे बसे हैं। भारत को जगाने के लिए उन्हीं संस्कारों का सहारा लेना पड़ेगा। भारत उसी भाषा को जानता है, समझता है। स्वामी जी ने कहा है,
1: भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से बीसियों सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं। यहाँ तक कि अब वो हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वो हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवन शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्ष में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी हो तो भी यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी मार्ग का प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम है, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो, और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही कम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी।

0: हमें हर बात के लिए आध्यात्मिकता का पथ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिराओं में वही रक्त बनकर दौड़ रहा है। उस रक्त को साफ करना होगा। स्वामी जी ने इसी बात को यूं समझाया है,
1: मेरे कहने का ये अर्थ भी नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किंतु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूँ। ये सब यहाँ गौण विषय हैं। मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है फिर कुछ और। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि ये साफ बहता रहे, यदि वो शुद्ध एवं सशक्त बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक सामाजिक चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक त्रुटियां हो, चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जाएंगे। इस भांति भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है जब ये देखा जाए कि उस नई प्रथा से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी। राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें दिखाना होगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षा आध्यात्मिक उन्नति की कितनी अधिक पूर्ति हो सकेगी।
2: स्वामी जी ने समझ लिया था कि राजा महाराजाओं का समय लद रहा है, समाजवाद का युग आने वाला है।
1: सब बातों से यही प्रकट हो रहा है कि समाजवाद अथवा जनता द्वारा शासन का कोई स्वरूप, उसे आप चाहे जिस नाम से पुकारें, उभरता आ रहा है। लोग निश्चय ही ये चाहेंगे कि उनकी पार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वे कम काम करें, उनका शोषण ना हो, युद्ध ना हो और भोजन अधिक मिले। इस बात का हमारे पास क्या प्रमाण है कि ये अथवा दूसरी कोई सभ्यता, जब तक कि वो धर्म पर, मनुष्य के भीतर के शुभ पर आधारित ना हो, स्थायी होगी? केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है।
0: अच्छी बातों का अनुकरण करना ठीक है, पर अंधानुकरण नहीं, अपनी स्वतंत्रता कायम रखना है।
1: हमारा उद्देश्य है सभी को, प्रत्येक को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अधिकार प्राप्त कराने में सहायता करना। धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति, इसे अपना आदर्श वाक्य बना लो। दूसरे का अनुसरण करना सभ्यता की निशानी नहीं है, ये एक महान पाठ है जो हमें याद रखना है। अनुकरण करना हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, वो तो मनुष्य के अधः पतन का लक्षण है। उसी प्रकार तुम भी करो और औरों से उत्तम बातें सीखकर उत्तम बनो। जो सीखना नहीं चाहता वो तो पहले ही मर चुका है। औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो, पर उसे अपने भाव के सांचे में ढाल कर लेना होगा। दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठो। भारत के इस जातीय जीवन को भूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी आदिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता।

0: सुधार का अर्थ है समस्त जाति का सुधार। निम्न तबकों के सुधार के बिना जातीय सुधार संभव नहीं, तभी वे लिखते हैं,
1: जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जो चिरंतर निर्झर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी और ऊंचा उठाओ। गत शताब्दी में सुधार के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं, उनमें से अधिकांश केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम दो वर्णों से ही संबंध रखा है, शेष दो से नहीं। विधवा विवाह के प्रश्न से 70% भारतीय स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है। और देखो, मेरी बात पर ध्यान दो, इस प्रकार से सब आंदोलन का संबंध भारत के केवल उच्च वर्णों से ही रहा है, जो जन साधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने में कोई कसर नहीं रखी, पर इसको सुधार नहीं कहा जा सकता।
2: दलितों को सहायता करने का मतलब है उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की सीख देना, फिर वे अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे। स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी।
1: हमारा संघ दीनहीन, दरिद्र, निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है, और उनके लिए सब कुछ करने के बाद जब समय बचेगा, केवल तब कुलीनों की बारी आएगी। प्रेम द्वारा तुम उन किसान और श्रमिक लोगों को जीत सकोगे। अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो, ये सब परिस्थितियों में लागू होता है। हम उनकी सहायता इसलिए करते हैं जिससे वे स्वयं अपनी सहायता कर सके। जिस क्षण उन्हें अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाएगा और वे सहायता तथा उन्नति की आवश्यकता को समझेंगे, तब जानना कि तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है एवं तुम ठीक रास्ते पर हो। किसान और श्रमिक समाज मरणासन्न अवस्था में है, इसलिए जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि धनवान उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता दें। फिर किसानों और मजदूरों को अपनी समस्या का सामना और समाधान स्वयं करने दो।
0: सभी अच्छे काम करने के लिए समाज सुधार करने में रक्त लगता है। संपूर्ण भारत को शिक्षित करने में सदियां बीत जाएंगी, पर यही एक रास्ता है।
1: अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कहां हैं वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो। सुधार चाहने वाले लोग हैं कहां? इन अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में कोई और अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग जो सोचते हैं कि कुछ बातें दोषपूर्ण हैं, राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकते। राष्ट्र में आज प्रगति क्यों नहीं है? क्यों वो जड़ भावापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित करो, अपनी निजी विधायक संस्थाएं बनाओ, फिर तो कानून आप ही आ जाएंगे। जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा, पहले उसकी सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे, जिस नई शक्ति से, जिस नए दल की सम्मति से नई व्यवस्था गठित होगी, वो लोक शक्ति कहां है? पहले उसी लोक शक्ति को संगठित करो। अतएव समाज सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य है लोगों को शिक्षित करना, और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता, तब तक प्रतीक्षा करनी ही होगी।
2: जनता को किताबी शिक्षा नहीं, जीवन निर्मात्री शिक्षा देनी होगी, जिससे भारत एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उठ खड़ा हो सके।
1: लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ना दी जाए, तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए, नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं कि अंतर्द्वंद होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा ना सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें और मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। इसलिए हमारा आदर्श ये होना चाहिए कि अपने देश की समग्र शिक्षा का भार अपने हाथों में ले लें और जहां तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अश्लेषा नक्षत्र आज है और राम प्रसाद बिस्मिल, लालू प्रसाद यादव, के एस हेगड़े, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, मानसी जोशी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही मिहिर सेन, वासुदेव वामन शास्त्री खरे, धनश्याम दास बिरला, लीला नाग, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस समय को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शाम का समय है और शाम के समय में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है और कड़क धूप से आप थोड़ी थोड़ी शीतलता की ओर बढ़ जाते हो। तो आइए इस खूबसूरत मोड़ के बीच में आप कार्यक्रम सफ़र को सुन रहे हैं। तो एक विचार आपके लिए, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में।

मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुका ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीन बोल्ड हो जाओगे, वो जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। वो ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए 11 जून की कुछ खास बातें आपसे शेयर किया मैंने, और अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। चलिए, आप सभी को ये भी अच्छा लग रहा होगा कि आज हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये खासी जो है पॉपुलर लोगों में से एक है। राम प्रसाद बिस्मिल की बात अगर कहे तो ये भारत के महान क्रांतिकारी सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो आइए राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी आपको सुनाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके लिखे सर फिरेशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन भावना को लक्ष्य ग्रूस में परिवर्तन कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। जन्म की बात करें तो आज ही के दिन 1897 को, विशेष आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 11 जून 1897 को, पंडित मुरलीधर की धर्म पत्नी के पुत्र को जन्म दिया और इस पुत्र का जन्म मैनपुरी में हुआ था। वो बालक कन्हैयालाल रहा और इस विषय में श्री व्यथित हृदय ने लिखा है, यहाँ ये बात बड़े आश्चर्य के मालूम होती है कि बिस्मिल के दादा और पिता ग्वालियर के निवासी थे, फिर भी उनका जन्म मैनपुरी में क्यों हुआ? हो सकता है कि मैनपुरी में बिस्मिल जी का नैनियाल रहा हो। इस पुत्र से पूर्व एक पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता पिता का इसके प्रति चिंतित रहना स्वाभाविक था, इसीलिए बालक के जन्म की रक्षा के लिए जिसने जो उपाय बताया वही किया गया। बालक को अनेक प्रकार के ताबीज आदि लगाए गए। बालक जन्म से ही दुर्बल था। जन्म के एक दो महीने बाद वह इतना दुर्बल हो गया कि उसके बचने की आशा ही बिल्कुल कम हो गई थी। माता पिता इससे अत्यंत चिंतित हो गए और लगा कि कहीं यह बच्चा पहले के बच्चे की तरह चल ना बसे। इस पर लोगों ने कहा कि घर में ही कोई बच्चे को रोग प्रवेश कर गया है, इसके लिए इन्होंने उपाय सुझाया है। बताया गया कि एक बिल्कुल सफ़ेद खरगोश बालक के चारों ओर घूमकर छोड़ दिया जाए, यदि बालक को कोई रोग होगा तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। माता पिता बालक की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए ऐसा ही किया गया। आश्चर्य की बात ये थी कि खरगोश तुरंत मर गया। इसके बाद बच्चे का स्वास्थ्य दिन ब दिन सुधरने लगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से पॉपुलर प्रसिद्ध हुए। तो है ना जन्म की कहानी फिल्म की स्टोरी की तरह। जी हाँ, जिनकी स्टोरी फिल्म की तरह रहते हैं इनके कार्य भी फिल्मों की तरह ही होते हैं। तो 7 वर्ष की अवस्था में जाने पर बालक राम प्रसाद को पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे और उस समय उर्दू का बोलबाला था, तो घर में ही हिंदी शिक्षक के साथ ही बालक को उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब के पास भेजा जाता था। पंडित मुरलीधर पुत्र की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर बालक राम प्रसाद को पिता की मार भी पड़ती थी। हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराते हुए एक बार बंदूक के लोहे के गज से इतनी मार पड़ी थी कि गज टेढ़ा हो गया था। अपनी इस मार का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, बाल अवस्था में पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे और जरा सी भूल करने पर पीटते थे। मुझे जब भी भली भांति स्मरण है कि जब मैं नगरी के अक्षर खिलाना सीख रहा था तो मुझे ऊ लिखना ना आया। मैंने बहुत प्रयत्न किया पर जब पिताजी कचहरी चले गए तो मैं भी खिलौने खेलने चला गया और पिताजी ने कचहरी से आकर मुझे ऊ लिखवाया, मैं ना लिख पाया। उन्हें मालूम हो गया कि ये खेलने चला गया था। इस पर उन्होंने मुझे बंदूक के लोहे के गज से इतना पीटा कि टेढ़ा हो गया गन उसका बंदूक का गज। मैं भाग कर दादाजी के पास चला गया, तब बचा वरना मुश्किल होता था। इसके बाद जब बालक राम प्रसाद के पढ़ाई में कभी असावधानी नहीं हुई और वो परिश्रम करके पढ़ने लगे और इस तरह से आर्य समाज के संपर्क में आए जिससे उनका जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। दादा दादी की छत्र छाया में काफ़ी उनको जो है प्यार मिला और उनके प्यार से ही वो आगे चल के एक अच्छे व्यक्ति बन गए। बहन भाई का भी प्यार बहुत मिला। पंडित राम प्रसाद के जन्म से पूर्व ही उनके एक भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई थी। राम प्रसाद के बाद उनके घर में 5 बहनें तथा 3 भाइयों का जन्म हुआ। इनमें से 2 भाई तथा 2 बहनें कुछ ही समय बाद मृत्यु को पा गए। इसके बाद परिवार में 2 भाई और 3 बहनें रह गए। उनके परिवार में कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी। उनकी माँ के कारण ही पहली बार इस परिवार में कन्याओं का पालन पोषण हुआ। माँ की ही प्रेरणा से 3 पुत्रियों को अपने समाज के अनुसार अच्छी शिक्षा दी गई और उनका विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया गया। पंडित राम प्रसाद विस्मिल के बलिदान के समय उनके छोटे भाई सुशी चंद्र की अवस्था केवल 10 वर्ष की थी। बाद में उसे कुछ टीबी का रोग हो गया और उसके बाद चिकित्सा में अभाव के कारण फिर वो भी दुनिया से चल बसा। 3 बहनों का विवाह हो गया जिसमें एक के विवाह के बाद मृत्यु हो गई। एक अन्य बहन बड़े भाई राम प्रसाद की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर सकी, उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। केवल एक बहन शास्त्री देवी ही शेष बची। इस करुणा कथा का वर्णन श्रीमती शास्त्री देवी ने ही किया। तो इस तरह से ये कहानी, मैंने कहा ना इनकी कहानी को फिल्म की तरह देख सकते हैं आप। तो देश प्रेमी महिला जो है, धर्म में बहुत रुचि थी राम प्रसाद की और फिर अपनी माता जी का पूरा सहयोग इनको मिला और इसलिए उनकी माता जी को देश प्रेमी महिला के नाम से जाना जाता है। साहसी महिला के रूप में देखा जाता है। माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव मिसमिल पर काफ़ी पड़ा और फिर इस तरह से देश की आज़ादी के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए उनकी कहानी को फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा कभी टाइम मिले तो। तब तक अभी आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्त।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है,
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए दुनिया के एक पॉपुलर व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कौन ऐसा व्यक्ति है। जी हाँ, भारत के पॉपुलर राजनीतिक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, समझ गए होंगे आप। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म आज है, जन्मदिन आज है, तो भारत के सफल रेल मंत्रियों में गिने जाते हैं। इनका नाम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के आरोप में 3 अक्टूबर 2013 को रांची स्थित CBI के विशेष अदालत ने 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना की सजा सुना दिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद को चाईबसा कोषागार से 37 करोड़ 68 लाख रुपए को गबन करने का आरोप में दोषी पाया था। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो 11 जून 1948 को बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में फुलवारिया गांव में यादव परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कुंदन राय है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गोपालगंज से प्राप्त की तथा कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे पटना चले गए। पटना के BN कॉलेज में इन्होंने लॉ में डिग्री तथा राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल की। लालू प्रसाद ने कॉलेज से ही अपनी राजनीतिक सफर शुरू कर दिया था। इस दौरान वे जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया आंदोलन का हिस्सा भी बने और जयप्रकाश नारायण, राज नारायण और ठाकुर तथा सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे राजनेताओं से मिलकर अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया। फिर 29 वर्ष की आयु में राजनीति का सफर इनका शुरू हो गया। जनता पार्टी से 6ठी लोकसभा के लिए चुन लिए गए और इस तरह से 1 जून 1973 को इनकी शादी राबड़ी देवी से हुई और कुल इनके 7 बेटियां और 2 बेटे हैं जिनमें से सभी बेटियों की शादी हो चुकी है। तो आइए फिर 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा दूसरी बार 95 में बने। इस तरह से लगातार अलग अलग पदों पर काम करते हुए बिहार विधानसभा परिषद, बिहार विधानसभा और विपक्ष के नेता, बिहार विधानसभा जनवरी नवंबर 1989 ये सदस्यता इनको मिली और 2002 में ये कैबिनेट मंत्री बने, मुख्यमंत्री बिहार के 1990 और 97 के बीच में, और फिर 24 मई 2004 से 22 मई 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री भी बने। अब बोलने की शैली जो है इनकी खूबसूरत है जिसके वजह से लोग इनके मुरीद और ये पॉपुलर होते गए। लालू प्रसाद अपनी बोलने की शैली के लिए मशहूर है। इसी शैली के कारण लालू प्रसाद भारत के साहित्य विश्व सारे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना गए। अपनी बात कहने का लालू यादव का खास अंदाज है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो

या रेलवे में कुल्लड़ की शुरुआत लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे। इंटरनेट पर लालू यादव के लतीफ़ों का दौर भी खूब चला। इनकी रुचि खेलों तथा सामाजिक कार्य में भी रही और 2001 में वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये थी कुछ खास बातें लालू यादव जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की कहानी सुनकर कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पर हंसी भी आई होगी, है ना, कुछ यादें ताजा भी हो गई होगी। चलिए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। हाँ, इनका नाम है मानसी गिरीश चंद्र जोशी। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एक पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, 2020 में वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंची है और टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर की लिस्ट में उन्हें रखा है। विश्व प्रसिद्ध बाबरी डॉल निर्माता कंपनी ने मानसी जोशी के सामान में एक लड़कियों को प्रोत्साहित करने की मंशा से उनके जैसे दिखने वाली वन ऑफ दी काइंड बारबी डॉल बनाई है। मानसी जोशी का जन्म आज के दिन 11 जून 1990 को गुजरात के राजकोट में हुआ और मुंबई के अनुशक्ति नगर में बड़ी हुई। इनके पिता का नाम गिरीश चंद्र जोशी है जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र से सेवा निवृत्त वैज्ञानिक है। मानसी जोशी ने अपनी शिक्षा एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से इलेक्ट्रॉनिक में डिग्री हासिल की। सोमया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है। खेलों में रुचि रखने वाली मानसी ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे कई खेल आजमाए। बैडमिंटन में उनकी प्रतिभा खूब निखर कर आई और उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्तर पर कई टूर्नामेंट खेले, लेकिन 2011 में इनके साथ एक दुर्घटना घटी और जिसमें उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया। इस घटना में उनका पैर चला गया, लेकिन उनके इरादे कम नहीं हुए, उनकी ताकत नहीं टूटी। उन्होंने फिर से जोश के साथ 2015 में इंग्लैंड में आयोजित किए गए पैरा बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और मिश्रित युगल में रजत पदक जीत लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद 2018 में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेकर भारत के नाम कंस पदक भी जीता। अपने जीवन में हार नहीं मानी और 2019 में पैरा ओलंपिक में भारत के नाम गोल्ड मेडल कर दिया। तो है ना कमाल की बात मानसी गिरीशा चंद्र जोशी के बारे में। तो ये राजकोट गुजरात से बिलोंग करती हैं और विशेष आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो चलिए, कुछ खेलने वाले लोग जो है उनके अंदर इसी तरह का जुनून होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ रहे न रहे लेकिन खेल जिंदा रहेगा, है ना, यही खास बात है खिलाड़ियों में। इन्हीं शुभाशाओं के साथ आइए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: મારું નામ લોકેશ દેવપ્રહે, હું ઉદયપુર બોલ રહ્યો હું. આશા ભુંડિયા ઓર રેડિયો મધુબન 107.8 FM, સુનતા રહો, હસતા રહો.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं. और अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, KS हेगड़े के बारे में. जी हाँ, एक भारतीय विधिवेता, राजनीतिक और शिक्षा शास्त्री है. KS हेगड़े भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष भी है. 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कवदूर स्कंद हेगड़े का चुनाव इस अर्थ में अभूतपूर्व था कि लोकसभा के सदस्य के रूप में अपने पहला कार्यकाल दौरान ही उन्हें इस उच्च पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ. उनका व्यवसायिक जीवन भी अनूठा रहा, क्योंकि न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे. न्यायिक पृष्ठभूमि के साथ साथ विधायी अनुभव होने के कारण उन्होंने सभा की कार्रवाई का संचालन इतना कुशलता से किया कि इसके लिए लोकसभा के सभी सदस्यों की ओर से उन्हें प्रशंसा मिली. हेगड़े के बारे में जानते हैं. आज ही के दिन 11 जून 1909 को पूर्व मैसूर राज्य में जिला दक्षिण केनरा के करकल तालुका में स्थित कवदूर गांव में इनका जन्म हुआ. और फिर वहीं पर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्कूल सेंट लुइस कॉलेज से उन्होंने पूरी की और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में लॉ करके फिर आगे बढ़े. तो इस तरह से एडवोकेट का काम करते रहे और राजनीति का काम भी करते रहे और दोनों के साथ साथ फिर न्यायाधीश भी बने. और न्यायाधीश का काम करते हुए उसके बाद 1966 तक में मैसूर उच्च न्यायालय में खंडपीठ में सेवारत रहे और फिर हिमाचल में और फिर इस तरह से अलग अलग जगह पर उन्होंने काम किया. और फिर 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर बेंगलोर संसदीय 6वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए और इस तरह से राजनीतिक में अपना समय देने लगे. और राजनीतिक सफ़र भी इनका अच्छा रहा और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता इनको मिली इनके व्यक्तित्व के कारण. और हेगड़े साहब 24 मई 1990 को कर्नाटक में अपने जन्म स्थान पर ही 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ. लोकसभा अध्यक्ष के अपने आपातकालीन कार्यकाल के दौरान हेगड़े ने न केवल अध्यक्ष के उच्च पद की गरिमा को बनाए रखने में बल्कि देश में संसदीय संस्थाओं को मजबूत बनाने में भी विशेष योगदान दिया है. तो ये थी कुछ खास बातें हेगड़े के बारे में. और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर. जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो.

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी का भी आज जन्मदिन है, तो चलिए इसी के साथ मैं कुछ बातें उनके बारे में शेयर करूंगा। और 11 जून 1947 को भारत के भूतपूर्व 17वें मुख्य निर्वाचित आयुक्त रहे हैं और 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक मुख्य निर्वाचित आयुक्त रहे हैं। और वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव शाहबुद्दीन याकूब को देखरेख में ही संपन्न हुआ। और शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी 1971 बैच के IAS अधिकारी हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उन्होंने 35 वर्ष की सिविल सेवा के बाद जून 2006 में आयोग में प्रवेश किया था। आयोग से जुड़ने से पहले शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी खेल और युवा मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर भी आसीन रहे। तो ये थी कुछ खास बातें शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो बस।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। तो वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय दिस स्पिरिचुअल जर्नी, and that is what is very very important.

ना बढ़िया माने और सच्चे को घटिया, झूठे को यहाँ बढ़िया माने और सच्चे को घटिया, जिधर भी देखो फट फट दौड़े झूठों की फट फटिया। सच्चे टायर फटे पड़े हैं, सच्चे टायर फटे पड़े हैं, घिसे पड़े हैं, सड़े पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं।

जेलर खाने जेलर खाने पागल खाने पागल खाने जेलर खाने भरे पड़े हैं भरे पड़े हैं इस दुनिया में अकल के अंधे नकल के धंधे नकल के धंधे झूठ के बंधे चढ़ा चढ़ा छापा बापा बापा गिरे गिरे अकल के अंधे नकल

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते युवा मंच पे एक बार हम ज़रूर बात करते हैं सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, और इंटरनेट उसमें एक मेन हिस्सा होता है, क्योंकि हम सब अब सिर्फ भारत के ही नागरिक नहीं हैं बल्कि इंटरनेट की दुनिया के भी नागरिक हैं। जी हाँ, हम सब बन चुके हैं ऑनलाइन सिटीजन्स, क्योंकि हम ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कितना कुछ ऑनलाइन करते हैं, सीखते हैं, मैसेज भेजते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन जितने फ़ायदे हैं उतनी सतर्कता की आवश्यकता भी है दोस्तों। और वो सतर्कता कैसे आती है? वो आती है नॉलेज से, यानी ज्ञान से, वो भी सही। आजकल आप कहीं भी कुछ भी पढ़ लें उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इमेज भी फेक हो सकती है, वीडियो और आवाज़ तक फेक हो सकती है, किसी का अकाउंट भी हैक हो सकता है, और न जाने कितनी चीज़ें आजकल हो ही रही हैं। लेकिन इसका समाधान डर तो नहीं हो सकता, डर डर के ज़िंदगी बिताई तो नहीं जा सकती, लेकिन सतर्क होकर उसका सामना किया जा सकता है और बचा जा सकता है होने वाले स्कैम से। दूसरों को भी सचेत किया जा सकता है, मगर कैसे? नॉलेज से। और वो नॉलेज रेडियो मधुबन पर आपको जरूर मिलेगी। पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौट कर आएंगे। युवा मन जारी रहेगा, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम युवा मंच पे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक आप चाहे तो चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, साइबर दोस्त जिसे कहते हैं, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, अमूमन आपको मिल जाएगा। और साइबर दोस्त जो है वो एक बहुत सुंदर सी पहल है, और ये पहल बिल्कुल क्रेडिबल है, यानी कि आपको सही जानकारी मिलेगी, सही जगह से जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये पेशकश जो है वो सरकार की है, और सरकार की ओर से ही ये, क्योंकि गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये एक कदम है जो आगे बढ़ाया गया है, जिसमें दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं फेक इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे स्कैम करते हैं वो, और गारंटी रिटर्न जो कहा जाता है उनके जो पीछे जो होते हैं ना, जिन्हें आजकल रेड फ्लैग कहते हैं, यानी जिनसे बचना चाहिए, वो ये जो वादे होते हैं कि गारंटी रिटर्न मिलेगा आपको, इसके पीछे के रेड फ्लैग क्या हैं, आपको ये पता चलेगा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे आपके भरोसा का, कैसे आपकी ज़रूरत का या जल्दबाजी का वो फ़ायदा उठाते हैं, और कौन सा आपको सेफ्टी चेक करना ज़रूरी है अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, तो कैसे आपको देखना है, कैसे आपको सेफ्टी अपनी पूरी तरह से जांच पड़ताल उसकी कर लेनी है, ये आपको पता चलेगा आज। और दोस्तों, ये हम आपको बताते ही हैं, और ये यहाँ भी बताया जाता है कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत, जी हाँ तुरंत, जितना जल्दी आप इसको आप कंप्लेन करते हैं उतना फ़ायदा होता है। शुरू के जो घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल माने जाते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 1930 पर, यानी 1930 पर, या विज़िट कर सकते हैं cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं साइबर सेफ्टी, तो हम आपको और जानकारी भी ज़रूर मुहैया कराएंगे। पर फिलहाल आइए सुनते हैं फेक इन्वेस्टमेंट ऐप्स का सच साइबर दोस्त के माध्यम से। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए दोस्तों, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आज का सेशन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और फेक प्रॉफिट स्कीम्स पर बेस्ड है, जहां साइबर क्रिमिनल्स फेक इन्वेस्टमेंट ऐप्स, सोशल मीडिया एड्स, व्हाट्सएप ग्रुप और गारंटीड रिटर्न्स का लालच देकर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्री संतोष कुमार तिवारी, SHO साइबरक्राइम गाजियाबाद। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, सबसे पहले आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, और साइबर क्रिमिनल्स किन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं और उन्हें कैसे फंसाते हैं?
2: देखिए, कोविड के बाद से लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए हैं हर चीज के लिए, और शेयर ट्रेडिंग के में इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग बहुत ज्यादा जागरूक होके और बहुत ज्यादा उत्सुक होके काफी ज्यादा इसमें शामिल होने लगे हैं। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है आज की डेट में, जो साइबर फ्रॉड का जो सबसे मेजर हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ही है। अगर 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो रहा है तो आप ये मान चलिए कि लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ही जा रहे हैं लोगों के। तो इस समय जो भी लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं वो ही इसके मेन टारगेट है साइबर अपराधियों के। जो व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है वो उससे इन लोगों को लेना देना नहीं है। तो आप ये समझिए कि इसके जो विक्टिम है वो कौन है, इसके विक्टिम रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जैसे हमारे विक्टिम्स हैं गेल के रिटायर्ड GM, भेल के रिटायर्ड GM, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और इवन अभी जस्ट जब मैं आ रहा था आपके कार्यक्रम के लिए, मेरे थाने पे एक CA आए हुए थे, उनके साथ 79 लाख रुपीज का फ्रॉड हुआ है। तो बेसिकली ये जो फ्रॉड है वो हो रहा है उनके साथ जो अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा इनॉन है और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो इसके शिकार वही हो रहे हैं।
1: क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो लोग अपने पैसे सेव भी करते हैं और उनका एक तरीका है इन्वेस्ट करके अपने फंड्स को इंक्रीज करने का, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट।
2: आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास काफी पैसा होता है और उस पैसे को उनको लगता है कि अच्छा सोशल मीडिया पे आज की डेट में हर दूसरी चीज जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग के में फायदे की जीती है, तो उसे देख के उन्हें लगता है कि मैंने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा किया है तो चलो मैं अब एक नए क्षेत्र में अपना हाथ आजमाता हूँ, और इस चक्कर में वो लोग इसमें इसके मतलब शिकार हो जा रहे हैं और उनका सब कुछ चला जा रहा है इवन, क्योंकि ऐसे अब किसी के साथ अगर क्राइम होता है, अगर कोई घटना होती है तो उसका पैसा रखा हुआ कोई एक जगह का पैसा ही का नुकसान होता है उसे, लेकिन यहाँ पे आदमी अपने सभी रिसोर्सेज से जहां से भी उसे पैसा मिल सकता है वहां से पैसा लेके और इनमें डाल दे रहा है, तो इस तरीके से ये बहुत बुरी तरीके से आदमी इकोनॉमिकली टूट जा रहा है।
1: सो फेक इन्वेस्टमेंट एप्स, सोशल मीडिया एड्स और ऑनलाइन प्रमोशंस का टिपिकल मोडस ऑपरेंडी क्या होता है?
2: देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीके से जो साइबर अपराधी हैं ये उपयोग कर रहे हैं, हम सभी लोग लगभग रील देखते हैं, आप चाहे एक्स पे हो, चाहे आप इंस्टा पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, अब आज की डेट में हर जगह पे रील उपलब्ध है और आदमी उसका एडिक्शन सा होता ही है, रील में आप देखते जाते हैं, वहां पे साइबर जो अपराधी है इसी का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, वहां पे ये बहुत अच्छी अच्छी जो भी नामी हस्तियां हैं, जैसे एक बार मुकेश अंबानी जी का वीडियो काफी दिन तक चला था कि मेरी टीम जो है वो आपको AI से जनरेटेड वीडियो था कि आपको शेयर ट्रेडिंग की टिप्स देगी और उसके नीचे लिंक दिया हुआ था, इस तरीके से कभी वित्त मंत्री जी का वीडियो आता है, कभी किसी क्रिकेट खिलाड़ी का आता है, कभी किसी और का आता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको फायदा मिलेगा, तो ये सोशल मीडिया के इस तरीके के जो भी रील्स आते हैं इन सब के थ्रू आदमी उसमें नीचे लिंक दिया होता है अमूमन, तो उस लिंक के माध्यम से आप उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में या तो आप उसके थ्रू जुड़ते हैं, आजकल तो ये आपके कहीं से भी नंबर जो भी आप जगह जगह अपने नंबर दिए होते हैं वहां से नंबर लेके आपको रैंडमली एक मैसेज डालते हैं कि आपको शेयर ट्रेडिंग में क्या आपको टिप्स है जिससे आपको ज्यादा फायदे होंगे, इस तरीके के आपको लगातार मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को देख के उन ग्रुप में शामिल होके उसमें फिर आदमी वो लगातार, आप समझिए कि ये साइबर फ्रॉड एक दिन में होने वाला नहीं है, ये पूरा इंतजार करते हैं, हमारे यहाँ जो आते हैं विक्टिम वो 6-6 महीने तक वो लोग वॉच करते हैं, 6 महीने तक ये उस ग्रुप में शामिल रहते हैं, बकायदा उसमें ट्यूटोरियल चलता है, उसको ये सीखते हैं, उसको देखते हैं, पूरी क्लासेस अटेंड करते हैं कि सुबह की 2 घंटे क्लास, शाम की 2 घंटे क्लास, इस तरीके से, और उसमें जो व्हाट्सएप में जो ग्रुप में प्रोफाइल्स होती हैं वो सारे जो स्टॉक मार्केट के जो अच्छे नाम होते हैं उन्हीं की फोटो लगी हुई और उसी पे लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है इस चीज पे, फिर उसके बाद वो चूंकि वो ऑलरेडी शेयर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा विक्टिम हमारे पास नहीं आया जिसकी 20-25 लाख से कम की प्रोफाइल रही हो उस टाइम, तो वो पहले ऑलरेडी कर रहे होते हैं, वहां पे इनको ये ट्रस्ट आता है, अच्छा उस ग्रुप में बहुत सारे उन साइबर अपराधियों के लोग ही शामिल होते हैं, वो बार बार डालते हैं कि देखो मुझे इसमें आपने टिप्स दिया, इसे मुझे इतने का फायदा हुआ, मुझे इतने का फायदा हुआ, कोई बोलता मुझे 25 लाख का फायदा हुआ, कोई 50 लाख का, उसे कुछ दिनों बाद ये लगता है कि मैं बाहर बैठा हुआ इस लाभ से दूर हो रहा हूँ, तो इस चक्कर में फिर वो अच्छा उसके बाद वो जरा सा इंटरेस्ट दिखाता है, फिर वो 1-to-1 उससे कम्युनिकेट करने लगते हैं साइबर अपराधी, 1-to-1 कम्युनिकेट करने के दौरान पहले तो आपके जो भी रिनाउंड है, जैसे आपका ICICI बैंक अगर वो है तो UICICI के नाम से ऐप बना हुआ है, एंजल वन के नाम से जैसे प्राइवेट है उसके एंजल वन BG के नाम से वैसा ही, अच्छा, आप आइकॉन दिखता हुआ एक मिलता जुलता एक ऐप बना के दे दिया, एक आपका धनिंग के नाम से एक ऐसी ऐप था, मोतीलाल ओसवाल का ऐप है, आपका महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक का KKR प्रो के नाम से एक बना दिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐप ऐसे ये मिलते जुलते नाम के बना देते हैं और उससे फिर उनको उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि ये सही है, अच्छा वहां पे ये कहते हैं कि हम आपको बल्क में ट्रेडिंग कराएंगे, अभी आप जैसे जो भी अगर शेयर ट्रेडिंग करता है, जो भी स्टॉक ट्रेडिंग करता है वो आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, उस डीमैट अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट हो जाता है, जब कभी भी आप शेयर खरीदते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपके पास एक मेल आती है, और जब आप सेल करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे अपने आप आ जाते हैं और आपके पास मेल की कंफर्मेशन आ जाती है उस संबंधित कंपनी से, यहाँ पे इस बेसिक थंब रूल को ही ये ओवरलुक कर देते हैं, जितने भी आते हैं जैसे आज ही जो CA साहब आए हुए हैं मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप ये बताओ कि आपने ये विभिन्न अकाउंटों में पैसे क्यों डाले, आप डीमैट में जब आप अकाउंट के थ्रू जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने आपके अकाउंट लिंक रहता है उसी से सारी ट्रेडिंग होती है, तो आपने ये डिफरेंट डिफरेंट में क्यों डाला, तो वो कहते हैं सर बस ही, तो आप बेसिक जो थंब रूल है उसको ओवरलुक करना ही इस फ्रॉड का शिकार होने का मेन कारण है।
1: सो जैसे आपने बताया जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ऐसे इन्वेस्टर्स की प्रोफाइलिंग करते हैं बेसिकली, और उनको टारगेट ही इसी तरीके से होती है कि ऑलरेडी उनका एक इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें पता है कि अगर हम इनका ट्रस्ट जीतने के लिए इनको ऐसे प्रोफाइल्स दिखाएं जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो चाहते हैं कि थोड़ा और पैसा लगाए और अच्छा उनको इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिले। तो ऑलरेडी साइबर क्रिमिनल्स बहुत सोच समझ के, जैसे आपने बताया कि कितने सीर उस लेवल पे टारगेट करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दरअसल इसमें होता है ये ना कि जो इनका जो फेक जो ये फोर्ज जो ऐप बनाते हैं या लिंक के माध्यम से वेब पेज पे जब ये आपका अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग का, उस अकाउंट में आपकी सारी ट्रेडिंग शिवरो ट्रेडिंग दिखाई देती है कि आपको बल्क में इतने शेयर उन्होंने अलॉट किए, उसके इतने प्राइस बढ़ रहे हैं और इस तरीके से, और वो आपको जैसे आईपीओ अमूमन आपको एक लॉटरी के माध्यम से या उसके से एक निश्चित क्वांटिटी का आईपीओ आपको मिलता है जब आप उसे परचेज करते हैं। ये कहते हैं कि हम आपका इंस्टीट्यूशनल या ट्रेड अकाउंट बना रहे हैं, इस अकाउंट में आप जितने कहोगे उतने का हम आपको आईपीओ दिला देंगे। तो एक एक व्यक्ति को वो 25-25, 50-50 लाख की आईपीओ दिला देते हैं, और उसके बाद जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहते हैं हम आपको फाइनेंस कर दे रहे हैं, और वो आपके न चाहते हुए भी आपको 50 लाख का 25 लाख का वो आईपीओ अलॉट कर देंगे। फिर वो बोलेंगे आप देखिए इस आईपीओ का रेट इतना आ गया है, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, अब पहले आप पहले पुराने वाले पैसे आप चुकाइए तब आपको ये इसका फायदा मिलेगा, और इसके बाद वो इस चक्कर में फंसा लेते हैं उनको, और उसके बाद उस पैसे जमा कराने के नाम पे इनसे और पैसे ले लेते हैं। तो ये मुख्य तरह से मतलब इस तरीके इतना ज्यादा ये अपने जाल में फंसा लेते हैं कि आदमी को लगता है कि मैंने 50 लाख लगाए थे और ये मेरे 3 करोड़ हो गए। अब वो 3 करोड़ पाने के लिए वो कहेंगे अच्छा, फिर वो बोलेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म वो प्रॉफिट का टैक्स लगेगा, आपको ये टैक्स लगेगा वो टैक्स, इतने सारे टैक्स वो नए नए नाम बना के लेंगे, और उसमें आदमी पैसे जमा सोचता है कि 5 लाख रुपए और जमा करना है, 10 लाख और जमा करना है, फिर पूरे पैसे आ जाएंगे, अब इस चक्कर में आदमी पैसा जमा करता चला जाता है। तो ये
1: बहुत
2: उस समय वो उनके कुछ क्वेश्चनेयर होते हैं कि आप क्या आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, आपने यस बोला देन आप आगे जाओगे, नो बोला तो उनके आप काम के नहीं हो। फिर उसका नेक्स्ट में आया कि आपकी प्रोफाइल कितनी की है, कितने पैसे के हैं, तो आपने 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख डाला, तो उस हिसाब से वो आपको अपने उसमें ग्रुप में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब उनके ग्रुप में जब आप जाते हैं वहां पे, तो वहां पे उनके कम से कम 20-25 ऐसे मेंबर होते हैं जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो इन्वेस्टर है, और कुछ लोग एडमिन होते हैं। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो बार बार ऐसे ऐसे डेली के डेली वो कुछ ऐसा डालेंगे कि सर आपकी इस टिप की वजह से मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया, आपकी इस टिप की वजह से मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया। और ये आदमी जो दरअसल होते हैं सारे इंटेलेक्चुअल हैं जो इसके विक्टिम में, वो अपने आप बहुत होशियार समझते हैं, वो 2-2, 3-3 महीने तक वॉच करते हैं उस ग्रुप को, फिर उसके बाद उनका लालच अंदर का जागता ऐसा है कि फिर वो अपने आप को बचा नहीं पाते इसके बाद।
1: सर गारंटीड रिटर्न्स वीआईपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप या एक्सपर्ट टिप्स जैसे क्लेम्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, और इनमें कौन से रेड फ्लैग्स छुपे होते हैं?
2: देखिए एक सीधी सी बात है कि आपको किसी भी जगह पे अगर 20%, 25%, 30% का प्रॉफिट एक महीने में आपको दिखा रहा है कोई भी, तो वो 100% आप मान चलिए कि फ्रॉड है, इसमें तो कोई आपको दिमाग लगाना ही नहीं है पहली चीज तो। अब दूसरी चीज ये कि ये यहाँ पे जैसे कोई भी, जैसे आज की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे जो हमारे सीए साहब आए हुए थे आज उनके साथ में जो हुआ फ्रॉड, तो उनको ट्रेडिंग के टिप्स के नाम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो थे, उसमें HSBC के जो उनका डीमैट का जो फॉर्मेट है उसका एक उन्होंने लिंक भेजा, उस लिंक के थ्रू एक वेब पेज में चले गए, उसमें HSBC का लोगो दिख रहा है, नीचे उन्होंने यूजर आईडी दिया, पासवर्ड दिया, उस पे वो जाके लॉगिन किया। अब उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट में, देखिए वो आपके हर कमजोरी पे वो हाथ रखते हैं, वो आपके मन में डाउट आएगा कि सर आप हमसे बार बार अलग अलग बैंक अकाउंटों में क्यों पैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके पास जवाब है कि सर इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है और इतना ज्यादा हो रहा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएंगे, बेवजह आपसे क्वेरी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये बोल के उनको बेवकूफ बना देंगे। दूसरे ये है कि वो अपने हर उस बैंक अकाउंट का जो करंट बैंक अकाउंट होता है, जो म्यूल अकाउंट होता है, उसको वो ये साबित करने के लिए कि ये सेबी से और इनसे रजिस्टर्ड है, वो एक फेक सर्टिफिकेट बना के व्हाट्सएप पे दे देते हैं, जिसपे सेबी का बकायदा ऊपर डिटेल्स लिखी रहेंगी, नीचे उसका एक नंबर लिखा होगा, बैंक अकाउंट लिखा होगा, सारी चीजें लिखी होंगी, और वो आपको वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपको लगता है कि हाँ ये तो एकदम सही अकाउंट है, इस तरीके से फंस जाता है। इसमें मेन चीज है लालच,
1: डर क्रिएट कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएंगे, और लालच तो दे ही रहे,
2: लालच का कोई मतलब वो नहीं है।
1: सर फेक प्रॉफिट्स या इनिशियल रिटर्न्स दिखाकर लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाने का ये टाइप कैसे काम करता है?
2: देखो मैंने बताया ना आपको कि एकदम बहुत सिंपल सा है कि आपको हमेशा ये लगता है कि आप जो हमारे विक्टिम्स है खासतौर पे वो सारे अपने अपने फील्ड के काफी अच्छे लोग हैं, सफल लोग हैं, तो उन्हें ये लगता है कि मैं अपने इस फील्ड में बहुत सफल हूँ तो अब मुझे क्योंकि स्टॉक का में प्रॉफिट का आप डेली देखते होंगे, बहुत सारे आपके अकाउंट्स हैं जो आपको शेयर ट्रेडिंग टिप्स के नाम पे बोलते हैं ये वाला शेयर ले लीजिए आप इतने दिनों में इतना प्रॉफिट हो जाएगा है। तो आपको वो बेसिकली लाभ की चीज ही बताते हैं और इतने ज्यादा आपको लगता है कि यार सारे लोग स्टॉक ट्रेडिंग करके ये पैसे अपने 4 गुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना बना ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बेसिक ये आदमी के अंदर की ये भावना होती है जिसको वो इनकैश करते हैं और उसके बाद तो फिर वो उनके जाल में आदमी फंसता चला जाता है। और अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें टिप्स वगैरह देने के लिए ये किसी अच्छे जानकार लोगों को भी रखते हैं क्योंकि उनके जो मैंने उनके ग्रुप्स को पढ़ा है जो चीजें हैं उसमें टिप्स इतने जेन्युइन टिप्स होते हैं कि आपको कतई लगेगा ही नहीं कि ये कोई फ्रॉडस्टर दे रहा है या कोई अपराधी या कोई वैसा व्यक्ति दे रहा है जिसको स्टॉक मार्केट बारे में जानकारी नहीं है। तो सारे अच्छा चेहरे वो सारे नामी उठा लेते हैं मार्केट के सारे नामी चेहरे जो भी किसी भी डीमैट ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी रिनाउंड नेम है उसके नाम की प्रोफाइल की फोटो लगा लेंगे वो और उसी की तरफ से टिप्स देते हैं। तो बस
1: फ्रॉडस्टर्स को भी पता ही है कि जो विक्टिम है अगर उस पर इतना पैसा है वो इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। तो जैसे आप बता रहे कि वो 3 से 4 महीने पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर उस जाल में धीरे धीरे फंसना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स भी स्मार्ट ही हो रहे हैं इस तरीके से क्योंकि
2: फ्रॉडस्टर तो काफी स्मार्ट है, मतलब ज्यादा ही स्मार्ट हम कहेंगे उन्हें क्योंकि वो देखिए अभी भी ना शेयर ट्रेडिंग के और इन सब चीजों के बारे में आम पब्लिक को बहुत सारी जानकारी नहीं है, आम मतलब किसी को भी बहुत ज्यादा जानकार नहीं है। आप एक डीमेट अकाउंट खोल के आप सामान्य ट्रेडिंग करते हैं अभी ने ये यहीं पे वो उनकी वो ये बोलते हैं कि हम आपका इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोल रहे हैं। अब उनको इंस्टीट्यूशनल अकाउंट जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती ये भी नहीं मालूम उनको। वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं, अब ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होता है वो कहेंगे आपको ये सब बल्क ट्रेडिंग मिलेगी। जैसे मैं आज यहाँ आने के पहले मैं उनसे सीट साहब से यही सब प्रश्न कर रहा था, मैंने कहा भाई साहब फंस कैसे गए इसमें? तो उन्होंने कहा सर उन्होंने ये बोला कि इस लिंक के थ्रू आप HSBC के उसमें जाएंगे वेब पेज में और हम आपका ट्रेडिंग का एक अलग से अकाउंट खोल रहे हैं जो डीमेट अकाउंट से अलग होगा, इसमें आपको कितनी भी क्वांटिटी के आपको शेयर मिल जाएंगे साइज में। कह रहे तो डीमेट अकाउंट में भी आप खरीद सकते थे, यानी सर इसमें जो है वो IPO पे भी जितना हम चाहेंगे उतना मिल जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने कहा आपने डिफरेंट अकाउंट में पैसे क्यों डाल दिए? सर उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह सबको भेज रहे थे जिससे कि ये सेविंग में रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं और ये वो करके उन्हें चक्कर में आ गया था। तो बस सिंपल सा तरीका है इनका फ्रॉड करने का और आदमी फंस जा रहा है इसमें।
1: सर किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसे लगाने से पहले सिटीजंस को कौन से बेसिक वेरिफिकेशन चेक जरूर करने चाहिए?
2: देखिए एक तो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो किसी वेबसाइट के जेन्युइन होने ना होने को आप चेक करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जो भी जेन्युइन वेबसाइट होगी उसमें नीचे अबाउट दिया रहता है
1: जी।
2: उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल दी रहती है, आप उस कॉन्टेक्ट पर्सन की जो भी डिटेल दी हुई है ना कि जो फ्रॉडस्टर आपको नंबर दे रहा है उसपे उस वेबसाइट पे जो डिटेल दी है उन पे आप कॉल करके देखिए। आप उस जैसे अगर मान लीजिए ICICI का बोल रहा है कि हम ICICI के ये की तरफ से ट्रेडिंग करा रहे हैं, आप ICICI वालों से सीधे बात कर लीजिए। आप पूरे अपने जीवन भर की कमाई लगा रहे हैं जहाँ पे, तो थोड़ा सा तो ट्रस्ट करिए आप, मतलब अपनी अपनी जागरूकता पे और अपनी चीजों पे और अपने हिसाब से फिजिकली जरूर वेरीफाई करिए। अगर आप फिजिकली वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से फंस जाएंगे। और आदमी जितने भी हमने वेबसाइट इस टाइप की देखी है उसमें कहीं पे भी कोई डिटेल होती नहीं है इस तरह, और आप कभी भी आप कॉल करेंगे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि फ्रॉड है। लेकिन आदमी उस लाभ के चक्कर में इतना फंस जाता है, इतना वो लगता है कितनी जल्दी मैं कितना डाल दूं और कितनी जल्दी कितना पैसा बना दूं, बस इस चक्कर में आदमी फंस जाता है।
1: तो बाकी जैसे आपने बताया वेबसाइट के लोगोस, हल्का सा URL में अंतर कर देना, तो ये सब चीजें भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी एक्चुअली में सर्च भी कर लेंगे तो आप डिफरेंस भी देखेंगे।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये फेक और ये रियल है
2: बिल्कुल। बट लेकिन वो दरअसल ना उनको ये बस बताते हैं कि हम जो आपको ये अलग से चुना है हमने आप दुनिया के एक सबसे मतलब योग्य व्यक्ति हैं हमारे लिए और हमने आपको चुना है और आपको इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोल के हमने आपके लिए अलग से पूरी व्यवस्था बना रखी है एकदम VIP वाली। और उस चक्कर में वो इस तरीके से ऐसा झांसे में लेते हैं भाई हमारे यहाँ पे लगभग 700 हम लोगों ने 2.5 सालों में केस रजिस्टर किए हैं, और इसमें मैक्सिमम जो है वो शेयर ट्रेडिंग स्टॉक इसके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ही हैं, और वो सारे लोग हर समाज के सब हर क्षेत्र के लोग हैं उसमें विक्टिम, डॉक्टर हैं उसमें, आईबीएम के ठीक ठाक लेवल के ऑफिसर हैं उसमें, बैंक का आपका नेशनल जो उनकी साइबर देखता है वो है, जो ये रिक्वेस्ट करता है सर कहीं से भी मेरा नाम ना जाने तो मेरी साइबर मतलब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी का नेशनल हेड है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, एडवोकेट मैंने बताया ही आपको, मतलब मुझे नहीं लगता फील्ड कोई कोई आदमी बचा हुआ है जो इनका शिकार नहीं हुआ है। काफी ज्यादा मतलब वो लोग किसी भी एंगल से मतलब वो अपने क्षेत्र के निश्चित रूप से बहुत सफल व्यक्ति हैं। वो भाई जो भी व्यक्ति 4 करोड़ हमारे यहाँ 8 करोड़ तक के फ्रॉड लिखे गए हैं, जो व्यक्ति 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ का नौकरी पेशा व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है मीन्स कि वो अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल है, यही लोग इसके शिकार हैं। तो यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर इनमें से जितने भी हमारे विक्टिम हैं इनमें से किसी को भी अगर हम ये अवेयरनेस के बारे में बताते कि आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ये अवेयर हो जाइए तो वो सोचते हैं मुझे क्यों बता रहा है। तो ये हम लोग के अंदर की जो भाव है ना कि हमें किसी अवेयरनेस की जरूरत नहीं, हम तो स्वयंभू हैं, हमें सब कुछ मालूम है। तो यहाँ पे मैं ये सभी से ये जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जैसे हम लोगों के I4C की तरफ से जो आपका साइबर दोस्त में आप लगातार नए नए फ्रॉड के वीडियोस डालते रहते हैं, सही चीज डालते रहते हैं, इसको जरूर देखें। देखिए और आप ये सोच के ना देखें कि आप इसे फंसेंगे, आप ये सोच के देखें कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द किसी और को आप नहीं फंसने देंगे, आप इस भाव से ही देखें लेकिन देखें जरूर।
1: सर हमारे व्यूअर का सवाल आया है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हो गया है या उसने फ्रॉड प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो तुरंत क्या स्टेप लेने चाहिए?
2: देखिए एक तो इसमें बहुत दिक्कत ये आती है कि ये फ्रॉड का शिकार जो आदमी होता है वो मिनिमम पीरियड उसका महीना भर से तो कम नहीं होता, एक मंथ से तो कम होता ही नहीं है, और अमूमन 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के लोग मेरे पास आए हुए हैं। तो लेकिन फिर भी जैसे भी आपको लगता है फ्रॉड के आप शिकार हुए हैं, सबसे पहला काम तो ये कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट उठाइए और उसमें से जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की है उन ट्रांजेक्शनों को हाईलाइट करिए और 1930 पे कॉल करिए और सबसे पहले उसको आप दर्ज कराइए, और दर्ज करा के आपने आप जो भी निकटतम आपका साइबर सेल का जो भी सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में तो आप जानते हैं हर थाने पे हमारे यहाँ साइबर हेल्प डेस्क बनी हुई है जिसमें कम से कम 1 सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल होते हैं, तो हर थाने पे ये है। और इसके अलावा हमारे हर जनपद में एक साइबर थाना बना हुआ है जो कि एक्सक्लूसिवली इसके साइबर की ही विवेचनाएं करता है, तो 5 लाख से ऊपर तक के सारे केस वहीं पे ही रजिस्टर होते हैं। तो आप या तो अपने जिले के साइबर थाने पे पहुंच जाएं या फिर साइबर हेल्प डेस्क पे पहुंच जाएं और वहां जाके अपनी कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से लॉन्च जरूर कर दें। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे उसके बाद से फिर हम लोगों का काम चालू हो जाता है, और कोशिश करते हैं हम लोग कि अधिक से अधिक लोगों को रिटर्न कराएं। हमारे हम लोगों ने लगभग 20 से 25% के आसपास हम लोगों का रिफंड रेशियो है, और हमारे कम से कम 30-40 ऐसे विक्टिम भी हैं जिनके हमने 100% पैसे वापस कराए हैं। तो आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन तुरंत देनी है और जितनी जल्दी आप देंगे उतनी जल्दी ही आपके पैसे बचने के चांसेस बढ़ेंगे।
1: सर आई थिंक हम भी अपने व्यूअर्स को कॉन्स्टेंटली यही बताते रहते हैं कि अगर स्कैम हो जाए तो तुरंत 1930 पे तो कॉल करना ही है, और इनकेस अगर फोन बिजी है और उनको लग रहा है कि डिले हो रहा है तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर स्टेशन जा सकते हैं और इमीडिएटली रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग इमीडिएटली एक्शन लेते हैं तो मनी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है जिससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: और आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसपे साइबर क्रिमिनल अटैक ना कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी अटैक अगर करते हैं वो, चाहे आपके पास लगता है कि कोई फॉरेन के नंबर से कोई ऐसी कॉल आ रही है या कुछ भी होता है, आपके साथ अगर फ्रॉड नहीं भी हुआ है तो भी आप उसकी कंप्लेन जरूर लॉन्च करें। अगर आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं और इसके लिए आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, आप 1930 पे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप cybercrime.gov.in आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं, और अगर लॉन्च करते हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि कितने लोग इसके शिकार होते होते बच गए हैं और कितने लोग शिकार हो रहे हैं और कौन व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है, ताकि वो उन नंबरों पे कार्रवाई की जा सके और बाकी लोगों को इससे शिकार होने से बचाया जा सके।
1: सर जैसा आपने बताया NCRP पे ही एक चेक इन सस्पेक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन है, वहां पे हम स्पैम नंबर्स या ऐसे कोई बच गया किसी स्कैम से वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं एंड इमीडिएटली पुलिस स्टेशन से भी आप वो फाइल करवा के एक्शन ले सकते हैं।
2: बिल्कुल, हम लोग जो भी साइबर अपराध में जो भी मोबाइल नंबर्स यूज होते हैं या जो भी अकाउंट्स होते हैं उन सब पे हम लोग कार्रवाई करते हैं और जो भी नंबर इसमें अपराधियों द्वारा यूज किया जाता है उन्हें हम तुरंत ब्लॉक कराते हैं, उसको रिपोर्ट भेज के और सही चीजें करते हैं। तो यदि आप सूचना देते हैं तो निश्चित रूप से, अगर देखिए एक सीधी सी बात है कि एक अपराधी, साइबर अपराधी बिना दो चीजों के कोई अपराध नहीं कर सकता। नंबर एक, उसे एक मोबाइल फोन चाहिए, एक नंबर चाहिए कॉल करने के लिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, और दूसरा एक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट भी पैसे लेने के लिए। ये दो ही चीज है। यदि हम सब लोग इस बात के लिए जागरूक हो जाएं कि जैसे संचार सारथी पे जाके हम देखें कि हमारे नाम से कितने सिम इशू हैं, यदि वो सिम हमने यूज नहीं कर रहे हैं या हमारा कोई घर का व्यक्ति नहीं यूज कर रहा है, उसे ब्लॉक करा दें। अगर हम सब लोग ब्लॉक करा दें तो अपराधियों को नंबर ही नहीं मिलेगा, एक पहली चीज। दूसरी चीज है कि खासतौर पर मैं ये तो हमारे समाज के वो लोग जो इंटेलेक्चुअल है या वो है जो नेशनल पार्टी के शिकार हो रहे हैं, साथ में समाज का बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है, वो उसके क्रेडेंशियल लेके, उसके आधार पैन वगैरह लेके अपराधी जो है वो करेंट अकाउंट खुलवा ले रहे हैं। करेंट अकाउंट का खुलना, अब जैसे बैंक अगर इसमें अच्छे से ड्यू डिलिजेंस से काम करे तो ये म्यूल अकाउंट खुलेंगे नहीं। एक व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट के शॉप के नाम पे एक अकाउंट खुलवाता है, करेंट अकाउंट खुलवाता है, और वहां जाके जो चेक करता है वो देखता है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट की दुकान ही नहीं है, एक किराए का कमरा है जिसपे दो चार हैंगर में कपड़े टंगे हैं, और उस तरीके से जब वो अकाउंट खोल देते हैं उस अकाउंट के माध्यम से पैसे चले जाते हैं। तो मैं इसमें बैंक वालों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी कुछ ऐसा करें कि अकाउंट्स खोलते समय थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि उनके पास में अपना टारगेट होता होगा ज्यादा ज्यादा अकाउंट खोलने का या बाकी सबका, लेकिन उनके ज्यादा अकाउंट खोलने के चक्कर में लोगों के पैसे चले जाते हैं।
1: सर आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या की अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे? ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करते वक्त लोगों किन रेड फ्लैग्स को कभी नो ना करें?
2: देखिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए तो हम लोगों ने काफी बातें कर ली और बेसिक चीजें ये बता दी। आपको सीधा सा बात समझ में आना चाहिए, वो ये है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए किसी भी एक रजिस्टर्ड एक अच्छी फर्म का। आपका डीमैट अकाउंट हो, उस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है और उसी के माध्यम से आपकी सारी ट्रेडिंग होती है। इस बेसिक थंब रूल को कभी भी ओवरलुक ना करें। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल तरीका है। ऐसा कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट नहीं होता, कोई आपको मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग करने वाली कोई भी संस्था ऐसी नहीं जो अलग अलग बैंक अकाउंट देके आपको पैसे जमा कराए। अगर ये सब हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, इसका मतलब आप फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में ना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा मोबाइल। मोबाइल पहले एक कम्युनिकेशन और एक केवल कम्युनिकेशन का साधन था, बट आज की डेट में हमारा ये केवल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, ये आपकी सोशल लाइफ है, ये आपकी इकोनॉमिकल लाइफ है, आपकी सारी चीजों इसी से रेगुलेट हो रही है। अगर आपकी कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हों जो अगर कोई व्यक्ति आपका मोबाइल हैक कर लिया तो आपके वो फोटोग्राफ्स के नाम पे आपको ब्लैकमेल कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसके अलावा आपके बैंक से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। अच्छा एक और है, लोगों को लगता है ना कि हमने तो अपने में इंटरनेट बैंकिंग ऑन नहीं कराई, ये नहीं कराई तो हमारे साथ तो फ्रॉड होगा नहीं। तो भाई अगर आपके मोबाइल की एक्सेस किसी को मिल गई तो कितनी देर लगता है उसको मोबाइल बैंकिंग ऑन करने में? तो 2 मिनट में हो जाता है सारी चीजें। तो आप एक चीज हमेशा से ये मान के रखिए कि आपका मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उस मोबाइल को बिना हैक किए हुए कोई व्यक्ति आपके पैसे नहीं निकाल सकता। दूसरी चीज, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे विक्टिम आते हैं वो कहते हैं सर हमें मालूम नहीं कि हमारे पैसे कैसे निकल गए, और जब आप देखोगे तो उसमें कोई एपीके फाइल या कोई कोई एसीआई होती है आईजेल के नाम से, आरटीओ चलाने के नाम से, इनविटेशन के नाम से, और उनका मोबाइल हैक हुआ रहता है। तो मोबाइल हैक करके ही कोई व्यक्ति आपका एक्सेस ले पाता है। तो आप अगर एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें खासतौर पर सतर्क रहें कि कोई एपीके जो उसकी सेटिंग्स में जाके और जहाँ पे इंस्टॉल करने का एप्लीकेशन का रहता है वहां पे आप उसको सेटिंग को ठीक कर लें ताकि कोई भी एपीके फाइल लिंक के माध्यम से किसी माध्यम से आपके मोबाइल में इंस्टॉल ना हो। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी लिंक पे बेवजह ना उसको देखें। दूसरी ये है कि आप कवच, आपका जो एम कवच है उस ऐप को आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल को बीच बीच में स्कैन करते रहें कि कोई ऐसा आपने ऐप इंस्टॉल तो नहीं कर लिया जो बेवजह आपकी सारी परमिशंस ले रखा है। तो बस इस तरीके से आपको सतर्क रहना है। और सबसे बड़ी चीज ये कि यदि आपको लगता है कभी भी कि आपको मोबाइल हैक हो गया है तो आपको कुछ भी करने के पहले सबसे पहले आप मोबाइल का डेटा बंद कर दीजिए। डेटा बंद किया, कनेक्शन बंद हुआ, उसके बाद फिर आप कुछ भी करिए, एटलीस्ट वो आपकी किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाए। बस सिंपल सा तरीका है, आपको बहुत, देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है साइबर से बचने के लिए, बहुत छोटे छोटे थंब रूल्स हैं इसके, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी आप इसके शिकार नहीं होंगे।
1: बस सतर्कता ही बहुत इम्पोर्टेंट
2: है। अच्छा, आप साइबर अपराध से बिना जागरूक हुए बच नहीं सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं इससे बच के रहूंगा, तो यदि आप जागरूक नहीं है तो आप बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं से आपको अटैक होगा जरूर और आप इसमें शिकार होंगे जरूर।
1: तो स्कैमर्स हर रोज नया कोई ना कोई मेथड लेकर आते हैं स्कैम करने के लिए, अगर एक चीज बंद हुई तो उसमें लूपहोल फिगर आउट कर लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग का इसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। आपको इसमें जो खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, वो अक्सर उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और वो लोग परेशान होते हैं। आप P2P ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे फाइनेंस के थ्रू या किसी के थ्रू, आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी, कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट सही है, आपने अकाउंट से पैसे डाल दिए उसके में। जब कभी भी आप अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं तो जो पैसे आपको मिलते हैं उस वो पैसे किस अकाउंट से आए हैं इस पे आदमी ध्यान नहीं देता। वो तो बस ट्रांजेक्शन हो गया, हाँ जी हो गया, बस इट्स ओके। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से आपने ट्रेडिंग की है क्या वो अकाउंट उस व्यक्ति के ही नाम पे है, इसको आप इंश्योर कर लें, इसको वेरीफाई कर लें, देन उस पैसे को रिसीव करें। अदरवाइज आप फिर इसमें, क्योंकि फ्रॉड का पैसा आएगा तो फिर आप कुछ भी कहते रहे कि भाई हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग में किया, ये किया, वो किया, बट अगर आपको चोरी का या आपको साइबर अपराध का पैसा यदि आपके अकाउंट में आया है तो जवाबदेही कुछ ना कुछ तो आपकी बनी जाती है उसमें,
1: बिना जानकारी के वो भी फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं,
2: फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं और परेशान होते हैं फिर उसके बाद। तो इसलिए मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो के ट्रेडिंग करते समय विशेष सावधानी बरतें, खासतौर पर अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करते समय। वो किसे बेच रहे हैं, वो व्यक्ति अपने ही अकाउंट से पैसे डाल रहा है या किसी साइबर अपराधी के अकाउंट से पैसे डाल रहा है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है।
1: सर, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और उनके प्रैक्टिकल बचाव के तरीकों पे आपने जो आज जानकारी दी वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट रही। थैंक यू साइबर सेफ लाइफ सेशन का हिस्सा बनने के लिए एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम, टिल देन स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्मड एंड स्टे साइबर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आप सभी ने जाना कि स्कैम से बचने का तरीका क्या होता है, स्कैम को समझना कैसे होता है। कोई भी ऑफर, कोई भी आपको हो सकता है, वो लालच ही देते हैं ताकि आप फंस जाएं उसमें कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे या इतने में इतना मिल जाएगा, या हो सकता है एक आध बार आपको कुछ प्रॉफिट वो करवा भी दे ताकि आपको भरोसा हो जाए और उसके बाद वो उसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कभी भी एकदम से पैसा नहीं आता, या कभी भी आपको बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, यूं ही कुछ मिल जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उस चक्कर में हो सकता है आपके पास जो है वो आप वो भी गंवा दें। इसलिए हमेशा हमेशा लालच से बचें, हमेशा आप सही तरीके से पैसे कमाने के बारे में ही सोचें। इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के, पूरी रिसर्च और जानकारी के साथ करें। और दूसरी बात, अगर कोई फ्रॉड हो भी जाता है तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट करें। साइबर क्राइम की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, या फिर साइबर सेल अगर आपके आसपास है तो वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा उतना ही रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अपने को सेफ रखें और ये जानकारियाँ दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। कभी भी आपको कोई जानकारी ऐसी मिलती है, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, हाय हेलो करते हैं ना, शाम को टहलते हैं, कभी दुकान पर मिलते हैं, तो बातें तो होती हैं। उन बातों में कहीं ना कहीं ये भी जिक्र ज़रूर करें कि फ्रॉड से बचना कैसे है, या किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो कैसे आपको झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। कभी भी कोई आपको बोले कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, आपका इसका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, उसका नहीं ट्रांसफ़र हो पाया, तो आप कर दो, या फिर देखो मेरा पैसे गलती से आ गया। एक और स्कैम हो रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं किसी और को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, आपके में आ गए हैं गलती से, देखो 10,000 रुपये आए होंगे, अच्छा आप मुझे वापस भेज दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है। तो आप देखेंगे आपके पास मैसेज भी आया होगा कि 10,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो मतलब मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, कोई इंसान है भाई, उसको ज़रूरत है और गलती से मेरे अकाउंट में आ गए हैं, किसी और को भेज रहे थे वो, तो मैं उनकी मदद करता हूँ, वापस भेज देता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मैसेज होता है, असलियत में आपके अकाउंट में नहीं आते, वो सिर्फ आपको एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि 10,000 रुपये आपके बैंक में जमा हुए। जमा नहीं हुए होते हैं, सिर्फ जमा होने का मैसेज आया होता है। तो इसीलिए इस तरह के भी कॉल और मैसेज से बच कर रहें। आप हर चीज़ पर भरोसा ना कर लें, खुद जांच करें फिर ही भरोसा करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भी जानकारी मिली होगी, और आपको जो सही जानकारी मिली वो दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके पास कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्ड्स आते हैं, इमेजेस आती हैं, जो आपको लगता है कि सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पहला बात उसे फॉरवर्ड नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको भरोसा नहीं है पूरा, तब तक उसे फॉरवर्ड करना ही नहीं है। और दूसरा, अगर आपको कंफर्म करना है, आपके पास साधन नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कैसे करना है, तो आप हमें यानी रेडियो मधुबन को भी वो मैसेज भेज सकते हैं कि उसे कंफर्म करके बताएं कि वो फेक है या नहीं। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: एक भाषा पर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं श्रुतुल ठाकुर जी, जो अहमदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार की बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। बहुत सालों से, करीबन 30 सालों से ज़्यादा से उनके पास एम रेडियो का अनुभव है और बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, हॉबीज़ के रूप में और इवन अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आज उनसे हम बातें करेंगे, एम के बारे में बहुत अनोखी बातें भी उनसे जानेंगे। श्रुतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार रोहित जी, और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस तरीके से।
0: जी जी धन्यवाद, हमें भी बहुत खुशी है कि आप शो पे आए, अपना समय आप दे रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए और उनके साथ शेयर कर रहे हैं अपने जीवन के बहुत अच्छे अनुभव हैम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा सा एक इंट्रो अगर आप हमारे श्रोताओं को दे सकें अपने बारे में।
1: जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आप जानते ही हैं शार्दुल ठाकुर नाम है मेरा, और मैंने एक्चुअली जो अपनी पढ़ाई करी है ये मैंने ग्वालियर से करी है एमपी से, और पढ़ाई करते करते ही मैंने ये हैम रेडियो के बारे में वहाँ जाना था तो उसकी परीक्षा दी थी। तो मैं वैसे एमएससी फिजिक्स हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, और वही कारण ये भी रहा कि हैम रेडियो के साथ भी आज तक उसमें जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी तरीके से रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। वैसे मेरा निवास जो है वो बड़ौदा का है और मैं बड़ौदा में परिवार के साथ रहता हूँ, यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया हूँ इसलिए अहमदाबाद में हूँ।
0: जी शर्दुल जी बहुत अच्छा। तो जैसे आपने कहा कि आप पढ़ाई करते करते आपने हैम रेडियो का आपको अच्छा लगा और आपने यूज करना शुरू किया और लाइसेंस भी लिया, तो आप शेयर करेंगे कि कैसे इतनी कम उम्र में पढ़ाई करते करते आपको हैम रेडियो का इंटरेस्ट आया, क्या ऐसी चीज थी जो आपने शुरू किया अपनी पढ़ाई के साथ साथ हैम को यूज करना?
1: जी बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने रोहित जी। वैसे मैं बता दूं कि वो पढ़ाई करते करते तो ये सब किया था, लेकिन एक्चुअली में उसकी जो शुरुआत थी वो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब हुई थी। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, वहीं पढ़ता था। तो 9वीं क्लास में एक बार, बहुत साल पहले की बात है, वहाँ पे फिजिकल लेबोरेटरी है, फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है कहलाती है, दिल्ली में है पूसा रोड पर। वहाँ पे हमको स्कूल की तरफ से लेके गए थे और उस समय वहाँ पे सोलर पावर का एग्जीबिशन था, उस समय की बात है काफ़ी साल पहले की। तो वहाँ पे वो एक सोलर पावर से रेडियो चला रहे थे और वो बहुत बड़ा रेडियो होता था पुराने ज़माने में वाल्व का, और वो कम्युनिकेशन रिसीवर था एक तरीके से, वो बाद में मेरे को पता लगा था। तो तब से वो रेडियो के बारे में मेरी जानकारी, उत्सुकता बढ़ी और मैंने रेडियो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना और जानकारी हासिल करना चालू करी। तो इसी दौरान जब पढ़ते पढ़ते ग्वालियर आया और एमएससी कर रहा था, तो संयोगवश हमारे जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एक हैम ही थे जो वहाँ पर पढ़ाते भी थे, तो उनसे इसी तरीके का मुलाकात हुई। तो पता लगा कि हैम रेडियो कुछ ऐसा, यही वो रेडियो होता है, तो उन्होंने कुछ जानकारी दी और उसके बाद में मैं उसमें काफ़ी गहराई में चला गया। उनसे आए दिन मुलाकात होती रहती, उनसे इसी बारे में चर्चा होती रहती थी। फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि ये तो आपको अगर इतना इसमें रुचि है तो आप भी बन जाइए, एक एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म मैं भर देता हूँ आपके नाम से, और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको बता दूँगा, और उसमें कोई बहुत बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एमएससी तो आप कर ही रहे हैं, तो जो थ्योरी का एग्ज़ाम है कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और थोड़ा बहुत उसमें वायरलेस के नियम कायदे जो होते हैं वो होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से वो तैयारी करने में उन्होंने काफ़ी मेरी सहायता करी, योगदान दिया। और एक दिन एग्ज़ाम का डेट आ गया, परीक्षा का, परीक्षा में पास हो गए, और उसके बाद में काफ़ी वैसे समय लगा लाइसेंस आने में, क्योंकि बहुत पहले इतना इसमें जल्दी जल्दी और ऐसा काम नहीं होता था क्योंकि ये तो सब शौकिया रेडियो ऑपरेटर कहलाते हैं, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगा एक साल, लेकिन मेरे को मेरा लाइसेंस मिल गया। और जैसे ही लाइसेंस मिल गया, क्योंकि इतनी रुचि थी, तो वो उन्हीं हैम से और दूसरे हैम से मैंने पता लगा लगा

0: के सबसे मिलना चालू किया। और कभी बहुत अच्छे लोग थे, उन लोगों ने अपने घर में बुला के पूरा हेम रेडियो क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी मेरे को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। पर तो इस तरीके से जो है वो जो लिंक है वो बनती चली गई और मैं इसी तरीके से जुड़ता चला गया। फिर धीरे धीरे जब नौकरी लगी तो किसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था, तो एक छोटा सा वॉकी टॉकी खरीद दिया किसी से सेकेंड हैंड। तो उस तरीके से ये काम बढ़ता गया और आज जो है वो काफ़ी समय हो गया। इसी तरह से मेरे पास दो तीन और रेडियो हैं जिससे मेरी बीच में काफ़ी विदेश में भी और लोकल भी इसी तरह से अब मेरे इसी तरह से जो हैं मित्र हैं उनसे बातचीत होती रहती है।
1: बहुत अच्छा शार्दुल जी। तो जैसे आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट आया और एग्ज़ाम भी आपने पास किया और फिर आपको बहुत ऐसे अच्छे लोग मिले जिन्होंने घर पर बुला करके आपको हैम के बारे में वो कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सब कुछ आपको सिखाया। तो क्या आप इन शॉर्ट हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हैम क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसका क्या प्रोसेस है लाइसेंस का, अगर आप वो थोड़ा शेयर करना चाहें।
0: जी बिल्कुल, ये वैसे तो प्रोसेस या पूरा जो इसका काम करने का जो तरीका है और लाइसेंस लेने के जो नियम कायदे हैं वो थोड़े विस्तार में ही होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, एक और जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है और सभी जो विभाग हैं सरकारी उनकी वेबसाइट भी होती हैं, तो सारी जानकारी मिल जाती है उस पर। लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि वैसे हैम रेडियो क्या है। ये हिंदी में अगर अपन बात करते हैं तो इसको हैम शौकिया रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं या अमेचर रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है वो कॉमन लैंग्वेज में जो है बोलचाल की भाषा में हैम रेडियो नाम दे दिया गया है। और ये पूरे विश्व में है हैम रेडियो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही हैम बोला जाता है, ये पूरे विश्व में हर जगह है। और इसमें चूंकि पूरे विश्व में है तो इस तरीके से ये काम जो है वो अपने देश में और विदेशों में सभी जगह होता है। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे वो इतनी जागरूकता है कि वहाँ पे जो हैम रेडियो ऑपरेटर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और अपने भारत में अभी बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे इस तरह से जागरूकता के कार्यक्रम जैसे आप भी कर रहे हैं, इनका भी काफ़ी योगदान होता है। तो ये होता क्या है, ये जैसे कि अपन हेड रेडियो ट्रांजिस्टर, अगर सबको जानकारी होगी कि किस तरीके से रेडियो ट्रांजिस्टर अपन ट्यून करते थे और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते थे या विविध भारती के कार्यक्रम सुनते थे, तो उसी तरीके का सा ये एक रिसीवर होता है। लेकिन इसके साथ में अगर आपको बात करनी है तो आप ही के पास में ट्रांसमीटर भी होना चाहिए। तो जो रेडियो कहलाता है, हैम रेडियो कहलाता है, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। और ये स्पेशल टाइप के होते हैं क्योंकि ये इस तरह से बाजार में तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे नियम कायदे होते हैं वायरलेस सेट रखने के लिए। तो इसमें रेडियो जब अपन सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, इस तरह से आपने कभी सुनना होगा कि आकाशवाणी में कभी कोई बोलता है कि ये शॉर्ट वेव पे इतने इतने बैंड पे काम कर रहा है, ये 10 मीटर के बैंड पे काम कर रहा है, या विविध भारती एसएस फ्रीक्वेंसी पे है। तो इसी तरीके से हैम रेडियो के लिए भी पूरे विश्व में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को निश्चित किया गया है। तो वो जो बैंड है वो कहलाते हैं, एक कहलाता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जिसको शॉर्ट में एचएफ बैंड बोलते हैं, उसके बाद में आता है वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद में आता है यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और उसके ऊपर भी और भी बैंड हैं जिनका जो कुछ और जो टेक्निकल साइड से है वो शायद समझ पाएंगे, जिसमें सैटेलाइट भी काम होता है और आपके दूसरे तरीके के रेडियो भी उसमें काम में आते हैं। लेकिन जो जानकारी नॉर्मली जो आपस में बात करने के लिए रहता है, हैम के साथ में हैम ही बात कर सकता है क्योंकि उन दोनों के पास में एक ही टाइप का ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो रेडियो कहलाता है ये होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इक्विपमेंट आपके घर में होता है और ऊपर छत के ऊपर या बाहर किसी भी उचित स्थान पे एक एंटीना लगाया जाता है जहाँ से आपका बोला गया जो भी संदेश है या जो भी आपने बोला है वो एंटीना के थ्रू बाहर तरंग के रूप में निकल जाता है और वो फिर चारों तरफ फैल जाता है। और ये जो बैंड होते हैं VHF, HF, UHF और दूसरे ऊपर के, इनके बैंड की एक खासियत होती है जो प्रकृति ने दी हुई है, वो अपने हाथ में नहीं है। कि वो कितना दूरी तक वो तरंगे जाती हैं। तो इस तरीके से ये तरंगे जो हैं जब चारों तरफ फैल जाती हैं और किसी दूसरे हैम रेडियो के स्टेशन पे पहुंचती हैं तो उस समय उनको वो सुनाई देता है। तो इस तरीके से लोग आपस में बात करते हैं, इसमें सबके अपने अपने नाम होते हैं लेकिन इसमें साथ में नाम के साथ में कॉल साइन यूज़ किया जाता है और वो कॉल साइन जो होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। क्योंकि नाम जैसे आप बोलेंगे रोहित या शार्दुल ऐसे बहुत सारे होते हैं तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये कौन शार्दुल है या कौन रोहित है। तो इसमें एक पूरे विश्व में एक नियम बनाया हुआ है जिसमें इंडिया का नाम जो है वो VU2 और VU3 से शुरू होता है, जो अपना लेटर है अल्फाबेट वी और यू, और उसके बाद में डिजिट नंबर 2 आती, कभी कभी 3 भी आती है, और उसके बाद में 3 और कैरेक्टर्स होते हैं। जैसा मेरा नाम का जो कॉल साइन है वो OPX है, OPX। तो मेरा पूरा जो नाम है या जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल साइन वो है VU2 OPX। तो ये पूरे विश्व में और कहीं नहीं होगा, तो जिसको मेरा ये कॉल साइन सुनाई देगा रेडियो पे वो समझ जाएगा, VU2 से समझ जाएगा कि ये भारत का है और OPX मेरा है। तो इस तरीके से बातें शुरू हो जाती है और रेडियो पे जो बात होती है वो सिर्फ इसी तरीके की, या तो आप टेक्निकल बात करते हैं या कोई आपस की परस्पर इस तरीके की बात करते हैं। इसमें एक नियम ये भी है कि आप किसी भी तरह से धर्म की बात या बिजनेस की बात या कोई ऐसी बात जिससे किसी को ठेस पहुंचे या किसी तरह का नुकसान हो या विवाद हो वो नहीं किया जाता है। तो इसमें सिर्फ आप आपस में इसी तरीके की जो मित्र बनाने वाली जो बातें होती हैं या फिर कोई जिसके विषय एक जैसे होते हैं वो लोग अपने विषय के ऊपर भी बात करते हैं, तो वो साइंस के ऊपर या उनके अपने जो विषय होते हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह का व्यापारिक जो चीज़ें होती हैं या कीमत के बारे में इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। और जहाँ तक इसको लेने की बात है वो ऐसा है कि भारत में एक जो अपना मंत्रालय है जिसका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें एक वायरलेस प्लानिंग कमीशन करके एक डिपार्टमेंट है, तो वो लोग जो हैं वो एग्ज़ाम लेते हैं और उसकी एग्ज़ाम जो रहती है उसमें 2-3 तरीके के अलग अलग छोटे छोटे सिलेबस हैं, वो उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं और कुछ कुछ ग्रेड ऐसे भी हैं जिसमें वो नहीं भी पूछा जाता है। फिर एक मोर्स कोड भी होता है जो जिसकी परीक्षा होती है वो एक अलग ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए होती है, ज़रूरी नहीं है वो। तो और नियम कायदे जो होते हैं उसकी एक प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र होता है। तो ये कुल मिला के बहुत छोटा सा एग्ज़ाम होता है और ये सारी जानकारी जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस प्लानिंग कमीशन इसकी वेबसाइट पे सारा उपलब्ध है और उसमें सारी जानकारी आती है। आपको फॉर्म भी वहीं भरना होता है, आपको फीस भी वहीं भरनी होती है और उसके बाद में एग्ज़ाम की भी सूचना आपको ईमेल के माध्यम से या फिर अगर मोबाइल आपने रजिस्टर किया है तो उसके माध्यम से मिल जाती है। तो ये कुल मिला के इस तरीके से होता है और आजकल काफ़ी शीघ्र है क्योंकि ये जो भारत में अभी आजकल जो वेबसाइट है और जितने सारे विभाग हैं उन सबको हैम रेडियो के प्रति क्या इसके फायदे होते हैं, किस तरह से काम करता है, ये काफ़ी अच्छा लगा है और इस दिशा में सरकार भी काफ़ी काम कर रही है और इस तरह से काफ़ी क्लब स्टेशन भी बन गए हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं।
1: जी शरदुल जी, तो जैसे आपने कहा कि इसका लाइसेंस हमको लेना होता है और आपने बताया कि लाइसेंस लेने के बाद हमको एक तरह का कॉल साइन मिलता है जो यूनिक होता है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या हम कह सकते हैं जैसे सबका अपना अपना एक मोबाइल नंबर होता है या सोशल मीडिया पे सबका एक क्या कहें यूजर आईडी या हैंडलर होता है, ये कुछ उस तरह का है कि सबके पास एक यूनिक है अपना अपना हैंडलर या अपना मोबाइल नंबर, जैसे व्हाट्सएप पे सबका अपना है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, उस पे भेजा हुआ मैसेज या उसको पुकारा गया उसी के पास जाएगा, राइट? हम ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए?
0: नहीं, इसको इस तरीके से अपन कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल नंबर्स जो हैं ये आपको पता है आजकल इसमें काफी आगे पीछे भी संभव हो जाता है, कुछ तकनीक ऐसी हैं, तो ये सिर्फ आपका नाम दिया जाता है, जैसे VU2OPX मेरा कॉल साइन है, तो ये VU2OPX VU2 जो है वो भारत के लिए रहेगा और OPX जो है वो मेरा रहेगा। मोबाइल नंबर में भी इसी तरह से, अगर भारत का नंबर है तो 91 शुरू में आता है, उसके बाद में 10 नंबर का मोबाइल नंबर भी होता है, तो इसको वो कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है कि आपको आपके नाम के कई सारे लॉगिन आईडी मिल जाते हैं, तो उसको अपन सोशल मीडिया से उतना कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, जो पीछे की चीज है यूजर आईडी, जो कभी कभी नहीं भी दिखती है, वो उससे अपन कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो आपकी अपनी खुद की बनाई हुई होती है। यहाँ पे जो है ये कॉल साइन जो है आपसे जरूर पूछा जाता है, आपकी चॉइस पूछी जाती है, लेकिन इसमें संख्या इतनी ज्यादा है कि आपके जो रुचि का कॉल साइन है हो सकता है वो ना भी मिले आपको, और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो मिल भी जाता है। तो इसमें अधिकतर जो है वो डिपार्टमेंट ही आपको दे देता है, क्योंकि वो देखते हैं कि कितने परीक्षार्थी हैं और कितने पास हुए हैं और कौन कौन से कॉल साइन बचे हुए हैं, तो वो सीरीज उनकी चलती है। जैसे कि आपके स्कूटर के गाड़ियों के जो नंबर देते हैं उसमें कुछ में चॉइस होती है एक्स्ट्रा पैसा दे के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर उपलब्ध होता है तो वो दे देते हैं, नहीं तो वो लाइन से जो चलता है वो देते हैं।
1: जी जी, तो जैसे आपने कहा कि आजकल काफी लोग और इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, और इवन गवर्नमेंट की भी आपने कहा कि कई काफी सारी वेबसाइट्स हैं और हेल्प करते हैं इस चीज के लिए, तो ऐसा क्या स्पेशल है हैम के बारे में जो आपको लगता है, कैसा ऐसा स्पेशल फायदा है हैम का जिसके लिए लोग इतना इसको यूज कर रहे हैं, इसकी तरह बढ़ावा मिल रहा है?
0: जी, ये बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि आज के समय में इस तरीके की जो रुचि वाले काम होते हैं जिसमें लोगों के पास समय नहीं है अपने दूसरे कामों के कारण, और बच्चे जो हैं या जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से समय निकालना और फिर ये करना, जिसमें उस तरीके का आपको फायदा नहीं है जो आपको आपकी आय में बढ़ोतरी करा, ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हॉबी है और ये एक साइंटिफिक हॉबी है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस टेली कम्युनिकेशन में बहुत काम आता है, और ये तब काम में आता है जब जो है अपने को जो प्राकृतिक विविधताएं जब आ जाती हैं, जब आपके फोन, जो पहले के समय में तो फिर भी फोन होते थे तो टेलीफोन के खंभे या तार टूट जाते थे, आज तो फिर भी सेल फोन वगैरह चलता है, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी सेल फोन के टावर या भूकंप के कारण थोड़े से हिल जाते हैं, उनकी पोजिशन चेंज हो जाती है और इनके एंटीना तक थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो उस समय सेल फोन नहीं काम करता है, या फिर कुछ ऐसा काम हो गया जिसके कारण सेल फोन का पूरा सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो इवन नेट भी जो होता है वो अगर कभी इस समय नहीं काम करता है, और नेट क्या होता है कि आपको जहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं वहाँ पे उपलब्ध होता है, जबकि जो अपना ये हैम रेडियो के जो सिग्नल हैं ये आपने अपने घर से अगर ट्रांसमिट करे हैं तो ये ऊपर एंटीना से चारों दिशाओं में पूरे विश्व में फैल जाते हैं, उसकी जैसी तीव्रता होती है या जैसी पावर जिसे बोलते हैं और जिस बैंड में जाता है, तो उसको आप अगर बीच जंगल में भी आपके पास दूसरा रेडियो है, या जहाँ पे आप पहाड़ में हैं, जहाँ सुनसान इलाके में हैं, जहाँ आजू बाजू आपको बहुत दूर दूर तक बिजली भी नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको इस रेडियो का सिग्नल आपको मिलता है और आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जब भी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं और इस तरीके से जो अपना नॉर्मल जो डेली लाइफ का जो कम्युनिकेशन है वो अगर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उस समय सिर्फ यही रेडियो, हैम रेडियो काम आता है, या इस तरीके के रेडियो कम्युनिकेशन से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो एक तो ये कारण है जिसके कारण सभी लोगों ने, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं नागरिक, उनको भी ये लगता है कि हम भी समाज में कुछ इस तरह का काम करें, जो कभी किसी पे विपदा आए तो हम उसके लिए किस तरह से सहायता कर सकते हैं, सरकार भी इस दिशा में सोचती है, तो धीरे धीरे करके ये चीज जो है थोड़ा प्रचलन में आ गया है। और इसमें दूसरा बात ये होती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में अपना अनुसंधान भी करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक विपदाओं में उनका कोई भी योगदान हो, लेकिन उनका अनुसंधान इस तरह से रहता है कि तरह तरह के वो एंटीना डिजाइन करते हैं, कुछ रेडियो भी वो डिजाइन करते हैं, कोई रेडियो से संबंधित दूसरी अगर उनको कुछ पार्ट लगना है, जैसे पावर सप्लाई लगती है और भी कुछ उसको मेजर करने के लिए तरह तरह के मीटर लगते हैं, तो वो उस दिशा में काम करते हैं और वो चीज बनाते हैं और उपलब्ध कराते हैं, तो वो भी उनका एक तरह का योगदान है क्योंकि वो टेक्निकली ज्यादा उसमें स्किल्ड हैं और उनकी यूं समझिए कि उनकी ज्यादा योग्यता उसमें है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास हैम रेडियो का लाइसेंस है वो प्राकृतिक विपदा में ही काम करे, वो किसी दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं, लेकिन उस स्थिति में आने के लिए आपको तैयार भी रहना होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हैम रेडियो ऑपरेटर्स बीच बीच में इस एक तरीके का रिहर्सल भी करते रहते हैं और वो रिहर्सल को एक नाम दिया जाता है अलग से, फील्ड डे से कहते हैं, और वो जो है एक तरीके का रिहर्सल होता है और उसमें लोगों को मजा भी आता है। उसमें ये भी पता लगता है कि हमारे कितने दूरी तक बात हो सकती है, किस बैंड पे बात हो सकती है, किस एंटीना को लगाने से ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। तो इस तरीके की जो अनुसंधान करते रहते हैं हैम रेडियो ऑपरेटर, वो भी जो है एक रूटीन का जो आए दिन की ये क्रिया है, ये चलता रहता है, काम होता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो हैम रेडियो काफ़ी प्रचलन में आ गया है।
1: जी बहुत अच्छा। तो इसमें एक सवाल शरदुल जी आता है कि जैसे आपने कहा कि डिजास्टर के टाइम पर इस चीज का काफी यूज हो सकता है, तो क्या एक कॉमन पर्सन जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास इस तरह का डिवाइस भी नहीं है, क्या कोई बिना लाइसेंस के सिर्फ सुनने का कुछ अरेंजमेंट कर सकता है अपने लिए कि ऐसी विपदा के कार्य में वो सिर्फ सुन सके कुछ इमरजेंसी के मैसेजेस को?
0: नहीं, ऐसा है कि हर देश में और अपने भारत में भी ये जो वायरलेस से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका एक अलग से मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है और उसके अपने नियम हैं। तो जितने भी वायरलेस सेट्स होते हैं, चाहे आप एम रेडियो बोलिए या दूसरे टाइप के भी रेडियोज होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी रखते हैं, हालांकि उनकी फ्रीक्वेंसी बैंड्स वगैरह अलग अलग होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी के जो बैंड होते हैं वो अलग दिए जाते हैं ताकि एक दूसरे के आप किसी तरीके का उसमें डिस्टरबेंस या इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसको रखने के लिए सबसे बड़ी और पहली जरूरत जो है वो ये है कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। और भारत में जो है वो तो अपने यहाँ पे जो जैसे मैंने पहले भी बताया वायरलेस प्लानिंग कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये लोग या इस डिपार्टमेंट से वो वायरलेस का लाइसेंस इशू होता है हैम रेडियो के नाम से। अब जब आपके पास में ये लाइसेंस आ जाता है तब आप सुनना क्या, आप अगर बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस तरीके का रेडियो आपके पास होना चाहिए।
1: ठीक, जैसे आपने कहा कि इतने टाइम से आप हैम रेडियो का यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग व्यक्ति, कोई ऐसी मुलाकात आपकी किसी की हुई हो, कोई देश विदेश से आपने किसी ऐसे फेमस व्यक्ति के साथ मुलाकात किया, कोई दोस्त ऐसा बनाया हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका हो जो आप शेयर करना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, ऐसे एक्सपीरियंस तो हैं और मैं दो तीन आपको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं वही बताता हूँ। वैसे तो बहुत और भी एक्सपीरियंस है, इस तरीके की घटनाएं हुई हुई हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने वैसे बताऊँ कि अधिकतर मैं भोपाल में रहा हूँ, लाइसेंस मिलने के बाद में मैं भोपाल में ज़्यादा रहा और वहाँ पर मेरी नौकरी भी लग गई थी। उसके बाद में जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से रेडियो ले लिया था, तो उसके कारण मैं ज़्यादातर भोपाल से मैंने इसको ऑपरेट किया था। तो उन्हीं दिनों की बात है, अभी वर्ष तो मेरे को ख्याल नहीं है, लेकिन वो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में बहुत पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था पारादीप में और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ऐसे समय में क्या होता है कि मेरा तो वहाँ जाना नहीं हुआ, लेकिन हमारा योगदान किस तरह से होता है कि जैसे कि पारादीप के पास की कोई जगह है या नुकसान होने के बाद में वहाँ पे कोई स्टेशन है या वहाँ पे भी कई लोग हैम हैं जो अपने घर में इस तरीके का उन्होंने हैम रेडियो स्टेशन लगा रखा है, तो नुकसान तो कोस्टल एरिया में है लेकिन उनके घर तक ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, तो वो लोग वहाँ से अपने संदेश भेजते थे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, तरंगें जो हैं वो अपने हाथ में नहीं, कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो कभी दिल्ली तक पहुंचती हैं कभी नहीं भी पहुंचती हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अगर वो तरंगे भोपाल पहुंच रही हैं या कहीं और पहुंच रही है और वहां पे कोई हैम रेडियो ऑपरेटर अपना रेडियो चालू करके बैठा है, तो वो उनका संदेश लेके वापस पुनः उसको रिट्रांसमिट कर देता है जो दूसरे जगह के लोग जहां सुन पाते हैं। तो इस तरीके का काम मैंने किया जो काफी अच्छा मेरे को भी लगा कि मैंने किसी को सहायता करी। और उसमें मजे की बात ये हुई थी कि हमारे भोपाल में कहीं कोई एक सज्जन थे, उनको किसी ने बताया।

0: था कि यहाँ पे एक हैम रेडियो ऑपरेटर रहते हैं, आप उनके पास में जाइए। उनके कोई रिलेटिव थे जो वहाँ गए थे कुछ 2-3 दिन पहले ही, और उसके बाद में उन्होंने ये समाचार में देखा कि वहाँ तो इस तरीके का विपदा आई हुई है, और उनसे उन दिनों में ऐसे सेलफोन भी नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप किसी तरह से पता कर सकें। तो वहाँ पे एक कंट्रोल स्टेशन 2-3 दिन में बन गया था, किसी और हैम ने वहाँ लगा दिया था, तो उनका मेरा कांटेक्ट हुआ रेडियो पे। इन्होंने जो बताया था उनका नाम और वो कहाँ रहने गए हैं ऐसा बता दिया था, लोकल टेलीफोन नंबर भी उन्होंने दिया था, तो वो उनको दे दिया। तो उन्होंने भी 2-3 दिन बाद पता करके वापस मेरे को संदेश पहुँचाया कि भाई वो ठीक है लेकिन वो अभी यहीं पर रह रहे हैं कुछ दिन। तो ऐसा संदेश जो उनके संबंधी यहाँ पे आए थे मेरे से मिलने, उनको मैंने दे दिया 2-3 दिन के बाद में कि साहब पता तो लगा है, डायरेक्ट बात तो नहीं हो सकती है लेकिन वो ठीक है। वो इतने प्रसन्न हुए, उनको इतना अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मेरे को तो समझ में भी नहीं आया क्योंकि मैं उस समय इतना, मैं भी नया ही था और इस तरह का काम किया, तो मेरे को वैसे खुशी हुई। और तो एक तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी क्या है कि ऐसे ही अपने जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी कुछ लोग हैं जो हैं, मैं एक, आप चारू हसन अगर नाम जानते हो, जो कमल हसन के बड़े भाई हैं।
1: अच्छा।
0: तो हाँ जी, तो वो चारू हसन भी हैम है, तो उनसे मेरी कभी ऐसे ही बात हुई थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारा कॉल साइन होता है तो हम तो कॉल साइन से बात करते हैं, तो कॉल साइन से ये पता नहीं लगता है कि कौन है और उनका नाम क्या है, वो तो बात हो जाती है तो हम लोग पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है। और इसमें भी नाम भी ऐसा होता है कि कई लोग रेडियो पे अपने नाम जो है वो दूसरे नाम भी रख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं शार्दुल बोलूं, मैं अपने आप को बॉब भी बोल सकता हूँ या कुछ और भी, कैप्टन भी बोल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, लेकिन हाँ वो मैं बदलूंगा नहीं बार बार ही। तो खैर फिर उन्होंने, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि शार्दुल आपने चारू हसन नाम सुना है? मैंने कहा नहीं साहब माफ करिए, मैंने चारू हसन नाम नहीं सुना है। तो उन्होंने कहा कि आपने कमल हसन का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कमल हसन का नाम सुना है। तो उन्होंने कहा मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मेरे को फिल्म फेयर के अवार्ड और वो मयूर अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, आपसे पहली बार ही बात हुई है और मेरे को जानकारी भी नहीं थी, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में उनसे बाद में फिर जब भी वो रोज तो नहीं आते थे लेकिन उनसे 2-3 बारी इस तरह से बात हुई। और एक तीसरा वाक्या जो आखिरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे मैंने कहा ना, पूरे विश्व में इस तरह से हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं और इसमें अधिकतर जो हैं वो अपने घर से या अपने क्लब स्टेशन से ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि कई ऑपरेटर्स जो हैं वो पायलट हैं जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, कुछ लोग मोबाइल स्टेशन चलाते हैं। तो इंडिया में उन दिनों में तो मोबाइल का उतना चलन नहीं था, लेकिन एक हवाई जहाज के कैप्टन थे वो हैम थे, और उनका मेरे को कॉल साइन सुनाई दिया, तो मैंने समझा कि भाई ये तो हवाई जहाज वाले हैं, इनसे जरूर बात करनी चाहिए, ये तो एक तरीके का बड़ा कम मौका मिलता है इस तरह से, क्योंकि पायलट जो हैं वो हवाई जहाज चलाते समय बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको इस तरीके का समय निकाल के हैम रेडियो पे बात करना नहीं एक्चुअली में हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। तो उनका कॉल आया, मैंने उनको रिप्लाई दिया और उनका कॉल बहुत ही पावरफुल आवाज़ थी, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि साहब आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैंने बताया कि मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अगला बात बताई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, उन्होंने कहा मैं भोपाल के ऊपर से ही उड़ रहा हूँ। तो बड़ा मजा आया वो सुन के, और ये भी किया मैंने कि मैं कमरे से बाहर आया और आसमान साफ था और मैंने एक बहुत ऊंचे से हवाई जहाज जाते भी देखा। तो इस तरीके से जो है वो उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि मैं इतने हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा हूँ और आप अंदाजा लगाइए कि बाहर का टेम्परेचर कितना होगा। वो मई की बात थी, शायद अप्रैल या मई की, बहुत गर्मी थी। तो मैंने कहा नहीं ये तो अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि इतनी ऊंचाई पे कितना टेम्परेचर होगा, लेकिन नीचे तो बहुत गर्मी है। तो उन्होंने कहा नहीं बाहर जो है वो -40°C। तो ये उन्होंने जानकारी दी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बस लेकिन वो हवाई जहाज था तो काफी तेजी से उड़ता है, थोड़ी देर में रेंज से बाहर चला गया, तो उनसे फिर बात लंबी भी नहीं हो पाई। और हो भी नहीं पाती है। तो ये तीन वाक्य मेरे को बड़े आज तक याद हैं और मैं कई बार ही वो लोगों को बताता हूँ।
1: जी जी बहुत अच्छा। आई थिंक ये बहुत ऐसी कम स्किल्स होंगी दुनिया में या हॉबीज ऐसी बहुत कम होंगी जिसमें आप नए दोस्त भी बना सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और साथ साथ ऐसी इमरजेंसी या ऐसी आपदा के टाइम पर आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है जहाँ पर दोनों तरह के फायदे आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं और अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी कर सकते हैं और वो आपके इन अनुभवों से साफ झलक भी रहा है कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज एक तरह से हमको मिल जाती हैं इस एक हॉबी से ही। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया
0: जी। एक चीज जो मैं जोड़ना चाह रहा था कि ये ही एक ऐसी हॉबी भी है जिसमें आप अपने घर में कमरे में बैठ के या अगर कहीं क्लब स्टेशन होता है तो वहाँ बैठ के या घर में से अधिकतर लोग घर में ऐसे रहते हैं, घर में बैठ के ही आप ये सारा जो आनंद है वो उठा पाते हैं। आपको कहीं गाड़ी से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये एक ऐसी साइंटिफिक हॉबी है जो आपको घर से ही सब आपका काम पूरा हो जाता है
1: जी। और आप एक्चुअल लोगों से बातें कर रहे हैं ना कि केवल
0: लोगों से बात कर रहे हैं
1: कि सिर्फ आपको स्क्रीन पे बैठे टाइप कर रहे हैं आजकल की तरह, बट एक्चुअल लोग हैं जिनसे आप बातें कर रहे हैं।
0: और जब विदेश से या अपने आजू बाजू भी अपने देश में भी अपन जब बात करते हैं तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ जब भी मैं नई जगह बात करता था, अपन पढ़ाई करते करते बहुत सारे नक्शे ज्योग्राफी में देखते थे, शहरों के नाम देखते थे, गाँव के नाम सुनते थे, हाँ, लेकिन कभी अगर वहां पे रहे हुए किसी एम रेडियो से बात होती थी तो सबसे पहले मैं पूछता था कि आपके यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, आपके यहाँ पे आजू बाजू क्या देखने लायक जगह है और कुछ खासियत बात हो तो बताइए। तो इस तरीके की जानकारी भी मिल जाती थी और खासकर विदेशों से तो बहुत ज्यादा मिलती थी क्योंकि विदेशों में आपको मालूम है अपन समाचार पत्र के माध्यम से या टीवी के माध्यम से वो तो जो बहुत फेमस चीज जगह होती है, स्थान होते हैं, कैपिटल होती है, वहाँ की राजधानी है, उनके बारे में ही पता लगता है, बाकी के समय में नहीं पता लगता है। तो इस तरीके से वहाँ पे तो अपने भारत से ज्यादा है एम रेडियो ऑपरेटर और जिससे भी बात होती थी वो अपने जगह का नाम बताता था और आजू बाजू की जगह जो भी मैंने प्रश्न पूछा होता था वो और मेरे से भी वो उसी तरीके की अपेक्षा रखते थे। तो ये बहुत जानकारी भी मिल जाती थी नई नई।
1: जी जी बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि इतने आपके अनुभव के बाद कि क्या हैम से कुछ ऐसी स्किल्स आपकी डेवलप हुई है? ऑब्वियसली हैम का आपने उपयोग तो काफी ज्यादा किया ही है, बट हैम यूज करते करते क्या कुछ ऐसी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई जो और आपके दूसरे प्रोफेशन में या आपके जीवन में जिन्होंने हेल्प किया हो?
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं बताऊं, वैसे मेरा शुरू से एक जो अनुशासन है, अनुशासन में रहना और अनुशासन का पालन करना, ये मेरे मतलब जब मैं विद्यार्थी था तब से ही था तो मैंने, लेकिन ये चीज जो है वो कभी बिगड़ी नहीं है हम रेडियो के कारण। तो इसमें एक तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन का मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि क्या होता है कि जो अपन फोन पे बात करते हैं इसको टू वे बोलते हैं। टू वे का मतलब ये है कि आप अगर बात करते हैं तो आप सुन भी पाते हैं, हालांकि ये बात जरूर है, अनुशासन ये कहता है कि आप अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला आपको सुनता है और अगर सामने वाला बोलता है तो आपको नहीं बोलना है, आपको सुनना है। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों को एक साथ सुनाई भी देगा, समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग बात है क्योंकि आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये एक अनुशासन बना रहता है कि आपकी जब बारी आए तब आप बोलिए और जब आपकी सुनने की बारी आए तो आप सिर्फ सुनिए, आप बीच में नहीं इंटरप्ट कर सकते हैं। तो ये एक है जो अनुशासन जो है वो बना हुआ है अभी तक और ये काफ़ी इसका लाभ होता है क्योंकि अनुशासन से अपन आगे बढ़ते हैं, उसका पालन करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे मित्र होते हैं तो कुछ मित्र जो हैं वो मेरे दूसरी रुचि के विचारों की समानता है तो वो भी हैं, तो उनसे उस विषयों पे कभी कभी बात हो जाती थी, कभी कभी उनका टेलीफोन नंबर लेके जो बात अपन इस पे नहीं कर पाते हैं उस तरीके से पत्र व्यवहार के से भी हो जाती थी। तो इस तरीके से अपने को जो जानकारी जो मिलती है उसका आदान प्रदान हो जाता है और वो प्रोफेशनल लाइफ में भी काम में आ ही जाता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं अभी भी जिस कंपनी में हूँ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो उनको उस काम को करना या उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे लिए।
1: जी, तो यानी नए दोस्त बनाना या अनुशासन या कम्युनिकेशन स्किल जैसे आपने कहा कि वो इम्प्रूव होती है, बोलना तो आता ही है लेकिन साथ साथ सुनने की जो कला है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो भी हमको आती है। और प्रोफेशनल स्किल्स में भी आपने कहा कि काफी हेल्प हो जाती है अगर आप उसी प्रोफेशन में हैं उस तरह से। बहुत अच्छा। जैसे आपने एक बार बीच में बोला था कि काफी सारे क्लब्स हैं और कई लोग एक क्लब बना करके उस तरह से भी कुछ फील्ड पे जाते हैं, करते हैं, क्या आप कोई क्लब के पार्ट हैं? क्या आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कि ये क्लब कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी मेंबरशिप होती है या किस तरह से ये चलते हैं?
0: जी, ऐसा है कि जो क्लब हैं इनके अपने एक अलग से नियम है वैसे कि आप क्लब किस तरह से बनाते हैं, उसके बहुत ऐसे कड़क नियम भी नहीं है लेकिन ये जरूर है कि कुछ सरकारी नियम जिसे कहते हैं इस तरीके के रहते हैं कि क्लब स्टेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है, आपके हैम रेडियो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 4, 5, 10, 15 जैसे जिनकी उनके आपस में मित्रता है या आपस में एक दूसरे को जानते हैं उस तरीके से वो मिलके वो नियमों का पालन करके क्लब का फॉर्म करते हैं, क्लब का नाम दिया जाता है। वो क्लब का नाम देने से फिर वो वहाँ पे वो चाहते हैं तो वो क्लब का जैसे किसी ने कॉलेज में रखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा है या किसी कोई ऐसी संस्था है उन्होंने बना लिया है तो वो उनकी बिल्डिंग में वो एक छोटा सा कमरा या जो भी उनके पास व्यवस्था होती है वो उस क्लब को वो दे देते हैं कि ये यहाँ का रेडियो क्लब है, अमेचर रेडियो क्लब है। वहाँ पे जो भी उनके पास में अमेचर रेडियो इक्विपमेंट मिल जाते हैं या वो मुहैया करा लेते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो उसका ये फायदा होता है कि कई रेडियो ऑपरेटर जो नए हैं या जो अपने पास में नया रेडियो अभी उस समय नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से तो वो क्लब में जाके वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक क्लब स्टेशन जो होते हैं इस तरीके से हैं। मैं भी एक क्लब का मेंबर हूँ और हालांकि अभी वहाँ पे उस तरह से रेडियो इक्विपमेंट्स जाके यूज़ करना तो संभव नहीं है क्योंकि मेरे घर में ही मेरे पास में अपना रेडियो है, लेकिन एक मेंबरशिप ऐसा लेके रखी। और मेंबरशिप ऐसी होती है कि वो क्लब की अपने नियम होते हैं कि आपको मेंबरशिप लेना है तो क्या क्या करना है। तो जनरली क्या होता है कि ये सब बहुत ही इजी गोइंग चीज़ें हैं, इतना उसमें वो नहीं होता है। हाँ, कुछ जैसे अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं या कोई बड़ी संस्था है उनके अगर क्लब होते हैं तो उनके अपने नियम होते हैं क्योंकि वहाँ पे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और उनको भी अपना व्यवस्था भी देखनी होती है तो उनके अपने अलग नियम होते हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपको अनुशासन में रह के काम करना होता है।
1: जी सरजुल जी, तो आपने बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को काफी जानकारी दी, बहुत खुशी हुई आपके अनुभव सुन करके। अंत में मैं चाहूंगा आप अपना कॉल साइन एक बार सभी के साथ दोबारा शेयर करें और अगर आपका कोई फिक्स टाइम है जिस टाइम पर आप ऑनलाइन होते हैं तो वो भी बताइए ताकि हो सकता है हमारे श्रोताओं में से कोई आपके साथ बात करना चाहे, आपसे और जानकारी कुछ लेना चाहे, तो प्लीज अगर आप शेयर करें।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला मैं आपका अपना कॉल साइन दोबारा बताता हूँ, VU2OPX। तो हम लोग तो VU2OPX बोलते हैं लेकिन एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ कि क्या होता है कि हमेशा आपने जैसे रेडियो स्टेशन अगर कभी सुने होंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये स्टेशन में बहुत नॉइज आ रही है, ये खड़खड़ आवाज जो आ रही है आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा हो सकता है इसमें क्योंकि ये रेडियो तरंगे रहती हैं। और तो जब ये साफ सुनाई नहीं देती है नॉर्मली ये हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पे ज्यादा होता है HF पर, तो इसको वी को वी की न बोल के उसका विक्टर नाम दिया जाता है। तो जो आपने शब्द बोला उसका पहला अक्षर अल्फाबेट वी है इसलिए आप वी समझते हैं उसको। तो यू से यूनिफॉर्म होता है और नंबर टू, टू को हम नंबर टू बोलते हैं और ओ को ऑस्कर बोलते हैं, पी को पापा बोलते हैं और एक्स का एक्सरे बोलते हैं। तो कभी कभी हम लोग VU2OPX की जगह हम थोड़ा सा लंबा करके उसको विक्टर यूनिफॉर्म नंबर टू ऑस्कर पापा एक्सरे, ऐसा भी बोलता हूँ। और मेरा कोई खास नियम नहीं है, ये जरूर है कि छुट्टी के दिन जरूर मैं सुबह अपना रेडियो चालू कर लेता हूँ और इसी तरह से लोग आ जाते हैं। और वैसे तो रोज कोई ना कोई ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन का मतलब है ऑन एयर बोलना चाहिए ज्यादा अच्छा है। तो ऑन एयर जो होता है वो VHF में तो बहुत है, या अहमदाबाद में भी काफी हैं, गुजरात के दूसरे शहरों में भी हैं, सूरत में हैं, गांधीनगर में काफी हैं, कुछ महसाना में भी हैं, जामनगर में भी हैं, राजकोट में भी हैं, और कुछ कुछ बीच के जगह पे भी हैं अहम। तो ये लोग अपने जैसा उनको सुविधा मिलती है, लेकिन हमारा एक नियम जरूर है कि एक दो हम लोग मिल के टाइम उसको किया हुआ है 8 बजे के करीब और उसके पहले 7 बजे भी, तो और वो रात को भी टाइम है निश्चित है। तो उस समय जिसको जैसी सुविधा मिलती है आते हैं, और काफी लोग आते हैं, और उस समय हम लोग मिलके ऐसे बात करते हैं, और उसी बातों के दौरान ये निश्चित कर लेते हैं कि अगर किसी को अलग समय में कुछ बात करनी है तो कितने समय, तो वो चीज अपने आप आगे बढ़ जाती है। तो और वैसे दूसरे श्रोता तो कोई नहीं सुन पाएंगे जब तक कि अगर वो हैम रेडियो नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि उनके पास में वो इक्विपमेंट नहीं होगा, तो वो तो मेरे को नहीं सुन पाएंगे।
1: जी शरदुल जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने अनुभव, अपना समय हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके अनुभव सुनकर, धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद आपका भी जो आपने इस तरह से अनुरोध किया। और मेरे कुछ व्यस्तता थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको जरूर समय दूंगा, क्योंकि ये जो हैम रेडियो के बारे में जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से रेडियो के माध्यम से भी ये जो जानकारी श्रोता लोगों को मिलती है, उस काम वो काम करने में आपका बहुत बहुत अच्छा योगदान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और कार्यक्रम में, एक और गेस्ट के साथ, और बहुत सारी बातें जानेंगे हैम के बारे में। धन्यवाद।
2: रेडियो मधुबन 107.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दुल्हन बरे नाजो में पली, खेली है बाहर से ये फूलों की कली, ख्वाबों की दुल्हन बड़े नाजो

0: बहु क्या होता है?
1: अरे तिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या

और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम म्हारो गांव म्हारो अंचल, यानी मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं और बस्ती में जाते हैं,

0: तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, तो हमें खुशी है इस तरह गांव के लोग, हमारा भाई बहन आई लोग हो चाहे बाप लोग, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनापन लगता है, कोई अनजान नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि जब जाते हैं एक परोपकार का भावना को लेकर, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक में जो गतिविधि हो रही चाहे आस्था विश्वास भक्ति पूजा खेती पशुपालन, ये हमारे जीवन में आवश्यकता में रोज़मर्रा के जीवन में हम किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम के लिए भगवान को याद करते हैं, अपने ठाकुर को याद करते, अपने कुलदेव को भी याद करते, तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम पहुँचे इस फली में, इसका जो भौगोलिक परिवेश बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर जगह और प्रकृति का गोद में बसा हुआ एक गांव, छोटा सा बस्ती, चार पांच छह मकान दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी अच्छा इंसान सभी है, क्योंकि जो धर्म परायण हो भक्ति भावना रहता है, जिस फली में मंदिर रहता है, तो आस्था विश्वास को लेकर एक जीवन आध्यात्मिकता की ओर जाता है, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ जो महान अनुभवी है उनको स्वागत करते हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए, आपका बचपन पढ़ाई और क्या करते हैं, थोड़ा आपका बचपन को याद कराते हैं और इस एरिया को आप देखें इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका स्वागत है।
1: तो साहब पढ़ाई तो पहले कोई करवाते नहीं थे, दूसरी तक पढ़ा था।
0: अच्छा।
1: फिर कोई ऐसे धंधा पकड़ा तो मार्बल का काम कर रहा हूँ फैक्ट्री में।
0: कहाँ पर है मार्बल फैक्ट्री?
1: अपने रिक्कू में।
0: रिक्कू में। और आपका शुभ नाम बताइए।
1: प्रभु राम जी।
0: प्रभु राम जी। तो प्रभु नाम ही कितना सुंदर, देखिए प्रभु प्रभु का कृपा जब होता है तो आपका नाम इतना सुंदर रखा है, देखो कोई प्रभु राम मतलब ये कम बात नहीं है, तो राम तो जुड़ा हुआ है और प्रभु है ही है
1: जी,
0: सबका आगे राम तो है ही है, बाधा राम थवरा राम, तो आपका प्रभु राम, तो प्रभु जी आपका घर में इस तरह नामकरण कैसे हुआ, कौन दिया आपको प्रभु नाम, कौन रखा है, मम्मी पापा?
1: आई मम्मी पापा ने
0: नहीं रखा। अच्छा। नहीं, पढ़ाई बहुत कम किए, कारण क्या था, मैंने आर्थिक
1: वो सब उस टाइम में कोई नहीं थे, तकलीफ आई थी तो स्कूल में कोई सोपरा लेना है वो लेना है तो पैसे नहीं होगा, हाँ, तो उसलिए मना कर दिया आपने, नहीं पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं, दूसरी तक कर ली।
0: तो आपका परिवार में और कौन कौन है?
1: परिवार में सब पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, बाकी भाई हैं, तीन भाई
0: सब यहीं पर रहते हैं, फली में।
1: नहीं, सियावा में भी रहते हैं।
0: ओ, आब रोड का पास,
1: पास अंबाजी रोड,
0: अंबाजी रोड में। हीरापुरा पार करके जाना।
1: हाँ हाँ, हीरापुरा से आगे
0: आगे, वहाँ एक भाई रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, और एक भाई,
1: वो तीनों भाई वहाँ रहते थे, दो भाई हम इधर रह रहे हैं।
0: अच्छा, यहाँ पर क्यों आए, वहाँ छोड़कर, वहाँ तो सियावा तो बहुत अच्छा जगह है,
1: वो सब है, पर हमारे बापी की यहीं थी,
0: जमीन यहीं पर है,
2: बापी की
1: वो मामा के उधर रहते थे, वहाँ से हमारे पापा चलने के बाद हमारी माँ ने दूसरा घर कर लिया
0: जी, जी जी जी,
1: उसके कोई आगे पीछे कोई नहीं थे
0: जी जी,
1: तो वो जमीन थोड़ी बहुत हमारे पास है,
0: ओके,
1: वहाँ भी अपना मकान है,
0: वहाँ भी यहाँ पर
1: कुआ भी कर लिया है,
0: राज्य में रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपका बचपन और अभी तक इतना जो परिवार को देखे हैं, उतार चढ़ाव तो जीवन में आता है हर एक जीवन में, फिर भी आपका ऐसे जीवन में एक उतार चढ़ाव जो बहुत मुश्किल परिस्थिति आई, लेकिन आप उसको दृढ़ता से प्रभु को याद में काम किए, ऐसे कोई पल आपको याद है जो वो संघर्ष करके एक सक्सेस तक पहुँचे, चाहे आपका खेत में हो, चाहे अपना बिजनेस में हो, चाहे अपने जो जहाँ पर काम करते हैं, उतार चढ़ाव तो होता है जीवन में,
1: होता है
0: तो समय में, क्योंकि आपका कहानी से जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपको सुन, तो उनको एक प्रेरणा मिले, अरे वो भाई प्रभुराम जी का भी संकट में आया था इस तरह, और उसको डट के दृढ़ता से आत्मबल से बुद्धि बल से वो काम को निपटाया, तो ऐसे आपका जीवन में कोई इतना कठिन परिस्थिति तो आना नहीं चाहिए, मान के आया तो उसको भी हमको कुछ सीख देकर गया, शिक्षा देकर, कोई समस्या आता है तो हमको शिक्षा मिलता है कि आगे इस तरह आगे तो हम सतर्क होंगे और हमारा सब बच्चों को सुनेंगे, ऐसे कोई परिस्थिति है तो बताइए।
1: बस अभी तो पहले बहुत तकलीफ थी, अभी तो बहुत खुश हैं।
0: जैसे कोरोना काल में कोई परिस्थिति आया
1: नहीं,
0: नहीं आया। सब दाल रोटी मिलता रहा
1: और कंट्रोल के गेहूँ मिल रहे हैं, और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आई है।
0: अच्छा। आपका समय में आपका मम्मी पापा इतना पढ़ाया लिखाया नहीं और आप इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन आपका बच्चों को अभी उस समय का तो अलग, अभी का समय में आपका

0: बच्चों को छोकरा छोकर को पढ़ाते हैं आप?
1: हाँ पढ़ाते हैं।
0: अच्छा कितना छोकरा छोकरी है?
1: एक दसवीं तक पढ़ाया वो, अब उसने औरत ला दी और दो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं।
0: अरे वाह, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं बच्चों को? आप भले कम पढ़े लेकिन बच्चों को
1: पढ़ा रहे हैं। सियावा में पढ़ रहे हैं वहाँ?
0: ओ सियावा तो बहुत, हॉस्टल भी है।
1: हॉस्टल भी है ना,
0: जाति स्कूल में जो है वहाँ पे मेरा हॉस्टल में उसको दाखिल करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का हॉस्टल सरकार ने दिया जनजातिवासी स्कूल, उसमें डालेंगे ना तो देखिए आपको थोड़ा निश्चिंत होंगे और वहाँ पढ़ाई अच्छा होगा। ठीक है, सियावा स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, और आप कम पढ़े लेकिन खेती के ऊपर में क्या क्या खेती करते हैं?
1: खेती ये कर रहे हैं, कोई रंडा है, वरियाली है, और बारिश में कोई मक्का है,
0: उसमें हो जाता परिवार के लिए ना,
1: होता है
0: खाने के लिए ना, बेचते हैं?
1: हाँ नहीं बेचते नहीं खाने के लिए, और वरियाली होती है बेचते हैं, रंडा वरियाली बेचते हैं,
0: वो तो खा नहीं सकते, गेहूं
1: गेहूं खाने के
0: लिए, बाजरा और गेहूं।
1: हाँ
0: अच्छा, और ऐसे कुछ बिकने अपना पैसा कुछ आवश्यकता घर में हो चाहे बच्चों को पढ़ाने लिखाई में जरूरत होगा तो आप बिजनेस हिसाब से आप बरेली डालते? बहुत अच्छा। तो इस तरह आपका जो समाज में गरासिया समाज है ना?
1: हाँ गरासिया।
0: गरासिया समाज में जैसे त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, तो आपका जो बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस भैरवनाथ मंदिर, तो कौन सा मेला लगता है यहाँ पर?
1: मेला हमारा ये सातम, सियाड़ी सातम का लगाते हैं।
0: उसका बारे में जानकारी हम लेंगे, हमारा साथ और एक हमारा जो पुजारी है लेकिन लेंगे बाद में,
1: विशाख में ये पूनम के साल में तीन बार मेला करते हैं बेरोजी का।
0: हाँ वो चीज़ हम रखेंगे पिता जी से, तो बाबू जी से। अभी आप जैसे खेत का समय में जो जाते तो पानी का व्यवस्था कहाँ से होता है? पानी
1: ये
0: बोरिंग से तो गर्मी का टाइम है, इस बारिश आने का पहले आप जमीन को किस तरह शुद्धिकरण करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं? जैसे अभी दिखाई दे रहा है
1: सफाई नहीं हुआ, कचरा साफ करेंगे,
0: कचरा सफाई करने का मैंने बारिश आने का पहले खेत को आप कैसे बनाते हैं वो चीज बताइए।
1: जैसे बस ये बारिश आने से पहले ही इनको साफ कर लेंगे,
0: इसका बारिश ये क्या चीज का है?
1: ये वरियाली,
0: वरियाली का,
1: वरियाली
0: उसका डंडा वगैरह निकालना पड़ेगा।
1: हाँ ये निकाल के फिर जला देंगे इनको,
0: वो खेत के लिए काम आएगा। अच्छा वेरी गुड, इसके बाद
1: इसका रोप डालेंगे।
0: अच्छा
1: अभी चार पांच दिन में डाल देंगे।
0: हाँ
1: फिर बारिश आते फिर ये
0: इसको खराई तो करना पड़ेगा ना,
1: खराई करना पड़ेगा,
0: खराई करना पड़ेगा,
1: खराई कचरा साफ करके फिर बारिश से पहले
0: खराई करना, फिर जमीन को शुद्धिकरण करने के लिए जैसे आपने बताया जो घास फूस है जो सूखा लकड़ी है उसको जला देंगे,
1: ये जला देंगे,
0: जला देंगे, इसके बाद फिर
1: खेराई कर देंगे,
0: पानी डाल के, पानी
1: नहीं ऐसे ही सूखा कर देंगे,
0: सूखी में हो जाएगा, सूखी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा धूप दे देंगे क्योंकि धरती माता है, क्योंकि वो अन्न देता है तो हम अन्न दाता बन जाते हैं, तो उसको जितना हम प्यार से वो खेत को, जैसे खेत है तो यहाँ पर बैठ कर उस खेत को आप थोड़ा जैसे यहाँ पर बैठ कर भगवान को याद करते हैं, तो इस तरह खेत हमारा भगवान जैसे वो हमको अन्न देता है,
1: अन्न देता
0: है ना, जैसे हम सोचेंगे ना उस तरह फल देगा, लेकिन हमारा भावना उनका प्रति खेत का प्रति
1: जैसे एक मिलना चाहिए,
0: मिलना चाहिए, जैसे बच्चों को हम अच्छा भावना देते, शुभ भावना देते, अच्छा बने ऐसे हम भाव सोचते हैं, तो जमीन को भी हमारा बेटा सोच के उसको पूरा ध्यान दो तो वो हजार गुना देगा,
1: देगा देगा।
0: ये आप अनुभव करते हैं लेकिन अभी इस बार करो, यहीं पर बैठ आपको खेत में जितना बड़ा जगह है ना उस जगह को इसमें देखो, बुद्धि से देखो, जैसे आपका सियावा का भाई को देख रहे हैं ना, चाहेंगे तो बुद्धि से देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं,
0: बुद्धि से देख सकते हैं ना, यहीं पर बैठ कर आपका भाई का चेहरा को देख सकते हैं, देख सकते हैं बुद्धि से, हाँ मंदिर को भी देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपका खेत को भी देखिए, देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं,
0: खेत का चार तरफ आपका मन को बुद्धि को दौड़ाइए और वो खेत को, खेत को बोलिए हे धरती माता इस बार हम आपका साथ इतना प्यार से फसल उत्पादन करेंगे, आप हमें सहयोग दें क्योंकि आपका भरोसा में हमारा पूरा परिवार गुजरेगा, क्योंकि आपका ऊपर हम डिपेंड है, इसलिए आपके ऊपर हम निर्भर है, ऐसे सोचेंगे तो जमीन भी सुन रहा है वो भी आपको फसल बहुत अच्छा देगा, उसके लिए हमको शुद्धता रहना पड़ेगा और उनको प्यार से बात करना, मन में ऐसे बोलना नहीं, मन में बात करेंगे तो वो खेत भी बोलेगा ये हमारा मालिक हमारा प्रति इतना प्यार है,
2: हाँ प्यार है,
0: तो वो प्यार से आपको अनाव जितना देगा जितना उससे ज़्यादा देगा, देगा कि नहीं
1: देगा,
0: तो जैसे हम पूजा पाठ करते हैं खेत को, फसल को भी पूजा पाठ करते हैं तो जमीन को भी, और उसका अंदर में जो कीड़ा मकोड़ा वगैरह है जो जानवर है कि छोटा छोटा जीव जंतु है तो उसको भी बोल दीजिए भाई हम कल खेड़ाई करेंगे आप अपना अपना जगह में चला जाओ, हम आपको नॉस्टक मारेंगे
1: नहीं,
0: तो एक दिन पहले बोल देंगे तो अपना अपना जगह में जाएंगे तो आपको उनका दुआएं मिलेगा और वो नष्ट आपका फसल करेगा
1: नहीं।
0: आप मान लीजिए खेत कर देंगे ट्रैक्टर चला देंगे तो उनका वंश मर जाएगा कि नहीं
1: मर जाएगा,
0: तो मरेगा तो आप उसका जो अभिशाप श्राप कास्कर ऊपर पड़ता है, इसलिए कास्कर उधर का दे। तो भगवान कहते हैं खुद को विचार शक्ति से वो पौधा को जमीन को और जीव जंतु को आराम दो तो आपको आराम
1: मिलेगा।
0: ये हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तपोवन में, अपना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपोवन एक फार्म हाउस है जिसमें हम पूरा योग का माध्यम से बात करते जमीन का साथ, मतलब जमीन को शुद्धिकरण, बीज जो रोपते हैं ना डालते हैं तो बीज को भी शुद्धिकरण, सबको शुद्धता करते हैं मन से,
1: मन से
0: जैसे आगे मंत्र था ना मंत्र, मंत्र होता था ना, ये भी मंत्र मनसा सेवा करेंगे तो अच्छा बन पाए। ये कर कर देखो और कभी देखना होगा तो तपोवन में आकर देखो, बहुत अच्छा खेत होता है। ऐसे बोलते बोलते मैंने फसल होता है, सत्य युग में होता था स्वर्ग में, लेकिन आज का समय में जब हम शुद्धता रहेंगे तो हमारा फसल भी शुद्धता देगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु राम जी। और क्या कहना चाहेंगे, आपका बच्चों को पढ़ाई लिखाई में होशियार कराइए और आप भी जितना हो सके प्रभु को याद करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। अच्छा धन्यवाद, राम राम
1: राम राम।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम प्रभु राम जी से सुन रहे थे, खासकर धमसरा जो गोलिया फली में रहते हैं और यहाँ का आसपास में जो गतिविधि, खेती का साथ साथ उनका जीवन कहानी और परिवार के बारे में जानकारी लिए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों की तरफ से सभी भक्त, श्रद्धालु, आस्था विश्वास में जो विश्वास रखते हैं उनका तरफ से भी आज बाबूजी को राम राम करते हैं,
3: राम राम राम
2: स्वागत करते हैं। बाबूजी आप बताइए, खासकर आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आपका तो अभी उम्र बहुत है, वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध जन माने योग्य जन हो चुके हैं, तो हम चाहेंगे हमारा श्रोता मित्र को आपसे कुछ प्रेरणा मिले, क्योंकि आप एक अनुभव का खान, अनुभव किए बहुत कुछ बचपन से अभी तक,
3: अभी तक
2: सब चीज़ देखे हुए हैं। तो आप अभी अपना परिचय दीजिए, आपका नाम, कौन सा गांव में रहते हैं और क्या करते हैं?
3: क्या करता? खेती करता है, खेती खेती करता करता या कोई पढ़ना या पताया बच्चा या बाल बच्चा हुआ और बूढ़ा हुआ, हितरशाला ऊपर है हमारे, हितरशाला ऊपर है हमारी उम्र, ठीक है। कुछ सुवरण इमें थागा पगा पग थागा बच्चन है, जमीन है तो दी आप आपका ये खिट्ठू ले, ये खिट्ठू ले, ये खिट्ठू ले, कमाए हो खाओ छोरो बल बचाओ मोटा करो पढ़ाई करो।
2: जी जी,
3: ये धंधा मरे है मेरे बोले।
2: बहुत अच्छा।
3: उसके बाद में ये मंदिर है बिरू जी को, तो बिरू जी के मंदिर में मेरा बाप होता तो बीमार पर गया तो आप हर का आई है धर्मी जगह काला बिरू मोड़ो गए कि डोकरा ठीक हो जाएगा, तो ये बिरू पे मंदिर शुरू कर दिया, शुरू कर दू या धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, तो आप हर का दूसरा वाला कोई भी आवे तो वर्णन थे मैजी दिखी दी बीजा मैजी दिखी दी, कोई पुजारी ही कोई यह बात सी बिरू जी का ये मंदिर है तो या तो किसके बसाने होता है तो ये आवे नहीं, ये मानता करता है ये कि मेरा बच्चा आवेगा तो बिरू जी की मुँह फुतली सराऊंगा।
2: जी,
3: यह करता करता ही है यह वापसी का मंदिर बन गया। हाँ, इस कौम है कोई कोई बीमार हो गए है तो कोई मेहनत आता है तो उसका गुण पड़ता है, सस्ता होता था तो उसके पूजा करता है, सस्ता नहीं आया तो बाप रखी मैं ऐसी सल इस कंडू ये मंदिर बन गया है।
2: बहुत सुंदर मंदिर बना,
3: बन गया है
2: का।
3: ये मैं धीरे धीरे पूजा रही हूँ, अगरबत्ती लगा और आते दे नहीं कह रहा हूँ, सोम शांति है।
2: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी, खासकर सुन रहे सभी, हम सब आस्था विश्वास भक्ति को लेकर चलते हैं और जीवन में सुख शांति के लिए किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हम जाते हैं। जब मंदिर, मस्जिद और गिरजा जहाँ भी हमको सुकून मिलता है, जो हमारा मन वांछित इच्छा फल मिलता है, सफलता मिलता है, तो हमारा भावना बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं हमारा भाव को भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, उसी हिसाब से हमको दे देता है, जिसका चलते हम खुशी राजी रहते हैं और आभार प्रकट करते हैं। तो जैसे हम भैरवनाथ मंदिर में जब आए हैं, जहाँ इस गोलिया फली जो धमसरा का पास मंदिर जो मेन रोड में ही उसका मंदिर है, जब जाते हैं, जो भी आसपास में आते हैं जाते हैं तो उनको खुशी मिलता है और बैठकर थोड़ा सा शांति महसूस करते हैं। जब हम जा रहा था तो देखा तो मंदिर इतना शानदार, तो इसको बनाने वाला कौन है उसका तो जानकारी लेना चाहिए। तो बनाने वाला हमारा आज बाबूजी उपस्थित है, तो पुजारी जी है, जो अच्छा लगा आपसे बात अभी कर रहे हैं और कुछ जानकारी ले रहे हैं। खासकर इसको बनाने में कितना समय लगा मंदिर को, और इतना जो सुंदर परिवेश में जो प्रकृति पूरा पहाड़ी का टेकरी जो है उसका ऊपर में ही मंदिर को रखे हैं, और यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं, किस तरह आते हैं, क्योंकि आसपास जो मेला भरता है,
3: मेला भरता है अपने पुजारी आवे न कोई मंता वो बोले न कोई अपने ये एक तो हियाली हातम रो है, एक विशाख पूर्णिमा में रो पदवी सेठ तीन से बाद आए। बीजा मेरा क्या तकलीफ है, पूरी पानी की तकलीफ मारे पूरी समस्या है
2: जी जी।
3: हाँ पानी की व्यवस्था नहीं हुई, ये वापसी न है न, यह पौधा लगाना है जो मेरा पानी की समस्या हमारे बहुत अपने मुसीबत है। दूसरा ये मेरे रोड है तो रोड नहीं उतर बारे मेरा पैर मुसल नहीं सकते, ये हमारी तकलीफ दूरदार है। या पौधा बनाना है, पौधा रोपना है, पौधा मोटा करना है, तो इसके मंदिर के बाउंड्री होनी चाहिए। बाकरा है कोई जानवर को बड़ा काटे नहीं है कि पानी की विशेषता आवे तो मैं सब पौधा मोटा करा इन्हें सौस आवे पैदा, ये तो मेरी मेहरबानी कर रहे हैं।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर प्रस्तुत है। और गांव में जब आते तो सब बढ़ चढ़ कर फोटो ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि अपना गांव के लोग को जब देखते तो खुशी मिलता है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

श्रोता मित्र ग्रामवासी, ब्रेक का पहले हम यहाँ का जो पुजारी है तो उनसे बात किए थे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब पूजा अर्चना भाव को लेकर बढ़ते हैं तो आस्था विश्वास को लेकर, तो एक गीत धरुण जी रहा एक गीत सुनेंगे, वो भी सामूहिक रूप में यहाँ का जो आई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे, क्योंकि भाई लोग तो हिस्सा लिए हैं जैसे प्रभु राम जी और उनका सभी साथी दिए इस प्रोग्राम को, भाइयों को का साथ साथ आई लोग का भी, बाप लोग का साथ आई लोग भी अपना आवाज़ सुनाएंगे सामूहिक रूप में एक भजन को भी भैरू जी रहा। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। आपका नाम बताइए, बोर से बोलो नाम बता तुम्हारे। मावा के लिए ताली बजा भाई, हमारा लीडर के लिए ताली बजा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आई लोग भी खुशी से, बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे भी है, तो शुरू करते हैं, शुरू करिए गीत।

vadiyi yegerine zor.

ਦੂਲੇ ਮੋਤਲੇ ਜੁਗੇ ਬਾਲੋ ਮੋਇਰ ਵਾਦਿਓ।

ਮਾਤਲੇ ਮੋਈ ਰਵਾ ਦਿਓ ਰੇ ਆ ਜਾ ਦੂਲੇ ਮਾਤਲੇ।

0: बेस्ट।
1: ताली बजा भाई,
2: ताली बजाओ। बाकी रहा जो गीत
1: करेंगे। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। और सही में मैं तो सोचा नहीं था क्योंकि इतना सुंदर प्रस्तुति, आई लोग और भाई लोग बाप लोग सब मिलकर गीत गाए, क्योंकि जब मंदिर रहता है तो भावना रहता है, जैसे भैरवनाथ का कृपा है, आशीर्वाद है, जिसका चलते आई लोग अपना भावना को गीत का माध्यम, इस गीत का जो भजन गाए आप लोग बहुत सुंदर हुआ। कब गाते गीत?
2: कब गाता हणो बादरवी सेठ साहिब, बादरवी सेठ हो एक बादरी आज पूनम विशाख पूनम
1: उसमें
2: गाते हैं,
1: हणो
2: एक हियाली हातम तीन देपा।
1: तो श्रोता मित्र समझ गए होंगे गीत जब भक्ति भावना को लेकर जब पड़ता है मेला तो उसमें गात। लेकिन सभी को नाम का साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक बच्चे आए तो बच्चों का भी तुतुल तुतुल आवाज़ में उनका भी नाम पूछेंगे, तो सुनेंगे सब बच्चों से भी अपना अपना आवाज़। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जब हम धमसरा गोलियाफली में आए और भैरू जी का कृपा हुआ तो बच्चे से लेकर बड़े तक, आज बच्चे भी कम नहीं है, बच्चे मन के सच्चे होते और महात्मा होते हैं। बच्चे के पास कोई छल कपड़ कोई हिंसा द्वेष कुछ नहीं, बहुत महात्मा होते हैं। और बच्चों को भी हम इस कार्य बाप लोग तो गीत गाए प्रभु राम जी खेत, मेरा तोतल तोतल आवाज में क्या कहे, आवाज भी हम सुनेंगे क्योंकि उनका बिना हमारा। तो आज हम बता कौन सा क्लास। अच्छा,

0: पता हाँ ना
1: खुशी।
0: अरे वाह खुशी के लिए ताली बजा। हाँ क्या नाम? खुशी। अरे वाह खुशी से गीत गाएगी अभी। खुशी तुम बड़े होकर क्या बनेगी? सरपंच ना कार्यकर्ता ना क्या बनेगी बड़े होकर? डॉक्टर? अच्छा तुम नाम बता तुम्हारा।
1: काली।
0: अरे वाह अभी तो काली दुर्गा अम्बा सभी का नाम भी आएगा धीरे धीरे है ना। और तुम आ जाओ
2: क्लास में।
0: नाम बताओ।
1: रंजन।
0: अरे वाह। आरो आयरो हूँ नाम। आयरो
1: रमली।
0: अरे वाह। आरो बाप रो होशाराम। ये तो अलग है होशियार है। हाँ आ जाओ आ जाओ। तो स्कूल में जाते हैं तुम? स्कूल का नाम बताओ। स्कूल का नाम? स्कूल रो नाम धमसरा। धमसरा ना कौन सा गांव में जाते हैं? मुंगतला में जाते। कौन सा क्लास में?
1: तीसरी।
0: तीसरी। और तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ। किसका साथ है दोस्त? तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ। दोस्त है
1: संगीता।
0: अरे भाई संगीता के लिए सब ताली बजाओ। संगीता के लिए जोर से। अच्छा लगेगा संगीता को। तो सभी को नाम का साथ छोटे छोटे बच्चे तोते तो लाभा जो आंगनबाड़ी में जाते थे पहले अभी बड़े स्कूल में जा रहे हैं। और आई लोग का मम्मी लोग का पापा लोग बाप का नाम रोशन करेंगे बड़े होकर है कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। सभी गीत गाते हैं स्कूल में? गीत गाते हैं तुम लोग?
2: गीत गाए हो?
0: एक गीत गाए हो? गाओ
2: देखिए
0: तुम्हारा भाषा में गीत गाओ। किसको मालूम है? देखो गाएंगे गाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। नहीं तो तुम लोग नहीं गाएंगे ना फिर उनको देंगे गाने के लिए और एक गीत। चलेगा?
3: बोल दो।
0: कोई बात नहीं बच्चों को छुट्टी दे दे गाते नहीं ठीक है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ हमारा बाबूजी है तो राम राम करते उनको क्योंकि बच्चे तो नहीं बोल पा रहे अभी बड़े को ही बोलना पड़ेगा है कि नहीं। तो सही में बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम जो सुंदर रूप में सजाए क्योंकि आप सबको एकत्रित कर दिए। और जाते थे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा आपको?
4: अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा
4: क्या? अच्छा लगा ही गीत गावा रिया तो गीत अच्छा गावा और आप आया ये खूब अच्छा लगो। या कोई या कोई समझाने वाला नहीं मिलता या कोई बात करवा वाला नहीं मिलता कोई छोटी मोटी बात नहीं बताता तो ऐसा अपने ऐसा शांति से बैठा शांति से बात की थी शांति से गीत गाया सब कुछ बता दिया। धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहे कार्यक्रम आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था कुछ आवाज़ खासकर गीत भजन और अनुभव खेती के बारे में। बच्चों का भी तो आवाज़ को सुने गोलिया फली जो कि धमसरा का आवाज़ ये आवाज़ ही उनका पहचान है। और जब सामूहिक रूप में इस तरह रहते तो कोई भी काम होता है तो अच्छे से करते हैं और हमें खुशी मिलता है। इस तरह गाँव के लोग आए लोग बाप और लोग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा धन्यवाद आभार।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल। आप सुन रहे हैं मोनिका पटेल मधुबन। आप सुन रहे हैं मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। आप सभी रहे इसी तरह से जो है आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: दिल को संभाल तू गम न पाल दबे दबे सोए सोए अरमान निकाल।

सर के टोना चोट का सब तूने हिम्मत हारी। हस में तेरे आज तक आई न चंचल नारी। दे दे साड़ी एक छपा के बात बने अलबेले।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के हम आप सभी के बीच में आते हैं। कुछ ऐसी बातों को हम सुनते जो हम जानते भी हैं, लेकिन करना और जो लोग करते हैं उनको जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वाह, क्या जिया है इन्होंने अपने जीवन को। दोस्तों, परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन किस ओर जा रहा है और उस परिवर्तन से क्या हमारा सम्मान बढ़ रहा है समाज में, अपने व्यक्तिगत परिवार में और जीवन में, और उस परिवर्तन का एक जरिया हमें भी पता चले तो क्यों ना हम भी फॉलो करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही अनोखी बातों को लेकर के हमारे मेहमान हमारे बीच में आए हैं। हमारे साथ है श्री राम त्यागी जी। आप ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले 2 दशकों से। दोस्तों, श्री राम जी राजस्थान से हैं और पिछले 2 दशकों से जो माउंट आबू या शांतिवन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आध्यात्मिकता से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और उनके जीवन की ये यात्रा कैसे रही है, आइए जानते हैं। श्री राम जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन, आप राजस्थान से हैं और ये राजे रजवाड़ों की इस शहर में रहते हुए आपका बचपन कैसा बीता, लौकिक परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और वहाँ से आपको इस आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक संपर्क या रुचि कैसे बढ़ी वो बताइए।
1: थैंक यू, फिर से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
0: जी।
1: मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार है मेरा, और किसान जो परिवार होता है वो किसान है मेरे पिताजी, और हम लोगों में जो हमारी एक जाति है त्यागी, उसमें सब जमींदार लोग होते हैं। जमींदार माना उनके पास जमीन बहुत होती है, और जमीन के ऊपर इन लोगों को बड़ा ये रहता है कि हमारे पास तो जमीन है, और जमीन के होते हुए भी अगर हमारे देखा जाए तो मेरे से भी बड़े जो मेरे भाई थे ताऊ के लड़के, उनको एक नौकरी का ऑफर आया, वो भी उन्होंने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे यहाँ तो खुद लोग नौकरी करने आएंगे, हम किसकी नौकरी करेंगे, ऐसा नशा रहता था। लेकिन अब वो समय नहीं है, हम उसमें पले हैं वातावरण में, तो काफी स्वाभिमानी वातावरण रहता है, वो परिवार काफी अच्छा, सब लोग गाँव के हम लोग हैं तो मिलनसार होते हैं गाँव में, कोई किसी भेदभाव ज्यादा द्वेष नहीं होता है, मिलजुल के रहते हैं। किसान फैमिली

0: अपग्रेड हो गया, हमने कहा बीवी नहीं जा पाएंगे।
1: अच्छा।
0: तो नाइन्थ टेंथ पढ़ा।
1: ये कौन सी गांव की बात है?
0: ये हमारा गांव पड़ता है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मनिया के पास एक चैना का पूरा गांव है।
1: अच्छा।
0: वहाँ दायरी स्कूल था हमारा, और वो स्कूल में ही हम शुरू से पढ़े
1: जी।
0: तो वो अपग्रेड हो गया, फिर हमने सोचा चलो कोई बात, दसवीं तक पढ़ के इलेवेंथ में तो हमको जाना ही है शहर के अंदर, टाउन में जाएंगे। तो जैसे ही हम टेंथ में आए तो वो इलेवेंथ का उसमें क्लास शुरू हो गया, फिर से अपग्रेड हो गया, माना ट्वेल्थ तक वो पहुंच गया
1: जी।
0: हमारा ये इच्छा पूरा ही नहीं हो पा रहा था, हमने कहा बारहवीं तक पढ़ने के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने, हमारा इच्छा था कि हमको शहर में पढ़ने जाना है, कॉलेज करना है। उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज किया।
1: तो कॉलेज पढ़ने कहाँ गए फिर?
0: कॉलेज हम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा
1: जी,
0: जो मेन डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें हम कॉलेज करने गए, जो गवर्नमेंट कॉलेज था, काफी बड़ा कॉलेज था। और कॉलेज में भी हमारा ऐसा ही डिसिप्लिन रहता था स्कूल जैसा, वहाँ के जो कुलपति थे वो काफी अच्छे थे, डिसिप्लिन करते थे। तो हमको ज्यादा ये अंतर लगा नहीं कॉलेज और उसमें स्कूल में, क्योंकि धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उससे विलेजेस बहुत जुड़े हुए हैं। वहाँ कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ शहरी वातावरण हो, लेकिन हाँ वहाँ गांव जैसा वातावरण अच्छा है, माना शांति है, कोई ज्यादा क्राइम नहीं है। हालांकि वो चंबल घाटी के उसमें आता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा, वहाँ काफी डाकू लोगों का होता है, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं होता है। वो तो बाहर से किडनैप करके लाएंगे तो जंगल में चले जाएंगे, फिर पुलिस उनसे कुछ रास्ता अपना मुठभेड़ करती रहती है। हम लोगों को कोई खतरा नहीं, चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए। तो हमारा जीवन है ना, हमने कहा जब हम संगति में पढ़े ना ट्वेल्थ क्लास के बाद, जैसे बाहर आए ना हम, थोड़ा बीच बीच में हमारा कंपनी ऐसी मिली, दोस्तों की मिल जाती है शहर में आए तो, थोड़ा तम्बाकू खाना, पहले सुपारी खाया फिर गुटखा खाया, फिल्म देखना। हम फिल्म टेंथ क्लास तक तो हमने हॉल थिएटर नहीं देखा था कि थिएटर क्या चीज होती है। एट्थ क्लास तक हमने टीवी हमारे गाँव में टीवी नहीं होता था
1: जी।
0: हमारा टीवी हमारे आया, उसमें हमने महाभारत देखना शुरू किया
1: जी।
0: महाभारत से हमने टीवी शुरू किया है, पहले रामायण तक हमारे गांव में टीवी नहीं था।
1: अच्छा।
0: एक ही टीवी हुआ करता था, उसमें सब लोग गांव से काम छोड़ करके वहां बैठ करके एक घंटा वो महाभारत देखते थे
1: जी। तो जब आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे धौलपुर में, तो फिर आप हर दिन अप एंड डाउन करते थे या धौलपुर में रहते थे?
0: अप एंड डाउन करते थे, हमारे घर से 17 किलोमीटर है कॉलेज।
1: अच्छा।
0: तो हम साइकिल से जाते थे
1: जी,
0: 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर जाना 17 किलोमीटर आना। मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल, एटलेस साइकिल चलती थी, बहुत अच्छी साइकिल, तो हाँ उससे जाते थे हम, वो अप डाउन करते थे
1: जी।
0: और वहीं रहते रहते हमने फिर उसके साथ कंप्यूटर भी सीखा। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे दोस्तों की कंपनी में हमने थोड़ा गुटखा खाना, तम्बाकू खाना वो आदत हो गया, चुपके चुपके खाते थे, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद जब हम स्कूल छोड़ा कुछ समय के बाद, तो हमको एक था कि हमें कुछ करना है अपना, घर वाले बोलते कुछ करते नहीं हो, हर चीज सीखी हमने। मैंने लाइट का काम भी सीखा, प्लम्बरिंग का काम सीखा, सारा काम सीखा। बाद में मैंने ड्राइविंग सीखा, मैंने ड्राइविंग ट्रक से सीखना शुरू किया।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब हम ट्रक में गए ना तो वहां पे हमको ना एक अलग आदत हो गई, जो हमें ट्रक सिखाने वाला था वो दारू पीता था। उसके साथ उसने बोला कि आप घी की रोटी खाओगे या, मैंने देखते हैं, उसने बोला गाड़ी में हम घी का डब्बा रखें या दारू की बोतल। मैंने घी तो बहुत खाया, दारू पी लेते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि वो एक होता था कि क्या होता है इसमें,
1: एक क्यूरियोसिटी थी
0: वो। तो 6 महीना हमने ट्रक सीखा, 6 महीने के बाद कुछ घर में ऐसा हादसा हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वो छोड़ के घर पे आया। मेरे भाई गवर्नमेंट जो रोडवेज होता है यूपी में, उसमें चालक थे
1: जी,
0: ड्राइवर। उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं आया घर पे, तो वो आदत मेरे को बनी हुई थी, तो कभी कभी मैं वो पीता था और ट्रक सीख लिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से उनको एडमिट करा के आ रहा था, तो वही जिस गाड़ी पे सीखा था वो आगरा से मुझे गाड़ी धौलपुर के लिए मिली, वही मिल गया। मैंने किराया लगेगा नहीं, अपना ही उस्ताद है, मैं बैठ गया उसमें। बैठने के बाद हमने पी लिया दारू, फिर हम चलाने लगे गाड़ी, तो एक रास्ते में सामने से एक फौजी की गाड़ी आ रही थी और इधर से मेरी गाड़ी, और हमारी गाड़ी का थोड़ा सा स्क्रैच हुआ साइड से, और हम रुक करके वहीं पे उनको उतर गए फौजियों के सामने। लेकिन फौजी ने ऐसा समझा कि उसका गलती है, वो रुका नहीं। हम तो फौजी की गाड़ी समझ गए भाई, इनके इनको छोड़ के भागना नहीं है, वो चले गए। तो हमने चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ
1: जी,
0: ऐसा हमको आदत हो गया तो पीते रहे। इसके बाद क्या हुआ, मेरे घर में ना इसी बीच में एक कोई बाहर से आगरा साइड से मेरे रिश्तेदार आए मेरी माँ के पास
1: जी,
0: और उनको कुछ किताबें देखे गए
1: जी।
0: मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, घर गृहस्थ में रहते, तो गांव में पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे इतना, लड़कों के ऊपर ही ध्यान होता था। तो

0: ताजी मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, एकदम अंगूठा टाइप।
1: आपकी भी कोई भाई बहने हैं?
0: मेरे दो भाई, एक छोटा एक बड़ा
1: जी,
0: एक मेरे से बड़ी बहन है।
1: ओके, उनको पढ़ाया?
0: वो भाई सब लोग पढ़े लेकिन बहन भी नहीं।
1: अच्छा, आपकी बहन, सगी बहन
0: भी नहीं पढ़ी? मेरी जो ओन सिस्टर है उसको भी नहीं पढ़ाई कराया
1: जी।
0: हाँ, माना लड़कियों को पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं था
1: जी।
0: तो बहन की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। मेरा तो पहले शुरू से विचार नहीं था, शादी करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। होता ना कि जैसे कि हम बड़े हो गए, शादी का मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ये चाहे मैं संस्था से जुड़ा हुआ कि नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना है और कुछ अलग से करना है। शादी तो सभी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग से करना है। और मुझे एक बात याद रहती थी कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि अगर हर घर से एक युवा मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ राम राज्य स्थापन कर सकूं
1: जी।
0: तो वो बात मेरे को हमेशा आया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि देश के काम में आए या समाज के काम में आए, किसी की सेवा कर सकूं, शुरू से था। और एक बात और बताऊं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मुझे राजस्थान के अंदर ही रहना है।
1: अच्छा,
0: सबसे बड़ी बात ये थी मेरे मन में, पता नहीं क्या था, क्यों ऐसा था कि मुझे जॉब भी करनी है तो राजस्थान में करनी है, रहना है तो राजस्थान, किसी भी कोने में राजस्थान के में रहना है। मुझे अपने स्टेट को छोड़ के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाऊं मैं, ऐसे स्टेट में नहीं, या तो फिर मुझे राजस्थान में रहना है, ऐसा मेरा वो था। तो कोई जॉब ऐसा नहीं किया मैंने क्योंकि मौका ही नहीं मिला वो चीज के लिए, जरूरत नहीं पड़ी
1: जी। आपकी माताजी की कोई दोस्त आए, उन्होंने किताब दिया?
0: फिर माताजी ने बोला मेरे को कि बेटा ये है ना, ये किताब है और ये आपको मुझे रोज पढ़ के सुनानी है
1: जी।
0: हम लोग रोज सुनते ना,
1: मुरली पढ़ते,
0: मुरली पढ़ते हैं
1: जी,
0: वो बोलते हैं। तो वो पहले होती थी तीन पन्ने की होती है, लिथो की टाइप किया हुआ होता था।
1: ओके,
0: आजकल कंप्यूटर है, वो लिथो की होती है, तीन पेज बड़े बड़े होते हैं, उसमें दो मुरलियां होती थी।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, और अलग अलग डेट होती थी। तो मैं रोज माताजी को सुनाता था और 8-10 माताएं गांव की सुनती थी, बस इतना काम था मेरा, अपना गुटका भी खाना है और बस वो करना, मुझे कोई लेना नहीं, मेरा वो जॉब था मेरा, इस समय लोग माताजी को खुश करने का
1: जी।
0: अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मेरा उस दिन रोटी नहीं मिलेगी मेरे को।
1: अच्छा,
0: मेरी माताजी तुम कुछ भी काम नहीं करेगा ना, खेत में करना कोई भी काम नहीं करना, लेकिन तुमको मुझे मुरली सुनानी है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, यही काम में तो बड़ा अपना खुश था।
1: तो घर में जब पता चला कि आप तंबाकू गुटखा ये सब कर रहे हैं, कभी ने आपको रोक टोक नहीं किया?
0: मैं एक्चुअली हम चोरी से खाते थे।
1: अच्छा।
0: एक दिन हम रात को सोए हुए थे तो गाँव में जैसे बाहर सोते है ना आंगन में
1: जी,
0: तो हमने ना उसको जैसे वो थूक देते ना तो वहाँ लाल लाल हो गया था
1: जी।
0: तब मेरे पिताजी को पता चला, फिर उन्होंने हमारे पर थोड़ा कंट्रोल किया, तो हम फिर बाहर खाते थे, घर में नहीं खाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, हालांकि उनको पता हल्का सा रहता लेकिन उनके सामने हम नहीं खाते थे
1: जी।
0: तो जब हम ट्रक पे आए तब हमने दारू पीना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा किया। और दारू पीने का ऐसा नहीं हम सारा जिंदगी पिए, 1.5 साल के बाद जब हम हमारे घर में ये माताजी ने जो सुनाया मेरे को तो मैं रोज सुनता था उसको। लेकिन एक मेरी माँ की एक और मेरे ऊपर एक अटैकिंग रहता था, उसको अटैक ही बोलता हूँ मैं, सवेरे 3:30 को आपको उठना है।
1: अच्छा,
0: माता नहीं, माता जी को बोला दिस इज नॉट माय जॉब, मैं माता जी ये मेरा नहीं है
1: जी,
0: आपको मैं मुरली सुना तो ये काफी नहीं है कि नहीं नहीं बेटा सुन लो, मैं नहीं उठ सकता। मेरी माता जी मेरे लिए बढ़िया चाय बना के लाती थी।
1: अच्छा,
0: कि चाय बना के, तो चाय पी के उतनी देर तो आदमी जगेगा ना, चाय पीने के बाद 10 मिनट में जगता था, 10 मिनट में मेरी माता जी एक कॉमेंट्री करती थी मेरे सामने।
1: अच्छा,
0: बोलू आपके सामने? तो वो कॉमेंट्री होती थी कि मैं आत्मा हूँ। मैं तो सोचता नहीं आत्मा क्या होती है
1: जी,
0: आत्मा पेट में होती है, कहाँ होती है? मैंने माँ आत्मा बताओ कहाँ होती है, तो माता जी बोलते ये दोनों ब्रकुटियों के बीच जो आत्मा है ना, बोलो मैं आत्मा फील करो ये, और ये आपके ऑर्गन्स हैं, वो आत्मा के साधन है। जब माता जी के मुंह से मैं सुना ऑर्गन्स, बाप रे, इतनी पढ़ी लिखी है मेरी माता जी, ऑर्गन्स इंग्लिश में बात कर रही है, ऑर्गन्स तो मेरे को भी समझ नहीं। माता जी ऑर्गन्स क्या होता है? ऑर्गन्स होता है बेटा ये शरीर, इसके ये हिस्से शरीर के। मैं तो एक सेकंड के सन्न रह गया।
1: अच्छा,
0: माता जी आपने सीखा कहाँ से कि मुरली में तो रोज आता है? जबकि मैं रोज सुना रहा हूँ उसको, मेरे को नॉट आउट नहीं हुआ वो, लेकिन माता जी ने कहा ये तो अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे को हल्का सा माता जी के ऊपर सम्मान बढ़ने लगा।
1: अच्छा,
0: कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है तो कुछ तो बात है
1: जी।
0: मैंने उनको बोला कि वो कॉमेंट्री 7 मिनट की पूरी हो जाती थी और उसके बाद कॉमेंट्री करते करते मैं भले चाय भी सो जाता था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: लेकिन उठते जरूर
0: उठते 3:30 को मेरे को आप बताओ 84 से लेकर के, और मैंने शायद ही कभी 3:30 मिस किया होगा।
1: अच्छा,
0: शायद ही, या कहीं बाहर गए हैं, माता जी के घेरे से बाहर हैं उनके एरिया से, तो बाकी हमने कहा ठीक है पढ़ाई लिखाई करके आराम से सोया करेंगे, अभी तो माता जी सोने नहीं देती है। तो हम ऐसे उस नशे में थे कि हम तो आराम से पढ़ाई लिखाई पूरा करके। उसके बाद जब मैं सुनाने लगा वो चीजें, इसी बीच में मैं जब ट्रक से आया तो वो आदत थी, तो मैं चुपके से वो पीने लगा। जब दारू पीता था मैं, तो मेरे मन में एक आता था कि अगर मैं ऐसे पीता रहूं तो मेरा होगा क्या, मेरा थोड़ा बहुत जमीन है ये बिक जाएगा, मेरे हिस्से में जो जमीन आएगी मैं वो तो बेच दूंगा उतना ही, उसके बाद क्या होगा, ये उसके पीने के बाद वो संकल्प आ जाए।
1: अच्छा।
0: हाँ, फिर जो माता जी को मैं सत्संग की वो किताब सुनाता था, तब मुझे लगता था कि इसमें एक चीज आती थी उसके अंदर कि कई बच्चे है ना, ये उसमें भाषा होती थी ये
1: जी।
0: हाँ, जैसे भगवान की भाषा आजकल हम जो सुनते हैं, पहले तो ये चीज का हमको ज्ञान नहीं था
1: जी,
0: तो उसमें आती थी कि कई बच्चे हैं ज्ञान सुनते सुनाते हैं और विकर्म भी करते रहते हैं
1: जी।
0: तो मैं उस लाइन को जल्दी पढ़ देता क्योंकि ये समझाना नहीं है माता जी को, नहीं आज ही पीछे पड़ जाएगी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो ये क्या हुआ सिस्टर, ये 3 दिन लगातार आया मुरली में
1: जी,
0: जो हम पढ़ाते थे उसमें। मैंने माता जी को बोला माता जी आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, रोज एक ही कॉपी उठा के ले आते हो, ये क्या है, इस मेरे को समझ कौन सा आपका कागज है, वो एक ही कागज, एक जैसा ही कागज क्यों रहता है, सब में वो मीठे मीठे होता है सब में। नहीं नहीं बेटा, इनमें सब में तारीख अलग होती है। वो मैंने कभी नोट नहीं किया, लेकिन माता जी को वो सब चीज पता कि नहीं बेटा इसमें तारीख अलग, तुम्हें लाओ उठा करके। बोले हुआ क्या, नहीं मैंने कहा आप 3 उठा के लाओ, तो एक में दो लाई, एक अलग से लाई, तो तारीख अलग, आगे पीछे का जो भी होता है वो अलग। उसमें मैंने ध्यान से देखा वो लाइन 3 में एक ही थी। बोला हुआ क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे छोड़ के उस चीज पे मेरे अपने आप अटेंशन चला गया कि मैं इसको सुना रहा हूँ और इसमें ये लाइन लिखी है कि कई बच्चे विकर्म भी करते रहते हैं और ज्ञान सुनते सुनाते रहते हैं। उस लाइन ने मेरे को
1: अटेंशन
0: अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उस लाइन को मैं और भी लाइन मुरली में उसको ध्यान से सुनता था क्या, फिर मेरे धीरे धीरे जीवन में एक नरमपन आया। जैसे वो जो था एक कड़कपन था कि नहीं मुझे ज्ञान सुना, वो माता जी को सुनाया, मैं अपने नशे में रहा, फिर मैंने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, मेरे विकर्म क्या है
1: जी,
0: मैं क्या विकर्म करता हूँ। तो विकर्म तो मेरा एक ही था
1: जी,
0: गुटखा तंबाकू खाना और कभी कभी दारू पीना। गांव के जीवन इतना बढ़िया होता है कि वहां किसी से ना देव ऐसे ना किसी को मार काट है। सबसे बढ़िया मेरे गांव की एक आज भी एक आपको बता दूं क्या है, मेरे गांव में आपको एक अंडे का छिलका भी नहीं मिलेगा।
1: अच्छा।
0: मीठ तो अलग चीज है, मेरे गांव में कोई बकरी या मुर्गी नहीं मिलेगी आपको।
1: अच्छा।
0: आज भी मेरा गांव ऐसा है,
1: पूरा वेजिटेरियन
0: फुल्ली वेजिटेरियन।
1: बहुत सुंदर,
0: हमारे गांव में कोई ही आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, आजकल की जनरेशन जैसे ड्रिंकिंग करना वो अलग बात है, लेकिन आपको मीट अंडा और ये चीज कभी नहीं मिलेगी हमारे गांव में। और वहाँ की एक और वहाँ एक भय बैठा हुआ है कि अगर आपने अपने घर में मीट लाया तो आपकी कुल देवी रूठ जाएगी।
1: अच्छा।
0: तो कोई लाता नहीं है और ना कोई खाते भी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
0: कोई भी नहीं खाते हैं हम 84 से मेरे घर में प्याज का छिलका भी नहीं आया है।
1: अच्छा।
0: जब से मेरी माताजी ने सुनना शुरू किया, माताजी ने मेरे घर में किसान मतलब पिताजी किसान से प्याज की खेती करते थे, माताजी ने बोला खेत से बेच देना, घर में एक
1: प्याज नहीं आना चाहिए,
0: आना नहीं चाहिए, एक भी पीस नहीं आना चाहिए। मेरे पिताजी ने उसको बंद कर दिया। आप सोचो 84 से अभी तक कोई मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती है। तो अपने आप जीवन तो ऐसा था, लेकिन हम बाहर जाके ये सब चीज किए। लेकिन जब मैंने वो सुना, मैं अपनी लाइन पे आता हूँ
1: जी,
0: जब मैंने वो सुना तब मुझे लगा कि ये तो मुझे अभी छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़ने की अभी छोड़ू कैसे, कुछ दिन छोड़ दिया, फिर आया तो माता जी ने बोला दीदी आई थी हमारी, जो क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जी की जो बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, तो हमारा आगरा से आई थी, उससे जुड़े हुए थे वो लोग, मुझे पता नहीं था।
1: अच्छा।
0: तो लेकिन जब मैं पहली बार देखा सफेद साड़ी वाली जो दीदियां होती हैं, वो काफी मेरे को एकदम जैसे देवी जैसे होता है, मैंने कहा ये तो इतने चमक रहे हैं लोग, तो हम तो कैसे, मैं तो पास में। बोला दीदी आओ आओ आओ। माता जी को मैंने पहले बोला सुना लेंगे, दीदी को बोल दिया, तो उन दीदियों को बोला तो दीदियां कुछ नहीं बोली मेरे को, रक्षाबंधन था तो राखी बांध के जा रहे थे मेरे को, तो बोला भाई सबने दिया है, श्री राम तुमने कुछ नहीं दिया मेरे को।
1: अच्छा।
0: दीदी मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आएगा भी कहां से, सब तो खर्चा कर देते हो ना। जब दीदी ने बोला कि खर्चा कर दो, इनको कैसे पता क्या खर्चा करते हैं, मुझे डाउट होने लगा। मैंने माता जी की तरफ ऐसे देखा, माता जी पीछे छुप गई दीदी के।
1: अच्छा।
0: तो उसके बाद दीदी ने बोला आप दोगे, मैंने कहा दीदी बोलो। कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जो ड्रिंकिंग करते हो ना वो छोड़ दो। हम तो ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं कर सकते
1: जी।
0: मैंने कहा जी।

0: बोल, मेरी दीदी बॉम्बे की, और बॉम्बे में वो ऐसे उसमें समाज से थी कि वहां इस चीज को जानते नहीं, तो वो शौक हो गई कि जो कि 10th 12th का बच्चा है ये, और अभी इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, और ये ऐसे कैसे कर सकता है। और सिस्टर सबसे बड़ी बात, हम तीनों टाइम ड्रिंक करते थे।
1: अच्छा।
0: सुबह उठना, दोपहर, हम पूरा केस खरीद के लाते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसका एक एक नहीं कभी खरीद, और जाके अपने वहां खेती में गाड़ देते थे, उसी में से खेत में पी के घर जाते थे, और बाहर से सेंट वेंट लगा के ताकि किसको बदबू ना आए। ऐसे कारनामे करते थे हम।
1: जी
0: ठीक है। तो दीदी ने जब बोला ना मेरे को, तो मैंने, दीदी मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है तेरे को टाइम देते हैं। मैं 3 दिन के बाद मैं गया एक दोस्तों के साथ, मैंने सुबह से पीना शुरू किया और शाम तक मैंने 11 बियर पी लिया। 11
1: जी,
0: पेट भर गया मेरा, खाना पीना कुछ नहीं किया। आकर के मैंने माता जी को बोल दिया शाम को, माता जी आज से मैंने छोड़ दिया। माता जी ने बोला कि शाबास। पिताजी बोला हाँ तुमने शाबास दे दिया तो क्या छोड़ देगा, मेरा बेटा छोड़ देगा। बोला कि वो पता है भगवान की वाणी सुनता है।
1: अच्छा।
0: और सुनाता है, भगवान इसको ताकत देगा, बाबा इसको शक्ति देगा। ऐसे बाबा शब्द नहीं, बाबा क्या है, बाबा माना भगवान, शिव, जिसको तुम रोज मुरली सुनता है ना, वो शिव बाबा है और कोई नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो और उसके मेरे मन में उसकी प्रति भावना बढ़ गई।
1: जी।
0: उस दिन से मैंने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब दारू उसी दिन बंद,
1: बस वही आखिरी दिन थे।
0: वो आखिरी दिन, सबसे बड़ी बात मुझे विश्वास क्यों होने लगा ये ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ, बाबा की तरफ, कि उस दिन मुझे एक अलग शक्ति मिली कि मैंने छोड़ दिया, और माता जी ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल छोड़ देगा आज से।
1: एक
0: वो तो चाहे वरदान समझ लो, चाहे ईश्वरी शक्ति समझ लो, उस दिन से मेरी इच्छा भी नहीं हुई। होते ना कि कोई अल्टरनेट चीजें देखता है लोग, ये गुटका का भी बताता हूँ आपको कैसे हुआ, ये तो पहला बड़ा टॉपिक, तो पहले छोड़ दिया एक दिन। अब गुटका की बताओ कैसे छोड़ा मैंने, वो मेरा एक भाई था बीके, वो आज वही धौलपुर में आज भी वो गीता पाठशाला सेंटर चलाता है, वो ब्रह्मा कुमारी, उसकी 2 बहने सरेंडर हैं
1: जी,
0: धौलपुर में हैं
1: जी
0: दोनों
1: जी।
0: तो वो भाई मेरे को एक दिन ले गया कि चलो आप तो अभी ज्ञान में, आपको तो ज्ञान है ना, तो चलो कहीं जाके ज्ञान सुना के आते हैं, प्रचार करके आते हैं
1: जी,
0: ओम शांति का
1: जी।
0: मैंने कहा चलो, हम गए तो उन्होंने सारा करा दिया, और मुझे बोला कि आप ये एक लक्ष्मी नारायण का चित्र हुआ करता है हमारे इसमें,
1: जी, जी।
0: वो चित्र को उन्होंने टांग दिया, बोला इस पे सुनाना है आपको
1: जी।
0: तो मैंने उसको भाई को बोला
1: जी
0: कि भाई मेरे को तो आदत नहीं, नहीं आप सुनाओ। तो वहां लिखा था एक धर्म एक भाषा, राजनीतिक एवं धार्मिक सत्ता एक के हाथ में, ऐसी ये लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी।
1: अच्छा।
0: सुना के मैं बैठ गया।
1: अच्छा।
0: वो लोग बोले कि बड़ा पूरा हो गया इसका जल्दी, 1.5 मिनट में। तो उन्होंने बोला कि ये अभी नए नए बाबा के बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है। वो भाई हमको ले जा रहा था भरतपुर
1: जी।
0: भरतपुर में एक आश्रम है, वहां उसकी लौकिक बहन रहती थी। तो रास्ते में सिस्टर वो हमको एक वो मिला आरटीओ चेकिंग, बस में जा रहे थे, गाड़ी उसने रोक दिया
1: जी।
0: टर्निंग पॉइंट बताता हूँ आपको उसका, गुटके का
1: जी।
0: तो वहां रुके, तो मेरे को तो वही आ गया टाइम खाने का, ऐसे तलब लग रही है, खा लूं करके। तो वो भाई को बिठा करके मैं बस में पानी पी के आता हूँ, बस रुकी है। उन्होंने बोला भाई आधे घंटे तक बस नहीं जाएगी यहाँ से
1: जी।
0: हम गए, एक छोटा सा बच्चा दुकान पे बैठा, उससे मैंने एक वो लिया पुड़िया उसका गुटके का, और ये उतार के भेज दिया वो भाई ने, वो मैंने जेब में रख लिया।
1: अच्छा।
0: देखो आपको बिल्कुल सही सही बात बता रहा हूँ, कुछ छुपाने वाला नहीं है
1: जी,
0: कि जीवन में कैसे परिवर्तन आया मेरे में
1: जी।
0: तो वो गुटका में खा करके बस में ऐसे चढ़ाई था, तो वो मेरे भाई थे ना बड़े, वो इस बारे में लोगों को समझा रहे थे कि हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन एक भी व्यक्ति आजाद नहीं है। वो बोला क्यों, क्योंकि 3 इंची की सिगरेट के पीछे 6 फुट का आदमी गुलाम है, 1 रुपए की पुड़िया के बिना आदमी रह नहीं सकता है तंबाकू के बिना, तो कैसे आजाद बोलेंगे। ये 1 रुपए की पुड़िया वाला शब्द मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा मैंने सुन लिया
1: जी।
0: मैंने कहा अगर मैं अंदर गया
1: जी,
0: तो लोग मेरे मुंह में देखेंगे या खुशबू आएगी, और मैं भी ये इस वेश में हूँ
1: जी,
0: तो बोलेंगे ये दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, इसका ही भाई खा रहा है
1: जी।
0: सिस्टर मैं सीधा पीछे अपना पैर किया और गया, मैंने पानी से मुंह साफ किया जा करके नल पे
1: जी।
0: और वो दिन
1: जी,
0: आज का दिन
1: जी,
0: मैंने उसके अल्टरनेट में सौंफ भी नहीं खाया,
1: ओके,
0: सुपारी भी नहीं खाया
1: जी।
0: वो मेरा वहां क्लोज हो गया
1: जी।
0: सब लोग वंडर करने, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते
1: जी।
0: फिर हमको भी नशा आने लगा, ये ईश्वरीय शक्ति है
1: जी,
0: ये भगवान के अलावा और कोई कर नहीं सकता
1: जी।
0: तो मैं जहां तक अपनी जर्नी को देखा कि जब से मेरे को माताजी ने पकड़ा इसमें, ये ज्ञान सुनाना शुरू किया ये, तो मेरे अंदर परिवर्तन अपने आप आता गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी।
1: फिर आप समर्पित होने का डिसीजन कैसे लिया, और वो भी मधुबन में हेडक्वार्टर में?
0: समर्पित कैसा था कि कुछ समय के बाद मैंने ना अपना बोर्डिंग स्कूल चलाया।
1: अच्छा।
0: खुद का मेरा स्कूल था
1: जी,
0: और वो आठवीं तक मैंने स्कूल चलाया 6 साल
1: जी।
0: पहले 3 साल किसी और के स्कूल में काम किया था, नशा करते करते काम किया था। जब ये हो गया तो जब नशा छोड़ा था मैंने अपना स्कूल चलाया, और वो स्कूल मैंने खोल दिया था 98 में मैंने स्कूल खोला। तो वो स्कूल मैंने चलाया, और मैं यहाँ पे सेवा में आता रहता था माउंट आबू में। तो यहाँ सेवा में तो काफी यहाँ के जो भाई थे मेरे, जो फ्रेंड बने, वो काफी मेरे को मोटिवेट करते थे। और मोटिवेट माना मुझे, मतलब प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे कि ये जीवन कैसा है। तो अच्छा लगता, मैं यहाँ पे पूरा जो वेकेशन होता था, छुट्टियां होती, पूरा यही करता था, सेवाएं करता था तो किसी किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद में जब स्कूल खोला तो मैं यहाँ आने वाला था, तो मेरे एक भतीजा था, मतलब उसने बोला कि अंकल ऐसा करो, हमने नया स्कूल खोला है। वो चलाने का उन्होंने कैसे मेरे को बोला कि हमने नया स्कूल खोला है, उसमें सिर्फ आपका हमने नाम डाला है, आप एडमिनिस्ट्रेटर उसके वो व्यवस्थापक हो, तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, बस ज्यादा नहीं, आप 3 महीना रह जाओ, जो स्कूल है ना खुल जाए फिर आप चले जाना, क्योंकि आपका नाम डाला है। और उन्होंने क्या चालाकी किया कि इनको शिव का नाम बहुत प्यारा होता है।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने शिव बाल विद्या मंदिर लिख दिया उसका नाम।
1: अच्छा।
0: हाँ, और ऊपर ओम शांति पूरा सिग्नल।
1: अच्छा।
0: तो वो पूरा उन्होंने, इनकी भावना ऐसे बढ़े, ऐसा उन्होंने स्कूल खोला।
1: अच्छा।
0: और सारा मेरा उसमें सिग्नेचर चलेगा। वो स्कूल हमने चलाया 8वीं क्लास है, आपको बताएं 2004 तक चलाया था हमने स्कूल।
1: अच्छा।
0: तो जब स्कूल हम चला रहे थे उस समय काफी अच्छे, मतलब मेरे में 400 बच्चे आ गए थे 8वीं तक के स्कूल में। और मैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे को तो बोला आप कभी भी माउंट आबू जाओ, कभी मेरे को पूरा फ्री छोड़ा उन लोगों ने, स्कूल आपके नाम से चलेगा लेकिन चलाएंगे हम, क्योंकि मान्यता मेरे नाम से मिलेगी नहीं, मैंने तो अपना BA किया है, उन लोगों को उसके लिए तो BEd और क्या क्या चाहिए होता है स्कूल के लिए, तो मान्यता वो लोग लेके रखे थे, लेकिन व्यवस्थापक के रूप में मेरा नाम रखा था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से एक निमंत्रण आया, मेरा अट्रैक्शन तो था ही यहाँ का
1: मधुबन का।
0: हाँ, तो यहाँ से एक भाई ने मेरे को बोला, आप शायद जानते होंगे, एक गिरीश भाई है हमारे डायमंड हाउस में, उन्होंने बोला कि भाई आपकी बहुत जरूरत है भगवान के घर में, और भगवान को आपकी जरूरत है, अगर आप आओगे तो अच्छा है, नहीं तो सोच लो आप अपनी तकदीर को खुद लकीर लगा रहे हो। हम आपका इंतजार 97 से कर रहे हैं, आज 2004 हो गया, आओ तो आ जाओ आप। वो शब्द थोड़ा मेरे को टच कर गया। शनिवार का दिन था, स्कूल में हम बाल सभा करवा रहे थे, और फोन, पहले वो फोन गांव में होते थे वायरलेस वाले, गांव में एक ही फोन होता था।
1: अच्छा।
0: वो लोग बुलाने के लिए आए कि साहब आपका माउंट आबू से फोन आया है।
1: अच्छा।
0: वो लोग तो उनके लिए तो माउंट आबू बहुत दूर की चीज थी, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। माउंट आबू से फोन आया आपका, मैंने जब बात किया तो इन्होंने बोला कि आपको आना ही है, और ये आपके लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद हम आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपके चक्कर में हमने किसी को यहाँ और रखा नहीं है, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत बाइंड अप किया, शनिवार का दिन था और 29 तारीख थी, मैं वहां से गया सेंटर पे, बोला, और सेंटर पे भी एक पेपर आ गया मेरे सामने।
1: अच्छा।
0: हमारी दीदियां पहले बोलती आप मधुबन में रह जाओ, वहाँ समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ आप ब्रह्मा कुमारी जी में, और उसके बाद बोले कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है।
1: अच्छा।
0: मैंने कि क्यों नहीं जाना है, कि अभी यहाँ से एक बहन जा रही है, वो आश्रम आपको संभालना है।
1: अच्छा।
0: मैंने कि ओके, मैंने कि मैं तो ऐसे नहीं है, मेरे को अभी जाना है, मैं थोड़ा सा मन खराब हो गया, तो मैं बैठ गया वहाँ पे मेडिटेशन रूम में
1: जी।
0: तो मेडिटेशन करने लगा मैं, तो दीदी ने तुरंत, दीदी का मतलब वहाँ की जो इंचार्ज थी उनका, कि आप तैयारी करो, आप वो जो जाने वाले थे वो नहीं जा रहे, आपको ही जाना है।
1: अच्छा।
0: 1 अगस्त को मैं यहाँ पहली बार आया 2004 में, और यहाँ पहुंचा, और तब फिर यहाँ से मेरी जीवन यात्रा ये शुरू हुई
1: जी। सो जब से आप 2004 फर्स्ट अगस्त से मधुबन में रहना शुरू किया, और आज दिन तक आपका लगभग 2 दशक पूरा हो चुके हैं, तो इस यात्रा में आपने क्या सीखा मुख्य रीति से, संक्षिप्त में?
0: हाँ, मुख्य रीति से ये सीखा मैंने कि जीवन में संयम और धैर्य
1: जी,
0: क्रोध पर काबू और अच्छे गुणों की धारणा, मतलब जीवन को यहाँ रहते हुए भी अगर यहाँ रह रहे हो, क्योंकि यहाँ एक एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में अपने जीवन से दूसरों के जीवन को परिवर्तन करने की हमने कला सीखी, कि मेरे अंदर पहले क्रोध बहुत था, तुरंत मैं हाइपर होता था, लेकिन मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन के अंदर वो ताकत है कि असंभव को आप संभव कर सकते हैं, जो इवन कई लोग इसको जड़ से खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा यहाँ आकर के हमको,
1: जिसके आप एक उदाहरण है,
0: मैं कोशिश आज भी कर रहा हूँ
1: बहुत सारी चीजों में,
0: बहुत सारी चीजों को हमने पूरा ये किया है,
1: जड़ से खत्म
0: किया है, जो कि कोई भी आपको गलत धारणा है, आपके चंचलता है, वो सब मेरे अंदर बहुत चंचलता थी, लेकिन मेडिटेशन से वो स्थिरता आई है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें मन को लगा सकते हैं और जितना समय तक चाहें हम लगा सकते हैं।
1: बहुत खूब, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही श्रीराम भाई आपका। परिवर्तन मतलब एक सुंदरता, परिवर्तन मतलब जीवन का एक आदर्श, परिवर्तन मतलब जीवन में इतना संयम लेके आए, आने वाली पीढ़ी आपकी जीवन से सीखे कि जीना है तो कैसे ऐसे जीना है। थैंक यू सो मच आज आप आए हमारे श्रोताओं के बीच में, और आध्यात्मिकता से, योगी जीवन से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन आता है और एक आम जिंदगी जीते हुए भी एक योगी की तरह कैसे जीना है अब अपने जीवन से हमारे श्रोताओं को दर्शाया है। शुक्रिया आपको।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसे कहते हैं जीना, इसे का नाम है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे रेडियो 91.3, तड़िए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: का। अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरे साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: हे राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
8: अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
9: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
10: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
11: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
12: इनको मैं बताती हूँ।
11: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
12: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा है। छोड़ो हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
13: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
14: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं।
13: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
15: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
13: हैं? क्या जी?
15: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
12: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
16: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
0: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
17: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ।
18: वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा।
16: ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
1: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
6: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
1: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
14: ला रही हूँ मासा।
6: अरे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे।
12: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
8: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
10: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
0: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
10: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना
14: जी? मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
8: कुछ कहा राजकुमारी?
14: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
8: ओ ओ ओ ओ
1: अरे ये कह रहा है ऊपर।
17: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
3: अरे उसको बैठना है।
14: लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है? अरे कोई और फल चाहिए क्या?
17: पैर में दर्द है क्या?
14: अरे पानी मांग रहे, पानी लेकर आओ।
19: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
14: अरे पिताजी कहाँ गए?
3: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
14: पापा गाड़ी को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला।
3: पापा कहते हैं।
14: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
12: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
13: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
0: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे, ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
12: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ती है उषा। आशियाना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, मखाना हमारी हेल्थ के लिए कैसे फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे। और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, साथ ही साथ आज मैं आपको फिर से सिखाने वाली हूँ मीठा अचार, लेकिन किसका वो आप आशियाना सुनेंगे, जान जाएंगे। और आज की पहेली बहुत सुंदर रहेगी, तो आप सभी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी पूछने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आशियाना कार्यक्रम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश भाई भजपुरा से जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते जी जी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते, राम राम, कैसे हो?
1: बस ठीक है जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो हम विचार रखेंगे और बहुत ही जल्दी विषय भी रखेंगे।
1: वो पहले क्या हुआ गया, आम का बता रहा हूँ।
0: ठीक है, अभी हमने पहली पूछी नहीं है, पहली पूछेंगे। सीजन चल रहा है आम का, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बहुत ही जल्दी हम पहली पूछेंगे। समय से पहले जवाब या समय से पहले मत बताइएगा, अभी पूछा नहीं है। तो आज का सुंदर सा विचार ज़रूर सुनाएंगे। आज का सुंदर सा विचार है, आशियाना कार्यक्रम में कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद जरूर करिएगा। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कैसे? तो यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल रख रही हूँ। पार्वती जी ने भगवान शंकर की प्राप्ति हेतु तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती जी से विवाह करना स्वीकार किया तथा वे अदृश्य हो गए। इतने में कुछ अंतर पर तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़के के चिल्लाने का स्वर सुनाई दिया। पार्वती जी ने ध्यान से सुना तो वह लड़का अत्यंत दयनीय स्थिति में चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। लड़का चिल्ला रहा है, ऊंचे स्वर में रो रहा है। पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वह वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा एक सुंदर एवं सुकुमार लड़के का पांव मगरमच्छ ने पकड़ा है तथा वह उसे घसीट करके ले जा रहा है। लड़का रोते हुए चिल्लाता है, मेरा इस संसार में कोई नहीं, मेरी न तो माँ है न बाप, न ही कोई मित्र है, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ। पार्वती ने कहा, हे ग्रह, हे मगरमच्छ देवता, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझ करके स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे पास भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ू? पार्वती ने कहा, हे मगर, तुम इसे छोड़ दो, इसके स्थान पर तुम्हें जो चाहिए वे मांग लो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने जो तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया है तथा जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो ही मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पार्वती माता ने कहा, मैं तुम्हें अपने सभी जन्मों के तप का फल देने को तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो, उतावलेपन में आकर के संकल्प मत करो। पार्वती जी ने कहा, मैंने सोच लिया। मगरमच्छ ने पार्वती से तप दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। उसने लड़के को छोड़ दिया तथा बोला, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मेरी देह कितनी सुंदर बन गई है, मैं तेजस्वी बन गया हूँ। अपने जीवन भर की पूंजी तुमने एक छोटे बच्चे को बचाने हेतु अर्पण की। पार्वती माता ने उत्तर दिया, ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या ऐसा निर्दोष लड़का वापिस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगर भी अदृश्य हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने मेरे तप का दान किया है, अब पुनः तप करती हूँ। पार्वती जी तप करने बैठी, तभी भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। शंकर जी पुनः प्रकट हुए, बोले, पार्वती, मगरमच्छ के रूप में मैं ही था तथा लड़के के रूप में भी मैं ही था, केवल तुम्हारे तप की परीक्षा लेने के लिए ये लीला रचाई थी। प्राणी मात्र में तुम्हारा आत्मीयता का भाव धन्य है। तो ये तो देखिए दृष्टांत दिया आपके सामने, लेकिन हकीकत यही है कि हमें भी कोई भी मुसीबत में है तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो ये हुआ आज का विचार, और आइए फिर से सुनते एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। आज बात करते हैं एक ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक ड्राई फ्रूट की जो उपवास में भी खाया जाता है और सेहत का खजाना भी माना जाता है। तो मैंने शुरुआत में नाम लिया था, चलिए फिर से सुना देती हूँ। मखाना। मखाना खाने के क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारी ठीक होगी, जरूर आप जानेंगे। मखाने में देखिए प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मखाना खाने के बहुत सारे फायदा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। हड्डियों को मजबूत बनाने में मखाना बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है जो हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। तो मखाना किसके लिए फायदा करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। फिर देखिए दूसरा है कि दिल का रखे ख्याल, इसमें कम वसा और कम सोडियम होता है, इसलिए हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है मखाना। दिल का कैसे ख्याल रखता है जानेंगे। इसमें कम वसा और कम सोडियम होता है, इसलिए हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। देखिए डायबिटीज में बहुत ही सहायक है। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए सीमित मात्रा में ये मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। डायबिटीज में सहायक मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए सीमित मात्रा में ये मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। कोई भी चीज लिमिट से बाहर नहीं खानी है, और लिमिट के अंदर हर चीज फायदा करती है। तो जैसे मखाना भी आपको खाना है थोड़ा सीमित मात्रा में। देखिए और क्या फायदा करता है, अच्छी नींद, अच्छी नींद में मदद करता है। कैसे, देखिए रात को हल्का भुना हुआ मखाना खाइए, इससे मन शांत रहेगा और नींद बेहतर आने में सहायता मिलेगी। तो रात को हल्का भुना हुआ मखाना खाइएगा, इससे मन शांत भी रहेगा और नींद बेहतर आने में सहायता मिलेगी। फिर देखिए वजन नियंत्रण में सहायक है, वजन नियंत्रण में भी सहायक है। फाइबर और प्रोटीन होने के कारण पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती, ठीक है। कमजोरी और थकान दूर करता है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व शरीर को ताकत और स्फूर्ति प्रदान करता है। तो मखाना खाने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि कमजोरी और थकान दूर करता है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व शरीर को ताकत और स्फूर्ति प्रदान करता है। फिर देखिए बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक, एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो मखाना के जबरदस्त फायदा देखिए, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक है। कैसे है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो एक छोटी सी सलाह, मखाने को घी में हल्का सा भूनकर खाइए या दूध में डालकर सेवन कीजिए, स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। तो श्रोता बंधु याद रखिए, छोटा सा मखाना सेहत का खजाना, रोज थोड़ी मात्रा में अपनाइए और स्वास्थ्य का आनंद पाइए। तो ये हुआ आज का घरेलू उपाय, और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है, अब आप जवाब दे सकते हैं आज की पहेली का। मैं सुना रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, घर में आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। तो ये आज की पहेली है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मैं आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम विषय पर भी आएंगे। आज की पहेली है, एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, घर में आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। अब आपको जवाब देना है। जवाब देने के लिए और विषय में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का विषय है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी आवाज करते नहीं देखा, क्या कहेंगे आप। बहुत ही सुंदर आज का विषय है, आप जितना अधिक जुड़ सकते हैं जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। प्रैक्टिकल विषय है कि भाई थोड़ी सी ख्याति होती नहीं है हमारी, थोड़ा सा हमारा नाम होता नहीं है और हम उछलना शुरू कर देते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप जुड़ेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो हम तो यही समझेंगे कि आप नहीं सुन रहे हैं आशियाना कार्यक्रम। आज एकादशी भी है, अदक मास की एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, लेकिन ये सब ज़्यादा नत नियम हमारी बहनें करती है, भाई लोग भी करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई लोग नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ बहनें ही करती है ना, भाई लोग करते पर कम। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे, हेलो। हाँ जी नमस्ते जी, सुरेश भाई स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप।
2: बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि हम तो हर दम कार्यक्रम सुनते ही है, बस कभी ऐसा नहीं करने कभी कार्यक्रम नहीं सुना, चाहे ना हो
1: जी जी जी जी जी,
2: मैं तो हर रोज कार्यक्रम सुनता हूँ और आपसे बात भी सुनता हूँ, क्योंकि कहते हैं यदि हम सुनते हैं तो कुछ न कुछ तो हम बोल पाते हैं, किसी की जो आपकी बात है हमारी बात है और कोई लोग सुने और किसी का हम भी सुने बातें, तो एक हमको नॉलेज भी मिल जाता है और एक अच्छी खुशी भी रहती है कि चलो भाई हमने बात की और हमने हमारी बात और लोगों ने सुनी और लोगों की बात हमने सुनी, ऐसा एक हमको गर्व रहता है दीदी हमको लिए।
1: जी जी जी जी,
2: बस अच्छा विषय भी दिया है दीदी। मैं बताऊँ, हमारे गुजराती में कहावत है कि चार पैसा जो हो गया तो हवा में उड़ने लगा।
1: ऐसी
2: कहावत है दीदी, कई लोग ऐसे होते हैं दीदी, थोड़ा पैसा हो जाता है तो बस ऐसे हो जाते हैं, बस हम तो हमारे किसी की जरूरत नहीं है, बस हम अकेले तो साथी है, हमारे किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास आज सब कुछ है, लेकिन चाहे सब कुछ लेकिन ऐसा मत सोचना है कि भाई सब कुछ हो गया तो किसी की जरूरत नहीं है, बस ऐसा नहीं दीदी, इसीलिए तो कहते हैं कि सिक्के आवाज ज्यादा करते हैं और नोट नहीं करते, ऐसा नहीं समझना है दीदी, ये तो पैसे की बात है, लेकिन वो भी इंसान आगे चला जाता है तो पीछे देखता नहीं है और बस ये तो ही कहता है कि अब बस हम तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दीदी,
1: अहंकार आ जाता है,
2: अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार नहीं करना है, कहता है कि अहंकार तो राजा रावण का भी उतर गया था एक सेकंड में,
1: बिल्कुल,
2: और हमारी तो क्या औकात है,
1: जी।
2: हम तो एक मनुष्य प्राणी है
1: जी,
2: ऐसा सोचना नहीं है, सबकी जरूरत पड़ती है सबको, सब ऐसे करेंगे तो पीछे वाले गरीब लोग क्या करें बेचारा, जब पैसा वाला हो जाता है तो छोटे की कीमत नहीं करते लोग, लेकिन छोटे की भी जरूरत पड़ती है
1: जी जी,
2: तो
1: जी, जी।
2: ऐसा काम आ जाता है तो हमको छोटे से छोटे को बुलाना पड़ता है, तुमने आपकी जरूरत है आपको आना पड़ेगा
1: जी,
2: इस वक्त आप तो बड़े लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि बड़े लोग ऐसा काम करते ही नहीं है, खुद ही काम करना है, किसी को हमारे कोई ऐसा गटर का प्रॉब्लम हो गया है कोई ऐसा काम आ जाता है तो हम छोटे लोगों को ही बुलाते हैं और छोटे लोग ही करते हैं ऐसे काम,
1: जी जी जी,
2: ऐसे छोटा बड़ा किसी को समझना नहीं है,
1: काम देखो काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर ये लोग नहीं होना तो पता चल जाए, अपन खुद नहीं ही कर सकते है ना।
2: तो आज कोई मजदूर लोग नहीं होते तो दीदी हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई ठेला होता है हमारे पास, कोई थोड़ा वजन होता है तो हम कोई हमारे पास ऐसा पैसे वाला कोई पढ़ नहीं लेगा फिर आपको हमारा ठेला
1: जी।
2: तो कोई ऐसा इंसान होगा तो ही कोई इंसान उठा लेता है तो चलो भैया मैंने कहा आपको
1: बिल्कुल हरेक का कर्म अलग अलग होता है
2: सर। हाँ तो ऐसा मुझे समझना है, पैसा आ गया तो बस हम किसी को बुलाते ही नहीं, हम किसी को हमारे किसी का काम ही नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं होता सर।
1: अच्छा
2: काम करता है बस हम तो दीदी ऐसा कहेंगे
1: जी,
2: छोटा बड़ा नहीं समझना है, सबको समान समझना है। आप चाहे आपके पास पैसा है सही है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बस हमारी जरूरत नहीं है
1: जी। जी
2: नहीं
1: बिल्कुल
2: जी,
1: जी बहुत बहुत आभार। बहुत तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, विषय को बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज की पहेली भी बड़ी सुंदर है, आज का खुशनुमा जीवन का विषय भी बहुत ही अच्छा है। तो पहेली को दोहरा रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन। तो वैसे आप सभी को पता चल ही गया होगा, बहुत सरल पहेली है, फिर भी आप कोशिश करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
3: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
3: राम राम है, राम राम दीदी।
1: हाँ जी,
3: भाइयों को और सबको मधुबन को मेरा राम राम है। और आपका सुन रहा हूँ बैठ के अभी, मैं दीदी को राम राम जी कर दूंगा।
1: जी जी बहुत अच्छा किया।
3: आज का क्या विषय क्या है दे?
1: आज का विषय है किसी ने क्या खूब कहा है। आप सुन रहे हैं?
3: पूरी आवाज कटती है मैडम।
1: अच्छा कहीं Hello? आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ नेटवर्क अच्छी तरह आए, आप हमेशा अच्छी तरह आपको आवाज सुनाई देती है, आज नहीं सुनाई दे रही है तो कहीं
3: आवाज...
1: जी
3: आवाज दीदी ने कट रही है मेरे, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा।
1: जी तो आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ नेटवर्क अच्छी तरह आता हो। हाँ जी आप ऐसे करिए, आप फिर से लगाइए फोन, आप फिर से लगाइएगा। हाँ जी हाँ जी। तो ये थे भूरालाल जी, और से आवाज नहीं सुनाई दे रही है लेकिन बहुत ही जल्दी सुनाई देगी, कभी कभी हो जाता है। तो विषय बहुत ही सुंदर है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों के कभी आवाज करते नहीं देखा। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय है यहाँ पर। चलिए हमारे श्रोता बंधु कोई भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ मुझे एक बात याद आ रही जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। दो दोस्त होते हैं, ठीक है, बचपन से मतलब पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास से वो साथ में पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक साधारण है एक बहुत ही पैसे वाला है। लेकिन जो पैसे वाला दोस्त है उसको कोई अहंकार नहीं, क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से घर में पैसा देखा है तो कोई अहंकार की बात ही नहीं। हेलो,
4: हाँ जी दीदी नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते सगुना बहन, ओम शांति, कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छे
1: हैं जी। बहुत अच्छी बात है।
4: पहेली का जवाब?
1: हाँ जी, भले आप मैसेज करो तो मैसेज करना, देना हो तो दे दो।
4: मैसेज करना तो मेरे को नहीं आता है दीदी।
1: अच्छा ठीक है दे दीजिए।
4: पहेली का जवाब है आम।
1: ठीक है देखते हैं सगुना बहन सही है गलत है, कार्यक्रम सुनिएगा लास्ट में जवाब देंगे, ठीक है? और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
4: विषय तो क्या है
1: आज का? विषय है किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों की कभी आवाज नहीं आती।
4: तो शांत तो रहना चाहिए ना दीदी, देखो शांत नहीं रहेंगे हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें शांत रहना चाहिए, और नहीं शांत रहेंगे ना तो खुद के अभिमान में आ जाएंगे, तो वो तो अच्छा नहीं है दीदी। कभी अहंकार नहीं करना है।
1: जी वो कहते हैं ना कि तरक, हाँ जी ठीक है सकुना बहन, हाँ जी। और आप कुछ रेसिपी सिखाएंगे अगले लिंक में?
4: आप सिखा देना।
1: हाँ, मैं तो सिखा दूंगी, कभी आप भी रेडी हो जाइए सिखाने के लिए, कल सिखा दीजिए आप। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार। तो मैं आपको बता रही थी कि दो दोस्त होते हैं, एक जन्म से बहुत पैसा है और एक साधारण है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब फर्स्ट क्लास से साथ में पढ़ाई करते हैं तो बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, क्या अमीरी क्या गरीबी पता ही नहीं चलता है, और ऐसे करके ट्वेल्थ पढ़ाई की, ट्वेल्थ तक जो साधारण था वो पढ़ने में बहुत होशियार था, जो पैसे वाला था वो भी, दोनों ही होशियार थे, लेकिन साधारण था वो टू मच होशियार था, और हमेशा अपने दोस्त के परिस्थिति को देखता था कि कितना पैसा वाला, काश में भी ऐसा होता, काश में भी वैसा होता, काफ़ी संकल्प चलते, स्वाभाविक है चलना, क्योंकि साथ साथ बैठते थे, बातें करते थे, खाना पीना साथ में खाते थे, उठते बैठते थे, तो संकल्प तो चलता ही है। और फिर ट्वेल्थ के बाद दोनों अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, जो साधारण था उसने भी कुछ अलग सब्जेक्ट ले लिए, कॉलेज में आ गए पढ़ाई की, और पढ़ने में बड़ा होशियार था तो ऐसे उसको स्कॉलरशिप मिली और अच्छे पोजीशन, मतलब अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, और बहुत समय के बाद 10 साल के बाद फिर से वो दोनों दोस्त मिले, ठीक है। तो दोनों दोस्त, मतलब जो दोस्त अपने शहर में रहता था वो भी दूसरे शहर में चला गया, वहाँ सेट हो गया, एक और कंपनी खोल दी वहाँ पर, और जो साधारण घर का दोस्त था उसके जॉब लग गई तो उसी शहर में और उसी कंपनी में मैनेजर के पद पर। कब रिश्ता देखे, कब दोस्ती कहाँ आकर टकराए पता ही नहीं चलता है। और जब दोनों दोस्त मिले तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोस्त के इतनी सारी कंपनियां, लेकिन अहंकार नहीं, और वो दोस्त मैनेजर बन गया, उसको अहंकार आ गया, वो अपने दोस्त के सामने तो क्या अहंकारी बताए, क्योंकि पता है कि दोस्त के कंपनी में ही मुझे मिली है, लेकिन दूसरे क्लाइंट के सामने बहुत ही अहंकार भरे बातों से पेश आता था, कोई भी छोटी छोटी बातों में डांट देना, फटकार देना, है ऐसा भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, ये भी नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो, तो बेचारे लोग डर जाते थे कि अरे साहब को तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब वो पैसे वाले दोस्त को पता चला कि ये तो बहुत ही बात बात पर गुस्सा करता है, तो समझ में आ गया कि नया नया पैसे का जोश है, तो अहंकार आ गया कहीं ना कहीं। देखिए नेचर में पता चल ही जाता है, हम रोज साथ रहते हैं, भले हम 10 साल 8 साल के लिए बिछुड़ जाए, वापस मिलते हैं, लेकिन नेचर तो एक दूसरे का जानते हैं, नेचर में जब फर्क आ जाता है तो पता चल जाता है कि अच्छा तो ये बदल गया, और वो बदलाव का पता चल ही जाता है, तो वो जो अमीर दोस्त है उसको पता चल ही गया, तो उसने फिर एक दिन बिठाया अपने पास, शांति से समझाया, बोले कि जो ये नशा चढ़ा हुआ है नए पैसे का, ये नशा उतारो और क्लाइंट के सामने अच्छी तरह पेश आओ, नहीं तो क्लाइंट टिकेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहता कि भाई अपने कंपनी का नाम खराब हो। जब उसको बहुत प्यार से, सहजता से, नम्रता से समझाया तो उसकी बुद्धि में गया कि हाँ बिल्कुल, मैं ज़्यादा ही गुस्सा करता हूँ, लोग मेरे से दूर भागते हैं, तो फिर समझ में आया, फिर उसके व्यवहार में फ़र्क पड़ा। तो होता है, वो कहते ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, पूरी घाघर भरी हुई होती है उसमें ठहराव होता है, और अधूरी घाघर तो छलकती है, तो अच्छी बात है आपके दिन बदल गए, लेकिन ठहराव रखिए, बदल गए लेकिन अपने पुराने दिनों को भी नहीं भूलना है, और जिस मौज में हम पहले पुराने दिनों में जैसे रहते थे, जैसा व्यवहार था वैसा ही व्यवहार बनाए रखिए। हेलो
5: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा, आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बस अच्छे है दीदी, और प्रोग्राम सुन रहे हैं दीदी
1: जी,
5: और बहुत बहुत अच्छा विषय आप लेकर आए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल विषय है दीदी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम कुछ पैसे वाले या बड़ी पोजीशन में है तो शांत इसलिए रहना है कि कोई आपका फायदा न उठाए और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे लोग, एक तो ये बहुत बड़ी अहम बात है। और हम जैसे ही कुछ पैसे आ गए तो बहुत उछलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि गिराने की कोशिश करते हैं। और अगर शांत रहना ही है, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। पैसे तो क्या है दीदी, आएगा जाएगा, लेकिन अपने स्वभाव शांत हमेशा रखना चाहिए। और मैं भी यही कहूंगा कि कोई ज्यादा अगर कोई लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसे आते हैं ना तो उनका नजरिया बदल जाता है, और जो गरीब इंसान रहता है ना उसको नजर में ये एक तुच्छ इंसान समझ के वो बहुत बड़ा भगवान की तरह वो अपने आप को कर बैठता है। इंसान का पतन वही से शुरू हो जाता है। पैसा ऐसी चीज, पैसा बहुत ऐसी चीज है ना दीदी कि वो धनी भी अच्छा व्यक्ति भी बना सकती है, बर्बाद भी कर सकती है।
1: जी जी जी,
5: तो जी बिल्कुल। तो जी मैं यही कहूंगा कि हमेशा के लिए आप आध्यात्मिक में और अपने स्वभाव को शांत में रखें, और जितनी हो सके इतनी मेहनत करके दूसरों को भी पैसे के जरिए दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। अगर मदद करेंगे तो कोई अहंकार या कोई वो नहीं आएगा।
1: जी बिल्कुल,
5: शांति।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धाने राव से, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। के गीत सुनने के बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
1: कंचन भाई बोल रहा।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार बहन जी, ये दुकान पे है, काम चालू है, ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काम धंधा लेके बैठे हैं तो हम अपना धंधा चलना चाहिए, है ना? तो ग्राहक नहीं आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा।
1: हाँ रेडियो भी सुन रहे हैं, जी जी, तुरंत बात करके टाइम लेना पड़ता।
0: जी जी, चलिए फिर भी आप मतलब दोनों तरफ बैलेंस बना के चलते हैं।
1: जी ये तो रखना पड़ता है बहन
0: जी। जी जी जी,
1: क्या है कि रेडियो तो हमारे सही नॉलेज देता है। अभी अभी जो सुरेश भाई ने बात बताई मेरे, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने।
0: जी
1: मैं भी मेरी थोड़ी बात शेयर करता हूँ कि भाई परिस्थितियाँ तो आती ही जाएगी, कोई ये नहीं होता, पैसे भी आते हैं, ये होता है, थोड़ी स्थिति बदल जाती है, लेकिन अहंकार नहीं लाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति क्या थी, तो हमने कैसे एक किया, संघर्ष किया
0: जी
1: किया, तो इसमें अभिमान के अहंकार नहीं लाना चाहिए, दूसरों को ये नहीं तरह से नहीं देखना चाहिए, इसको सच्ची सलाह देना चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति हो इन किसी की, तो सच्ची मार्गदर्शन सच्ची सलाह देनी चाहिए कि भाई ऐसा करो ऐसा करो तो ऐसा होगा।
0: जी
1: कई लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं ये कैसे आ जाते हैं, तो दूसरे को इतने भी नहीं है कुछ देखते हैं कि ये इसके पास क्या है, हमारे पास ये है।
0: जी
1: ये भाव नहीं रहा। और मैं तो मदद के लिए जो सुरेश भाई ने बात की थी मदद करनी चाहिए, तो मदद तो ठीक है, पैसे हम देंगे तो कितने दिन चलेंगे, पैसे इसके पास कितने दिन, लेकिन कोई हुनर इसको सिखाया जाए, जो जैसे सुरेश भाई सुथारी काम कर रहे हैं, ठीक है, तालेगार तो ये दूसरे को साथ में रख के कोई हुनर ऐसा दे तो वो जिंदगी भर का कमा सकता है। और
0: नहीं नहीं, थोड़ा सा विषय से आप हटके जा रहे, विषय है किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी आवाज करते नहीं देखा। हाँ जी,
1: अब वही बात पे मैं जा रहा था, ऊंचा नाम कैसे आएंगे
0: जी
1: भाई, इस तो पूर्वजों का कोई ये होता है इकट्ठा करके किया हुआ, वो तो ये देख के अहंकार आ जाता है इंसान को, ठीक, एक एक बात है। और खुद ने जो कैसी परिस्थिति से सामना करके थोड़ा ये किया है जीवन में, तो इसको भूलना, ये परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए बेन
0: जी।
1: परिस्थिति क्या है कि भाई 5 रुपया हमारे पास आ जाए तो हम में अहंकार आ जाता है, लेकिन हमारी परिस्थिति क्या थी ये भूलना नहीं चाहिए। ये सिक्के की बात थी ना
0: जी जी,
1: तो ये सिक्के ही ऐसा ये करते हैं, आवाज करते हैं, अभी नोटों आवाज नहीं करते
0: जी,
1: तो यही बात कर रहा था
0: जी,
1: तो हमारी परिस्थिति हमें भूलना ही नहीं चाहिए
0: जी,
1: ठीक है बहन।
0: हाँ जी, चलिए बहुत बहुत आभार कंचन भाई। हाँ जी, तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है, तो कहने का भाव यही है कि आपके अंदर जो भी विशेषता है, यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है कि सिर्फ पैसे ही, कोई भी विशेषता पर भी अभिमान आ जाता है, वाह क्या मैं डांस करती हूँ, वाह क्या मैं गाती हूँ, वाह क्या मैं बोलती हूँ, वाह क्या मेरी स्टाइल है, बहुत सारी बातें होती है, उस पर अहंकार आ जाता है, तो वो अहंकार अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने, अहंकार जैसे जैसे आएगा समझ लीजिए आप पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अहंकार आया नहीं, पतन होना शुरू हो जाएगा। हेलो,
2: बुरा राम बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, आवाज सुनाई दी?
2: राम राम, हाँ अभी अभी बराबर आवाज सुनाई दी है।
0: हाँ जी,
2: कौन बजा रहा था
0: जी? आपका आपका स्वास्थ्य बढ़िया, तबीयत बढ़िया आपकी?
2: ठीक है, अभी बैठ के कार पर बैठा हुआ और सुन रहा हूँ, प्रोग्राम सुन रहा हूँ
0: जी। जी
2: चालू है।
0: हाँ जी,
2: बैठ के भगवान करेंगे तो आज चल सुन
0: जी। आज की पहेली सुना रही हूँ मैं, विषय भी सुनाऊंगी, पहले पहेली सुनिए। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए, बताओ कौन? और विषय भी सुना देती हूँ, किसी ने क्या खूब कहा है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी आवाज करते नहीं देखा।
2: जब आदमी बोले तो अपनी परिस्थिति से ऊपर आता है और थोड़ा बहुत पैसे से थोड़ा तरक्की करके बड़ा हो जाता है, फिर बाद में वो अपने यार दोस्तों को जो अपन समझो मेरी दोस्ती है और दोस्ती कोई पैसे वाला बन जावे, फिर पैसे आने के बाद में फिर मैं अपने साथ में वो पहले का व्यवहार नहीं रखता है, क्योंकि उसमें थोड़ा घमंड आ जाता पैसों का। तो ऐसा बात है कि आपने इसे बहुत अच्छा लिया कि और हमने तो देखे भी ऐसे बहुत है जो हमारे साथ में थे वो पैसे वाले बन गए, आज उनसे बात करने को भी ये नहीं है कि राजी नहीं है कि भाई दुरा राम

0: 24.
1: और आज की पहेली का जवाब देंगे?
0: क्या है ये?
1: आज की पहेली मैंने पहले सुनाई थी, फिर से दोहरा रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का, मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाद चख जाए।
0: ये तो आम हो सकता है।
1: अच्छा चलिए ठीक है बुराराम जी, आप कार्यक्रम सुनिएगा, कार्यक्रम के अंत में क्या सही क्या गलत जरूर जवाब देंगे, ठीक है?
0: ओके मैडम, धन्यवाद।
1: हाँ जी, आभार आपका। तो ये थे बुराराम जी ओर से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आप में कोई भी विशेषता है बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो विशेषता आपके अंदर है और वो काम आ रही है। लेकिन अहंकार में मत आइए, अहंकार आज दिन तक किसी का टिका नहीं। देर सवेर अहंकार जो करते हैं ना, उसका पतन होना निश्चित हो जाता है और वो हमें अवगति में ही लेके जाता है। इसलिए जो भी विशेषता है, अच्छाई है या अच्छे पैसे वाले जो भी है, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखिए, इंजीनियर को देखिए, बड़े बड़े जो जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, देश को कुछ दिया है, उनको देखिएगा, वो नाम मान शान में नहीं जाते हैं, बस वो अपने कर्म को ही पूजा समझ करके आराधना करते हैं, कर्म करते हैं और उपराम हो जाते हैं। कहने का भाव है कि ज़्यादा वो उछलते नहीं हैं। तो ऐसे हमें भी ठहराव रखना है जीवन में, हमें अपने मुंह कितने जने इधर गए उधर गए, उधर खुद की तारीफ़ करेंगे, उधर अपनी तारीफ़ करेंगे, अरे मैंने ये किया मैंने वो किया, अरे मैं क्या क्या कर सकते हम। और जो भी किया है ईश्वर ने, हमें हमारे अंदर जो कला भरी है उसी के आधार पे किया है, तो तारीफ लोग करेंगे, हमें खुद की तारीफ नहीं करनी है, ठीक है? और जहाँ देखिए सिक्का, भले आप दो सिक्का ले लेंगे, आपस में बजाते रहिए, आवाज़ करेंगे, और नोट आप कितने सारे रख लीजिए, गड्ढे पर गड्ढियाँ डाल दीजिए, फिर भी आवाज़ नहीं करेंगे, तो ज़्यादा दूर क्यों जाना है, इन्हीं से ही हमें शिक्षा ले लेनी है, ठीक है? और इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: this is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: एक राजा है पीले रंग का मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए, हर कोई उसका स्वाचक जाए, बताओ कौन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में ये पहेली आपके समक्ष रखी है। आप जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। आप आधारित आशियाना की किचन में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का, जिसमें आज हमने कहा कि मीठा अचार भी सिखाएंगे और देखिए आज एकादशी भी है, अदक मास की बहुत ही बड़ी एकादशी है, तो बहुत सारे हमारे माता बहनों के उपवास है। तो पहले मैं आपको उपवास के फराली आइटम सिखा करके साथ ही साथ अचार भी सिखा देती हूँ बहुत ही संक्षिप्त में, ठीक है। तो मैंगो जूस आपको सिखा रही हूँ, मैंगो शेक आप कैसे बनाएंगे, मैंगो शेक, ठीक है। तो देखिए आम की सीजन अभी तो चल रही है, अभी ज़्यादा रेट भी नहीं है। अब जैसे क्वालिटी अलग अलग है, बहुत सारे इसकी प्रजातियाँ है, तो अलग अलग आम के, अभी केसर कैरी लाएंगे तो 150 रुपये किलो है, आप तोतापुरी राजापुरी ये लाएंगे तो 100 रुपये की 1.5 किलो है। तो जैसे चाहे वैसे आप लाइए, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए खट्टी होगी, हल्की सी खट्टापन होना चाहिए, तो मैंगो जूस का वो मैंगो शेक बनाएंगे उसका आनंद आएगा, है ना। और बिल्कुल मीठी मीठी हो, मीठी मीठी वो मज़ा नहीं आएगा, हल्का सा खट्टापन होना चाहिए, ऐसे आप कैरी लेके आइएगा, ठीक है। छिलके, हाँ, धुलाई कर दीजिए, धुलाई करने के बाद इसके छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकालने के बाद इनको काटिए, काटने के बाद आप मिक्सर में या फिर हैंड मिक्सी से चलाना चाहे तो हैंड मिक्सी से चला लीजिए, तो सारे पीसेस आप एक पतीली में इकट्ठे कर लीजिए, स्वाद के अनुसार थोड़ी शक्कर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डालिए और हैंड मिक्सी चला दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ सारे गट्टे पिस गए हैं, एक रस हो गया मैंगो जूस, फिर आप जूस की जाली से इसको छान दीजिए। बस छानने के बाद अगर आपको लगे कि गाढ़ा ज़्यादा है तो फिर आप भले थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 कप दूध डाल रहे हैं तो आप 2 कप पानी भी डाल सकते हैं, और पानी पसंद नहीं है तो खाली दूध ही डालिए, और फिर थोड़ी देर अगर आपको पसंद है हाँ फिर तो सजाओ उतना ही कम है, ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता की कतरन, काजू की कतरन, बादाम की कतरन आप डाल दीजिए। ठंडा पसंद है तो फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद निकाल करके उसका आनंद लीजिए, और नॉर्मल पसंद है तो नॉर्मल आप ले सकते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति, उदाराम बहन जी, मैं दयाराम बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, और आप सभी आरजे बहनों की, भाइयों की, और सभी मेरे प्यारे मित्रों की दुआ से अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, और कार्यक्रम भी सुन रहा हूँ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है और विषय भी बहुत सुंदर है आज का।
1: जी विषय तो पूरा हो गया।
2: जी जी जी जी, और पहली का जवाब भी बहुत सुंदर है जो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम भेज दिया है।
1: जी हाँ जी, और आज आप कोई रेसिपी सिखाएंगे?
2: जी मैं दीदी अभी तो थोड़ा एक ट्रैक्टर हमारे भाई लेके आए थे, उसके ट्रैक्टर का जो मोहर था तो उसमें गया हुआ था, तो उधर से थोड़ा दूर जाके मैंने कॉल किया है, तो अपनी दरवाजे
1: अच्छा अच्छा
2: बात कर लूँ बहन से, और हमारे भाइयों को बहनों को भी बात सुनने को मिले हमारी, कि हमारे रेडियो परिवार के सभी नियमित श्रोता जुड़ती है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है।
1: जी जी,
2: तो सभी को आज के दिन की ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ओम शांति।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका, आप रेडियो से जुड़े हैं इसके लिए। ये थे दयाराम जी रामपुरा से, और अब मैं आपको फटाफट मीठा अचार सिखा देती हूँ। तो आप अचार की कैरी ले लीजिए, देसी होगी तो अच्छी बात है, और नहीं तो गुजरात में वैसे तोतापुरी लेते हैं, ठीक है, और इधर आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो भी कैरी पसंद है लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप लीजिएगा मेथी, राई की दाल, जिसको गुजराती में राई ना करिया बोलते हैं, आजकल तो मेथी की भी दाल आती है, छोटी छोटी मेथी आती है, नहीं तो फिर अधकचरी कूटनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेथी, सौंफ, राई की दाल, हींग, फिर आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, फिर थोड़े से लौंग लीजिएगा, थोड़े से काली मिर्च लेनी है साबुत, ठीक है, और सरसों का तेल लेना है आपको, फिर जो भी तेल पसंद करते हो। बाकी अचार तो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जने क्या मीठा अचार बनाते हैं तो सिंग तेल में भी बनाते हैं, हम तो यही कहेंगे कि सरसों का तेल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई सामग्री। अब आप केरी की धुलाई करिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछिए। पोंछने के बाद वैसे तो आपने फांके कटवाया ही ली होगी, नहीं तो फिर फांकों को भी अच्छी तरह पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद हल्दी लगा करके आप रख दीजिए थोड़ी देर धूप में। और ये जो सारे मसाले लिए हैं, आजकल तो प्यारे श्रोता बंधुओं मसाला भी अलग लेने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड पैकेट आता है मसाले का, बहुत सारे भाई बहन उसको यूज़ करते हैं, उसमें अचार का सारा मसाला आ जाता है और बस वही मसाला यूज़ करते हैं। लेकिन घर पर बनाना चाहते हैं, हम दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, है ना, हाथ का तो हाथ का होता है। तो जो भी ये मसाले लिए हैं इनको थोड़ा सा आप सेकिए, सेकने के बाद अधकचरा कूट लीजिए। कूटने के बाद अब ये जो फांके ली है, हाँ, गुड़ लेना है। अब ये फांके 4-5 घंटा हवा में लगाने के बाद इनको इकट्ठा करके एक बर्तन में रखिए, ये सारा मसाला डाल दीजिए और गुड़ को बारीक कूट के, भले तो आप चाकू से काटिए, बारीक बारीक काट करके आप डालिए और फिर आप ऊपर से तेल डाल दीजिए और अच्छी तरह हिला करके एक बर्नी में भर दीजिए और ढक्कन फिट लगा दीजिए। तेल गरम करना है, सरसों का तेल गरम करके अच्छी तरह धुआं उठे ऐसा गरम करना है। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप हींग पाउडर डाल दीजिए, उसके बाद पूरा ठंडा होने दीजिए, फिर आपको इस तरह मसाला और केरी की फांकों में तेल डाल करके सभी को अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद बर्नी में भर करके फिर आवश्यकता के अनुसार तेल ऊपर से डाल देना है। तो ये बन गया मीठा अचार। मीठा अचार में थोड़ा सा तेल कम चाहिए पर बहुत ही स्वादिष्ट अचार। अब इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिए, 5-6 दिन आप रहने दीजिए। गुड़ और गुड़ एक रस नहीं होगा तो मीठा अचार का आनंद नहीं आएगा। जब गुड़ एक रस हो जाए तो फिर आप अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव को भोग लगा करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीठा अचार। और साथ ही साथ अब मैं आप सभी से अनुमति भी चाहूँगी, समय हो चला है। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही सुंदर आज का जो विचार था उस पर जरूर गौर करिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए, मखाना खाने के क्या फ़ायदे हैं आपने जाना है। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और रेसिपी में जो मैंगो शेक और आपको अचार बनाना सिखाया है मीठा, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बड़ी सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। एक राजा है पीले रंग का मुकुट नहीं पर मान बड़ा, गर्मी आते ही दरबार सजाए हर कोई उसका स्वाद चख जाए। तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े, उनका नाम बताना चाहूंगी पहले तो फिर तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो जुड़े हैं हमारे श्रोता बंधु में सुरेश भाई जोटाना से, जगदीश भाई भजपुरा से, बाबूलाल भाई खराड़ी से, भोरा राम जी ओर से, अलका जी कप्पासन से, सगुणा बहन जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई धानेराव से, दीपा बहन कपासन से, दयाराम जी रामपुरा से और मदन भाई मेहसाना से। आप सभी ने सही जवाब दिया है आम। तो आज और जो विषय में जुड़े हैं, विषय में जुड़ने वालों के भी नाम बता देना चाहूंगी। विषय में जुड़े सुरेश भाई जोटाना से, भूरा राम जी ओर से, सुरेश भाई धानेराव से, कंचन भाई मंडाली से और हाँ दयाराम जी लास्ट में जुड़े, सगुणा बहन जुड़े। तो आप सभी के लिए ढेर सारी तारीफ। आज का मीठा मोती है, किसी भी बुरे कर्म करने वाले इंसान को बदलना है तो उसे सच्ची रहम की निगाहों से देखना शुरू कीजिए, उसका परिवर्तन जल्दी ही हो जाएगा। अब मैं आपको एकादशी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जागृति में आप सभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो हमारे जीवन शैली में दिखता है। वो कैसे है, क्या है, इसीलिए हमें हमारी मनोरोग विशेषज्ञ है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है, इन सभी से चर्चा करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में अनिद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और ये भी सीखा कि हमें नींद करना कैसे है, स्लीप हाइजीन कैसे करना होता है और वो प्रिपरेशंस करना कितना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे जो ओवर स्लीपिंग है, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हैं या फिर जब एक बार हम सोते हैं तो फिर उठने का कोई समय नहीं रहता है, कभी भी उठते हैं और उस कारण से हमारी बहुत दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। घर वाले बोलते रहते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी उठो उठो, दोपहर हो गया है, दिन चढ़ रहा है, बट देन हमारा मन नहीं करता है कि हम उठें और थोड़ा सो जाएं। लेकिन क्या वाकई में वो नींद हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हम वाकई में वो नींद से रिलैक्सेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज़ों को हमारे जीवन में इन्वाइट कर रहे हैं? तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारियाँ लेंगे। और हमें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ है हर्षिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप दोनों हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आप दोनों को जागृति इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर। नमस्ते हर्षिता जी।
3: तो
1: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप हाइजीन जिस तरीके से आपने पिछली बार हमें अवेयर किया है हमारे श्रोताओं को, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम रात को लेट हो गया इसीलिए सुबह कभी भी उठेंगे, 12 1 बजे 2 बजे तक भी सोते रहते हैं, या फिर शाम को अगर जल्दी भी सो जाते हैं तो भी हम दिन में लेट उठते हैं। तो जैसे पिछली बार ये कहा गया कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशियंट हो जाता है, लेकिन जब देर रात में सोए हैं, पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क रहा है या हॉलीडेज हैं इसलिए हम ओवर स्लीपिंग कर ली, या फिर कोई काम नहीं है इसलिए हम सो जा रहे हैं, किताब पकड़ लिया, नींद आ गई,

0: इस तरीके की जो स्लीप की कोई साइकिल नहीं है या फिर टाइम नहीं है, और जब मर्जी सो रहे और जब सोते हैं तो उठने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके की जो स्लीप साइकिल रहती है वो क्या ये सही है, और इसके कारण भी हमारे जीवन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं?
1: पिछली बार जब हमने बात करी थी नींद नहीं आने या निद्रा के ऊपर में, उस समय मैंने कुछ बातें आपको अगर याद हो तो बताई थी कि नींद 7 से 8 घंटे की नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं जिनको उससे कम नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिनको उससे ज़्यादा नींद आती है, उनको हम लॉन्ग स्लीपर्स या शॉर्ट स्लीपर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 10 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है और कुछ लोगों के लिए 5-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बट अभी जब हम नींद के बाकी डिसऑर्डर्स या बाकी बीमारियों की बात करते हैं निद्रा के अलावा, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ नींद से जुड़ी हुई आती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन जिसके भी हम बात कर रहे हैं, ओवर स्लीपिंग, जिसको हम एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, हम डॉक्टरी भाषा में उसको हाइपरसोमनियाज और पैरासोमनियाज बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा आ रही है, मनुष्य जो है वो 10 घंटे से बहुत ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं, तो उनके जगने का समय बहुत कम रह गया है। एक तो ये हो गया, और दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब आपकी स्लीप साइकिल का पैटर्न पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब जब आप सुबह के 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं और उसके बाद सीधा शाम को 4-5-6 बजे उठते हैं, या अक्सर जो पार्टी करते हैं लोग वो बहुत बार ऐसा करते हैं, यानी जिनके लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि उनकी नाइट लाइफ ही बहुत ज़्यादा है और डे लाइफ उनकी बहुत कम हो गई है, कुछ उस तरह के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो ज़्यादा रहे हैं या सो तो नॉर्मल रहे हैं, बट जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो दिन में भी सोए सोए से महसूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। रात को तो ठीक से सो गए हैं पर जब सुबह उठ के कहीं भी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे तो आँख की झपकी लग गई, कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव चल रही है पीछे गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मूवी चल रही है कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है, काम पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए भी, तो इस तरह नींद की बीमारी, नींद बीमारी। तो इनको हम बारी बारी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहेंगे वो हाइपरसोमनिया या अधिक नींद आना जिसको बोलते हैं। देखिए अधिक नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे पहले अधिक नींद आने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। डायबिटीज़ के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको डायबिटीज़ या शुगर अनकंट्रोल होती है उनकी नींद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और ये मतलब विशेष साइकिल है। आप वो ज़्यादा देर तक सो रहे हैं उसकी वजह से उनकी शुगर और बढ़ रही है, उनकी शुगर और बढ़ रही है, वैसे वो और बढ़ रही है, उसके अलावा कोई और बताते हैं अन्य बीमारी तो नहीं है उनको शुगर के अलावा कोई और मेडिकल इलनेस जिसके जिसमें नींद उनको ज़्यादा आ रही है, या वो किसी तरह की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें उनको नींद ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे खांसी के सिरप जो हमारे होते हैं उनके अंदर में ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी नींद आती है, या कफ कोल्ड लगा, कुछ लोग एलर्जी की दवाई बहुत रेगुलर लेते हैं, सिट्रिजिन की दवाई बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो महीनों महीनों सालों सालों खाते ही जा रहे हैं, उस दवा के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा, तो उन लोगों में भी नींद ज़्यादा आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सब दवाइयाँ हमारे उन एरियाज में काम करती हैं जो नींद को इंड्यूस करते हैं, जो नींद को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उन केसेस को हम लोग हाइपरसोमनिया बोलते हैं। तो हाइपरसोमनिया केसेस के अंदर हमने सबसे पहले उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि सिर्फ नींद ही ज़्यादा आ रही है और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है उनको, और भी कोई या कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो ऐसे केसेस को हमें अलग ढंग से ट्रीट करना होता है। तो जिन केसेस में जो मेडिकल इलनेस है जिनको कोई जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, उनकी उस दवाई को टेपर डाउन करके कम करके बंद करना है ताकि उनकी नींद ठीक हो। पर जो लोगों को नेचुरली ये हाइपरसोमनिक हो रखे हैं, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन केसेस के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्लीप को रेगुलेट किया जाए। उनकी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है, जनरली हम उनको अचानक से कि आप वो 10 बजे सोते हैं और फिर सुबह 11-12 बजे उठते हैं तो उनकी नींद जो है वो 16-17 घंटे की हो रही है, तो हम अगर उनको अचानक से बोलेंगे कि आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो एक दिन हो पाएगा दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में हम जो करते हैं, हम उनको ग्रेजुअली टेपर डाउन करते हैं, उसकी को ग्रेजुअली कम करते हैं, कि जैसे अभी आपके उठने का समय अगर अभी 12 बजे आप रेगुलर उठ रहे हैं रात को 10 बजे सोने के बाद, तो उसको कोशिश करें कि पहले उसको 11 पे करें, फिर उसको 10 पे शिफ्ट करें, फिर उसको 9 पे शिफ्ट करें, ऐसे करते करते हर हफ्ते 1-1 घंटा कम करते जाएं और अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर में अपनी नींद को 10 से लेकर सुबह 6-6:30 बजे तक ले आए। तो उस कंडीशन में आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। जब आप ग्रेजुअली कम करेंगे तो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बहुत समय से बहुत देर तक सो रहे हैं तो आपके शरीर को उस प्रकार की नींद की आदत पड़ जाती है। तो अगर ग्रेजुअली बदलेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, बहुत समय तक रहेगी और वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
0: जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कई बार हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या बीपी शुगर या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उस कारण से भी हमारी नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर नाइट पार्टीज कर रहे हैं उस कारण से, बट देन इसमें हम ये जानना चाहते हैं जब ओवर स्लीपिंग होता है क्या वाकई में वो इंसान नींद कर रहा होता है, या जो वो डीप स्लीप या फिर साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोया हुआ है लेकिन वो गहरी नींद नहीं है जो बॉडी को हील कर रहा है, या फिर जो स्लीप साइकिल जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए होता है।
1: इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि नींद की प्रकार, नींद में दो तरह की नींद होती है, आरईएम स्लीप और एमरीएम, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, उस समय वो हिल रही है, वो नींद हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है। और बहुत सा सीन हमें नींद का ऐसा होगा जब हमारी आंख की पुतलियां नहीं हिल रही होती, उसको हम एनआरईएम स्लीप बोलते हैं। तो इसमें जो एनआरईएम स्लीप होती है उसको हम जनरल अधिकतर गहरी नींद या फिर डीप स्लीप बोलते हैं। उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, एनआरईएम 1, एनआरईएम 2, एनआरईएम 3, एनआरईएम 4, कि आप कितना गहरी नींद के अंदर में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम जैसे ही हम सोने गए तो हमारी एनआरईएम स्लीप सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है, और उसके 45 मिनट बाद पहली आरईएम स्लीप की बाउट आती है। हमारे जो सारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमें आरईएम स्लीप के अंदर में दिखाई देते हैं, और एनआरईएम स्लीप में हमारा ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर में और एकदम गहरी गहन अवस्था के अंदर में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अपने उसने सिर्फ कुछ जरूरी काम छोड़कर बाकी सब काम करना उसने बंद कर दिए हैं। तो उस समय ब्रेन जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहे 8-10 घंटे सो रहे हैं या 15 घंटे सो रहे हैं, आपकी एनआरईएम की स्लीप की टोटल जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि आपको पूरे रात के अंदर में 3 घंटे की एनआरईएम स्लीप आनी है, जो कि डीप स्लीप है, वो 3 से 3.5 घंटे की आनी है, वो आपकी फिक्स है। अब अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, आप 10 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, और आप 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएंगे। तो जो एक्चुअल नीडेड स्लीप है, हालांकि दोनों नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरईएम स्लीप की जरूरत है, बट जो ब्रेन को एक्चुअल रिलैक्स कर रही है, जिसको हम डीप स्लीप या गहन निद्रा बोलते हैं, उसका टाइम बहुत फिक्स है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप है, क्योंकि अगर जब आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं पर आपकी एनआरईएम स्लीप उतनी रह रही है, तो जो आपकी बाकी स्लीप है वो बेसिकली उसमें आपका बॉडी फंक्शन और आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं जा रहा है। तो हमें अपनी डीप स्लीप को बढ़ाना जरूरी है कंपेयर टू आरईएम स्लीप।
0: जी, कि कई बार लोगों का ये होता है कि वो नींद हमें क्यों रिड्यूस करना है, वो 10-12 घंटा 15 घंटा जो भी है हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं और हमको कोई काम नहीं है इसलिए हम सो रहे हैं, तो नींद तो अच्छी होती है, हम क्यों कम करें, ऐसा भी लोगों का विचार होता है, खास करके जो यंग जनरेशन्स हैं, हॉलीडे है या फिर हमने रात को पूरा काम किया है तो अभी दिन में सोएंगे, और वो ऐसा कंटिन्यू होता है कि दिन की 10-12, 1-2 भी बज रहा है लेकिन उठने का वो नहीं होता है उनसे। तो हम कैसे वो मेंटल प्रिपरेशन करें कि नहीं, मुझे कितना भी काम करे मुझे इस टाइम तक सोना है, इसके बाद नहीं सोना है।
1: ये सबसे जरूरी है जानना यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके जगने में होती है, सोने के अंदर में नहीं होती। नींद हम अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं, और नींद का कोई काम नहीं। नींद का काम यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में जाए, और उसको एक लेवल तक की रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद वो रिलैक्सेशन चाहिए इसलिए कि वो दोबारा काम कर सके। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो जगने के अंदर में है, सोने के अंदर में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, सोने से हम कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया में सारे काम सब मेहनत चक्कर ही होती। तो इसमें जो लोगों का कहना है कि हम क्यों जागे, तो सबसे पहले तो इसमें जानना ये जरूरी है कि अधिक सोने से आपको कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना आपको ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके मन को, ना आपकी बुद्धि को, ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा अधिक सोने से, उल्टा उसके नुकसान जरूर हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शुगर अनकंट्रोल हो रही है, आपका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल होने लग पड़ता है अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जब हम जगेंगे तभी हमें, अगर हम 10-12 बजे तक, 12 एक बजे तक सो रहे हैं, तो हम अपने जो सुबह के रूटीन है, जो मॉर्निंग वॉक है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जिम जाना है, जॉगिंग करना है, मेडिटेशन करना है, वो कब करेंगे अगर हम 12 एक बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अधिक सोने से हमें कोई लगता अधिक सोने से हमारे शरीर को अब नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहे हैं, वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए सोने के समय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सोने के शुरुआत का समय, जब हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए कि इस समय सोने चले जाना है, 10 बजे मैं बेड पर जाऊंगा, और उसको रोजाना वैसा ही रखना। जब आप वैसा रखेंगे और उसके बाद सुबह उठकर बेड से उठना, जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग गए और उसके बाद बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जगने का मतलब जब सोने के लिए आप बिस्तर पर जा रहे हैं, तो जब आप जग रहे हैं तो आपने बिस्तर छोड़ देना है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाना है और अपने नित्य कर्म करने हैं। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे, एक बार जब बिस्तर छोड़ देंगे, तब फिर दोबारा नींद आने की संभावना कम है। बट अगर आप जग गए और बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद कर दिया, आप गए और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर आप दोबारा नींद एक देगी। तो हमें उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम ये समझना होगा कि हमें बिस्तर को छोड़ देना है, नित्य कर्म जो करने हैं, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, या पढ़ाई करनी है, पढ़ने की जो चीज जो है वो सुबह का होता है, उस समय सबसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं। तो दिक्कत हैं तो आपके पास आपको 1-1.5 घंटा मिलता है दिन के सब काम निपटाने के लिए, तो आपके पास में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
0: जी सर, ये तो ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग आवर्स की बात हो गई है। इसमें नींद की जब हम बातचीत करते हैं तो और चीजें हैं, एक तो खर्राटे मारते हैं, क्या उनकी नींद उतनी ही गहरी और रिलैक्सिंग होती है? और दूसरा, जब वो खर्राटे मारते हैं उस कारण से दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर वो लोग नींद ना होने के कारण इरिटेशन है वो सभी चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या खर्राटे का भी कोई इलाज होता है? ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, इसका क्या कारण है?
1: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बात करनी चाहिए बेसिकली, कि हम लोगों को क्या लगता है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में ये मिथ है कि खर्राटे वाली नींद जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर खर्राटे मार के सो रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा खासा तो एकदम खर्राटे ले रहा था, इतना अच्छा सो रहा था। ये बात जनरली हम लोग आपस में, जो पब्लिक जनरल पब्लिक है वो ये बात हमेशा करती है आपस में कि एकदम गहरी नींद में सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटों वाली नींद अच्छी नींद नहीं होती।
0: ओके।
1: अच्छी नींद वो है जो बिना खर्राटों के आ रही है, खर्राटों वाली नींद बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं होती। जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है, हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो खर्राटे किस लिए आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। खर्राटों का कारण क्या है?
0: जी,
1: खर्राटे एक फिजिकल फिनोमिना है, वो इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई,
0: जी,
1: तो दिमाग ने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी बाकी शरीर के साथ, तो दिमाग जग गया। दिमाग सो रहा था, अचानक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जग गया, उसके सारे पार्ट अलर्ट हो गए, उसने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी। अब उस ऑक्सीजन की डिमांड के लिए वो छाती के ऊपर में प्रेशर सिग्नल भेजता है कि आप मुझे और हवा सोख के दीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो छाती है वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है, और उस समय जो आवाज पैदा होती है वो खर्राटे हैं। तो बेसिकली वो ब्रेन डिमांड कर रहा है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। और वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसको जनरली जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ज्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है वो लोग बहुत खर्राटे मारते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। उनमें क्या होता है कि जो जीभ है जब वो सो रहे हैं वो पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक की नाम होता है, वो जीभ पीछे चली जाती है और वो सांस की नली के रास्ते को रोकने लग पड़ती है। इसलिए हवा फेफड़ों में ठीक ठाक नहीं जा रही, तो जब हवा ठीक ठाक फेफड़ों में नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही खून के अंदर में, और खून में जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसीलिए खर्राटे का फिनोमिना आता है। तो खर्राटों का मतलब यह है कि जब जब खर्राटे लग रहे हैं तो एक्चुअली ब्रेन जो है वो गहरी नींद में नहीं जा रहा है, वो एकदम कच्ची नींद में रह रहा है, वो नींद अच्छी नहीं है। खर्राटों वाली नींद बहुत बहुत खराब है, और जिन भी श्रोताओं को खर्राटे आ रहे हैं उनको जरूर अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। खर्राटे साथ वाले मनुष्य के लिए तो जो नुकसान, उसकी नींद तो डिस्टर्ब होती है, बट आपकी नींद की क्वालिटी भी एक्चुअली खराब है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो परेशान होता जा रहा है। और जो लोग रात को खर्राटे लेकर सोते हैं उन्हीं को दिन में डे टाइम स्लीपीनेस आती है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि बैठे बैठे नींद के झटके लग जाना, वो उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होते हैं जो रात में खराटों वाली नींद ले रहे हैं, जिनको रात में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपने टेस्ट करवाने चाहिए, आगे जांच करवानी चाहिए कि ये खराटे क्यों आ रहे हैं, कि इनका कारण नाक या मुंह में है, या शुगर की वजह से हो रहे हैं, या ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से खराटों वाली नींद, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर में नींद के सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर जीभ नीचे जा रही है, या वजन बहुत अधिक है। खासकर मैंने जैसे बताया कि मोटे लोगों में खराटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वजन अधिक है उनमें खराटे निकलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खराटों वाली नींद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं।
0: जी, तो इसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है खराटे वालों से?
1: खराटे की नींद का न्यूरोलॉजी से संबंध है, बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी से संबंध है उसका, बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरोसाइकेट्री से संबंध है उसका, नसों का काम है सिर्फ, कि ब्रेन जो है वो रात को बार बार जाग रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम मरीज को वजन कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। उसके बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं हो रही तो बाईपास बोल के एक मशीन आती है जनरली, वो यूज करने के लिए दी जाती है, जो ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ में नाक से अंदर की ओर भेजती है, ताकि रात की नींद गहरी हो। तो जब एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलने लग पड़ती है तो चीजें ठीक होने लग पड़ती है। बट मरीज से हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर ठीक रहे, उसका वजन कम हो, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये एक प्योरली मेडिकल इलनेस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि खराटे की दिक्कत आती है।
0: जी सर, दूसरी प्रकार की जो नींद है जिसमें हम सपने बहुत देखते हैं, कई बार ये कहावतें भी सपनों के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं, या फिर वो जो मृत वेले के टाइम पे जो सपने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों की सपने ऐसे होते हैं वो नींद खराब कर देती हैं, हॉन्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, और वो सपने किसी को सुकून की नींद देती है तो किसी की नींद उड़ा देती हैं, लेकिन क्या ये जो सपने हम देखते हैं उसमें भी हमारी नींद और नींद से जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलनी है वो हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी है लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, या जो भी हम फिजिकली यहाँ पे सो रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कहीं और हैं, एंड देन वी आर नॉट, वो नींद फुलफिल नहीं हो रही है?
1: देखिए, सपने हमारी नींद का बहुत जरूरी हिस्सा है। मैंने जैसा आपको बताया कि नींद के दो पार्ट होते हैं, NREM और REM। तो REM स्लीप के अंदर में सपने आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पुतलियाँ घूम रही होती हैं, तो उस समय जो भी दिन में या उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ है, जो तो दिमाग में स्टोर हुआ है, दिमाग उसी को आसान फॉर्म में रिलीज करने की कोशिश करता है, और वही चीज़ें जो है वो सपने की फॉर्म में आती है। आप जब जैसे कि आप किसी पुराने अपने मृत रिलेटिव की अगर बात कर रहे हैं, जो भी उनसे, तो आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आपको सपने में वो व्यक्ति दिखाई देने लग पड़ा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी बात करी कि दिमाग में जो उस व्यक्ति की छवि थी वो एक्टिवेट हो गई, तो वो सपने में हमें वही छवि दिखाएगी, और हम उस व्यक्ति के बारे में जो जो सोच रहे थे वो वैसा वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, बट उससे जुड़ा जुड़ा कुछ ना कुछ आपके सपने में आएगा। तब अब जो सपने, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि जिनको सपने में भूतों के सपने आते हैं, वो डर जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग एंग्जाइटी की बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों को सपने अत्यधिक आते हैं, क्योंकि उनका दिन ब्रेन जो है वो सारा दिन बहुत बेचैन और बहुत कोशिश करता रहता है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है उनका ब्रेन, तो सपनों की फॉर्म के अंदर में आती है, जिसमें उनको ऐसे सपने आएंगे कि जैसे कि आपको बहुत बारी सपना आएगा कि मेरा एग्जाम छूट रहा है, हालांकि अब मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा, फिर भी मुझे रात को ये सपना आता है कि मैं अपने एग्जाम में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, मेरी ट्रेन छूट रही है। बहुत बारी सपना आता है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल चुकी है, इस तरह के सपने आते हैं। उन सपनों से आदमी घबरा के आदमी की नींद खो जाती है, तो बेसिकली वो हमारी इनर एंग्जाइटी को शो करते हैं। तो अगर एंग्जाइटी के ऊपर में काबू पाया जाएगा वाय JPMR करके, या दवाई के साथ में, या मेडिटेशन के साथ में, जैसे भी एंग्जाइटी में जब कंट्रोल किया जाएगा तो सपनों की नींद जो है वो कम होने लग पड़ेगी, और सपनों की क्वालिटी अच्छी होने लग पड़ेगी, मतलब आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। स्वप्न आने तो जरूरी है, स्वप्न आएंगे ही आएंगे, उसको बंद नहीं किया जा सकता, बट अच्छे स्वप्न आएंगे तो हमको दिन के समय वो याद नहीं रहेंगे, बट अगर डरावने सपने आए जिसमें हमारी नींद खुल गई अचानक से, तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहते हैं, अगर हमारे REM स्लीप वाले स्वप्न आ रहे हैं।
0: तो जिस तरीके से आपने एक स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है अनिद्रा के लोगों के लिए, तो इज देयर एनी मेथड या फिर कोई प्रिपरेशन जो ओवर स्लीपिंग या फिर ये सपने हैं, ये सभी तरीके के जो डिजास्टर्स हैं आज जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है, उसके लिए भी कोई तरीका है या प्रिपरेशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए?
1: ओवर स्लीपिंग के लिए तो मैंने अभी आपको चीजें बताई कि सबसे पहले जैसे नींद सोने जाने का समय निर्धारित करना है, वैसे ही उठने का समय भी हमें फिक्स करना है। पहला पॉइंट है ये कि हमें उठने का समय हमेशा फिक्स करना है और उठने के बाद हमें बिस्तर को छोड़ देना है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बिस्तर पे नहीं रहना है। जब सोने जाना है स्लीप हाइजीन के समय, तब बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। तो जैसे ही आपको उठने का समय हुआ, आपको बिस्तर को छोड़ देना है, बिस्तर का त्याग कर देना। तीसरी चीज, रात के समय शराब या इन सब का सेवन नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। वो हमारे को हाइपरसोमनिया को बढ़ा देते हैं या नींद को कम भी करते हैं, पर बहुत केसेस में वो नींद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम नशे से दूर रहें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चौथी, हाइपरसोमनिया का हमें कारण निकालना पड़ेगा कि कहीं कोई शारीरिक परेशानी की वजह से, कोई मेडिकल इलनेस की वजह से तो नहीं आ रहा। अगर वैसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और जो लोग ऑलरेडी हाइपरसोमिक हैं, जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उन्होंने तरीका बताया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आधा आधा एक एक घंटा कम करते करते अपने आप को 2 से 3 महीने में नॉर्मल लेके आना है। बनिस्पत की आप एक दिन में कोशिश करें कि मैं सुबह 4 बजे कल से उठना शुरू कर दूं, वैसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि एक एक घंटे अपनी नींद को ठीक करते करते आप 1 से 1.5 महीने में अपनी नींद का समय को ठीक करें। और जहां तक स्वप्न की बात है, तो सपने जो जैसे मैंने बताया कि उसमें वो जो ड्रामने सपने और ये सब डिसऑर्डर आते हैं, वो एंग्जाइटी की वजह से बहुत बार होते हैं। तो हमें एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, हमें जड़ के ऊपर में काम करने की कोशिश करनी है। तो एंग्जाइटी के लिए जैसा डॉक्टर हर्षिता ने बताया था कि JPMR एक टेक्निक होती है, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, वो मैम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। ये हो गया। या फिर एंग्जाइटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन, सोने से पहले थोड़ा ध्यान लगाकर सोएं, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपके सपने जो हैं वो अच्छे सपने रहेंगे और ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको सुबह याद रहें या आपकी रात की नींद में खलल डालें।
0: जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है जहाँ पर हम महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी इस प्रकार की स्लीप साइकिल्स को देखने को मिलता है, वो जो रेस्ट चाहिए, या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्लीपिंग की जो आदत पड़ जाती है, घंटों तक वो सोने की इच्छा होना या नींद करने की, तो इज इट समथिंग डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है?
1: देखिए, प्रेगनेंसी के समय डेफिनेटली नींद कभी कुछ लोगों की बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि नींद जो है प्रेगनेंसी के समय भी हम 8 से 10 घंटे के बीच की नींद रखें, इससे ज्यादा की नींद ना लें, ठीक है? क्योंकि आप को प्रेगनेंसी के अंदर में दिन के सारे कार्य भी करने हैं, नॉर्मल कार्य भी करने हैं अपने, तो अगर आप नींद बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसका एज सच तो कुछ असर नहीं करता पटवाड़ता, पर जब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, क्योंकि उस समय जब बच्चा आएगा तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो उसके बाद में अचानक से आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो रात को भी जगेगा, रात को बहुत बार रोएगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो उस समय आपकी नींद जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय 15-15 घंटे सो रही हैं आखिर में जाकर, तो फिर जब अचानक से आपकी नींद 5 घंटे 4 घंटे की रह जाएगी, तो आप फिर बहुत डिस्टर्ब फील करने लग पड़ेगी, तो जैसे पोस्टमार्टम की इस तरह की बीमारियां सिर उठने लग पड़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी के समय अपनी नींद को निर्धारित रखें, और पोस्टमार्टम समय में जो मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बच्चे ने तो रात को जगना ही है, तो मैं हमेशा ये माँ जो पोस्टमार्टम मदर होती है उनको सलाह देता हूँ कि आप अपने सोने का समय अपने बच्चे के साथ निर्धारित करें। जिस समय बच्चा सो रहा है आप उस समय कोशिश करें कि आप अपनी नैप ले लें, क्योंकि आपको कभी भी इकट्ठी 5 घंटे सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे को 2-2.5 घंटे में भूख लगनी ही लगनी है, और उसके बाद वो उठेगा, रोना शुरू करेगा, तो आपको जगना ही पड़ेगा। उसमें जो जीवन साथी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी वाइफ की मदद करे, कि जिस समय वाइफ आराम कर रही है तो उस समय बच्चे की देखभाल वो करे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड आजकल जैसा कि बोलते हैं कि सिर्फ महिला का नहीं, पति का भी साथ में होता है, उसको भी साथ में पूरा का पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में अपनी नींद को ठीक ठाक रखना है, 8 से 10 घंटे सोना है, उसी शेड्यूल को सारी प्रेगनेंसी में मेंटेन करना है, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना, और जब पोस्टमार्टम पीरियड आना है तो उस समय कोशिश करनी है कि अपनी नींद को बच्चे की नींद के साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पहले 3-4 महीने सोने का समय बहुत कम मिलने वाला है।
0: जी, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशंस या फिर कोई बातें हैं जो नींद को रिलेटेड खासकर महिलाओं के लिए?
1: डॉक्टर हर्षिता अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो वो बता सकती हैं।
0: जी,
2: हाँ श्योर, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक रिलेटेड टू जब हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक स्लीप केयर है वो वुमेन की लाइफ में अगर

0: बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है. अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, उसका जो साइकिल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन जनरल से वहाँ पे पीएमएस के सिम्टम्स अगर आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी वजह से वेमेन की जो स्लीप डिस्टर्बेंस फील वो बिल्कुल कर सकते हैं. तो पीरियड्स के पहले जिनको हम पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स के दौरान स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है. तो अगर हम कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, कि जैसे हीट पैड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो सकती है उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टीज आती हैं, चाय आती हैं, अगर वो उनका सेवन करें बेड टाइम पर तो वो बहुत रिलैक्सिंग, एक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है. सो एक ये चीज़ हम स्पेसिफिकली वेमेन के लिए कर सकते हैं. दूसरा, जब टाइम आता है मेनोपोज का, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो रात को वेमेन फील करती हैं कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से गर्मी लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी स्लीप का उस समय पर भी ध्यान रखें, अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखें, एसी या फैन का यूज़ करें, और अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स करें, और एक एक्सरसाइज जो है वो उसमें स्पेसिफिकली ऐड ऑन करें, क्योंकि डेली एक मॉडरेट एक्सरसाइज से हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. तो ये दो चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऐड कर सकते हैं.
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर हर्षिता जी. हमारी जो नींद जीवन का सबसे प्यारी चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में एक संतुलन और एक सही तरीके से सोना और क्यों ज़रूरी है और उसको ठीक कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर आज प्रकाश डाला और हमारी श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को जागरूक किया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: जी शुक्रिया, धन्यवाद
1: जी. तो दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियाँ मिली हैं, और जहाँ पे भी आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है या फिर हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें, और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी, जिनसे भी आपको संपर्क करना है उनसे संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें. हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.
3: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा, रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला.
4: Life is a challenge. जीवन एक सुंदर एक चुनौती है. Accept it and face it. है ना? मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ. उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में गए. छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे. जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकंड प्राइज. तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय. जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया. तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा. तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है. कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े. आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं. उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं. और विशेष तौर पर मैं वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता ना, तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के हम आप सभी के बीच में आते हैं। कुछ ऐसी बातों को हम सुनते जो हम जानते भी हैं, लेकिन करना और जो लोग करते हैं उनको जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वाह, क्या जिया है इन्होंने अपने जीवन को। दोस्तों, परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन किस ओर जा रहा है और उस परिवर्तन से क्या हमारा सम्मान बढ़ रहा है समाज में, अपने व्यक्तिगत परिवार में और जीवन में, और उस परिवर्तन का एक जरिया हमें भी पता चले तो क्यों ना हम भी फॉलो करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही अनोखी बातों को लेकर के हमारे मेहमान हमारे बीच में आए हैं। हमारे साथ है श्री राम त्यागी जी। आप ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले दो दशकों से। दोस्तों, श्री राम जी राजस्थान से हैं और पिछले दो दशकों से जो माउंट आबू या शांतिवन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आध्यात्मिकता से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और उनके जीवन की ये यात्रा कैसे रही है, आइए जानते हैं। श्री राम जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन, आप राजस्थान से हैं और ये राजे रजवाड़ों की इस शहर में रहते हुए आपका बचपन कैसा बीता, लौकिक परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और वहाँ से आपको इस आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक संपर्क या रुचि कैसे बढ़ी, वो बताइए।
1: थैंक यू, फिर से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
0: जी।
1: मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार है मेरा, और किसान जो परिवार होता है वो किसान है मेरे पिताजी, और हम लोगों में जो हमारी एक जाति है त्यागी, उसमें सब जमींदार लोग होते हैं। जमींदार माना उनके पास जमीन बहुत होती है, और जमीन के ऊपर इन लोगों को बड़ा ये रहता है कि हमारे पास तो जमीन है, और जमीन के होते हुए भी अगर हमारे देखा जाए तो मेरे से भी बड़े जो मेरे भाई थे ताऊ के लड़के, उनको एक नौकरी का ऑफर आया, वो भी उन्होंने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे यहाँ तो खुद लोग नौकरी करने आएंगे, हम किसकी नौकरी करेंगे, ऐसा नशा रहता था। लेकिन अब वो समय नहीं है, हम उसमें पले हैं वातावरण में, तो काफी स्वाभिमानी वातावरण रहता है, वो परिवार काफी अच्छा, सब लोग गांव के हम लोग हैं तो मिलनसार होते हैं गाँव में, कोई किसी भेदभाव ज्यादा द्वेष नहीं होता है, मिलजुल के रहते हैं। किसान फैमिली में पढ़े लिखे तो ज्यादा पढ़ाई में इतना ये नहीं होता है, सब खेती में लग जाते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप ने पढ़ाने का बहुत हमको प्रयत्न किया, जिसके कारण हम बीए तक पढ़ाई किया। पढ़ाई के बीच बीच में हम जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, खेल में जाना, स्कूल में ये वो सब चलता था। हमको आठवीं क्लास तक तो सब नॉर्मल जीवन, क्योंकि हम सोचते थे कि हम शहर में जाएंगे। जब हमारा एक गाँव में एक स्कूल था और वो स्कूल था आठवीं तक, ये नाइन्थ हो जाएगा तो हम शहर में जाएंगे, बड़ी एक इच्छा थी शहर में जाने की। लेकिन हुआ क्या कि जब हम नाइन्थ में आने वाले थे वही स्कूल हमारा
0: अपग्रेड हो गया,
1: अपग्रेड हो गया, हमने कहा अभी भी नहीं जा पाएंगे।
0: अच्छा।
1: तो नाइन्थ टेंथ पढ़ा,
0: ये कौन सी गांव की बात है,
1: ये हमारा गांव पड़ता है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मनिया के पास, एक चैना का पूरा गाँव है।
0: अच्छा।
1: वहाँ दहरी स्कूल था हमारा, और वो स्कूल में ही हम शुरू से पढ़े
0: जी,
1: तो वो अपग्रेड हो गया। फिर हमने सोचा चलो कोई बात, दसवीं तक पढ़ के इलेवेंथ में तो हमको जाना ही है शहर के अंदर, टाउन में जाएंगे। तो जैसे हम टेंथ में आए तो वो इलेवेंथ का उसमें क्लास शुरू हो गया।

0: ऐसा नहीं है कि जहाँ शहरी वातावरण हो, लेकिन हाँ वहाँ गांव जैसा वातावरण अच्छा है, मतलब शांति है, कोई ज्यादा क्राइम नहीं है। हालांकि वो चंबल घाटी के उसमें आता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा, वहाँ काफी डाकू लोगों का होता है, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं होता है। वो तो बाहर से किडनैप करके लाएंगे तो जंगल में चले जाएंगे, फिर पुलिस उनसे कुछ रास्ता अपना मुठभेड़ करती रहती है। हम लोगों को कोई खतरा नहीं, चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए। तो हमारा जीवन है ना, हमने कहा जब हम संगति में पड़े ना 12th क्लास के बाद, जैसे बाहर आए ना हम, थोड़ा बीच बीच में हमारा कंपनी ऐसी मिली, दोस्तों की मिल जाती है शहर में आए तो, थोड़ा तम्बाकू खाना, पहले सुपारी खाया फिर गुटखा खाया, फिल्म देखना। हम फिल्म 10th क्लास तक तो हमने हॉल थिएटर नहीं देखा था कि थिएटर क्या चीज होती है। 8th क्लास तक हमने टीवी हमारे गाँव में टीवी नहीं होता था
1: जी।
0: हमारा टीवी हमारे आया, उसमें हमने महाभारत देखना शुरू किया
1: जी।
0: महाभारत से हमने टीवी शुरू किया है, पहले रामायण तक हमारे गांव में टीवी नहीं था।
1: अच्छा।
0: एक ही टीवी हुआ करता था, उसमें सब लोग गांव से काम छोड़ करके वहां बैठ करके 1 घंटा वो महाभारत देखते थे
1: जी। तो जब आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे धौलपुर में, तो फिर आप हर दिन अप एंड डाउन करते थे या धौलपुर में रहते थे?
0: अप एंड डाउन करते थे, हमारे घर से 17 किलोमीटर है कॉलेज।
1: अच्छा।
0: तो हम साइकिल से जाते थे
1: जी।
0: 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर जाना 17 किलोमीटर आना। मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल, एटलेस साइकिल चलती थी, बहुत अच्छी साइकिल। तो हाँ उससे जाते थे हम, वो अप डाउन करते थे
1: जी।
0: और वहीं रहते रहते हमने फिर उसके साथ कंप्यूटर भी सीखा। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे दोस्तों की कंपनी में हमने थोड़ा गुटखा खाना तम्बाकू खाना वो आदत हो गया, चुपके चुपके खाते थे, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद जब हम स्कूल छोड़ा उस समय के बाद, तो हमको एक था कि हमें कुछ करना है अपना। घर वाले बोलते कुछ करते नहीं हो, हर चीज सीखी हमने। मैंने लाइट का काम भी सीखा, प्लम्बरिंग का काम सीखा, सारा काम सीखा। बाद में मैंने ड्राइविंग सीखा, मैंने ड्राइविंग ट्रक से सीखना शुरू किया।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब हम ट्रक में गए ना, तो वहां पे हमको ना एक अलग आदत हो गई। जो हमें ट्रक सिखाने वाला था वो दारू पीता था। उसके साथ उसने बोला कि आप घी की रोटी खाओगे या, मैंने देखते हैं, उसने बोला गाड़ी में हम घी का डब्बा रखें या दारू की बोतल। मैंने घी तो बहुत खाया, दारू पी लेते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि वो एक होता था कि क्या होता है इसमें,
1: एक क्यूरियोसिटी थी
0: वो। तो 6 महीना हमने ट्रक सीखा। 6 महीने के बाद कुछ घर में ऐसा हादसा हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वो छोड़ के घर पे आया। मेरे भाई गवर्नमेंट जो रोडवेज होता है यूपी में, उसमें चालक थे
1: जी,
0: ड्राइवर। उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं आया घर पे, तो वो आदत मेरे को बनी हुई थी, तो कभी कभी मैं वो पीता था, वो ट्रक सीख लिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से उनको एडमिट करा के आ रहा था, तो वही जिस गाड़ी पे सीखा था वो आगरा से मुझे गाड़ी धौलपुर के लिए मिली, वही मिल गया। मैंने किराया लगेगा नहीं, अपना ही उस्ताद है, मैं बैठ गया उसमें। बैठने के बाद हमने पी लिया दारू, फिर हम चलाने लगे गाड़ी। तो एक रास्ते में सामने से एक फौजी की गाड़ी आ रही थी और इधर से मेरी गाड़ी, और हमारी गाड़ी का थोड़ा सा स्क्रैच हुआ साइड से, तो हम रुक करके वहीं पे उनको उतर गए फौजियों के सामने। लेकिन फौजी ने ऐसा समझा कि उसका गलती है, वो रुका नहीं। हम तो फौजी की गाड़ी सुन के भाई इनके इनको छोड़ के भागना नहीं है, वो चले गए। तो हमने चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ
1: जी,
0: ऐसा हमको आदत हो गया तो पीते रहे। इसके बाद क्या हुआ, मेरे घर में ना इसी बीच में एक कोई बाहर से आगरा साइड से मेरे रिश्तेदार आए मेरी माँ के पास
1: जी,
0: और उनको कुछ किताबें देके गए
1: जी।
0: मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, घर गृहस्थ में रहते, तो गांव में पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे इतना, लड़कों के ऊपर ही ध्यान होता था। तो माताजी मेरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, एकदम अंगूठा टाइप।
1: आपकी भी कोई भाई बहने हैं?
0: मेरे दो भाई, एक छोटा एक बड़ा
1: जी,
0: एक मेरे से बड़ी बहन है।
1: ओके, उनको पढ़ाया?
0: वो भाई सब लोग पढ़े, लेकिन बहन भी नहीं।
1: अच्छा, आपकी बहन, सगी बहन
0: भी नहीं पढ़ी? मेरी जो ओन सिस्टर है उसको भी नहीं पढ़ाई कराया
1: जी।
0: हाँ, माना लड़कियों को पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं था
1: जी।
0: तो बहन की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। मेरा तो पहले शुरू से विचार नहीं था, शादी करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। होता ना कि जैसे कि हम बड़े हो गए, शादी का मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ये चाहे मैं संस्था से जुड़ा हूँ कि नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना है और कुछ अलग से करना है। शादी तो सभी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग से करना है। और मुझे एक बात याद रहती थी कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि अगर हर घर से एक युवा मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ राम राज्य स्थापन कर सकूं
1: जी।
0: तो वो बात मेरे को हमेशा आया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि देश के काम में आए या समाज के काम में आए, किसी की सेवा कर सकूं, शुरू से था। और एक बात और बताऊंगा आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मुझे राजस्थान के अंदर ही रहना है।

0: अच्छा,
1: सबसे बड़ी बात ये थी मेरे मन में, पता नहीं क्या था, क्यों ऐसा था कि मुझे जॉब भी करनी है तो राजस्थान में करनी है, रहना है तो राजस्थान, किसी भी कोने में राजस्थान के में रहना है मुझे, अपने स्टेट को छोड़ के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाऊं मैं ऐसे स्टेट में नहीं, या तो फिर मुझे राजस्थान में रहना है, ऐसा मेरा वो था। तो कोई जॉब ऐसा नहीं किया मैंने क्योंकि मौका ही नहीं मिला वो चीज के लिए, जरूरत नहीं पड़ी।
0: जी, आपकी माता जी की कोई दोस्त आए, उन्होंने किताब दिया,
1: फिर माता जी ने बोला मेरे को कि बेटा ये है ना, ये किताब है और ये आपको मुझे रोज पढ़ के सुनानी है।
0: जी,
1: हम लोग रोज सुनते ना,
0: मुरली पढ़ते,
1: मुरली पढ़ते हैं
0: जी,
1: वो बोलते हैं। तो वो पहले होती थी तीन पन्ने की होती है, लिथो की टाइप किया होता था, आजकल कंप्यूटर है वो लिथो की होती है, तीन पेज बड़े बड़े होते, उसमें दो मुरलियां होती थी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, और अलग अलग डेट होती थी। तो मैं रोज माता जी को सुनाता था और 8-10 माताएं गांव की सुनती थी, बस इतना काम था मेरा, अपना गुटका भी खाना है और बस वो करना, मुझे अच्छा। कोई लेना नहीं, मेरा वो जॉब था मेरा इस समय लोग माता जी को खुश करने का, अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मेरा उस दिन रोटी नहीं मिलेगी मेरे को।
0: अच्छा,
1: मेरी माता जी तुम कुछ भी काम नहीं करेगा ना, खेत में करना कोई भी काम नहीं करना, लेकिन तुमको मुझे मुरली सुनानी है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, ये काम में तो बड़ा अपना खुश था।
0: तो घर में जब पता चला कि आप तंबाकू गुटखा ये सब कर रहे हैं, कभी ने आपको रोक टोक नहीं किया?
1: मैं एक्चुअली हम चोरी से खाते थे।
0: अच्छा।
1: एक दिन हम रात को सोए हुए थे तो गाँव में जैसे बाहर सोते है ना आंगन में,
0: जी,
1: तो हमने ना उसको जैसे वो थूक देते ना तो वहाँ लाल लाल हो गया था
0: जी,
1: तब मेरे पिताजी को पता चला, फिर उन्होंने हमारे पर थोड़ा कंट्रोल किया, तो हम फिर बाहर खाते थे, घर में नहीं खाते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, हालांकि उनको पता हल्का सा रहता, लेकिन उनके सामने हम नहीं खाते थे
0: जी।
1: तो जब हम ट्रक पे आए तब हमने दारू पीना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा किया, और दारू पीने का ऐसा नहीं हम सारा जिंदगी पिए, 1.5 साल के बाद जब हम हमारे घर में ये माता जी ने जो सुनाया मेरे को, तो मैं रोज सुनता था उसको, लेकिन एक मेरी माँ की एक और मेरे ऊपर एक अटैकिंग रहता था, उसको अटैक ही बोलता हूँ मैं, सवेरे 3:30 को आपको उठना है।
0: अच्छा,
1: माता नहीं, माता जी को बोला मैं, दिस इज नॉट माय जॉब, मैं माता जी ये मेरा नहीं है
0: जी,
1: आपको मैं मुरली सुना तो ये काफी नहीं है कि नहीं नहीं बेटा सुन लो, मैं नहीं उठ सकता, मेरी माता जी मेरे लिए बढ़िया चाय बना के लाती थी।
0: अच्छा,
1: कि चाय बना के, तो चाय पी के उतनी देर तो आदमी जगेगा ना, चाय पीने के बाद 10 मिनट में जगता था, 10 मिनट में मेरी माता जी एक कॉमेंट्री करती थी मेरे सामने।
0: अच्छा,
1: बोलूं आपके सामने? तो वो कॉमेंट्री होती थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो सोचता नहीं आत्मा क्या होती है
0: जी,
1: सोचा आत्मा पेट में होती है, कहाँ होती है, मैंने माँ आत्मा बताओ कहाँ होती है, तो माता जी बोलते ये दोनों भ्रकुटियों के बीच जो आत्मा है ना, बोलो मैं आत्मा फील करो ये, और ये आपके ऑर्गन्स है वो आत्मा के साधन है। जब माता जी के मुंह से मैं सुना ऑर्गन्स, बाप रे इतनी पढ़ी लिखी है मेरी माता जी, ऑर्गन्स इंग्लिश में बात कर रही है, ऑर्गन्स तो मेरे को भी समझ नहीं, माता जी ऑर्गन्स क्या होता है? ऑर्गन्स होता है बेटा ये शरीर, इसके ये हिस्से शरीर के, मैं तो एक सेकंड के सन्न रह गया।
0: अच्छा,
1: माता जी आपने सीखा कहाँ से कि मुरली में तो रोज आता है, जबकि मैं रोज सुना रहा हूँ उसको, मेरे को नॉट आउट नहीं हुआ वो, लेकिन माता जी ने बोला ये तो अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे को हल्का सा माता जी के ऊपर सम्मान बढ़ने लगा।
0: अच्छा,
1: कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है तो कुछ तो बात है
0: जी।
1: मैंने उनको बोला कि वो कॉमेंट्री 7 मिनट की पूरी हो जाती थी, और उसके बाद कॉमेंट्री करते करते मैं भले चाय भी सो जाता था।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: लेकिन उठते जरूर,
1: उठते 3:30 को मेरे को आप बताओ 84 से लेकर के, और मैंने शायद ही कभी 3:30 मिस किया होगा।
0: अच्छा,
1: शायद ही, या कहीं बाहर गए हैं माता जी के घेरे से बाहर हैं उनके एरिया से, तो बाकी हमने कहा ठीक है पढ़ाई लिखाई करके आराम से सोया करेंगे, अभी तो माता जी सोने नहीं देती है, तो हम ऐसे उस नशे में थे कि हम तो आराम से पढ़ाई लिखाई पूरा करके। उसके बाद जब मैं सुनाने लगा वो चीजें, इसी बीच में मैं जब ट्रक से आया तो वो आदत थी, तो मैं चुपके से वो पीने लगा। जब दारू पीता था मैं, तो मेरे मन में एक का आता था कि अगर मैं ऐसे पीता रहूं तो मेरा होगा क्या, मेरा थोड़ा बहुत जमीन है ये बिक जाएगा, मेरे हिस्से में जो जमीन आएगी मैं वो तो बेच दूंगा उतना ही, उसके बाद क्या होगा, ये उसके पीने के बाद वो संकल्प आते।
0: अच्छा,
1: हाँ, फिर जो माता जी को मैं सत्संग की वो किताब सुनाता था, तब मुझे लगता था कि इसमें एक चीज आती थी उसके अंदर, कि कई बच्चे है ना, ये उसमें भाषा होती थी ये
0: जी,
1: हाँ, जैसे भगवान की भाषा आजकल हम जो सुनते हैं, पहले तो ये चीज का हमको ज्ञान नहीं था
0: जी,
1: तो उसमें आती थी कि कई बच्चे हैं ज्ञान सुनते सुनाते हैं और विकर्म भी करते रहते हैं
0: जी,
1: तो मैं उस लाइन को जल्दी पढ़ देता क्योंकि ये समझाना नहीं है माता जी को, नहीं आज ही पीछे पड़ जाएगी।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये क्या हुआ सिस्टर, ये 3 दिन लगातार आया मुरली में
0: जी,
1: जो हम पढ़ाते उसमें, मैंने माताजी को, माताजी आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, रोज एक ही कॉपी उठा के ले आते हो, ये क्या है इसमें, मेरे को समझ, ये कौन सा आपका कागज है, वो एक ही कागज, एक जैसा ही कागज क्यों रहता है, सब में वो मीठे मीठे होता है सब में, नहीं नहीं बेटा इनमें सब में तारीख अलग होती है, वो मैंने कभी नोट नहीं किया। लेकिन माता जी को वो सब चीज पता, कि नहीं बेटा इसमें तारीख तो मैं लाओ उठा करके, बोले हुआ क्या, नहीं मैंने कहा आप तीनों उठा के लाओ, तो एक में दो लाई, एक अलग से लाई, तो तारीख अलग, आगे पीछे का जो भी होता है वो अलग, उसमें मैंने ध्यान से देखा वो लाइन तीनों एक ही थी। बोला हुआ क्या है ये तो बताओ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे छोड़ के उस चीज पे मेरे अपने आप अटेंशन चला गया कि मैं इसको सुना रहा हूँ और इसमें ये लाइन लिखी है कि कई बच्चे कर्म भी करते रहते हैं और ज्ञान सुनते सुनाते रहते हैं, उस लाइन ने मेरे को
0: अटेंशन खींचा,
1: अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उस लाइन को, मैं और भी लाइन मुरली में उसको ध्यान से सुनता था क्या, फिर मेरे धीरे धीरे जीवन में एक नरमपन आया, जैसे वो जो था एक कड़कपन था कि नहीं मुझे ज्ञान सुना, वो माता जी को सुनाया, मैं अपने नशे में रहा, फिर मैंने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, मेरे विकर्म क्या है
0: जी,
1: मैं क्या विकर्म करता हूँ, तो विकर्म तो मेरा एक ही था
0: जी,
1: गुटखा तंबाकू खाना और कभी कभी उदार पीना। गांव के जीवन इतना बढ़िया होता है कि वहां किसी से ना देव ऐसे ना किसी को मार काट है, सबसे बढ़िया मेरे गांव की एक आज भी एक आपको बता दूं क्या है, मेरे गांव में आपको एक अंडे का छिलका भी नहीं मिलेगा।
0: अच्छा,
1: मीठ तो अलग चीज है, मेरे गांव में कोई बकरी या मुर्गी नहीं मिलेगी आपको।
0: अच्छा,
1: आज भी मेरा गांव ऐसा है,
0: पूरा वेजिटेरियन
1: फुल्ली वेजिटेरियन।
0: वाह, बहुत सुंदर,
1: हमारे गांव में कोई ही आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, आजकल की जनरेशन जैसे ड्रिंकिंग करना वो अलग बात है, लेकिन आपको मीट अंडा और ये चीज कभी नहीं मिलेगी हमारे गांव में। और वहाँ की एक और वहाँ एक भय बैठा हुआ है कि अगर आपने अपने घर में मीट लाया तो आपकी कुल देवी रूठ जाएगी।
0: अच्छा,
1: तो कोई लाता नहीं है और ना कोई खाते भी नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
1: कोई भी नहीं खाते हैं हम 84 से मेरे घर में प्याज का छिलका भी नहीं आया है।
0: अच्छा,
1: जब से मेरी माताजी ने सुनना शुरू किया, माताजी ने मेरे घर में किसान, मतलब पिताजी किसान से प्याज की खेती करते थे, माताजी ने बोला खेत से बेच देना, घर में एक
0: प्याज नहीं आना चाहिए,
1: आना नहीं चाहिए, एक भी पीस नहीं आना चाहिए। मेरे पिताजी ने उसको बंद कर दिया। आप सोचो 84 से अभी तक कोई मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती है, तो अपने आप जीवन तो ऐसा था, लेकिन हम बाहर जाके ये सब चीज किए। लेकिन जब मैंने वो सुना, मैं अपनी लाइन पे आता हूँ
0: जी,
1: जब मैंने वो सुना तब मुझे लगा कि ये तो मुझे अभी छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़ने की अभी छोड़ू कैसे, कुछ दिन छोड़ दिया, फिर आया तो माता जी ने बोला, दीदी आई थी हमारी, जो क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जी की जो बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, तो हमारा आगरा से आई थी, उससे जुड़े हुए थे वो लोग, मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा,
1: तो लेकिन जब मैं पहली बार देखा सफेद साड़ी वाली जो दीदियां होती हैं, वो काफी मेरे को एकदम जैसे देवी जैसे होता है, मैंने कहा ये तो इतने चमक रहे हैं लोग, तो हम तो कैसे, मैं तो पास में, बोला दीदी आओ आओ आओ। माता जी को मैंने पहले बोला कि मेरा किसी से शिकायत मत करना, नहीं मुरली नहीं सुनाऊंगा आपको। माँ तो माँ होती है ना
0: जी,
1: तो माँ ने बोला कि नहीं सुनाएंगे, नहीं बोलेंगे। दीदी को बोल दिया। तो उन दीदियों को बोला, तो दीदियां कुछ नहीं बोली मेरे को, रक्षाबंधन था तो राखी बांध के जा रहे थे मेरे को, तो बोला भाई सबने दिया है, श्री राम तुमने कुछ नहीं दिया मेरे को।
0: अच्छा,
1: दीदी मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आएगा भी कहाँ से, सब तो खर्चा कर देते हो ना। जब दीदी ने बोला कि खर्चा करे तो इनको कैसे पता, क्या खर्चा, मुझे डाउट होने लगा। मैंने माताजी की तरफ ऐसे देखा, माताजी पीछे छुप के दीदी के।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद दीदी ने बोला कि आप दोगे, मैंने कहा दीदी बोलो कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जो ड्रिंकिंग करते हो ना वो छोड़ दो। हम तो ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं कर सकते
0: जी।
1: मैंने कहा जी बोल। मेरी दीदी बॉम्बे की, और बॉम्बे में वो ऐसे उसमें समाज से थी कि वहां इस चीज को जानते, तो वो शौक हो गई कि जो कि 10th 12th का बच्चा है ये, और अभी इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, और ये ऐसे कैसे कर सकता है। और सिस्टर सबसे बड़ी बात, हम तीनों टाइम ड्रिंक करते थे।
0: अच्छा,
1: सुबह उठना, दोपहर, ये हम पूरा केस खरीद के लाते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, उसका एक एक नहीं कभी खरीद, और जाके अपने वहां खेती में गाड़ देते थे, उसी में से खेत में पी के घर जाते थे, और बाहर से सेंट वेंट लगा के ताकि किसको बदबू ना आए। ऐसे कारनामे करते थे हम
0: जी।
1: ठीक है, तो दीदी ने जब बोला ना मेरे को, तो मैंने दीदी मैं आपको सोच के बताऊंगा कि ठीक है तेरे को टाइम देते हैं। मैं 3 दिन के बाद मैं गया एक दोस्तों के साथ, मैंने सुबह से पीना शुरू किया और शाम तक मैंने 11 बियर पी लिया, 11
0: जी,
1: पेट भर गया मेरा, खाना पीना कुछ नहीं किया। आकर के मैंने माता जी को बोल दिया शाम को, माता जी आज से मैंने छोड़ दिया। माता जी ने बोला कि शाबाश। पिताजी बोला हाँ तुमने शाबाश दे दिया तो क्या छोड़ देगा? मेरा बेटा छोड़ देगा। बोला कि वो पता है भगवान की वाणी सुनता है।
0: अच्छा।
1: और सुनाता है, भगवान इसको ताकत देगा, बाबा इसको शक्ति देगा। ऐसे बाबा शब्द नहीं, बाबा क्या है? बाबा माना भगवान, शिव, जिसको तुम रोज मुरली सुनता है ना, वो शिव बाबा है और कोई नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो और उसके मेरे मन में उसकी प्रति भावना बढ़ गई
0: जी।
1: उस दिन से मैंने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब दारू उसी दिन बंद।
0: बस वही आखिरी दिन थे।
1: वो आखिरी दिन, सबसे बड़ी बात मुझे विश्वास क्यों होने लगा ये ब्रह्म कुमारी जी की तरफ, बाबा की तरफ, कि उस दिन मुझे एक अलग शक्ति मिली कि मैंने छोड़ दिया और माता जी ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल छोड़ देगा आज से।
0: एक
1: वो तो चाहे वरदान समझ लो, चाहे ईश्वरी शक्ति समझ लो, उस दिन से मेरी इच्छा भी नहीं हुई। होते ना कि कोई अल्टरनेट चीजें देखता है लोग, ये गुटका का भी बताता हूँ आपको कैसे हुआ। ये तो पहला बड़ा टॉपिक तो पहले छोड़ दिया एक दिन। अब गुटका की बताऊ कैसे छोड़ा मैंने। वो मेरा एक भाई था बीके, वो आज वही धौलपुर में आज भी वो गीता पाठशाला सेंटर चलाता है वो ब्रह्म कुमारी। उसकी दो बहने सरेंडर हैं
0: जी,
1: धौलपुर में हैं
0: जी
1: दोनों
0: जी।
1: तो वो भाई मेरे को एक दिन ले गया कि चलो आप तो अभी ज्ञान में, आपको तो ज्ञान है ना, तो चलो कहीं जाके ज्ञान सुना के आते हैं, प्रचार करके आते हैं
0: जी
1: ओम शांति का
0: जी।
1: मैंने कहा चलो। हम गए तो उन्होंने सारा करा दिया और मुझे बोला कि आप ये एक लक्ष्मी नारायण का चित्र हुआ करता है हमारे इसमें
0: जी, जी।
1: वो चित्र को उन्होंने टांग दिया, बोला इसमें सुनाना है आपको
0: जी।
1: तो मैंने उसको भाई को बोला
0: जी
1: कि भाई मेरे को तो आदत नहीं, नहीं आप सुनाओ। तो वहां लिखा था एक धर्म एक भाषा, राजनीतिक एवं धार्मिक सत्ता एक के हाथ में, ऐसी ये लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी। अच्छा। सुना के मैं बैठ गया।
0: अच्छा।
1: वो लोग बोले कि बड़ा पूरा हो गया इसका जल्दी डेढ़ मिनट में। तो उन्होंने बोला कि ये अभी नए नए बाबा के बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है। वो भाई हमको ले जा रहा था भरतपुर
0: जी।
1: भरतपुर में एक आश्रम है, वहां उसकी लौकिक बहन रहती थी। तो रास्ते में सिस्टर वो हमको एक वो मिला आरटीओ चेकिंग, बस में जा रहे थे, गाड़ी उसने रोक दिया
0: जी।
1: टर्निंग पॉइंट बताता हूँ आपको उसका, गुटके का
0: जी।
1: तो वहां रुके तो मेरे को तो वही आ गया टाइम खाने का, ऐसे तलब लग रही है खा लूं करके। तो भाई को बिठा करके मैं बस में पानी पी के आता हूँ, बस रुकी है। उन्होंने बोला भाई आधे घंटे तक बस नहीं जाएगी यहाँ से
0: जी।
1: हम गए, एक छोटा सा बच्चा दुकान पे बैठा, उससे मैंने एक वो लिया पुड़िया उसका गुटके का, और ये उतार के बैच दिया वो भाई ने, वो मैंने जेब में रख लिया।
0: अच्छा।
1: देखो आपको बिल्कुल सही सही बात बता रहा हूँ, कुछ छुपाने वाला नहीं है
0: जी,
1: कि जीवन में कैसे परिवर्तन आया मेरे में
0: जी।
1: तो वो गुटका में खा करके बस में ऐसे चढ़ाई था, तो वो मेरे भाई थे ना बड़े, वो इस बारे में लोगों को समझा रहे थे कि हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन एक भी व्यक्ति आजाद नहीं है। वो बोला क्यों? क्योंकि 3 इंची की सिगरेट के पीछे 6 फुट का आदमी गुलाम है, 1 रुपए की पुड़िया के बिना आदमी रह नहीं सकता है तंबाकू के बिना, तो कैसे आजाद बोलेंगे। ये 1 रुपए की पुड़िया वाला शब्द मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा मैंने सुन लिया
0: जी।
1: मैंने कहा अगर मैं अंदर गया
0: जी
1: तो लोग मेरे मुंह में देखेंगे या खुशबू आएगी और मैं भी ये इस वेश में हूँ
0: जी।
1: तो बोला ये दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, इसका ही भाई खा रहा है
0: जी।
1: सिस्टर मैं सीधा पीछे अपना पैर किया और गया, मैंने पानी से मुंह साफ किया जा करके नल पे
0: जी।
1: और वो दिन
0: जी,
1: आज का दिन
0: जी,
1: मैंने उसके अल्टरनेट में सौंफ भी नहीं खाया,
0: ओके,
1: सुपारी भी नहीं खाया
0: जी।
1: वो मेरा वहां क्लोज हो गया
0: जी।
1: सब लोग वंडर करने, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते
0: जी।
1: फिर हमको भी नशा आने लगा, ये ईश्वरीय शक्ति है
0: जी,
1: ये भगवान के अलावा और कोई कर नहीं सकता
0: जी।
1: तो मैं जहां तक अपनी जर्नी को देखा कि जब से मेरे को माताजी ने पकड़ा इसमें, ये ज्ञान सुनाना शुरू किया है ये, तो मेरे अंदर परिवर्तन अपने आप आता गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी।
0: फिर आप समर्पित होने का डिसीजन कैसे लिया, और वो भी मधुबन में हेडक्वार्टर में?
1: समर्पित कैसा था कि कुछ समय के बाद मैंने ना अपना बोर्डिंग स्कूल चलाया।
0: अच्छा।
1: खुद का मेरा स्कूल था
0: जी,
1: और वो 8वीं तक मैंने स्कूल चलाया 6 साल
0: जी।
1: पहले 3 साल किसी और के स्कूल में काम किया था, नशा करते करते ही काम किया था। जब ये हो गया तो मैं, जब नशा छोड़ा था, मैंने अपना स्कूल चलाया, और वो स्कूल मैंने खोल दिया था 98 में मैंने स्कूल खोला। तो वो स्कूल मैंने चलाया और मैं यहाँ पे सेवा में आता रहता था माउंट आबू में। तो यहाँ सेवा में तो काफी यहाँ के जो भाई थे मेरे, जो फ्रेंड बने, वो काफी मेरे को मोटिवेट करते थे, और मोटिवेट माने मुझे मतलब प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे कि ये जीवन कैसा है, तो अच्छा लगता। मैं यहाँ पे पूरा जो वेकेशन होता था, छुट्टियां होती, पूरा यहीं करता था, सेवाएं करता था, तो किसी किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद में जब स्कूल खोला तो मैं यहाँ आने वाला था, तो मेरे एक भतीजा था, मतलब उसने बोला कि अंकल ऐसा करो, हमने नया स्कूल खोला है, वो चलाने का उन्होंने कैसे मेरे को बोला कि हमने नया स्कूल खोला है, उसमें सिर्फ आपका हमने नाम डाला है, आप एडमिनिस्ट्रेटर उसके वो व्यवस्थापक हो, तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, बस ज्यादा नहीं, आप 3 महीना रह जाओ, जो स्कूल है ना खुल जाए फिर आप चले जाना, क्योंकि आपका नाम डाला है। और उन्होंने क्या चालाकी किया कि इनको शिव का नाम बहुत प्यारा होता है।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने शिव बाल विद्या मंदिर लिख दिया उसका नाम।
0: अच्छा।
1: हाँ, और ऊपर ओम शांति पूरा सिग्नल।
0: अच्छा।
1: तो वो पूरा उन्होंने इनकी भावना ऐसे बढ़े ऐसा उन्होंने स्कूल खोला।
0: अच्छा।
1: और सारा मेरा उसमें सिग्नेचर चलेगा। वो स्कूल हमने चलाया 8वीं क्लास है आपको बताएं 2004 तक चलाया था हमने इसको।
0: अच्छा।
1: तो जब स्कूल हम चला रहे थे उस समय काफी अच्छे, मतलब मेरे में 400 बच्चे आ गए थे 8वीं तक के स्कूल में। और मैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे को तो बोला आप कभी भी माउंट आबू जाओ, कभी मेरे को पूरा फ्री छोड़ा उन लोगों ने, स्कूल आपके नाम से चलेगा लेकिन चलाएंगे हम, क्योंकि मान्यता मेरे नाम से मिलेगी नहीं, मैंने तो अपना BA किया है, उन लोगों को उसके लिए तो BEd और क्या क्या चाहिए होता है स्कूल के लिए, तो मान्यता वो लोग लेके रखे थे, लेकिन व्यवस्थापक के रूप में मेरा नाम रखा था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से एक निमंत्रण आया, मेरा अट्रैक्शन तो था ही यहाँ का
0: मधुबन का।
1: हाँ, तो यहाँ से एक भाई ने मेरे को बोला, आप शायद जानते होंगे, एक गिरीश भाई है हमारे डायमंड हाउस में, उन्होंने बोला कि भाई आपकी बहुत जरूरत है भगवान के घर में, और भगवान को आपकी जरूरत है, अगर आप आओगे तो अच्छा है, नहीं तो सोच लो आप अपनी तकदीर को खुद लकीर लगा रहे हो। हम आपका इंतजार 97 से कर रहे हैं, आज 2004 हो गया, आओ तो आ जाओ आप। वो शब्द थोड़ा मेरे को टच कर गया। शनिवार का दिन था, स्कूल में हम बाल सभा करवा रहे थे, और फोन, पहले वो फोन गांव में होते थे वायरलेस वाले, गांव में एक ही फोन होता था।
0: अच्छा।
1: वो लोग बुलाने के लिए आए कि साहब आपका माउंट आबू से फोन आया है।
0: अच्छा।
1: वो लोग तो उनके लिए तो माउंट आबू बहुत दूर की चीज थी, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। माउंट आबू से फोन आया आपका, मैंने जब बात किया तो इन्होंने बोला कि आपको आना ही है, और ये आपके लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद हम आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपके चक्कर में हमने किसी को यहाँ और रखा नहीं है, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत बाइंड अप किया, शनिवार का दिन था और 29 तारीख थी, मैं वहां से गया सेंटर पे, बोला, और सेंटर पे भी एक पेपर आ गया मेरे सामने।
0: अच्छा।
1: हमारी दीदियां पहले बोलती आप मधुबन में रह जाओ, वहां समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ आप ब्रह्मा कुमारी जी में, और उसके बाद बोले कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है।
0: अच्छा।
1: मैंने कि क्यों नहीं जाना है, कि अभी यहाँ से एक बहन जा रही है, वो आश्रम आपको संभालना है।
0: अच्छा।
1: मैंने कि ओके, मैंने कि मैं तो ऐसे नहीं है, मेरे को अभी जाना है, मैं थोड़ा सा मन खराब हो गया, तो मैं बैठ गया वहाँ पे मेडिटेशन रूम में
0: जी।
1: तो मेडिटेशन करने लगा मैं, तो दीदी ने तुरंत, दीदी का मतलब वहाँ की जो इंचार्ज थी उनका, कि आप तैयारी करो, आप वो जो जाने वाले थे वो नहीं जा रहे, आपको ही जाना है।
0: अच्छा।
1: 1 अगस्त को मैं यहाँ पहली बार आया 2004 में
0: जी।
1: और यहाँ पहुंचा, और तब फिर यहाँ से मेरी जीवन यात्रा ये शुरू हुई
0: जी। सो जब से आप 2004 फर्स्ट अगस्त से मधुबन में रहना शुरू किया, और आज दिन तक आपका लगभग 2 दशक पूरा हो चुके हैं, तो इस यात्रा में आपने क्या सीखा मुख्य रीति से संक्षिप्त में?
1: हाँ, मुख्य रीति से ये सीखा मैंने कि जीवन में संयम और धैर्य
0: जी,
1: क्रोध पर काबू और अच्छे गुणों की धारणा, मतलब जीवन को यहाँ रहते हुए भी अगर यहाँ रह रहे हो, क्योंकि यहाँ एक एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में अपने जीवन से दूसरों के जीवन को परिवर्तन करने की हमने कला सीखी, कि मेरे अंदर पहले क्रोध बहुत था, तुरंत मैं हाइपर होता था, लेकिन मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन के अंदर वो ताकत है कि असंभव को आप संभव कर सकते हैं, जो इवन कई लोग इसको जड़ से खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा यहाँ आकर के हमको,
0: जिसके आप एक उदाहरण है,
1: मैं कोशिश आज भी कर रहा हूँ।
0: बहुत सारी चीजों में,
1: बहुत सारी चीजों को हमने पूरा ये किया है,
0: जड़ से खत्म किया है,
1: जो कि कोई भी आपको गलत धारणा है, आपके चंचलता है, वो सब मेरे अंदर बहुत चंचलता थी, लेकिन मेडिटेशन से वो स्थिरता आई है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें मन को लगा सकते हैं, और जितना समय तक चाहें हम लगा सकते हैं।
0: बहुत खूब, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही श्रीराम भाई आपका। परिवर्तन मतलब एक सुंदरता, परिवर्तन मतलब जीवन का एक आदर्श, परिवर्तन मतलब जीवन में इतना संयम लेके आए, आने वाली पीढ़ी आपकी जीवन से सीखे कि जीना है तो कैसे ऐसे जीना है। थैंक यू सो मच आज आप आए हमारे श्रोताओं के बीच में, और आध्यात्मिकता से, योगी जीवन से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन आता है, और एक आम जिंदगी जीते हुए भी एक योगी की तरह कैसे जीना है, आप अपने जीवन से हमारे श्रोताओं को दर्शाया है। शुक्रिया आपको।
1: थैंक यू
0: थैंक यू सो मच दोस्तों, इसे कहते हैं जीना, इसे का नाम है। फिर मिलेंगे अगले

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन

0: का
1: अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
2: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
3: आई मासा।
2: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरे साड़ी को नहीं राजकुमारी।
3: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
4: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
5: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
6: ए राम।
3: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
7: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
2: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
8: शांति शांति।
9: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे राजकुमारी।
3: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
5: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
10: 10 मिनट और बस।
3: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
5: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
3: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
5: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
11: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
9: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
12: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
13: इनको मैं बताती हूँ।
12: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
13: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
9: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
14: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
15: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
1: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं।
14: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
9: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
16: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
14: हैं? क्या जी?
16: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
13: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
17: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
1: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
18: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर
17: कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
2: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
8: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
2: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
15: ला रही हूँ मासा।
8: अरे कुछ नहीं हुआ बस मुझे।
13: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
0: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
11: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
1: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
11: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना
15: जी? मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
0: कुछ कहा राजकुमारी?
15: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
0: ओ ओ ओ ओ ओ,
2: अरे ये कह रहा है ऊपर।
18: अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
4: अरे उसको बैठना है।
0: ओ
15: हाँ, लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है? अरे कोई और फल चाहिए क्या?
18: पैर में दर्द है क्या?
15: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
19: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
15: अरे पिताजी कहाँ गए?
4: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
15: पापा गाने को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला
4: पापा कहते हैं।
15: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
13: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
14: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
1: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पाँव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनके आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
13: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलेंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल्ड
1: हाँ
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान, मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य, सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, ये बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए, तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, का नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हो,
0: भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें, और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल,
0: जो
1: वही
0: अवेयरनेस
1: वही वही काम इधर
0: प्लान,
1: इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी।
1: बिल्कुल, हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो, मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी श्रोताओं जो हमसे
1: और
0: जी
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ बस।
0: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके
0: निश्चित
1: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली, आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मेरी मदर।
0: जी, तो
1: हाँ
0: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी। सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है, मतलब
0: जी,
1: पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में की है, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बधा मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं आपके जिले नर्मदा में, क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए, और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर

0: सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
0: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े और उनको
1: परमानेंट
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए, उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: जी, आप
0: डिसेबल लोगों के लिए।
1: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
1: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
0: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
1: जी,
0: सेवेंटी फाइव यस।
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की
0: क्योंकि
1: आवश्यकता है।
0: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवाज सत्य रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना वो बहुत ही एक्साइटेड बात है, आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ, इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधौन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधौन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय में किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूं। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी

0: से रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर, मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूं कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था, तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने उनसे
0: जी
1: भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते, किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से, वो एक दिन मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था, और मुझे पढ़ाई की तो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाए, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन
0: जी
1: मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था, वो उन्होंने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाए तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन
0: जी
1: सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माताजी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर
0: जी
1: थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास में
0: जी
1: पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को, टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो
0: जी
1: सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो

0: कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ। लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी, फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा। फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक, जब जैसे क्या है कि फिजिक्स केम वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस, और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने ली है, स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे 6th क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीजें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है, मैं पंकज यादव सर अभी नहीं है, वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर 6th क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माताजी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो, हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब 5th 6th पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने 7th क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ 8th में। अब मैं डायरेक्ट 8th में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है 1 साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में 1 साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले, और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पर नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है, कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1-2 महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं 8th क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी जगह मिली। हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है, होली पे ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो 8th क्लास और 9th क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने 9th क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है 9th क्लास, 8th क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर 9th क्लास आई, तो सर 9th क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स, और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की, और सर मैं 9th निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं। लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कॉपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताए। तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है,
1: जी
0: तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स।
1: जी
0: अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय 3rd रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में।
1: जी
0: मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी,
1: जी
0: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी।
1: आपने अपनी
0: फिर सर
1: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
0: हाँ मानसिक
1: दे
0: चुनौती दे दी मैंने, तो उनको उस चीज में मतलब एक तरीके से
1: दी।
0: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
1: जी
0: टीसी भी ले ली, दो तीन
1: जबकि
0: बच्चे थे टीसी
1: हमारा
0: चले
1: उद्देश्य नहीं,
0: गए।
1: जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
0: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
1: हाँ,
0: अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
1: वो तो बचपन से ही लेती है ना। जी
0: हाँ फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
1: जी
0: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
1: जी
0: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
1: जी
0: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
1: जी
0: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता क्या
1: जी
0: था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
1: जी
0: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
1: जी
0: अब वो पढ़े मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई, इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया, एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
1: जी
0: सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, एक युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
1: जी
0: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग थी इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया आप।
1: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2 2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, वो ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
0: जी
1: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
0: जी
1: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th 10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
0: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो। तो सर अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के मुझे, मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले आ रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे, और
1: जी, नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
0: मैंने
1: चुनौती।
0: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
1: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय, आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खासतौर पे गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया। और लोगों के सामने जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है। शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है, या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
0: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न है इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से। फिर ग्रेजुएशन में मिली, अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं, और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं, मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
0: और मैं चाह रहा हूं कि हम
1: परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
0: आप
1: जी
0: देखिए सर, पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में, उनके मेडल
1: जी
0: देखिए। तो
1: जी मुझे तो हंसी आ रही है
0: हाँ,
1: सकलांग लोगों पर आज।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए यहाँ पे, एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज। आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा। हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना ये कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम ये भी समझें कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें। और अवश्य ही यदि हम वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्वगुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टिपात
0: जी
1: पर चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने हमको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो उन
0: जी
1: सज्जन ने उनके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको
0: सर,
1: लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर वापस
0: यही यही चीज
1: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना। या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवार जन उससे पूछेंगे कि ये चाय
0: जी
1: पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं
0: जी
1: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ माचे, कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक
1: चलते।
0: बार हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था, कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
1: जी
0: तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रहे थे किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी, तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे। मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो
1: जी
0: उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है। हाँ,
1: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
1: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से करते हैं, तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग विद अस।
0: जी
1: तो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं,
0: सर
1: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। श्रोताओं, एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
2: ओम शांति। वेलकम टू मास्टर्स ऑफ चेंज। वी सी इन लाइफ दैट देयर आर सम पीपल हु आर मच मोर डायनामिक देन अदर्स। टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर वर्ड्स, डायनामिज्म कम्स फ्रॉम अडैप्टिंग चेंज क्विकली एंड नॉट स्केयरिंग योरसेल्फ ऑफ इट। सो इफ यू नॉट स्केयर्ड ऑफ चेंज एंड यू टेक इट हेड ऑन, यू आर समबडी हु इज डायनामिक। Today we have a very special guest with us, Sister Godorn from Germany. She has been practicing meditation for over 4 decades and has experimented with spirituality and meditation in her life. She will be sharing the various learnings that she has got and would like to spread the word across. Thank you, Sister, for being with us. We welcome you on the show. Om Shanti.
3: Om Shanti. Om Shanti.
2: So, Sister, we understand that you belong in the Western world and meditation does not come so naturally. How did you get into this?
3: Actually, I was longing so much for true love.
2: Okay.
3: I felt always, firstly, I felt strange in the country I was. Mm-hmm. Even I'm born in Germany, mm-hmm. I didn't understand the country, I must say. And I wanted to learn everything about love.
2: Yeah.
3: This is was my main concern, and I tried everything. But as I'm courageous, so I tried out several things.
2: Yeah.
3: For example, I went even to India and went to a guru, okay. Babaji, in Hyderabad. Okay. And but when I came back, I felt no, it's not. I want to have a direct link.
2: Mm.
3: And so then I came back and I didn't know where to go.
2: Yeah.
3: Because it was a Raja Yoga center I came to know beforehand.
2: Mm.
3: And I knew this is the place I want to go.
2: Mm.
3: And as I told you before, I had also another interesting, not practice, but I tried it out.
2: Mm.
3: I wanted to spread love in the atmosphere, and I saw somewhere people sitting around a little fire.
2: Yeah.
3: And they did a kind of mantra, and there was cow dung in it, and ghee, and they started to sing, so ya ya swaha, you know.
2: Okay.
3: And I was so attracted to that. And so then I bought for my home the Kapha Pyramid.
2: Okay.
3: And I made this Agnihotra, what is very strange in a country like Germany.
2: Yes, yes, indeed.
3: Yes, so I did it every sun in the morning and in the evening.
2: Okay.
3: I went outside when the weather was fine with my bundle of collected cow dung.
2: Yeah.
3: It was so crazy. Yeah.
2: Okay. No, but
3: I did it.
2: You know, you were doing this practice. How did you chance upon meditation?
3: Yeah, then I met someone and in a bookshop. And then I said, every Thursday, people can come to me. Because I always wanted to share something.
2: Mm.
3: Even I had at that time no knowledge, but I felt we should share about something spiritual.
2: Mm.
3: And then there was someone who was in this shop, and he said, can I also come? I said, of course. Then I showed him the Agnihotra.
2: Okay.
3: And he was silently smiling.
2: Mm.
3: And he says, yes, it's wonderful. Why are you doing this?
2: Mm.
3: And I said, yes, it should spread in the atmosphere. Even the ashes is put in the plants and so on.
2: Yeah.
3: And I want to give good vibration to the world. But he was saying, why you need this fire for that?
2: Mm.
3: Then slowly he told me about meditation and that we can spread the vibration, we can connect with God. Because this was another thing, I was praying to God, I want to know you.
2: Okay.
3: I studied a lot of things, I was searching a lot and did everything, and certain things were, as I said, for the country, a little bit crazy.
2: So when you were introduced to meditation by this brother, how did you see it? I mean, you know, I can literally visualize right now sitting across and he's sharing that there is this technique, you know, wherein without fire and ashes, you can still spread love and joy in the world. Did you believe it at the first?
3: At the first, not really.
2: Okay.
3: I thought he don't understand. But then I felt the vibration. He didn't want anything from me. And so I was interested just because of the calmness.
2: Yeah.
3: And then I went in the center and learned about meditation because the other thing I was searching, I had some kind of visions. Mm. And I was praying to God, I want to know you more.
2: Yeah.
3: And then I took the Raja Yoga course.
2: Okay.
3: No, and then in my heart, it was never before, yes. I always, something was always saying yes. And also when I heard, so God is father and mother, and then as I was brought up Christian, and as a Christian,
2: yeah,
3: then again, always father, father, can he not be also mother?
2: Mm.
3: He says, yes, he's also mother. Then I was relaxed.
2: Yeah.
3: So, and so, yeah, I liked the relationship that I can, a real relationship with God. So that then I took the full course and really it changed completely.
2: Mm.
3: I did already a lot, but then the people were not happy with me.
2: Mm, yeah.
3: Even I was wearing a sari.
2: Okay.
3: I was at the guru's place and it was, I think, this Rajasthani sari. So, and my mother was thinking, now what is happening with her,
2: yeah,
3: you know? And but with Raja Yoga, it's not a outer change, nothing outside.
2: Mm.
3: You can be where you are. We can be with the family. You can do your job. And even the guru asked me to shave my hair.
2: Okay.
3: Unfortunately, I did not. You know.
2: Okay.
3: So then I understood the inner journey.
2: Mm. So, sister, when you started on this journey of meditation, I'm sure there must be changes. You know, even physical changes, internal changes, and your family or people who were close to you, your friends, must have witnessed those changes in you. How did they respond to these?
3: Yeah, there was definitely changes.
2: Mm-hmm.
3: For example, sometimes I was very angry.
2: Okay.
3: And my son and myself, sometimes we bumped into each other very angry, and I felt very sorry about it.
2: Mm.
3: But when I started meditation, then, and then the one who gave me the course, he was saying, the people who are angry, they become the best yogis. He said to me that, okay, that gives me hope. Because the power is changed then in another energy.
2: Yeah.
3: And then I was able to tell, to tell the son, for example, to tell him, before I want to answer to you, just I need a moment. I come back to you. Then we speak.
2: Yeah.
3: And in the beginning he reacted. Oh, now you go. I said, wait, I come back.
2: Yeah.
3: And that gave me the time. At the beginning, I wasn't so fast.
2: Mm.
3: No, I only could do it like that.
2: Yeah.
3: But this had a great impact. That silently, calmly, I could tell him, look, this is and this is. So that was one of the things. And my mother, she reacted first because I was very silent, very introvert. Mm. But she, as mother, she knows her child, I'm also very living.
2: Mm-hmm.
3: And then after a while, when I was visiting her and washing dishes and so on, then suddenly I start singing and so on. And, oh, now you are back. Then I felt, aha, now I get the balance.
2: Yeah.
3: Being peaceful is good, but not suppress the living way of living and it's just a change of sanskaras, as we say, sanskaras, the habits.
2: Mm.
3: No, that doesn't mean I'm outside, I'm extroverted.
2: Yeah.
3: But I can be happy and can share happiness.
2: Mm.
3: So it was step by step. First, it was like a foundation, be just peaceful, peaceful. But then the other qualities were more, how you could say, purified in a sense. And so, yeah, it does had an effect. Some friends of me, they really were asking what's with her. Then they invited me. I didn't want to drink. Anyway, beforehand also, I didn't want to drink alcohol. Because before I came to Gyan, to this knowledge, I already started little things, gave up quite a lot of things.
2: Okay.
3: No, but when I took this path, it was more change. And so, but it was fine. I chose them.
2: Mm.
3: or a certain company I didn't need anymore. Yeah. So like creating new people who really understand me. And then the other ones also, in the beginning, they didn't have the respect. But I later said, now I understand. Later the respect came.
2: Yeah.
3: They appreciated a lot my change. It was very visible.
2: Yeah. So apart from, you know, those little bursts of anger,
3: yeah,
2: what were the other ways that your relationship with your son changed, pre and post spirituality?
3: Many things, even also outside things changed, you know. I was a little bit, I didn't want to go with the mass, so I had little bit funny dressing. I had here earring, and I had here something and a feather here. So a little bit hippie type of, you know. And so then I changed the outer things, and that they understood something is really changing, not something only inside, but I can transfer it outside and more. Being with the people in a real thing. Before I was like dancing in the clouds.
2: Yeah.
3: It was before I knew exactly I'm a soul. Mm. I act through the body and so on. And so, yeah, there were also in my logic world, in my job, I was working with children.
2: Okay.
3: And my colleagues, they watched it then because they always started to gossip. This one.
2: Yeah.
3: And then they watched. I never went in this gossip.
2: Hmm.
3: And so they asked me, why are you not, you're always silent.
2: Yeah.
3: And then a little bit they looked like that, oh, she's not with us.
2: Hmm.
3: But then I started to create a method.
2: Okay.
3: I went to the other teachers,
2: yeah,
3: and then I told them about their specialities.
2: Okay.
3: I told them, look, you are so, oh yes, this is me, because I saw it.
2: Mm.
3: And slowly I won their heart.
2: Yeah.
3: No? Because they know, oh, she's not gossiping,
2: yeah,
3: but she likes us.
2: Right.
3: And so
2: right.
3: It has a big influence on my logic. On I say the Hindi word, sorry.
2: That's okay.
3: Logic,
2: okay.
3: The I'm so used after many years to use this word. So this was also a big change. My colleagues, they...
2: So your worldly relationships, yeah, professional relationships also changed?
3: Yeah.
2: Wonderful. Yeah. In fact, you know, with this, you've given us a very nice technique.
3: Yeah.
2: Because at times, we don't want to indulge with certain groups.
3: Yeah.
2: But there is a very good way to keep that connection going and growing positively.
3: Yes.
2: So instead of, you know, gossiping or doing the negative things, let's indulge in the positive things.
3: Yes.
2: And let's compliment them for the real qualities that they have.
3: Yeah.
2: Very nice. I think that technique will stay with us.
3: Yes. Mm.
2: So then, you know, you did the course. How was your course of life post that? Did you carry on with your professional work?
3: Yes, I did.
2: Okay.
3: Yes, I did carry on. I did carry on with everything.
2: Okay.
3: And that was a good thing also that it's not a stop of the... being with in the community.
2: Indeed, yeah.
3: No, it's to put it in it.
2: Absolutely.
3: What you have learned, the values. Also, when I was working with children, then I was thinking, how can I connect with God at that time? Because I was very busy, you know, teaching and whatever we need to do. But then I learned to use the values. They need values, they need love, no? Even one child came to me, and then I was telling her, she had some problems.
2: Yeah.
3: Then I said, I have a secret for you. And then I told her how to connect with God.
2: Okay.
3: I told her, look, there's a kind of big star, like a parent star. This is how I explained it, no? And every time you have a problem, just go to that star, to that shining bright parent star, and it will help you. This is our secret. And next time she came and she was so happy.
2: Yeah.
3: I get the secret.
2: Yeah.
3: That was very nice to see. Also the children, they felt it.
2: So along with being a spiritual teacher, you were also a school teacher.
3: Yes.
2: Wonderful. Mm. For how long, sister?
3: Yes, now I'm 8 years retired, but the last years I did different kind of work. I did a women's project, but then I already put the spirituality in it.
2: Yeah.
3: So I was working with different kind of...
2: Wonderful.
3: Yeah.
2: So would you share with us the various projects that you're doing or you have done?
3: Yeah.
2: Or the initiatives that the BK Center has taken up in Germany?
3: Yeah, so... I was living in centers after I was 2 years with this knowledge.
2: Okay.
3: Then I lived all the time in a center, starting in Munich, then in other cities as well. But my job continued.
2: Okay.
3: But then I didn't want to work with children anymore. And then there was one very nice contact soul, and she asked her, it was called Plan International. It's working for women all over the world.
2: Yeah.
3: And she asked, she wants a coach, because I also learned to be a coach.
2: Okay.
3: She said, I want her.
2: Okay.
3: And then anyhow, I could work as a coach with her. And then also I had to give some seminars and with women from Africa, from Egypt, and then I put the spiritual knowledge in it. They were so happy.
2: Okay.
3: Mainly Muslim women. Mm. They were so happy that I love Allah. That was a very good project.
2: Indeed.
3: Yeah.
2: Indeed.
3: Only it finished with COVID, then it couldn't continue.
2: So you say that after 2 years of practicing meditation, you moved into the center.
3: Yeah.
2: So how about your family?
3: I have a interesting life, I can say.
2: Yeah.
3: So I was separated. I was living alone with his son, but grown up, living his own life, you know.
2: Okay.
3: And my mother, at the end of her life, she really appreciated my life also.
2: Wow.
3: In the beginning, she was resisting a little bit. What she's doing now, and she said, I will never continue, because always I'm curious, I always do something new.
2: Yeah.
3: But this I was doing and doing and doing, never stopped.
2: Yeah.
3: And this gave her a sign, this must be something really, really good.
2: Yes.
3: And so in the last years, even she was a little dement, then very sweetly I told her more about this and appreciated also her love, because she was a wonderful soul also.
2: Okay.
3: I learned a lot from her.
2: Wonderful.
3: Yes.
2: So, sister, we understand that, you know, you've had this journey of being a school teacher alongside a spiritual teacher, and then now you're a coach as well. You've been working with women. But, you know, this long journey of being into spirituality, what has this given you?
3: A lot of real happiness, not outside.
2: Yeah.
3: Earlier I liked to go for dancing and all those things.
2: Yeah.
3: And was a little bit happy. Mm. But this happiness is a real happiness for me, because it's kind of long-lasting, everlasting, you can even say.
2: Yeah.
3: And it's also practical, because this was for me a big difference. I had a lot of methods. I tried it out, you know, but this was the only method when it was practical and the change was visible. For example, I had positive thinking before, and everywhere I was writing, I am peaceful, I am this, I am that, but it didn't work when it was practical.
2: Yes.
3: And this was the only thing I learned. This was practical, and it gives me also safety. Even now, you know, the world is in such a circumstance, and I feel like a pillar that I want to give for people, you know. This is why I feel I'm in Germany to help people there to be stable, No, I live now in we have a seminar house.
2: Okay.
3: And people from the countryside, they come and I teach them meditation. They are so happy. It makes me happy also. If others come for advice and it makes their life happy, that makes me happy.
2: Mm-hmm.
3: Sharing happiness gives me happy. Happiness also. Yeah.
2: So, you know, coming from a place where you were trying to find new methods, new techniques to be happy, or, you know, just to get that little flavor of betterment, happiness in your life, it's now come to a point wherein you're spreading it across.
3: Yes.
2: Which is a wonderful change.
3: Yes. It is, indeed.
2: And all thanks to spirituality for this.
3: Yes, yes. And I could never imagine, for example, to sit like here in such a studio, or sitting in front of so many people and giving a lecture. I was fearing the microphone, you know.
2: This
3: all came because of the what I learned, to be calm, to be free.
2: Because now the inside is completely in harmony.
3: Yes.
2: So then there is no fear.
3: Yes. And even there is something, I know what to do. That's the difference.
2: Right.
3: There might be something, but it's more inside. I know, something is still there. And I like even the word transformation. I like. Because I go in the form I was before, a pure being.
2: Yes.
3: Yes.
2: Sister, from, you know, you've sort of balanced very well your work life with your spiritual life. So, you know, those of us who stay at home, who have work to do, but are also trying to get an element of spirituality into our lives, what would you tell us? How do we create that balance?
3: Just to create your own inner balance first, that you feel what you need, because we want to give others what they need. But this one thing I learned about love, if you don't nurture yourself, you cannot nurture others.
2: Right.
3: And that's a secret I also learned.
2: Yeah.
3: First, I need to take power from the Supreme and myself, that I feel loved.
2: Yes.
3: I feel appreciated. Yeah. And then it's real also. If you then appreciate others and give them something, then it's real.
2: Mm-hmm.
3: Because it's like flowing. It's not from you.
2: Right.
3: You are limited. But God is unlimited. It's like that. It's flowing out.
2: Yeah.
3: You're not earlier. If you give love, you feel sometimes empty.
2: Yeah. And you're also, you know, the moment you give love, you're just waiting for that moment to come back from the other side.
3: That was a big click for me.
2: Right.
3: Not awaiting love from others. Take love, and then you can give love.
2: Yes. Sister, you know, when you say this, a jar comes to my mind.
3: Yes.
2: Do you think it's like a jar where you fill it with love and then it'll only brim, I mean, it'll only drop out and flow when it's up to the brim. Until and unless it's not full, it will never reach other people.
3: It's a wonderful image.
2: I think that's how I would relate it.
3: Yes, it's true. It's not you, the I-ness or the finish.
2: Yeah.
3: I give love, you know.
2: Right.
3: It's never enough.
2: Indeed.
3: But if you take, it's a nice image, the jar. It just automatically comes out.
2: Yes.
3: The drops come inside and then it comes out.
2: So, sister, you know, now that it's been so long and you're spreading the word about spirituality in Germany, I'm sure in this long and beautiful journey, you must have come across some challenges. Could you tell us the most pressing challenges that faced you and you know, you flew over them?
3: Okay. Yes. What comes now in my mind is someone who's senior to me.
2: Yeah.
3: And I had a lot of respect to her. But anyhow, she triggered a point in me. I was very hurt.
2: Okay.
3: No, like, as I was brought up in Germany, it's a different kind of living, and we are quite free.
2: Yeah.
3: And at that moment, I need to do what I felt was not right at all.
2: Yeah.
3: And I felt so forced and so hurted.
2: Okay.
3: It was a big challenge, but then how I overcame this was I told first I spoke to God.
2: Yeah.
3: I told him everything. And then it was like a sign. Look behind the curtain.
2: Yes.
3: And literally, I saw this person and saw the pure intention behind it. That she didn't want to hurt me, but her intention was pure.
2: Yes.
3: And what triggered me has nothing to do with her. Something triggered my own old stuff from the past. And then I started to look at her, but you are so pure. So you have pure intention.
2: Yeah.
3: And slowly, slowly it healed my heart. And this is many years ago. But till today, the relationship is really good.
2: Wonderful.
3: Yeah.
2: So I think that's a very practical example of meditation coming to rescue in relationships.
3: Yeah, yeah.
2: I think a lot of us, you know, we say that this particular act hurt me. These words of hers, I can never forget.
3: Yeah.
2: And this really hurt me. But just like you say, sister, that hurt is not coming from the other side.
3: It is true. Yeah.
2: That hurt is only being created by me.
3: Yeah. Like someone told me, and this I use everywhere as example. Someone told me this example. If, for example, I have a little wound, here, and you put salt on it.
2: Yeah.
3: You can put a little salt or a full mountain of salt. It will hurt.
2: Yeah.
3: You know? But if there's no wound, you can put a full mountain on it.
2: Yeah.
3: Salt. I will not feel it.
2: Right.
3: So I have to heal my wound.
2: That is such a wonderful example.
3: Yeah. And this helped me.
2: Indeed.
3: Yes.
2: The moment I am healed, there's nobody who can disturb my inner being.
3: No.
2: How wonderful.
3: This is the work I do.
2: Yeah.
3: Healing myself with the help of God.
2: Right. Yes. Right. Right. Thank you so much, sister.
3: Okay.
2: It has indeed been great. You know, to literally have a peek into the story of your life and understand from the various experiences you've had, both professionally, personally, and now spiritually. Thank you so much for being with us. Thank you.
3: Om Shanti.
2: To all our viewers, thank you for listening to us. It has indeed been a great learning experience for me, and I'm sure even you have taken many learnings from this episode. Sister has shared with us the various ways to look at meditation and how sometimes just stepping back into a moment of silence can heal everything for us. Also, she shared a wonderful example that I'd like to repeat. You know, whenever we have a wound, we put a little bit of salt on it. Even if it is a pinch, it hurts us. But when there is no wound and we put a mountain of salt on our skin, it'll never hurt. So it's upon us to heal ourselves, and that'll really safeguard us from all other external circumstances. Thank you for being with us, all our viewers. We look forward to see you imbibing great learnings from this episode. Om Shanti.

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 12 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है 3 लोक। बाबा हम बच्चों को 3 लोकों का स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ऊपर में है निराकारी दुनिया, जिसको कहेंगे पहला तबका, फर्स्ट फ्लोर। फिर नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है, जहां आकारी ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। और फिर नीचे कॉर्पोरियल दुनिया, साकारी दुनिया, जिसमें हम सभी आत्माएं आकर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को निराकारी दुनिया में बाप के पास जाने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत कराते हैं। बाबा कहते, जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे, निराकारी दुनिया में जाने के योग्य होंगे। बाकी बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतन में आकारी देवताएं रहते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं चलता, और सूक्ष्म वतन की रचना भी बाबा संगम पर ही करते हैं। बाकी सारा पार्ट जो चलता है साकारी दुनिया के अंदर, बाप को भी इस साकारी दुनिया में अंतिम समय में आना पड़ता है। संगम के समय पर आकर के सभी आत्माओं को अतीत से पावन बनाना है और फिर वापस घर ले चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे सेंसिबल बच्चे। बाबा ने यह स्पष्ट किया है मुरली में, सेंसिबल बच्चे किसको कहा जाता है, जो ये आत्म अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हैं, उसको सेंसिबल कहा। तो बाबा कहते, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके यानी पहले फ्लोर में जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उससे अपने दिल से लगाते रहो। ज्ञान की हर एक बात अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन, ये नशा रहता कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। 1 शिव बाबा ने कहा, 1 ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा? शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, और बाद में फिर किसने कहा? तो बाबा कहते, पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, अर्थात मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, अर्थात मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं। कौन कहते? शिव बाबा कहते, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सदैव देही अभिमानी है। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ, परमधाम में निराकार शिव बाबा रहते हैं, वह कभी देह अभिमान में नहीं आते। बाबा कहते अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं। निराकार शिव बाबा का कभी अपना शरीर है ही नहीं, पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखे हैं। बाबा कहे भक्ति किया तो शिव का चित्र भी बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है, न विचित्र की, न वहां कोई और देवी देवताएं हैं जिसकी वो देवताएं पूजा करे, न वहां विचित्र की पूजा होती है या भक्ति होती है। तो तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती, न विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका न सूक्ष्म

दूसरा तबका, पहला तबका है निराकारी दुनिया, फिर दूसरा तबका है सूक्ष्म वतन, ऊंचते ऊंच मूल वतन। उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, और थर्ड तबके में नीचे स्थूल वतन में स्थूल शरीरधारी है। थर्ड तबके में थर्ड फ्लोर में स्थूल शरीरधारी है। बाबा परमधाम में रहते तो इसलिए बाबा उसको पहला तबका कहता है और स्थूल वतन को तीसरा तबका कहता है। वहां से देखो तुम तो बाबा कहते हैं थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है, इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, मूल वतन में है वो सारी सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है, निराकारी दुनिया से फिर साकारी दुनिया में आती है। वहां है आत्माएं, यहां है जीव आत्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। एक एक ज्ञान की बात को बाबा स्पष्ट करते हैं, तीनों लोकों को इतना सुंदर तरीके से बाबा स्पष्ट करते हैं। बरोबर, हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकारी बाप के पास रहते थे, हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं। संगम तक भी, अंतिम समय तक भी आत्माएं नीचे पाठ बजाने आते रहते हैं। जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं साकार में, वह हो गया निराकार बाप का वतन। परमधाम है निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए। बाबा कहे अगर नशा रखना है तो अविनाशी चीज का नशा रखो, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्मा अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? देह अभिमान वाले को सेंसिबल कहेंगे, आत्माभिमान वालों को सेंसिबल कहेंगे। बाबा कहते हैं सेंसिबल कौन? आत्माभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है, वहां से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है, एकदम क्लियर बात बाबा समझाते हैं। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहां ठहरा ना, वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स है। कहां? मूल वतन में। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव। शिव बाबा के साथ हम सब आत्माएं वहां रहती है। आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो। इस बात का निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। झाड़ से पहले जरूर बीज होता है।

जैसे सीजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे दो चार बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, एक दो वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, मूल वतन में सिर्फ आत्मा, उनका भी चित्र है, ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सतयुग में तो ये नॉलेज किसको भी रहती नहीं, तो सतयुग में भी नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ अभी संगम पर ही बाबा आकर के स्थूल वतन में हमें पढ़ाते हैं, बाप ही संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं, कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स है। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहां शरीर धारण करते हैं। परमधाम में ब्रदर सिस्टर नहीं, वहां सब ब्रदर्स है। हम आत्माएं सब भाई भाई है, भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है, सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं, पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी हे राम, बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। सब आत्माएं रूपी सीता पुकारती है हे राम, तो वो त्रेता वाला राम नहीं, राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं, वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहां आत्मा पति तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है, पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉडफादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो ड्रामा भी अविनाशी, आत्मा अविनाशी, परमात्मा बाप अविनाशी, ड्रामा अविनाशी। जहां अविनाशी बाप ने जन्म लिया, वो भारत भूमि भी अविनाशी, और परमधाम भी अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है, कितनी अविनाशी चीजें हैं। तो आत्मा परमात्मा ड्रामा प्रकृति, ये भारत भूमि और परमधाम। तुम बच्चे जानते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, सूर्यवंशी फर्स्ट ग्रेड, चंद्रवंशी जैसे कि सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते, वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है,
राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। सतयुग आरंभ में संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़ा वर्ष पास हुए तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है, ऐसे हर चीज होती है। सतो से सेमी सतो रजो प्रधान, यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है, यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते हैं। चलते जाओ एंड हो ही नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती, इतना विशाल ब्रह्म महातत्व है। वो साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा भी अंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में वहां रहती है। यहां बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना, वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती है। एकदम छोटी सी बिंदी आत्माएं परमधाम में रहती है। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी, वहां तो अभोक्ता है, परमधाम में अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं है। बाप समझाते हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है, तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, इसलिए शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं, वह निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते हैं तो दादा के पास आए हैं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूं, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। जो बाबा को झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है, तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हैं, बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ब्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रिय का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहां से आया, तो इसमें आकर बैठते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर बैठते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मुख चाहिए, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, शिव बाबा ही बड़े ते बड़ा सर्जन है।
उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहां तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे है, वहां कोई दुख रोग होता नहीं। यहां तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है, कोई दुख की बात ही नहीं जो कहे यह कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्मा का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रदान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रदान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रदान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की दो कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि के भी दो कला कम हो जाती है। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। सारा तीनों लोकों का, तीनों कालों का कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान बाप के सिवाय कोई समझा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरी पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। कितने सुंदर बात कही, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। बाबा कहते स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। आज का स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल वाले प्यारे हैं।
साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। अच्छा, ओम शांति।